जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था, तो जिस तरह ये लोग इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे।

0: غيره قد جاءتكم بينة من ربكم
1: فأوفوا

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। हर चीज जो आसमानों और जमीन में है उसकी तस्बीह कर रही है और वो जबरदस्त और हकीम है। ए अल्लाह पाक, तू रहमान है, तू रहीम है। हम तेरे गुनाहगार बंदे हैं, हमें माफ फरमा। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा। ए अल्लाह पाक, इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, हमारे वतन के अवाम भी परेशान हैं। हमें इस मुश्किल वक्त से बाहर निकाल। अपने प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अमान दे दे, हमारे दिलों को मोहब्बत से भर दे। तू रहमान है, तू रहीम है, हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं हैं। ऐ हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं, उन पर गिरफ्त न कर। मालिक, हम पर वो बोझ न डाल जो तूने हमसे पहले लोगों पर डाले थे। परवरदिगार, जिस वार को उठाने की ताकत हम में नहीं है वो हम पर न रख। हमारे साथ नरमी कर, हमसे दरगुजर फरमा, हम पर रहम कर। तू हमारा मौला है, काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद कर। ए करीम, हमें माफ फरमा। तू रहमान है, तू रहीम है। हमारी दुआएं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में कबूल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन।
1: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله

पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

0: 8 AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Wednesday 24th of Rabiul Thani, October the 7th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The President has conferred Nishan-e-Imtiaz on the United Nations Secretary General in recognition of his distinguished international service and contribution to global peace and development. Asif Ali Zardari has called for transforming Pakistan-Poland historical friendship into a multifaceted partnership. The Prime Minister has directed for a third-party audit of all the ongoing projects of the National Highway Authority. The Deputy Prime Minister says any attempt to deprive Pakistan of its rightful water share would have serious implications for regional peace and security.
1: FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: खैर तो है इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो
4: गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है आज अप्लाई करने का आखिरी दिन है और बैंक का टाइम भी खत्म होने वाला है
3: बैंक जाने की क्या जरूरत है इन्वेस्ट पार्क है ना
4: इन्वेस्ट पार्क
5: जी हाँ इन्वेस्ट पार्क से अब आप घर बैठे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें ना बैंक का झंझट ना कतार ना इंतजार इन्वेस्ट पार्क वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाएं और जब चाहे जहाँ चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें
4: इन्वेस्ट पार्क से इन्वेस्टमेंट आसान महफूज और मुनाफा
6: दिस इज FM 101.1
7: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लाड़काना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
8: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
1: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories, and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फेमानो वन चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइज। जना बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या कहते हैं आज का मौसम और क्या हालात वाकयात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मजाफात में। अब लाहौर के मौसम की मैंने आगाज़ में बात की थी, क्या ही खुशगवार हवा चल रही थी, बादल आए हुए हैं और उम्मीद है कि दोपहर के औकात में बारिश भी होगी। आज मैं बल्कि आज तो नहीं, रोज़ाना मैं जाता हूँ शालामत बाग, आजकल मैंने रूटीन बनाई है, आज आके वॉक की जाती है, रनिंग करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो वो और बात है कि बाद में मत बच जाती है स्टेमिना लूज हो जाता है, लेकिन करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेंथ जो है वो आएगी ना, सो आपको भी करनी चाहिए, इतना अच्छा फील होता है। और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बल्कि दिन के स्टार्ट में, आगाज़ में कोई ना कोई ऐसा काम लाजमी करना चाहिए कि आपका दिन बन जाए, तो बहुत अच्छी बात है। जो मॉर्निंग वॉक होती है, जो रनिंग होती है, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट होता है, आपको आपकी लाइफ में ना कहीं सेट कर देता है। अक्सर हम बात करते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से बात की जाती है कि कंटेंट क्रिएटर स्पेशली जो फिटनेस के हवाले से कंटेंट बनाते हैं, जिम के हवाले से बनाते हैं, सो वो जब अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, अपना पुराना गरीबी का दौर दिखाते हैं, अपनी वो जली भुनी से जो शक्ल है वो दिखाते हैं, और अचानक ही जब उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने आज का जो दौर दिखाते हैं, तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो सिर्फ सेहतमंद नहीं हुए बल्कि अमीर भी हो गए हैं। तो इसके पीछे मैंने पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि जब आप अपनी फिज़िकल एक्टिविटी के हवाले से ख़ुद पर काम करते हैं ना, अपने आप को फिज़िकली ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो भी बदलने लगती है, आपकी ज़हानत बदलने लगती है, आपकी ज़हनियत चेंज होने लगती है, और आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इख्तियार करते हैं जो कि वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। आप उन इंसानों को चूज़ करते हैं, उन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखते हैं जो कि आपके लिए बेहतर हैं। सो इसमें कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है कि जिम करने वाला इंसान अमीर हो जाता है, अमीर होता है या नहीं होता, लेकिन लाइफस्टाइल भी किसी चीज़ का नाम है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ जिम की बात नहीं है, कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी जो कि आपको चुकन्ना रखती है, आपके आपको तंदुरुस्त व तवाना रखती है, और किसी भी तरह से आपको आपकी लाइफ में मोटिवेटेड रखती है, सो वो आपको लाजमी इख्तियार करनी चाहिए। ये आजमूदा नुस्खा है, मैं ये करता हूँ जब मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं कि मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस की सूरत हाल से हर इंसान होता है, और मुझे भी बताने में कोई दो राय नहीं है, कोई मुझे कोई वो शाइबा नहीं है कि मैं नहीं बताऊँगा, बल्कि मेरे साथ भी ये मामलात होते हैं, लेकिन कि मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ता है, बहुत परेशानियाँ होती हैं, डिप्रेशन, एनजाइटी, स्ट्रेस की सूरत हाल से हर इंसान होता है, और मुझे भी बताने में कोई दो राय

सोचता है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज, अच्छा अच्छा लाइहा अमल जो है ना वो बनाता है। और मुझे याद पड़ता है कि लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के हवाले से, और इसके हवाले से मैंने एक बहुत प्यारी एक चीज़ पढ़ी थी, और कहा जाता था कि डिप्रेशन जो है ना, जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी कि जो हरकत में रहने वाले इंसान होते हैं या जो अजसाम होते हैं, उन पे अटैक नहीं करता है। ये काफ़ी गहरी बात है, काफ़ी टेक्निकल बात है। अगर आप समझना चाहें, आपको समझाने के लिए मैं इस तरह से कह सकता हूं कि अगर आप चार दीवारी में एक बंद जगह पर अपने आप को रखते हैं ना, तो ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मूवमेंट करते रहते हैं, अपने घर से निकलते हैं, बाहर वॉक करते हैं, खाने पीने जाते हैं, घूमते फिरते हैं, लाइफ को इंजॉय करते हैं, एक जगह पर अपने आप को स्टक नहीं रखते हैं, तो कभी इम्कानात हैं कि डिप्रेशन आपको नहीं होगा। क्योंकि वही बात ना जो कि मैं कह रहा हूँ कि डिप्रेशन हमेशा जो है ना, जो रिजिड बॉडीज़ होती हैं, रुके हुए जो अजसाम होते हैं, उन पे अटैक करता है। मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूविंग जो ह्यूमंस होते हैं ना, इन पे अटैक नहीं करता है। और वो कहते भी हैं ना कि हरकत है तो बरकत है, हरकत में बरकत है। तो हरकत करते रहा कीजिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। आज लाहौर का मौसम बहुत ही खुशगवार, बहुत ही मज़ेदार है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 32, और अभी जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 26। इसके अलावा मिनिमम जो आज रिकॉर्ड किया जाएगा वो है 22। इसके अलावा जनाब, आज हवा में नमी का तनासुब बनिस्बत कल के बल्कि पूरे हफ्ते के बहुत ज़्यादा रहने के इम्कानात है, क्योंकि बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी सुबह मैंने सुना है कई इलाकों में हुई भी है। 71% आज ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके साथ साथ शाम के औकात में 13 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलने वाली हैं। सो मौसम जो है ओवरऑल बहुत ही खुशगवार, बहुत ही औसम रहने वाला है। तो मौसम के हवाले से जब भी बात की जाती है, आपको मैं हमेशा ये लाजमन कहता हूँ कि असल मौसम जो होता है ना, वो इंसान के दिल का, उसके अंदर का, उसके मन का मौसम होता है। सो कोशिश किया कीजिए कि अपने दिल के, अपने मन के, अपने अंदर के मौसम को खुशगवार रखा कीजिए। वही घिसा पटा जुमला और बारहा ये बात की जाती है, बारहा आपसे ये कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे वो राज है जो कि मैं बारहा आपसे डिस्कस करता भी हूँ और आज भी करूँगा कि जैसा मूड हो वैसा मंजर होता है, क्योंकि मौसम तो इंसान के अंदर होता है। वेल, अंदर के मौसम का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 101 चैनल, रेडियो पाकिस्तान लाहौर, द नंबर 1 रेडियो स्टेशन ऑफ द नेशन।

जनाब 9:39 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए, और ये साथ में हम मज़ीद बातें करेंगे, अच्छा अच्छा म्यूज़िक शामिल करेंगे, और ऑफ कोर्स आपसे बात की जाएगी, बहुत कुछ होगा सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को, सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। वेल, एक ऐसा ही ट्रैक, बुरा हाल, आप तमाम समातों के नाम आतिफ असलम की आवाज़ में मिलते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फरमान वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइब्स। वो जनाब, आज एक बहुत ही अहम दिन जो है वो मनाया जा रहा है, जिसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन, यानी कि आलमी दिन आज मनाया जा रहा है बाहमी एहतराम के साथ कम्युनिकेशन करने का, बात करने का, गुफ्तगु करने का। सो इस पे बिल्कुल हम बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ तकरीबन कल की बात है, कल या परसों की बात है, मुझे वैसे कल बच्चों ने विश किया था, मैं पढ़ाता भी रहा हूँ आपको पता होगा, तो मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे टीचर्स डे जो था वो विश किया था, उस्तादों का जो आलमी दिन था वो विश किया था। सो आपको भी कभी किसी ने टीचर्स का, उस्तादों का आलमी दिन जो है वो विश किया है, इस पर आपको नेक तमन्नाओं का इजहार किया है तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा जनाब, मुझे याद पड़ता है कि कल यानी कि आने वाले कल की बात की जा रही है, कल 8 अक्टूबर है, और 8 अक्टूबर के हवाले से बिल्कुल बहुत सारे लोगों की, स्पेशली हम मिलेनियंस की, जेन जी के लोगों की, या आप किसी भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप 2000 के ज़माने से पहले से आप पैदा हो चुके हैं और आपने ये टाइम देखा है 2004 का, 5 का, तो 2005 का जो जलजला था 8 अक्टूबर को सुबह 8:45 पे गालिबन आया था, सो इस जलजले के हवाले से जो थी कल बाकायदा कुछ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा उन तमाम लवाहिकीन को, उन तमाम लोगों को जो कि जलजले में शहीद हो चुके थे, दारे फानी से कूच कर गए थे, ज़ख्मी हो गए थे, किसी भी तरह से उनको ना याद रखा जाएगा, उनके लिए दुआएं की जाएंगी। सो ये एक बड़ा जो था हादसा था, एक ट्रेजेडी जो कि हमने देखी थी। मुझे याद पड़ता है, मैं बहुत छोटा था, बचपन की बात है, हम स्कूल में थे और मैं, मेरी बहन, हम इकट्ठे एक स्कूल जाते थे, और वहाँ पे अचानक से ना धमक की आवाज़ आती है, उस आवाज़ के साथ हमें हमारे जो बेंचेस हैं स्कूल के, तमाम तो जो सामान था, फर्नीचर था, पंखे थे, हमें हिलते हुए महसूस होते हैं। पूरी बिल्डिंग जो स्कूल की थी, मुझे याद पड़ता है प्रिंस हाई स्कूल के नाम से बगबानपुरा में एक स्कूल होता था, वहाँ पर हम पढ़ते थे। सो अचानक से पता चलता है कि जलजला आ रहा है, और इतना शदीद जलजला था, मुझे याद है अच्छी तरह से कि जो हमने स्कूल बैग्स थे वो अपने सरों पे रख लिए थे, खुदा ना खास्ता बिल्डिंग अगर गिरती है तो हम उसमें किसी भी तरह से, किसी बड़ी अजियत से, किसी बड़े हादसे से जो है ना दुचार ना हों। सो हमें फौरन स्कूल से छुट्टी दे दी गई थी, घर आए थे, घर आते हुए रास्ते में लोग बाहर निकले हुए थे, कलमा तैयबा का विद कर रहे थे, खुदा को याद कर रहे थे, अल्लाह ताला को याद कर रहे थे। रमज़ान का महीना था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रमज़ान का मेरे ख्याल से 7वां या 8वां रोज़ा था, और सुबह के इस पहर में लोग जाग रहे थे, उठे हुए थे, घरों से बाहर निकल चुके थे, और एक अजीब सा जो पैनिक का जो माहौल था ना वो क्रिएट हो चुका हुआ था। घर आते हैं, घर आके टीवी जब लगाया जाता है, घर आके मुझे पता चलता है कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। उस टाइम तक जो जलजले का मैग्नीट्यूड था, जो शिद्दत थी ना, उसका अंदाज़ा नहीं हुआ था। सो घर आके पता चला कि इस शिद्दत का जलजला, हालांकि मैं बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी इन चीज़ों के हवाले से, इन मामलों के हवाले से, ऐसे हादसा के हवाले से मेरा एक अच्छा खासा, क्या कहते हैं, एक्सपोजर जो था ना वो बन चुका हुआ था। कुछ ऐसी वीडियोज़ देखी जाती थी, कुछ ऐसी मैंने बुक्स पढ़ रखी थी, और कुछ जलजले पहले भी आ चुके थे जिनके हवाले से बात की जाती थी। हमारी अम्मी हमें बताती होती थी कि बचपन में भी 1998 के दौर में एक जलजला आया था, और ये बिल्कुल उस जलजले से मुशाबहत रखता था। तो और बात है कि घर वाले जो थे, मेरे वाले साहब सोए हुए थे, वो लेट जाते थे, तो टीवी पे पता चला कि इतना नुकसान हुआ है आज़ाद कश्मीर और इन इलाकों में, स्पेशली जो पहाड़ी इलाके थे, हमारे शुमाली इलाका जाते, यहाँ पर बहुत नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी जो हेडलाइन थी, मुझे याद पड़ता है कि ARY न्यूज़ था या जियो न्यूज़ था, यहाँ पर बल्कि PTV पर मैंने जो पहला खबरनामा देखा था, उसमें इस्लामाबाद की एक बिल्डिंग थी, मार्गला टावर के हवाले से काफ़ी बात की जा रही थी, तमाम मीडिया वहाँ पर मौजूद था, और अच्छा खासा नुकसान हुआ था। सुबह की पहर ये बातें करने का मकसद, ये आपको याद दिलाने का,
इस जलजले के हवाले से, अक्टूबर 2005 के, 8 अक्टूबर 2005 के जलजले के हवाले से बात करने का मकसद बिल्कुल आपको डराना या सुबह के वक्त में चौकन्ना करना, अलर्ट करना, एक वाइब को ख़राब करना नहीं था। आपको बताना मकसूद ये था कि ऐसे ऐसे लम्हात, ऐसे ऐसे सानहात, ऐसे ऐसे वाक़यात जो कि हमारी कौम ने देखे हैं, और बहुत सब्र के साथ, बहुत हिम्मत के साथ, बहुत एक वलवले के साथ हमने इन तमाम चीज़ों से, तमाम हादसात से हमने सर्वाइव किया है। हम वही कौम हैं जिसने सैलाब भी देखा है, जंगें देखी हैं, जलजले देखे हैं, लेकिन हम अपने पैरों पे खड़े हैं और एक अच्छे तरीके से सबके साथ हमने एक तावन के साथ जो था ना, इन तमाम तर मुसीबतों से अपने आप को निकाला है, आगे ग्रो किया है। सो ज़िंदगी का पता नहीं होता, इंसानों का पता नहीं होता, और लोगों का पता नहीं होता, इस नेचर का, इस कुदरत का पता नहीं होता कि कब किस तरह से हमारे लिए किसी भी तरह का जो लम्हा है ना, हमें उसका सामना करना पड़ सकता है। सो कोशिश कीजिए कि अच्छी बात कीजिए, अच्छे कलमात अदा कीजिए, लोगों के साथ अच्छे से पेश आइए। और बात है कि बहुत मुश्किल है प्यार से बात करना, किसी को वक्त देना, और वो वक्त देना जो कि वाकई में वैल्यू रखता है, पॉजिटिविटी के साथ, मस्बियत के साथ जो है ना, किसी के साथ कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, और अपने ख्यालात का, अपनी राय का इजहार करना। हमें पता है कि आजकल कश्मकश का दौर है, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत मुश्किल होता है कि अपने जो आपके विचार होते हैं, आपके जो नज़रियात होते हैं, अपने ख्यालात होते हैं, उन सब के साथ ऑब्वियसली हम सब की जज्बाती वाबस्तगियाँ होती हैं, किसी भी तरह का हमारे सेंटीमेंट्स जो होते हैं वो जुड़े होते हैं, लेकिन बावजूद इसके किसी की बात को सुनना, किसी की बात को समझना, और उस बात का जो है ना एक पॉजिटिव अंदाज के साथ, एक मस्बत अंदाज के साथ रद्द अमल देना, जवाब देना, उसका फीडबैक देना। सो इस हवाले से बात की जा रही है कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन जो है वो मनाया जा रहा है। सो इस हवाले से हम भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे, हमने आज के दिन से तहैया करना है कि जब भी किसी से बात करनी है, हमने अपने लहजों को दुरुस्त रखना है, हमने अपनी एटीट्यूड को बेहतर रखना है, और कोशिश करनी है कि जिस तरह से अक्सर बात की जाती है, तो हमारे मज़हब में भी है ना कि हमारे हाथ, ज़बान और किसी भी तरह के अमल से किसी को कोई नुकसान ना हो। सो हमने कोशिश करनी है कि हमारे अल्फाज से भी हमारी जो बुरी इंटेंशंस हैं वो किसी को मुतासिर ना करें, किसी को हर्ट ना करें, किसी की दिल आज़ारी ना हो। सो अच्छे अल्फाज का चुनाव करना है, अच्छे से बात करनी है, दूसरों की बात को सुनना है, समझना है। बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारा डिप्रेशन जो है, ज़हनी मसाइल हैं, ज़हनी तनाव है, किसी की बात को सिर्फ सुनने से जो है ना हम उस इंसान को ठीक कर सकते हैं, उसके लिए मावनत का जो सामान है वो हम मुहैया कर सकते हैं। तो बिल्कुल जनाब, इस हवाले से बातें सॉन्ग चलती रहेंगी और म्यूज़िक भी हम शामिल करते रहेंगे। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अभी रिमशा मौजूद थी, इनके अलावा उस्मान साहब मौजूद थे और गले के हवाले से कुछ बता रहे थे, एक जगह के गुलाब जामुन खा के आते हैं। सो मैंने पूछा कि कहाँ से खा के आते हैं, मेरा भी गला जो है ना वो अक्सर ख़राब रहता है। तो बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू, आप तमाम सामीन का, तमाम समातों का बहुत बहुत शुक्रिया एफ एम 101 को ट्यून इन करने के लिए। वह जनाब, कुछ अपडेट्स हैं, कुछ ख़बरें हैं जिनको शामिल किया जाएगा बिल्कुल, और उसके साथ साथ गानों का सिलसिला भी सॉन्ग चलता रहेगा। सो अगर आप अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं थ्रू कमेंट्स, थ्रू मैसेजेस, या कॉल करना चाहते हैं, कॉल करने के लिए आपको 10 बजे का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 10 बजे के बाद आपकी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे और अपनी बात को कहने और अगले की बात को सुनने के, बर्दाश्त करने के काबिल बनने के हवाले से ना, अपनी जो मुफीद आरा और तजावीज़ हैं इनसे बिल्कुल हम महसूस होंगे जो कि आप करेंगे। इसके अलावा अगर आप लिख के अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम एफ एम 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज। सो यहाँ पर आपको जो पहली पोस्ट दिखेगी वो मेरे शो से मुतालिक होगी। यहाँ पर आने के बाद आप थ्रू कमेंट्स अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपने दिल की जो बात है वो मुझे बता सकते हैं, मुझे जान के अच्छा लगेगा।

वेल जनाब, 9:56 हुए जाते हैं, 9:56 AM, और अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा आसिम अज़हर की आवाज़ में, कहते हैं चंद माई। इस ट्रैक इस बार आपसे मुलाकात होती है, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद वेगा में, कहते हैं फेम ऑन वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड, एंड यस, डोंट गो एनीवेयर।

0: اوکے جناب، ویلکم بیک ونس اگین. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں کہتے ہیں فیم ون ون چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. شو لائیو ہے سٹی وائبس. 10:08 بجے آتے ہیں پاکستان کا معیاری وقت، اور میرا آپ کے ساتھ رہنے کا بھی. جناب ہم بات کر رہے تھے آج انٹرنیشنل ڈے آف پیسفل کمیونیکیشن، یعنی کہ باہمی احترام اور مفاہمت کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو آج دن ہے وہ منایا جا رہا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اچھی اچھی بات کرنی ہے اور اچھے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. ویڈیو پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا تو موٹو، ہمارا لوگو ہی یہ ہے نا کہ وقول للناس حسنا، یعنی کہ لوگوں سے اچھی اچھی بات کرو. اس حوالے سے آج عالمی طور پر بھی بات کی جا رہی ہے، صرف بات نہیں کی جا رہی، ہم بھی بات کریں، آپ سے گفت و شنید کریں. سو اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ سننا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. طریقہ انتہائی آسان، FM 101 لاہور کا فیس بک فین پیج. اس کے علاوہ آج اچھی بات یہ ہے کہ وہ تمام سننے والے جنہوں نے مجھے سنا ہے، سن کے برداشت کیا ہے، دیکھ کر بھی اگر برداشت کرنا چاہتے ہیں سو اس کے لیے آپ MUSTAFAA لکھیں گے. مصطفیٰ کے نام سے میرا ایک فیس بک فین پیج ہے، یہاں پر میں لائیو ہوں، دکھائی بھی دے رہا ہوں. خدشت بڑا ہوا ہے، کیپ پہنی ہوئی ہے، آپ کو ایک لڑکا دکھے گا، نوجوان دکھے گا، تو جیسا بھی دکھتا ہے آپ سن لیجیے گا. سن کے آپ کو کم از کم میں اچھا لگوں گا، دیکھ کے چاہے نہ لگوں. جوکس اپارٹ، باتیں چلتی رہیں گی. اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کال کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم. FM 101 لاہور کے لیے کال کرنے کے لیے 04221100101. سو یہاں پر آپ پہلے آئیے پہلے پائیے کے بنیاد پر مجھ تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اپنی دل کی بات جو ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں. سو ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا. دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے. السلام علیکم.
1: جی بسم اللہ، پیار بھرا، محبت بھرا، دوست بھرا. مصطفیٰ بھائی السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: فاروق آباد ہر کام سے قابل عزت قابل احترام. ہاں جی
0: ہمیشہ کی حال نے خیریت نہ لو، ٹھیک ٹھاک ہو؟
1: میں کہنا جی اللہ پاک کا شکر ہے، بڑا بڑی ٹاپک بھی بڑا اچھا رکھا ہے آج.
0: اچھا کدی اینج ہوں گے کہ تسی کسے نہ گل کر رہے ہو تے اگلا بندہ جڑا ہے یا تسی اپنی گل کرو تے غصہ آ گیا ہے بلا وجہ، دل کردا ہے انوں میں جڑا نا ایسی سناواں کہ مگوں گل ہی نہ کرے. ہوندا ہے انج کہ کوئی نہیں،
1: غصہ تے سرکار آ جاندا، باقی نا احترام کرنا چاہیے دا. جے بڑے کوئی گل کہہ وی لین نا،
0: اچھا
1: پھر انہاں دا احترام کرنا چاہیے دا. ویکھو جی انہاں نے کوئی مقصد ہوندا انہاں دا کہن دا، سمجھانا ہوندا سانوں انہاں.
0: اچھا جی چھوٹے کوئی گل کہہ دین تے پھر چلو کوئی نی، صبح گل ہوئی نا مینو بھی بڑی خوشی ہوئی.
1: وعلیکم
0: السلام. وعلیکم السلام. 04221100101 رابطے کا نمبر. اب اگر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں سو آپ کر سکتے ہیں. اچھا میں دیکھ رہا تھا، میں نے یہاں پر بھی میں اپنے فیس بک فین پیج پہ لائیو ہوں، اور بات ہے کہ کافی عرصے کے بعد یہاں پہ میں نے کوئی پوسٹ کی ہے، یہاں پر کوئی لائیو ایکٹیویٹی کی ہے، تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات ہے. سو آپ تمام سننے والوں سے جو کہ دیکھنا چاہتے ہیں، سو آپ ہماری جو لائیو ٹرانسمیشن فیس بک پہ چل رہی ہے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. MUSTAFAA مصطفیٰ لکھیں گے. سو آپ کو کالی سی ڈی پی نظر آئے گی، دکھے گی، اس پر جو اسٹوری کا جو ریڈ کلر کا بلیو کلر کا سائن ہوتا ہے وہ آپ کو دکھے گا. اٹ مینس کہ آئی ایم لائیو. سو یس، یہاں پر آپ ہمارے ساتھ لائیو پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں تھرو کمنٹس یا میسیجز کے. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
2: جی وعلیکم السلام، لاہور سے ریمشا.
0: ارے ریمشا آ گئی ہیں، ریمشا کیا حال ہیں؟
2: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ही ठाक, उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे।
0: हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आपकी दुआएं हैं जो कि आप नहीं करती होंगी।
2: अल्लाह मैं करती हूँ। देखिए आपने बताया था ना पिछले शो में मेरे पेट में दर्द है, मैंने दुआ की थी कि आपका पेट का दर्द जल्दी ठीक हो जाए।
0: हाँ ठीक हो गया, वैसे बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया रिमशा।
2: इसलिए कहती हूँ आज दोबारा रात को बर्गर खा के मैं सोना।
0: अच्छा अच्छा ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा रिमशा क्या कहोगी, आज इंटरनेशनल डे है पीसफुल कम्युनिकेशन का, यानी अमन के साथ बात। आपकी तो शादी हो गई, फटे शटे होते हैं कि कोई नहीं?
2: नहीं हले तो फटे शटे को नहीं होंगे।
0: अच्छा हले नहीं होंगे, आगे जाके होंगे, अल्लाह ना करे हों, लेकिन चलो कोई नहीं, हो भी जानती है, अच्छी गल है।
2: अगर कभी कभार ऐसा होता है कि मैं छोटी छोटी बातों पर मैं नाराज हो जाती हूँ उनसे, ये हालांकि वो मनाने के बजाय खुद ही नाराज हो जाते, फिर मुझे मनाना पड़ जाता
0: है। चलो अच्छी बात है यार, बल्कि अच्छी बात ये है कि आप मना लेती हैं या वो नहीं भी मनाते, मसला पता कहाँ पे शुरू होता है जब दोनों नाराज हो जाते हैं।
2: मसला यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। इंसान को ना ये होना चाहिए कि गुस्सा इतना नहीं करना, गुस्सा हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है, क्योंकि गुस्सा इतना नहीं करना चाहिए। एक मतलब वो गुस्सा तो इंसान को आ जाता है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे गुस्सा आ गया तो अगला बंदा ही मुझसे माफी मांगेगा। माफी मांग लेनी चाहिए, कोई कुछ नहीं होता आपका गुस्सा, अगर क्योंकि मुझे गुस्सा आया थोड़ी देर का होता है, मैं बाद में सेट हो जाती हूँ। हालांकि मैं उनको कहती हूँ, हालांकि मुझे गुस्सा आया हो ना तो वो बहुत बहुत मुझे तंग करेगी, मैंने कहा कम से कम थोड़ा सा अलहदगी दो। कहेंगे नहीं मैं मुझे पहले अपने गुस्से की वजह बताओ, फिर मैं खुद ब खुद मैंने कहा उन्होंने कुछ नहीं हुआ,
0: तो बता देते हैं ना, बता देते हैं। आज हम यही बात कर रहे हैं कि अक्सर हमारे साथ मसला यही होता है कि हम ना अपने जज्बात को साइड पर रख के अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। So, ये मेरे साथ भी होता है, जज्बाती लोगों के साथ होता है ऐसा।
2: नहीं अगर ऐसा हो, गुस्सा अगर उसी बंदे के ऊपर आया हो जो पूछ रहा हो, फिर तो फिर बंदा उसको कहेगी मुझे थोड़ी सी देर के लिए अलहदगी दे दो, वो फिर भी पूछेगी तुम्हें हुआ क्या, फिर बंदा क्या करे।
0: तो बता देते हैं ना, बता देते हैं, इतना भी गुस्सा के आ गया। हाँ
2: अच्छा सास मैं आपको ये भी बताती हूँ, आप यहाँ पे बोला ना टीचर्स, आप वाकई मतलब बच्चों को मारते भी थे वैसे?
0: मैं हाँ दौरे जहालत में मारता था, लेकिन मैं मार के खिलाफ हूँ वैसे, क्योंकि मैंने भी बड़ी मार खाई है।
2: क्योंकि मैंने भी बच्चों को पढ़ाया ना, 50 अच्छा बच्चे मैंने पढ़ाए हैं, वो भी खिचड़ी विचड़ी, वो भी सपारा मैंने उनको पढ़ाया है, कुराने
0: अच्छा,
2: मजीद पढ़ाया।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है।
2: कुछ वो घर आते थे और कुछ मैं मदरसे जाती थी पढ़ाने के लिए, और ये है कि वो बच्चे अब जब भी मुझे, हालांकि जिस बच्चे को भी भाई मैं सबक याद करवा देती थी ना, ये नहीं हो सकता कि वो बच्चा दोबारा भूल जाए।
0: अरे क्या बात है, चलो अच्छी बात है यार
2: जी। और ना क्योंकि जो मेरे मदरसे के उस्ताद हुआ करते थे, वो कहते थे कि इस बाजी के बाद जो ये तुम्हें सबक याद करवाएगी और कोई याद करवा सकता, हालांकि मैं अपना सबक भूल जाऊं जिसे मैं कितानू याद करवाऊं मैं।
0: चलो चलो कोई नहीं,
2: लेकिन मजा बहुत आता था। और जिया भैया के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती
0: आमीन,
2: लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनके बच्चों के ऊपर उनका साया सलामत रखे, और सभी से उनके लिए दुआ करें कि जल्दी से वो ठीक हो जाए, हम उनकी आवाज सुने, फिर से वो शो करें अपना।
0: हाँ इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बस आपकी दुआएं चाहिए तमाम सुनने वालों के। बल्कि मैंने बताया था आपको भी कि हम संडे को गए थे उनकी तरफ तमाम आर्टिस्ट मिलके ना, तो बहुत अच्छा लगा था उन्हें भी और हमें भी उनसे मिलके।
2: नहीं बिल्कुल अच्छी बात है, आपने हम सबका भी बताया था, सलाम दुआ दी थी आपने।
0: जी जी दी थी, दी थी, दी थी, दी थी।
2: ओके और सभी सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज़।
3: देख के तुझको
0: जीरो फोर टू ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो वन वन रबते का नंबर आप कॉल कर सकती हैं। यू कैन कॉल मी अपॉन FM 101 लाहौर 04221001 यानी कि 0542111100101। वो जनाब फेसबुक फैन पेज मैंने एक बनाया था अपने बुरे वक्तों की बात, अच्छे वक्तों की बात है। तो कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, वो और बात है कि तब मेरे साथ बहुत मुखलिस थे, बहुत अच्छे थे, हजूम लगा के जमगट्टा बना के इकट्ठे हो जाते थे, आज कोई भी नहीं है। चले सुनने वाले तो हैं, समातों का बहुत बहुत शुक्रिया FM 101 को ट्यून इन करने के लिए। इसके अलावा आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं अपने फेसबुक फैन पेज पर लाइव हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा हमें देख के। रानी जहरा मौजूद हैं FM 101 की बहुत खूबसूरत आवाज़, और इस्लामाबाद में इनसे मुलाकात हुई है। FM 101 इस्लामाबाद, आपने इनका जो फेसबुक फैन पेज है अगर आपने देखा है ना, तो उस पर जितनी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, जितनी अच्छे अच्छे पोस्टर्स हैं, वीडियोस हैं, वो बनाने वाली लड़की जो है ना वो ये है। इसके अलावा फारिग टाइम पे यानी कि बैक टू बैक म्यूज़िक जो आप सुनते हैं ना, वो प्ले करने वाली लड़की भी ये होती है। रानी बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए, कह रही है कि हाय आज तो बड़े बड़े लोग इधर लाइव आए हुए हैं, अरे आपसे बड़ा कौन हो सकता है। मोबाइल जनाब 04221000101 रबते का नंबर, देखते हैं कौन है हमारे साथ, कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से।
4: मैं वो लास्ट कॉलर बात कर रही हूँ, मैं जिसमें बात कर रही लाहौर से। भाई आपने वैसे आप बड़ी बातें करते हो, औरों को नसीहत, खुद मियां बाप नसीहत।
0: मैंने ऐसा क्या कह दिया,
4: आप कह दें जो आपके दिल में, आप बता दें। तो उस दिन मेरे जो दिल में था या मुझे जो था मेरे अंदर, मैंने पूछा और आपने मतलब आप डायरेक्ट बता देते ना कि वो हस्बैंड वाइफ है, तो आपने उनकी मंगनी करवाई और ये आपका चराया बचांद है मेरा नहीं, बट सब कह रहे थे लास्ट कॉलर।
0: अच्छा, किसी ने कोई गिला कर दिया है।
4: नहीं,
0: हाँ तो बस ठीक है, तो एंजॉय करो, आप भी एंजॉय करो।
4: वैसे मुझे ये बात अच्छी लगी आपकी कि आपने अच्छा किया, दोबारा से मंगनी करवाई और फिर उनकी पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी ना,
0: तो अच्छा किया ना।
4: हाँ, यंग कपल बन गए।
0: अच्छा किया।
4: आपकी भी इतनी शर्मा रही थी, सब उनको मुबारकबाद दे रहे थे उनके शो में आके।
0: संडे को हमारी मुलाकात हुई और बता रही थी मुस्तफा ये क्या किया आपने। मैंने कहा मैंने वही किया जो आप पहले कर चुके हैं, और बात है कि मैंने नहीं
4: सही सका। जब तक इंसान मतलब ऐसे होता है, जब रिश्ता ऐसा पुराना होता है, लोग इस तरह कूल से हो जाते हैं। ये अच्छा किया आपने फिर से ये सिलसिला शुरू करवाया है, और अब शादी भी होगी उनकी इंशाल्लाह ताला फिर से।
0: हाँ चलो ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताओ रिमशा टॉपिक पे क्या नाम है आपका, क्या नाम है, नाम बताओ लड़की।
4: मैं बिस्मा हूँ, और रिमशा की बात अच्छा मेरी कॉल मिल जाती है।
0: चलो अच्छी बात है, मिल गई है। अच्छा टॉपिक पे बात करो, क्या कहना चाहोगी। कभी बात करते करते किसी से लड़ी हो।
4: हाँ लड़ पड़ती हूँ मैं, लेकिन मैं बहुत जल्दी फिर से ठीक हो जाती हूँ। एकदम से मुझे गुस्सा आता है और बाद में ना मुझे वो होता है, रिग्रेट होता है। मुझे ना गुस्सा करने के बाद फील होता है कि मैंने ठीक नहीं किया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, और फिर मैं सॉरी भी कर लेती हूँ बाद में जाके। पर गुस्सा करती हूँ, जो मेरे दिल में होता है मैं सुना देती हूँ।
0: अभी ना
4: मैंने जब ट्यून किया ना, तो ना मैं सुन रही थी आपको, जब आपने आके बताना बोलना शुरू किया तो एकदम से मैं हैरान हो गई। मैंने कहा यार ये कौन आ गई आज, तो ना बाद में पता चला मुस्तफा भाई है। ऐसे लग रहा था जैसे कोई लेडीज बोल रही है।
0: नहीं वो पहले नहीं, पहले मैंने जो था ना एक प्रोमो चलाया था, वो लेडीज आवाज में था, फीमेल वॉइस में था।
4: नहीं आप ही बोले थे जब आपने सलाम लिया, मैंने कहा ये कोई लड़की बोल रही है। कोई मतलब अक्सर लड़कियों की आवाज भारी होती है ना, तो मुझे वो लगा कि कोई लेडीज बात कर रही है।
0: नहीं, कोई और होगा, वो इस्लामाबाद नहीं, इस्लामाबाद से कनेक्टेड होगा, वहाँ से रानीन लाइव होगी, हमारी एक फ्रेंड है वो।
4: ठीक है,
0: चलो भाग। ओके ओके, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अल्लाह हाफिज़।

0: ओके जनाब, 04221001011 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। जानते हैं कौन है कैसे। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: मैं
0: इदरीस अहमद आ गए। इदरीस साहब क्या हाल है?
1: शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, सब ठीक है?
0: अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ, लेकिन एक मसला हो गया, माउस काम नहीं कर रहा।
1: भाई के पास गए थे, उनकी तबीयत कैसी?
0: हाँ अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है, लेकिन दुआ कीजिएगा।
1: आप ये कॉलर को तसल्ली दे रहे हैं कि वाकई आपने बात की थी कि कॉलर आपको याद करते हैं?
0: नहीं नहीं, मैंने बात ही यहाँ से की थी कि मैंने आपको बताया है ना कि ये मामला थोड़ा सा संजीदा हुआ था ना, डिस्कस करने जोगा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि कॉलर्स की बात की जा रही थी। कॉलर्स बार बार आते थे, दुआ का कहते थे, उनकी तबीयत पूछते थे, सो उनको ये बताया था।
1: अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सबको खुश रखे,
0: आमीन आमीन।
1: और टॉपिक पे ये कहूँगा कि गुस्सा आ जाता है, किसी टाइम भी आ जाता है।
0: अच्छा,
1: लेकिन अगर आप अपनी बात पे राइट पे खड़े हैं ना,
0: हाँ,
1: तो अब फिर आपको अफसोस नहीं होता।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: और गुस्सा करना चाहिए, अगर किसी की बात पे अगले बंदे को समझाने के लिए गुस्सा कर लेना चाहिए किसी टाइम पे, लेकिन उसको रफा दफा भी करना चाहिए। गुस्से को अना नहीं बनानी चाहिए।
0: अरे वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा मुझे बस एक मिनट दीजिएगा, माउस की तार मैंने कहीं यहाँ पे उछलते कूदते हुए उतार दी है कि पाँव लगा के पता नहीं क्या होगा, मैं लगा

0: लग गया लग गया। अच्छा मैं तो परेशान ही हो गया था, ये ना लगती तो यहाँ से ना कोई गाना चलना था और ना ही आपसे मजीद बात हो पानी थी। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर गया?
1: वालेकुम सलाम, मैं साजिदा बात कर रही हूँ।
0: साजिदा बात कर रही है, साजिदा क्या हाल है?
1: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। आप बताएं क्या कहना चाहेंगी?
1: हाँ जी, गुस्से के बारे में आप टॉपिक रखा है ना।
0: हाँ जी,
1: अभी मैंने कॉल ना विश्वा की कॉल जब थी तब मैंने सुना था।
0: अच्छा ठीक है,
1: तो गुस्से के बारे में है ना टॉपिक भाई।
0: हाँ हाँ,
1: तो गुस्से में कहना चाहूंगी, गुस्सा एक तो हराम है और गुस्सा हमें बेतुका नहीं लाना चाहिए। ये बाज लोग गुस्से में 24 घंटे रहते हैं बिला वजह, ऐवें गुस्सा होता है, गुस्सा नहीं करना। हाँ जी
0: हाँ, होता है
1: तो
0: ऐसा,
1: ना
0: हाँ।
1: गुस्सा हो थोड़ी देर का हो लेकिन ज्यादा नहीं लाना चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल
1: गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए। अगर गुस्सा आए हमें पानी ठंडा पी लो या साइड से हो जाए, जगह चेंज कर लो।
0: जगह चेंज कर लो, ठीक है
1: तो फिर
0: ठीक
1: गुस्सा ठंडा हो जाता है,
0: गुस्सा ठंडा हो जाता
1: और
0: है। अच्छा,
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: सही है, हाँ।
1: और मैं सुनने वाले को सलाम दूंगी, रिश्मा बिस्मा को, रिमशा को, शमीमा पी को, और जट की तबीयत खराब है, और हमारे आरजे हैं जियान जी, उनको सेहत के लिए अल्लाह ताला सेहत दे उनको।
0: आमीन,
1: और बरसी वाले भाई,
0: इलाही,
1: जी जी बरसी वाले भाई, अमानत भाई, जितने भी और कॉलर है, ये कोई तो वाले तारीख, छोटे तारीख, अनिला जी, सब तो सलाम कहना चाहूंगी।
0: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
1: और आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज,
0: अल्लाह हाफिज। ओके जनाब, एक फैक्ट शामिल करना चाहूँगा। साबरी सिस्टर्स हैं साथ में, रोजियों हैं, कहते हैं मगरोला, बहुत ही मज़े का गाना है। और कुछ बातें भी ऐसी चल रही हैं कि कभी कभी कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जिनको मगरोला देना ही ना काफ़ी होता है, बल्कि अच्छा होता है। देखते हैं कौन है, कहाँ से ले लेते हैं, कौन कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, मुसोब भाई क्या हाल चाल है?
0: अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताएं खैरियत से हैं?
2: आधा घंटा जाया हो गया आपको फोन करके, पुरान सुन सकते हैं।
0: अच्छा आधा घंटा जाया गया था जी, अच्छा चलो अच्छा ठीक हो गया।
2: मैं मोहम्मद अर्शद बोल रहा हूँ शारदा से, जिसकी टांग कटी हुई है
0: जी। अर्शद साहब क्या कहना चाहेंगे?
2: बर्दाश्त करो, कोई बड़ा कोई छोटा के बर्दाश्त करके, मतलब बर्दाश्त का ही है।
0: अच्छा,
2: और बैठ करोगे तो नुकसान करोगे, अपना नुकसान करोगे।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो
2: गया। तू बड़ा बात कर रही, छोटा बात बर्दाश्त करो,
0: बर्दाश्त करो,
2: जाए अल्लाह ताला पढ़ा करे, याद अल्लाह ताला जिंदगी तंदुरुस्ती देवे, दुआ दो उन बस।
0: ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बहुत अच्छा पैगाम।
2: अब बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हो, दुआ करो, मैं टाइम दिया, मैं फोन बंद करता हूँ, मेरी दुआ करो करना चाहिए मोहम्मद
0: जी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है,
2: अल्लाह
0: मुगल जनाब। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं और वापस आते हैं इस ट्रैक इस पार। और अगर आप फिर भी कॉल करना चाहते हैं तो इन द मीन वाइल आपकी और फिर कॉल को एंटरटेन किया जा सकता है। ऑनर आने के लिए आप गाने के बाद आइएगा, ठीक है, डोंट गो एनीवेयर।

0: ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शो कॉल्ड सिटी वाइब्स और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। 10:32 हुए चाहते हैं, मेरा आपके साथ ये साथ रहेगा ठीक 11 तक के लिए। मजीद हम बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, आपसे बातें करेंगे। तो बात करने के लिए, रब्ता करने के लिए एक ही नंबर 04221100101। यस, यू कैन कॉल मी अप ऑन 04200000101, यानी कि 101 नंबर है ना। तो इसके अलावा अगर आप लिख के अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, सो उसके लिए FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, वहाँ पर आपको जो पहला पोस्टर दिखेगा, नज़र आएगा, वो मेरे शो से मुतालिक होगा। वहाँ पर आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सो अपनी दिल की बात से हमें आगाह कर सकते हैं। अभी हमारे साथ एक कूलर मौजूद है, देखते हैं, जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? सर अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं, खैरियत से हैं? खंग लग गई है।
1: बस आपने कहा ना, कॉल का कूल कर दिया, इसलिए
0: खांसी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। सर क्या कहना चाहेंगे?
1: मोहम्मद उस्मान मुगल बोल रहा हूँ।
0: अरे उस्मान साहब बात कर रहे हैं सर, गुलाब जामुन खाओ ना कोई शीरे वाले। हाँ जी जी,
1: इस तरह की बातें सर आप नहीं करते।
0: अच्छा ठीक हो गया, ठीक
1: लग जाएगी कई लोगों को।
0: हाँ सुबह का टाइम है, वैसे सुबह के टाइम ना ज़्यादा ही दिल करता है कुछ ऐसी मीठी चीज़ें खाने का। अच्छा सर जी,
1: अभी मैं लास्ट वीक खा के आया हूँ, कोई मसला नहीं है, अगर आपको भी अगर टाइम बनाए हम आपको भी खिला देंगे।
0: जी जी सर, क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, नेकी और पूछ। हाँ
1: नहीं मैं पूछ के नहीं करता, मैं फिर पूछता हूँ, आप और खाने
0: हैं? हाँ ठीक हो गया सर, ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी सर। मौजू पे क्या कहना चाहेंगे? आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन, यानी कि बाहमी एहतराम के साथ गुफ्तगू करने का दिन मनाया जा रहा है। और ये क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि हम बात करते हैं ना, कहीं ना कहीं अपने जज्बात को बीच में ले आते हैं, हमें भड़क जाते हैं। सो होता है कभी आपके साथ आराम से बात चल रही है, लेकिन अपनी बात में इतने जज्बाती हो गए हैं कि अगले की दिल आजारी करती है?
1: ये मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी लाइफ में ये फेज ना आया हो।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है।
0: ऑब्वियसली जी,
1: मुझे जो समझ है वो ये है कि हो सकता है कि मे बी वहाँ जो बात हो रही है, बाज़ मर्द कैसे होता है ना कि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं होता।
0: जी हाँ होता है।
1: ये भी है एक हिंट। दूसरी बात है कि हमारा जो वो जिस एंगल से वो बात कर रहे हो ना, हम उसके ऑपोजिट होते हैं। ये भी हो सकता है। ये मौके के ऊपर, मौके की जो डिपेंड करता है कि मौका,
0: वो अक्सर आपने सोशल मीडिया पे एक वो पिक्चर वायरल हुई थी, वो आपने देखी होगी कि दो तरफ लोग बैठे हैं, एक साइड पे देखने वाले को जो 6 है वो 6 नजर आएगा, दूसरी तरफ वाले को 9 नजर आएगा। दोनों ही अपनी अपनी जगह ठीक है, ऐसा होता है,
1: दोनों ठीक है, लेकिन दोनों का दिमाग मैच नहीं कर रहा।
0: नहीं कर रहा, हाँ,
1: क्योंकि आंखें दोनों की देख रही है, एक कह रहा 9 है, एक कह रहा 6 है।
0: बिल्कुल,
1: वो अपने एंगल से देख रहा है, वो अपने एंगल से देख रहा है।
0: बिल्कुल ऐसे ही है।
1: अगर आपने कैलकुलेशन करनी है कि वो कैसे देख रहा है, वो कैसे देख रहा है,
0: जी हाँ,
1: फिर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: वो कहता 6 है, वो कहता 9 है, वो कहता तू साईं है, कहता तू साईं है,
0: दो में ही साईं है असल में। हां
1: कैसे देख रहा है, वो कैसे देख रहा है,
0: जी हाँ,
1: फिर इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: वो कहता 6 है, वो कहता 9 है।

0: बोल जनाब 04 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 101 आपकी लाइव कॉल्स को इंटरटेन किया जा रहा है कुछ ही लम्हा तक के लिए आपके साथ मेरा ये साथ बाकी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं बाहमी एहतराम और खलूस के साथ बात करने के हवाले से, क्योंकि आज दिन मनाया जा रहा है बहुत ही अहम दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ पीसफुल कम्युनिकेशन, यानी कि मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, अमन के साथ बात करने का, गुफ्तगू करने का। और कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, हम 9-6 की बात कर रहे थे कि एक तरफ बैठे हुए इंसान को वो जो हिंसा है वो 6 नज़र आता है, सामने वाले को 9 नज़र आता है। मुझे एक वो वक्त भी याद आता है कि ये बातें बहुत ट्रिगर करती थी। कुछ ऐसे नज़रियात होते हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, चाहे सोशल मीडिया की बात कर ली जाए, असल में ना मामला या जो मसला है वो ये है कि हमारा एक्सपोजर नहीं होता, हमने चीज़ों के बारे में एक्सप्लोर नहीं किया होता, हमें लोगों की व्यूज़ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनके बारे में हमने कभी पढ़ा नहीं होता, हमने एक होता है कंपैरेटिव रिलीजन्स के नाम से, चाहे मजहबियात की बात कर ली जाए, मज़ाहिब की बात कर ली जाए, फ़िरकों की बात कर ली जाए, किसी भी स्कूल ऑफ थाट की बात कर ली जाए, हमें अपने के अलावा किसी और का पता नहीं होता। जब हमें पता चलता है तो हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये इंसान इस व्यू के साथ, इस नज़रिए के साथ किस कहाँ से एग्जिस्ट कर सकता है, इसको ये हक ही कैसे हासिल है, क्योंकि हक तो मुझे हासिल है क्योंकि मैं डोमिनेंट हूँ, मेरी जो है अक्सरियत है। सो इसकी वजह से क्या होता है, इस सोच की वजह से क्या होता है कि जो बैनुल मज़ाहिब हम महंगी होती है, बैनुल मसालिक हम महंगी होती है, कल्चरल डाइवर्सिटी होती है, यानी कि जो तनाव होता है ना नज़रियात का, इंसानों का, कौमियत का, किसी भी तरह के लोगों का, सो वो मुश्किल हो जाता है। सो आपने देखा होगा कि किसी भी ऐसे बैन-उल-सकाफ़ती अगर इलाके की बात कर ली जाए, चाहे वो वेस्ट की बात कर ली जाए, पाकिस्तान कराची की बात कर ली जाए, कराची में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे नज़रियात के लोग होते हैं, बहुत सारे व्यूज़ के रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी ज़िंदगियों से, उनके नज़रियात से, उनके मामला से किसी को ताल्लुक नहीं होता, कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पर लाहौर में भी है, शहरों की बात इसलिए की जाती है क्योंकि शहरों में लोग कदरे बनिस्बत उन इलाकों के, इट डजेंट मीन के देहातों के या थोड़े से ऐसे पसमानदा इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं वो रिजिड होते हैं, वो तंग नज़र होते हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रोशन ख्याली है, वहाँ पर भी बात को सुनने का, समझने का और मुख्तलिफ नज़रियात के बारे में जानने की जो क्यूरियोसिटी है, जो तजस्सुस है, वो आजकल पाया जाता है, अब पाया जाता है सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, बात को सुनने का, बर्दाश्त करने का, अगले इंसान की एग्जिस्टेंस को जो है ना बर्दाश्त करने का जो एलिमेंट है, जो मादा है, वो आज स्पेशली अगर हम अपनी बात कर लें, हमारे शहरों में भी बहुत कम पाया जाता है। सो इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजंस हैं, क्या ऐसे मामलात हैं, इन पे हम बात नहीं कर रहे, बात हम ये कह रहे हैं कि किस तरह से हम किसी और की बात को, किसी और के नज़रिए को बाहमी इहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ, चाहे हम माने ना माने, लेकिन कम अज़ कम अगले की बात को सुन लें, उस पर अमल करना तो चले हमारी अपनी एक सवाबदीद है, हमारा अपना मामला है, हमारी अपनी बात है, इस पर बात की जा रही है। और आपसे जो आपकी मुफीद राय है इसका भी जो है आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ओके वो जनाब आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं 04 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 101 पर। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हेलो
1: मोहसिस सारे।
0: ओके

धूप उठा के फिरदा जा ते बोझ उठा के फिरदा जा, तेनू सीधा राह नहीं लभना अंदरों मैं मुकावन तक। क्या कहने।

0: कर गया। जनाब 04221 0101 कुछ मजीद हम कॉल्स लेंगे, देन उसके बाद आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? ओके पॉइंट आधा बैलेंस हो गया है। वही कुछ ही देर के बाद आपके जो लाइव पैगाम हैं फेसबुक पोस्ट पर उनको शामिल किया जाएगा। सो जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम FM 101, कैसे हैं आप भाई? ठीक हैं, गुड मॉर्निंग।
0: अल्लाह का शुक्र है, आपकी बैलेंस का मामला बना हुआ था?
1: नहीं,
0: अच्छा अच्छा,
1: 30,000 आते करते।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है। क्या नाम है, तमाम नए सुनने वालों को अपना नाम बता दें।
1: मुझे हमारा बेग कहते हैं, मैं शादरा से बात कर रही हूं।
0: अरे शादरा से हमारा बेग आ गई, हमारा क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं?
0: हाँ मैं भी ठीक हूँ, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी?
1: बहुत अच्छा शो माशाल्लाह से, बहुत अच्छा टॉपिक ले गए हैं। हमें चाहिए कि हमें खुद को खुद के अंदर बेहतरी लेके आनी चाहिए।
0: किस तरह से बेहतरी लेके आनी चाहिए खुद के अंदर?
1: हमारे अखलाक में, हमारे किरदार में, हमारे जो किसी के साथ रवैया है उसमें बेहतरी लेके आनी चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी की गलती किसी को बताएंगे ना, वो उल्टा हम पे बरसेगा कि भाई आप, मैं ठीक हूँ, आप गलत हो।
0: अच्छा हमारा इतना जरूरी क्यों हम समझते हैं कि अगले इंसान को हमने उसकी गलती ही बतानी है?
1: देखे ना, खुश आमदी करते रहेंगे ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ बताते रहेंगे तो फिर सही है, हम भी ठीक है, वो भी ठीक है, और जो रिश्ता ताल्लुक है वो बचा रहेगा। हाँ। जब हम थोड़ी सी भी उसकी गलती को करेंगे ना कि ये आपकी गलती है या ये रवैया आपका ठीक नहीं है।
0: हाँ ये बात तो है, ये बात तो है,
1: तो
0: बिल्कुल
1: फिर
0: ऐसे ही।
1: वो मामला खराब हो जाता
0: है। हाँ सही है, सही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: तो मैं चाहूंगी कि हमें चाहिए कि हम इतनी ड्यूटी तो दे सकते हैं ना कि हम अपने आप को सही कर दें।
0: चलिए ठीक हो गया।
1: जब हम अपने आप को सही करेंगे ना तो सारा मुआशरा ही सही हो जाएगा, हमें किसी को या गलत करने की कोशिश शेयर करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब हमने अपने आप को सही कर लेंगे तो फिर सारे मामला भी सही हो जाएंगे।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छी बात है। हमारा भी एक बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा ठीक है
1: भाई, बहुत अच्छा। ओके
0: अरे मुझे भी बहुत अच्छा
1: भाई, के लिए बहुत सारी सेहत सलामती की दुआ, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे।
0: आमीन आमीन आमीन।
1: दरमियान आके बैठे और हम उनको सुने, अल्लाह पाक उनकी जो भी मुश्किलें हैं वो आसान करे
0: जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह
1: करम करे। ओके
0: इंशाल्लाह, ओके अपना ख्याल रखिएगा।

0: हेलो।
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इकदाम जारी रखने की हिदायत की है। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने उन्हें निशाने इम्तियाज़ अता करने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया है। अमान ने हुकूमत पंजाब के अपनी छत अपना घर हाउसिंग मनसूबे में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। पाकिस्तान ने अफ्रीका में अमन व सलामती के लिए अक़वामे मुत्तहिदा और अफ्रीकी यूनियन के दरमियान मजबूत सियासी राबिताकारी पर जोर दिया है। खबरें तफसील से।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

अस्सलाम वालेकुम तमाम धड़कते दिलों को, वेलकम कहते हैं लेडीज लाउंज। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजरा तो मैं हाजिर हूं विद अ सुपर डुपर शो, योर वेरी ओन लेडीज लाउंज। तो जी आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपकी कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स, कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। सबसे पहले तो आज इनकी बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनको ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है। अगर आप अपनी आवाज प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 111-000-101। यू कैन ऑल्सो मैसेज अस एट 4471।

0: जी, तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारी बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी, बहुत टैलेंटेड इंटर्नी तूबा नवाज। अस्सलाम वालेकुम,
1: कैसी हैं मैम आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त शो के साथ फिर से हाजिर हैं और बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका दिया गया आपके साथ शो करने का। तो लेट्स स्टार्ट।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सो यू आर गोइंग टू बी ऑन अ ग्रेट ग्रेट जर्नी फ्रॉम नाउ ऑन।
1: थैंक यू,
0: क्योंकि ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, हमेशा हमेशा आपके साथ रहते हैं और
1: एज अ कोर मेमोरी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जितना भी अभी तो सफ़र शुरू हुआ है FM 101 पे, तो इसमें आप बहुत कुछ सीखें, सिर्फ रिलेटेड टू इस फील्ड नहीं और बहुत सी ज़िंदगी से भी रिलेटेड जो होती है ना चीज़ें, इंसान उतार चढ़ाव बहुत कुछ सीखता है।
1: सही है।
0: तो सुबह हमें सबसे पहले थोड़ा सा कुछ अपने बारे में बताएं, हमारे लिसनर्स को कुछ अपने बारे में बताएं।
1: अच्छा, लिसनर्स को अपने बारे में बताते हैं कि मैं अभी रिसेंटली जो है, मतलब कि मैम हमारी जो आरजे हैं जुबिया शफीक, उनके साथ भी प्रोग्राम होस्ट करती रही हूँ, और आज वेंसडे को जो है मेरा जो हमारी बहुत ही प्यारी आरजे हैं मैम वजीहा, उनके साथ होस्ट करती हूँ। और ये कि मेरी जो मसरूफियत है वो इसके अलावा, ये
0: आपका पैशन क्या है उसके बारे में बताएं कि आपका पैशन क्या है?
1: मेरा पैशन ना, कहते हैं ना एक चीज़ जो इंसान को जुनूनी होता है, जुनूनी, और मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ जो है ना वो आपके खून में जो शामिल कर दी जाए, इतना शदीद मतलब कि एक्सट्रीम पे जो पैशन होता है जुनूनी, वो ये है कि मेरा मीडिया इंडस्ट्री को लेके मैं बहुत ज़्यादा जुनूनी हूँ, मतलब कि पागल होता है ना इंसान, मुझे आप पागल कह सकते हैं।
0: तो इंसान तभी आगे जा सकता है ना जब आप किसी चीज के बारे में इतने ज्यादा पैशनेट
1: हो। ऑब्वियसली मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में थी ना, तभी मतलब कि उस टाइम पे मैं बैठ के जो है ना पॉलिटिकल प्रोग्राम सुन रही होती थी कि मुझे जो एंकर्स का जो स्टाइल था वो बहुत अच्छा लगता था।
0: अच्छा अच्छा।
1: और ये कि फिर मेरा मतलब कि एक मेरी ख्वाहिश थी, और मैंने उस दिन मतलब कि इरादा किया था जब मैंने पहली दफा जो है वो देखा था कि इंशाल्लाह मैं भी यहाँ बैठूंगी राइट नाउ, कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और अभी मतलब कि एज अ जर्नलिस्ट मुझे मौका मिला, मतलब कि डिफरेंट चैनल्स पे जो है अपना एज अ एंकर काम करने का, तो मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा। मतलब बहुत अच्छा लगता है कैमरे के आगे बैठना, बोलना, अपनी राय का इजहार करना,
0: बिल्कुल, बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब अलग अलग लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, आप सोशलाइज ज़्यादा होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट गेस्ट आते हैं आपके पास, डिफरेंट लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, ये कि फिर ऐसा लगता है कि आपकी जो परसेप्शन है ना, आपका सोचने का अंदाज जो जावी है वो भी बदल जाता है, मतलब चीज़ों को पहले आप किसी और तरह से देखते हैं। और ये कि मतलब कि आपकी दूसरों से बातचीत होती है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपका सोचने का जो अंदाज है और जो इम्पैक्ट है वो बदल जाता है।
0: और सबसे बड़ी बात, आपका इसलिए बदलता है क्योंकि आप कुछ ना कुछ ऑन द वे सीख रहे होते हैं, आपकी सोच बदलती है, नज़रिया बदलता है, आप सिर्फ वो इसलिए जो लोग अपने आपके अपनी ज़ात के अंदर ही रहते हैं ना, तो वो यही वजह होती है कि उन्होंने कोई मार्जिन ही नहीं रखा होता अपने अंदर इम्प्रूवमेंट का या सोचने का कि मैं भी गलत हो सकता हूँ या मैं भी गलत।
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो सीखने का मार्जिन है ना वो उम्र के किसी भी हिस्से में जो है ना खत्म
0: नहीं होता।
1: अगर आप ये चीज़ सोच लें कि मुझे सब आता है या मैं ठीक हूँ, दूसरे बंदे की जो राय है वो कोई वैल्यू नहीं रखती, तो आप गलत हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, यहाँ पे अपने सामने के लिए प्ले करने जा रहे हैं जबरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: वेलकम बैक, दिस इज़ योर दोस्त योर होस्ट आर जे वजी हासिम। प्रोग्राम है लेडीज़ लाउंज और हमारे साथ इस वक्त लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद है तूबा नवाज़। हाँ तूबा, तो जहाँ पे आप ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं, और जैसे मुझे हमेशा लगता है और हमेशा मैं अपने सुनने वालों को कहती हूँ कि अपने घर से निकलने से पहले ना, जब अपने घर के ना छोटे मोटे काम जब ख़त्म करके निकलते हैं ना, फिर जैसे मेक योर बेड या अपना कोई काम, मतलब कोशिश करें मैक्सिमम काम अधूरे छोड़ के नहीं निकलते ना, तो आप जब घर से बाहर कदम रखते हैं ना, तो सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट आपके दिमाग में होती है कि ये छोटे छोटे काम अगर आपने कर लिया ना, तो यू कैन अचीव मच मोर व्हेन यू स्टेप आउट।
1: ऐसा लगता है कि जब हम छोटे छोटे काम करते हैं वो हमें ज़्यादा खुशी दे रहे होते हैं, बजाय इसके कोई मेजर काम हम करके वापस आए।
0: हाँ,
1: वो जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो लिटरली बहुत खुशी देते हैं कि चलो ये भी कर लिया, अब जाके ये नहीं करना पड़ेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो है आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो जब आप घर में ही छोटे छोटे काम जब आप अधूरे छोड़ के बाहर जाते हैं ना, तो उससे फिर ये होता है कि आपको लगता है कि ये भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा, कि अधूरे काम छोड़ के कोशिश करना चाहिए घर से आप ना निकलें। अच्छा जी, तो यहाँ मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से अभी बच्चे हैं जिनके अभी रिसेंटली कुछ रिजल्ट्स आए हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में मूव ऑन हो रहे हैं, तो आई वांट टू शेयर सम फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स जिनको आपने ज़रूर चेक करना है, और हो सके तो जितना हो सके फ़ायदा आपने उठाना है, ठीक है ना। इरास्मस मंडस जो स्कॉलरशिप है, ये यूरोप में ऑफ़र की जा रही है। इसके साथ साथ डैड स्कॉलरशिप इज़ बीइंग ऑफर्ड इन जर्मनी। MEXT Next जो है ऑफ़र की जा रही है जापान में, अगर आप वहाँ मूव करना चाहते हैं, दिस इज़ फुल्ली फंडेड, और आपने ज़रूर ज़रूर इनको अपने इनकी वेबसाइट चेक करनी है एंड यू हैव टू अप्लाई। साउथ कोरिया में जो है ऑफ़र की जा रही है GKS, और टर्की में भी ऑफ़र की जा रही है, आपने चेक करना है। इसके साथ साथ ऑफ़र की जा रही है CSC स्कॉलरशिप्स इन चाइना, और न्यूजीलैंड में ऑफ़र की जा रही है मनाकी स्कॉलरशिप, ठीक है। और जो इसमें से जो इरास्मस मंडस है जिसका मैंने आपको बताया, उसमें पाकिस्तानी बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 90% पाकिस्तानी जो है इसमें प्रूव किए जाते हैं, अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो। सो डू चेक देम आउट और इनसे जितना हो सके आप फ़ायदा उठाएँ।
1: मैम, ये स्कॉलरशिप जो है वो अंडर ग्रेजुएट्स के लिए या फिर मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए?
0: डिफरेंट डिफरेंट है। उसमें आप जब उनकी वेबसाइट पर जाते हो तो उसमें उन्होंने अंडर 18 भी रखा होता है, और अंडर 16 अबव ज़्यादातर स्टार्ट होते हैं, और मास्टर्स के लिए भी हैं, PhD के लिए भी हैं। जिन्होंने मास्टर्स भी कर लिया हुआ है वो PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और फुली उसमें अक्सर आपको स्टाइपेंड भी दिया जाता है, अकोमोडेशन एंड फ्लाइट्स वो भी कवर की जाती हैं। कुछ पार्शली फंडेड होती हैं, सम आर फुली फंडेड। तो इसमें आप PhD और मास्टर्स दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर्स लेवल पे कुछ कम होती हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि बैचलर जो है हमें पाकिस्तानियों को स्पेशली जो है वो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए, मास्टर जो है उसके लिए फर्दर हम जा सकते हैं बाहर।
0: आने दोनों ऑप्शंस हैं, बैचलर्स के लिए भी आप जा सकते हैं,
1: लेकिन बैचलर्स के लिए ना, बैचलर्स के लिए मैंने भी देखा था कि जब मैंने अपना स्कॉलरशिप बहुत कम है, और ये कि
0: लेकिन फिर भी हैं, और अभी हार्वर्ड में और नासा में बहुत सी ऐसी जगहों पे जो हैं आजकल ऑनलाइन सर्टिफाइड कोर्सेज भी ऑफर किए जा रहे हैं, वो दियो दोज़ शॉर्ट कोर्सेज, क्योंकि AI और काफ़ी कंटेंट क्रिएटिंग इसके मुताबिक हैं। माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफरिंग मैनी कोर्सेज, आप देख सकते हैं, हाँ वो भी आप देख सकते हैं, और ज़रूर उन्हें करें, क्योंकि लिंक्डइन पे यू कैन अपलोड देम, और आप पे आपकी जो CV है, आपके जो पर्सनैलिटी है, उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जी, और अभी जो ज़्यादातर लोग हैं अभी घर से निकल चुके होंगे या निकल रहे होंगे अपने काम के लिए, या कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट टाइम टेबल होते हैं, लेकिन जो स्कूल बच्चे जाते हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग जो है स्कूल जा चुके होते हैं, और स्कूल जब छुट्टियां नहीं होती ना, तो जो हमारी ख़वातीन है वो बहुत खुश होती हैं कि अपने हिसाब से सब कुछ इस टाइम पर कर रही होती है। और हम इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, आपके किचन में आज क्या बना है। अच्छा, जो पॉलिटिक्स है ना, जैसे मैंने एक दो दफ़ा बात की, ससुराल वाले इन लॉज हमेशा बेचारे ससुराल वाले कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो जाते हैं।
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉलिटिक्स है, ऑब्वियसली मेरा भी राउंड अबाउट जो है वो 3 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होने को है,
0: ठीक है,
1: तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स हमारे हर डिपार्टमेंट में, मुझे डिफरेंट डिफरेंट, इवन कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी काम करने का मौका मिला, मतलब कि टीचिंग डिपार्टमेंट है उसमें चले जाए, मतलब कि देखे ना, मतलब घर में मौजूद है, सब काम कर रहे होते हैं. पर्सनली मैं करूँ तो मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट में मौका मिला और मीडिया इंडस्ट्री में मिला, अब रेडियो में हूँ मैं, और ये कि घर में भी सब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से है, तो जो पॉलिटिक्स है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, ये नहीं है कि पॉलिटिक्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, हर जगह पॉलिटिक्स है. और
0: एग्जैक्टली ऐसे ही है, क्योंकि वो बेचारे ना एट टाइम्स वो इन लॉज और ससुराल वाले सासे और देवरानियाँ जेठानियाँ या फुफियाँ जो नंदे जो है
1: वो बहुत बदनाम
0: है. और
1: लेकिन मुझे लगता है अब जेंजीज के जो पुप्पो है ना वो अच्छा कर रहे हैं, मैं यार पुप्पो के नाम को जो है ना बदनामी से बचा रहे हैं, हम जेंजी
0: बचा रहे हैं, या अब उनकी बहुत अच्छे तरीके से उनकी जो है ना ली जा रही है क्लास.
1: नहीं नहीं क्लास नहीं, अब तो बल्कि सोशल मीडिया पे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जेंजीज जो हैं वो जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं हमारी सोसाइटी में पुप्पोस को लेके सास को लेके उन सब को जो हैं अब हम बदल के रखेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये जो है ना, तो मतलब कि ये जो फेवरेटिज्म है ना, ये आपके सिर्फ वर्क प्लेस पर नहीं, ये आपके मतलब हर जगह पर है, घर पर भी है. घर में भी कोई ना कोई ऐसा एक इंसान ज़रूर होता है जो मतलब कि आपको कि उससे कोई एक बेटा या एक बेटी या कोई एक बहू आपको बहुत पसंद होती है. घर में भी ऐसा होता है और क्लास में भी ऐसा ज़रूर होता है कि टीचर को
1: एक बच्चा पसंद
0: होता है. और कभी कभार वर्क प्लेस में भी ऐसा होता है कि किसी कुछ लोगों को जो है आपको लग रहा होता है
1: ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है. मतलब कि रियलिटी है कि फेवरेटिज्म के बेस पे कुछ लोग जो है ना उनको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, और ये कि उनकी जो प्रोग्रेस है वो भी जल्दी होती है फेवरेटिज्म
0: की वजह से. तो वही मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ ये जो चीज़ है ना सिर्फ एक जगह पे महदूद नहीं है. तो इसके साथ आपको रहना और ये चीज़ सीख लेना, आप जितनी जल्दी ये चीज़ सीख लेना उतनी जल्दी आप लाइफ में चीज़ों को समझ पाते हैं. अब मैं ये नहीं कहूँगी आप आगे निकल पाते हैं, बात यह है कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है अगर आप इन चीज़ों को जल्द एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं. तो द टाइम व्हेन यू आर नॉट एक्सेप्टिंग थिंग्स लाइक दिस, तो आप जैसे कहते हैं ना ऐसे क्यों है, जब ऐसा हुआ ही नहीं था तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो चीज़ें फिर आपको तकलीफ़ दे देती हैं.
1: मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ना इन सब चीज़ों की अपनी आदत डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि फिर हमारा जो रहना है ना किसी भी जगह पे वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चाहे वो घर है या हम बाहर हैं. मतलब कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, लेकिन लोग इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं. और जब आप इन चीज़ों को फील करते हैं,
0: फील इसलिए करते हैं ना, क्योंकि देखिए उनको होता है जब हमने ये कहा नहीं है तो ये बात है, या जब मैंने भी तो उतना ही किया था लेकिन घर में जो सास है वो एक बहू की ज़्यादा साइड ले रही है, या जो बेटा ज्यादा कमा रहा है उसकी ज्यादा साइड ली जा रही है,
1: वैसे ये रियलिटी है. हाँ, रियलिटी
0: तो वो, या कोई बहू जो है वो जो बेटा ज्यादा कमा रहा है उसकी जो है बीवी से ज्यादा है और जो दूसरी है, मतलब आपको लगता है कि जिस औरत को या जिस इंसान को आप ज्यादा दबा सकते हैं ना. तो अब ये भी बहुत ट्रेंड आजकल हमें देखने में आता है कि अक्सर लोग ऐसी ही बहू लाना पसंद करते हैं जो लगता है जिसको हम दबा के रख सकें, तो वो उसको नहीं ज्यादा प्रायोरिटी दे देते कि जो ज्यादा पढ़ी लिखी हो, ज्यादा इंडिपेंडेंट हो.
1: अच्छा, लोगों की ना सोच मुझे लगता है अभी भी वहीं तक महदूद है कि हमें ऐसी बीवी चाहिए जो कि खामोशी से है बहू, लेकिन मतलब लोग कहते हैं कि अनपढ़ बीवी लेके आएंगे ना तो वो जो है ना आगे से जबान भी
0: चलाएगी.
1: जो पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं ना ये बहुत बोलती हैं आगे से, बहस
0: करती हैं. और दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द रीजंस, जब पहले ज़माने में भी और अभी भी देहातों में और वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो ज़्यादातर लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते जैसे अभी भी हमें मतलब अभी एक नया ड्रामा भी आया है उसमें भी यही चीज़ डिस्कस की जा रही थी कि लड़की को जो है ना कह रहे हैं जी आंखें नीची रखो घर से निकलते वक्त और उस तरह. तो उसका मैं भी जिक्र कर रहा
1: हूं, उसकी हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई है क्योंकि वो अभी रिसेंटली ड्रामा आया है, तो उसमें जो सोसाइटी का हमारी जो सोसाइटी का कल्चर है उसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि ये एक रियलिटी है, हार्श रियलिटी.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो उनको इसलिए ही लड़कियों को ज़्यादा ना पढ़ने लिखने की तरफ नहीं बहुत ज़्यादा लेके आते कि जी फिर वो उसकी अपनी एक राय बन जाएगी اور وہ پھر نہ زیادہ آپ سے آرگیو کر سکتی ہے وہ, اور اسی اور اس وجہ سے ہی آج کل جو ہے نا ڈائیورس ریٹ بھی لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے پرانا والا طریقہ ہی صحیح تھا کہ ارلی میرجز کر دی جائیں.
1: تو یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ڈیورس ریٹ اس وجہ سے زیادہ نہیں ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ڈیورس اس وجہ سے زیادہ ہے کہ ہم لوگوں میں جو برداشت ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. اس کا آپ کے پڑھے لکھے ہونے سے یا آپ کے انڈیپینڈنٹ ہونے سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق آپ کی برداشت اور آپ کے ظرف سے
0: ہے. بالکل بالکل بالکل. اس بارے میں آپ سب کیا سوچتے ہیں آپ نے بھی ضرور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہے. یہاں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں ایک زبردست سا ٹریک, کہیں مچائیے گا, اسٹے ٹیونڈ.

加入吧。

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

to you. Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. आज के प्रोग्राम की पोस्ट जो है हमारे ऑफिशियल FM 101 के पेज पे अपलोड कर दी गई है. सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर.

आज है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर दुनिया भर में आलमी योम कपास यानी वर्ल्ड कॉटन डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद कपास की अहमियत को उजागर करना और उन लाखों किसानों, मजदूरों और दीगर अफराद की मेहनत को खराज तहसीन पेश करना है जिनका रोज़गार कपास की पैदावार और उससे वाबस्ता सनतों से जुड़ा हुआ है। कपास सिर्फ एक फसल नहीं है बल्कि दुनिया के कई ममालिक की मईशत और लाखों ख़ानदानों के रोज़गार का अहम ज़रिया है। पाकिस्तान में भी जो कपास है ना, एक जो ये बहुत अहम जो है, ये बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की में, इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बहुत, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा हाथ है। तो जो कॉटन है ना, कपास जिसे हम उर्दू में कहते हैं, ये एक कुदरती तोहफा है जिसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर तरफ देखते हैं। हमारे कपड़े, चादरें, तौलिए और बेशुमार दूसरी अशिया में कपास का अहम किरदार है। और कपास जो है ना, ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इससे एक बुनियादी हैसियत हासिल है। तो ये जो आलमी दिन मनाया जाता है ना, ये इसीलिए ही मनाया जाता है ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इन्हें हम नज़रअंदाज कर, जो हम करते चले जाते हैं ज़िंदगी में, इनकी अहमियत को उजागर किया जा सके। क्योंकि मौसमी हालात, पानी की कमी, कीड़े और दीगर माहौलियाती जितने भी चैलेंजेस हैं उनकी वजह से कपास की पैदावार को बहुत आ सके। क्योंकि मौसमी हालात, पानी की कमी, कीड़े और दीगर माहौलियाती

0: अच्छी चीज़ है, मतलब कि बाहर कहीं भी ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारे तरह से हर शहर की अपनी सौगात है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और जैसे मुल्तान का सोहन हलवा, सोहन हलवा मुल्तान के आम बहुत फेमस है, मतलब कि इस तरह से मतलब के ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारी, और भी बहुत सारी चीजें,
1: गुलाब जामुन जो है, गुलाब जामुन जो है वो भी बहुत फेमस है। कसूर में जो कहते हैं कि वहाँ की मछली बहुत फेमस है, तो ये देखें अब, और ये जो होते हैं ना, जहाँ पे भी हमें रोड साइड पे जो चीज़ें मिलती हैं ना, तो वो अक्सर ऐसा ही होता है कि वो फ्रेश होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पास कोई फ्रिज फ्रीज़र नहीं रखा होता जहाँ वो पिछले दिन की स्टोर करके रख लेते हैं। बल्कि जो फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स हैं ना, उन्होंने फिर भी चीज़ें फ्रीज़ करके कितने महीने का या हफ्तों का स्टॉक किया होता है।
0: एक पॉइंट है मेरे जहन में, अक्सर कहते हैं हम लोग कि जितनी गलीज होती है ना चीज़, वो उतनी ही लजीज लगती है आपको।
1: नहीं नहीं, लेकिन देखिए आजकल तो देखिए बहुत ज़्यादा
0: हाइजीन का ख्याल रखा
1: है, आजकल जो है बहुत ज़्यादा चेकिंग भी चल रही है गवर्नमेंट के की तरफ से भी, हाँ बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कहाँ काम कर रहे हैं। तो बस ये है कि जो रेस्टोरेंट पे इतने महीनों से चीज़ें या कितने हफ्तों से, वो तो स्टॉक इकट्ठा कर लेते हैं, वो रोज़ ग्रॉसरी नहीं कर सकते।
0: इवन के इतने फेमस बड़े बड़े नाम जो हैं, गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली मतलब की पोस्ट आ रही होती है, जो हमारी गवर्नमेंट की जो टीम है वो काम करती है, वो इतने अच्छे रेस्टोरेंट एक्सपायर चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब के गली सड़ी सब्जियां और ये वो, मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग तो बल्कि जो अपने कुछ रेस्टोरेंट्स में कह रहे हो ना, उनका बीफ जी हमारा ऑस्ट्रेलियन बीफ है, वहाँ से आता है, यहाँ से आता है, लेकिन जो वो बेशक उनकी स्पेशलिटी वो है, उन्होंने देखो अपने काम को चलाने के लिए उन्होंने कुछ तो स्पेशल रखना है, लेकिन फ्रेश चीज़ की अपनी ही बात है जो हमें हमारे एरिया के स्ट्रीट फूड से मिलता है, क्योंकि उन्होंने कुछ भी स्टोर नहीं किया होता, वो रोज़ ताज़ी सब्ज़ी गोश्त या चिकन खरीदते हैं, ताज़ा बनाते हैं, वो उसी दिन में ही सारा ख़त्म कर देते हैं, चाहे रात के 2 बज जाए 3 बज जाए। और वो स्टोर्ड चीज़ जब आप नहीं खाते ना, तो वो ताज़ा चीज़ की बात ही कुछ और होती है। इसलिए जो स्ट्रीट फूड जो है थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है बहुत फेमस है। आपको बारबेक्यू हमें जो मिलता है वो भी बहुत फ्रेश और गर्मा गर्म होता है, तो
0: बारबेक्यू तो फिर बात है,
1: बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मज़ीद गपशप आप सबके साथ हो गई। अभी तो आपने देखना है जब फरी आपी का फ़ोन आता है और ज़बरदस्त जो रेसिपीज शेयर करती हैं, तब सबको भूख लगना शुरू हो जाती है। और अभी आप सबके लिए ज़बरदस्त सा ट्रैक प्ले करने जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को हर कीमत पर रोकना होगा। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान और पोलैंड ने सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: Welcome back after the news break.
2: Welcome back. प्रोग्राम लेडीज लाउंज, मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आरजे विजया आसिम। तो जी, अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो दिल की बात कहना चाहते हैं, तो हम यहां बैठे हैं दिलों को दिलों से मिलाने के लिए। आप हमें बता सकते हैं और हम आपका गाना जो है आपके चाहने वाले को डेडिकेट करेंगे। और साथ ही आज मैं बात करना चाहती हूँ, और आपने भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाई डू द नाइसेस्ट पीपल गेट ट्रीटेड द वर्स्ट। कि आप जितने अच्छे होते हैं ना, जितने आप अच्छे होते हैं ना, उतना ही ज़्यादा ना आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा होता है। क्यों, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए, अगर आप किसी इंसान को ना पूरा साल खाना खिलाएंगे ना, और एक दिन खाना नहीं देंगे ना, तो आपको बातें सुनाएगा, ये तो ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो आपकी हमदर्दी को, आपकी अच्छाई को ही थी और शी स्टार्ट्स टेकिंग फॉर ग्रांटेड। और कहते हैं ये तो जी आपकी जो अच्छाई है ना, ये तो उसका हक है, और वो फिर उसको अप्रिशिएट नहीं करता। यही आप एक इंसान को अगर पूरा हफ्ता भूखा मारेंगे और एक हफ्ते के बाद उसे खाना दे देंगे, तो कहेंगे कितना अच्छा इंसान है, शुक्र है। तो इसलिए कुछ लोग वाकई किसी आप दूसरे इंसानों को इसलिए इतना रगड़ते हैं, और उसके कुछ देर बाद उनको वो फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो थैंकफुल हों। और जो इंसान जो है ना बहुत अच्छा होता है, हर टाइम अवेलेबल होता है, और हर टाइम जो है
3: कि ना हम लोग अगर हर टाइम अवेलेबल होते हैं ना किसी के लिए, ये रियलिटी बेस है। और मतलब कि आपकी वो वैल्यू नहीं रहती, और जो सामने वाले ना आप उसको बेशक वैल्यू कर रहे हैं, अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाल रहे हैं, तो उसको वो लोग हमें बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं कि
2: बिल्कुल
3: इसके पास और कुछ काम ही नहीं है करने को, मतलब कि
2: ये तो मेरा आगे पीछे फिरता रहेगा। और कुछ लोग जो है ना, कुछ लोग जो जब भी आप ऐसा भी होता है, कुछ लोगों को आप अप्रिशिएट करते हैं। और मैं हमेशा हमेशा जैसे मेरे इर्द गिर्द कोई भी हो, मेरे कजन्स हों, छोटे बहन भाई हों, मैं हमेशा उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करती हूँ, नो मैटर वॉट एवर दे डू। तो मतलब ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो है ना आपको मतलब कि इसीलिए ही अपने के रखना चाहते हैं कि उनको पता है ये तो हमारे आगे पीछे ही पड़ता रहेगा और कभी कुछ कहेगा नहीं है, और ये तो हमेशा अवेलेबल है। और इसके साथ साथ मैं इस बारे में भी बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हमें सोशल मीडिया पे भी देखने में आ रहा है कि जी लड़कों को भी, आदमियों को भी सिखाना चाहिए, सिर्फ औरत का काम नहीं है कि वो घर बना के रखे। सिर्फ औरत पे ही ये क्यों प्रेशर होता है कि जी तुमने घर बना के रखना है, या तुमने घर को लेके चलना है, या तुमने घर जोड़ के रखना है। तो ये बात कभी
3: ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो ये सब चीज़ें मतलब कि इस्लाम में नहीं है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने इन सब चीज़ों को इस तरह से किया हुआ है। जहन साजी इस तरह से कर दी जाती है मर्दों की कि किचन में जो है वो मर्द हजरात नहीं जा सकते, खाना जो है वो ये नहीं बना सकते। मतलब कि औरतों के दिमाग इतने कॉम्प्लेक्स हैं, स्पेशली माएँ जो हैं वो घर में बेटियों को इस तरह से, मतलब कि अक्सर मैंने देखा है कि कुछ जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग होते हैं वो अपनी बेटियों को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अच्छा भाई आ गया, चलो उठो खाना लेके आओ, उसके सामने ये बात नहीं करनी, ये है। तो मुझे बहुत फक्र, मतलब अक्सर मैंने देखा है कि लिटरली अभी 2026 में भी लोगों के दिमाग इतने कॉम्प्लेक्स है कि अभी भी इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं कि बेटियों की पैदाइश पे जो है ना अफसुर्दगी का इजहार किया जाता है कि चलो बेटी हो गई है, ये है, तो वो है, बेटा होना चाहिए था। मतलब कि स्टिल ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों को जो है नहीं होना चाहिए। कि मतलब कि मुझे मतलब कि हैरानी होती है, और मुझे मेरी अपनी जो सोचने की सलाहियत है ना, वो कुछ अरसे के लिए सुन हो जाती है कि ये क्या है, मतलब कि किस तरह से। और फिर ये कि बेटियों को ये चीज़ हमेशा से सिखाई जाती है, यही बातें ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में की जाती हैं कि बेटियों का जो है ना वो कोई घर नहीं होता। ठीक है,
2: नहीं उसके अलावा एक देखिए यही मैं बात करना चाह रही थी, जैसे कि अभी जिस ड्रामे के बारे में हम बात करते हैं, हुरमत में भी ये सिखाया जा रहा है, बस इतना पढ़ लिया है, नीचे आंखें नीचे रख के जाओ करो, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। डॉक्टर बहू में भी यही सिखाया गया था, अब जितनी मर्जी सक्सेसफुल डॉक्टर हैं कुछ हैं, अब उसमें जो उसकी बीवी थी उसको अवार्ड मिलना था, और उसका हस्बैंड कह रहा था नहीं नहीं नहीं तुम घर पर ध्यान दो, तुम्हें अपनी उसकी पड़ी हुई है। तो उसने कहा आपने मेरी फ्लाइट वो क्यों कैंसिल की है, मुझे अवार्ड मिलना था। तो दिस इज़ समथिंग जो रियलिटी आजकल आजकल हमें दिखाई भी जा रही है कि वो कभी भी अपना ऑर्डर दे देंगे और वो कहेंगे तुम्हें घर पे ध्यान दो, तुम्हें अवार्ड भी मिल रहा है तो उसमें तुम्हें दूसरी चीज़ों की पड़ी हुई है। बात यह है कि हमारे जो घर का जो माहौल होता है, ठीक है, अगर आपको कभी आपने देखा है आपकी अम्मी को कभी अब्बू ने डांट दिया है या कभी उनको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई, अगर कुछ कह दिया है, तो जो बच्चे हैं ना वो देखते हुए बड़े होते हैं, अगर अम्मी को दो बातें सुना भी दी हैं ना तो अम्मी हैज़ नो चॉइस टू गो, उसने यहीं पर रहना है, उसने यहीं पर बर्दाश्त करना है। तो दिस इज़ समथिंग वेरी नॉर्मल कि हमने बोलना है और उसने बर्दाश्त करना है। तो ये चीज़ वो सीखते देखते हुए वो आगे ज़िंदगी में अनकॉन्शियस माइंड में उनकी ये चीज़ें सब आ जाती हैं।
3: सबसे पहले अगर इंसान कोई भी चीज़ जो है ना, अगर कुछ भी सीखता है ना, वो स्कूल से पहले उसका घर है, क्योंकि जहाँ से कुछ भी अगर उसने सीखना है ना तो वो अपनी जो उसकी प्राइमरी एजुकेशन है ना वो उसके घर से स्टार्ट होती है। और वो मतलब कि जो वही बात है कि इंसान की जो तरबियत है ना, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पेरेंट्स को, स्पेशली माओं को जो है ना, बेटियों से ज़्यादा बेटों की तरबियत पे गौर करनी चाहिए, क्योंकि यही बड़े होके जो है ऑब्वियसली किसी के शोहर होंगे, किसी के बाप होंगे, तो अगर आप उनको अच्छे तरह से ट्रीट करेंगी, ट्रीट करना सिखाएंगी ना, तो ही ये चीज़ें जो है ना ठीक होंगी, वरना ऑब्वियसली ऐसे ही चलता रहेगा ऐसे ही चलता आ रहा है और चलता रहेगा।
2: बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसमें तो है ना थोड़ा सा चेंज लाने की हम सबको बहुत बहुत ज़रूरत है, और वो इसलिए भी ज़रूरत है ताकि जो आगे जाके आजकल डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो रहा है, सबको बहुत सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में, एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं देते, या कुछ भी इस तरह से बहुत सी मतलब कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं आजकल रिश्तों में तो वो ऑब्वियसली वो फिर कम हो जाती हैं।
3: मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इमोशनल अटैचमेंट एक दूसरे के साथ भी वैसी नहीं रही, चाहे हम घर में मौजूद हों, क्योंकि बहन भाइयों की आपस में वैसी अटैचमेंट नहीं रही। ये सब चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं ना, कि हस्बैंड वाइफ तो बाद में आ जाती हैं, पेरेंट्स के साथ वो अटैचमेंट नहीं रही, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं है, सिर्फ एक फ़ोन है और अपना रूम चाहिए कि चलो बस वहाँ जाके बैठना है। और ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपकी अपनों के साथ जो है इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है, तो फिर आप जो है ना दूसरों को तलाश करते हैं, कोई दूसरा सहारा आपको चाहिए होता है। मतलब कि हम जितनी भी कोशिश कर लें कि दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहिए या बात शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप कोई ना कोई एक जो सहारा है वो आपको उसके तलाश होती है, कोई ना कोई एक शख्स तो एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि मतलब
2: कभी भी कुछ भी कह सकें।
3: तो यही चीज अगर आपके अपनों के साथ होगी तो फिर आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर लोगों को इससे जो है वो अपने एतमाद का भी जो होता है कि हमारा एतमाद टूट गया, दिल टूट गया, और मतलब कि हमारे राज जो है वो उसके पास चले गए और वो किसी ने यूज कर लिए,
2: तो
3: बिल्कुल ये भी है,
2: ये चीजें फंड नहीं होती। एग्जैक्टली यहाँ पे एक जबरदस्त सा ट्रैक प्ले करने चाहिए, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: जी वेलकम बैक। यहाँ हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक था और आप देख रही हैं हमारा प्रोग्राम लेडीज़ लाउंज और वक्त हुआ है इस वक्त 12:13।
1: जी बिल्कुल, इट्स 12:13 इन द स्टूडियोज एट द मोमेंट। आप क्या सुनना चाहते हैं आप मुझे अभी भी जल्दी से आपने मुझे बता देना है, क्योंकि जब बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म होने में ना 15-20 मिनट रह जाते हैं ना, तब सब लोग बता रहे होते हैं ना ये गाना प्ले कर दें, ये गाना प्ले कर दें, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो साथ साथ आप लोग के फेसबुक जो कमेंट्स हैं वो भी मैं प्रोग्राम में शामिल कर लेती हूँ, और मुझे बहुत से जो मेरे प्राइवेट फेसबुक पेज पे भी मैसेजेस आए हुए थे, तो इसलिए आज मैंने शेयर किया है। जो लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं दे कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट डिस्कवर DISCOVER विद WITH _ JIA जिया। ठीक है, जिया जो है मेरा निकनेम है और मुझे घर में हमेशा जो है ना मुझे इसी नाम से पुकारा जाता है, तो इसलिए मैंने अपना हैंडल भी इसी नाम से बुलाया। और उसमें डिस्कवर विद इसलिए है, जैसे तूबा भी अभी पूछ रही थी कि ये क्यों है, क्योंकि उसमें मैंने जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा बहुत से ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती रहती हूँ, वो शेयर करने के साथ साथ मैंने अपनी बहुत सी ट्रैवलिंग जर्नी जो है वो भी शेयर की हुई है, क्योंकि हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स में भी ट्रैवल करने पे इसलिए इतना फोकस करती हूँ क्योंकि ट्रैवलिंग इज़ समथिंग जो आपको बदल देती है, जो आप एक चेंज लेके आती है। जब आप कहीं से घूम फिर के आते हो ना, अभी किसी से किसी दोस्त से किसी से लड़ाई भी हुई हो ना, कुछ हुआ भी हो ना,
0: हाँ,
1: तो जब आप कहीं से घूम फिर के आते हो ना, आप कहते हो अच्छा छोड़ो उस बात को, किस बात पर लड़ाई थी, तो वो भी आप ओवरलुक करते हो, गो आप लेट गो करते हो। इसके साथ साथ आप बहुत कुछ सीखते हो, और जो पैसे होते हैं ना, वो जो पैसे जितने भी आपने भी ट्रैवलिंग पे लगाए होते हैं ना, वो फिर भी वापस आ जाते हैं, लेकिन द गोल्डन मोमेंट्स जो होते हैं ना, जो मेमोरीज आप बनाते हैं ना, वो कभी वापस नहीं आती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिज्नीलैंड पेरिस विज़िट किया था इन 2000, ठीक है, और हमने जो मिलेनियम डोम की ओपनिंग होनी थी UK, और वो स्पेशली हम लोग वहाँ पर वो देखने के लिए गए थे क्योंकि वो एक सेंचुरी का नया आगाज़ था। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं स्कूल में थी, लेकिन देखो कुछ स्पेशल मोमेंट्स होती हैं ना, वो आपको याद रह जाती हैं। तो अब वो जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ गई हूँ, उसके साथ डिज्नीलैंड, अब वाटर पार्क्स वहाँ पे इतने ज़्यादा हैं, लेगोलैंड है, ब्लू लगून है, और इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि आपके पास बहुत कुछ करने को होता है रादर देन गोइंग टू रेस्टोरेंट्स ओनली। तो जब आप अपने लिए, आप देखें कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी अपने सब वर्कर्स के लिए छुट्टी के दिन मुकर्रर ज़रूर करती है, और अक्सर लोग होते हैं ना अपनी 2-2 साल की छुट्टियाँ जोड़ इकट्ठी कर लेते हैं, जी हमने ऑफ नहीं लेना, या वो फिर तब के लिए भी यूज कर लेते हैं जब उन्होंने कहीं जाना हो, ठीक है, तो कि जी हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे या कहीं जाएंगे तो फिर हम यूज कर लेंगे। लेकिन आप देखें एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी कंपनी इज हैविंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेज फॉर देयर ऑल एम्प्लॉयज़, कि उन्होंने इन दिनों में छुट्टियों में ज़रूर जाना है, तो वो इसलिए होता है ताकि जब तक वो फ्रेश नहीं होंगे, जब तक वो फ्रेशन अप हो के वापस नहीं आएंगे, उन्हें पता होता है कि वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए घूमना फिरना, जाना आना बहुत ज़रूरी है, अपनी फैमिली को भी टाइम दें और अपनी बीवियों को लेकर जाएँ। जितनी भी अभी लेडीज़ लाउंज में खवातीन मुझे सुन रही ना, सुन के खुश हो गई होंगी, और अपने जो है ना हस्बैंड्स को या उनके अब्बू जो है उनको सुना रही होंगी कि देखें आज मैं कह रही हूँ कि सब ने एक दूसरे को ना घूमने फिरने के लिए लेके जाना है, और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना अपनी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में टाइम ही नहीं मिलता एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का।
0: मुझे ऐसा लगता है कि बाहर निकलने से ना, कि अगर आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें तो मतलब जो पूरी लेथार्जी होती है, पूरा जो स्ट्रेस वो आपकी रूटीन होती है, इतना अच्छा फील करते हैं, तो कि मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ थकावट के बावजूद, कहीं बाहर जाना, चलो घूम फिर आते हैं, या कहीं आउट
1: जाते भी है ना एक दूसरे के साथ, किसी रेस्टोरेंट जाए, आप कहीं भी देखें तो सब अपने अपने मोबाइल पे ही लगे होते हैं, और वो क्योंकि वो सारे दिन का वो जी सब थके हुए कामों से आते हैं, और जो खवातीन है वो भी सारे दिन के काम करके थक चुकी होती है। तो ये बात है कि आपको जो है थोड़ा सा ना एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने का मौका ज्यादा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
2: जी बिस्मिल्लाह, अब्दुल हमीद का बात तो मेला है, मेरी आज कार पहली मिल गई है।
1: जी, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल
2: क्या बात है, क्या बात है, छोटी बहन तो बन हुई मेरा। अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कैसे
2: हैं आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ताला आवाज अखलाक बहुत अच्छा है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: देखो ना आप तो भी हुई है, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪ ਸ਼ੋਅ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ?
2: ਸ਼ੋਅ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਛੇ ਤਲਕ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਕੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
1: ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮ ਯਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਆਪਕੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।
2: ਰਜਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਫਰੀ ਆਦੀ ਨੂੰ, ਫਰੀ ਦੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੱਲ ਵੀ ਨੀ ਆਈ ਕਾਲ ਤੇ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ।
1: ਚਲੀ ਜੀ ਆ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਆ ਜਰੂਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ।
2: ਉਹ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਡੋਸੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ।
0: ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੀ ਬੇਗਮਾਨ
2: ਫਰੀ ਆਪੀ ਦੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਸੁਣੋ ਕਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੇ।
1: ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਤੇ ਆਪੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਕਲੱਬ ਵਾਲਾ, ਰਜਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਫਿਰ
1: جی اللہ حافظ۔ اچھا جی یہاں ایک زبردست سا ٹریک پلے کرنے جا رہی ہوں، آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، سٹے ٹیونڈ۔

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: Welcome back. This is your dose, your host, RJ Vaji Hasim. Program Hill Ladies Lounge. At the moment, it's 12:25 p.m. in the studio. Hamare saath maujood hai is waqt studio mein Tuba Nawaz. जी तुबा, तो जैसे कि हम आज बात कर रहे थे कि वाई डू द नाइसेस्ट पीपल गेट ट्रीटेड द वर्स्ट, और जिसके बारे जैसे मैंने एक दो एग्जांपल्स भी दी अभी ट्रैक पर जाने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई होता है,
1: ऐसा रियलिटी होता है? बोल सकते हैं कि पता नहीं क्यों हम ज़्यादा अटैच हो जाते हैं इमोशनली भी, फिर आप एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं, फिर ये कि फिर सामने वाला अक्सर लोग, बहुत रेयर लोग इस तरह के होते हैं कि जो वैल्यू आप उन्हें दे रहे हैं ना, जिस तरह से आप इमोशनली उनके साथ अटैच हैं, सेम वही आपको इन रिटर्न मिले, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो फिर आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो फिर दिल भी दुखता है, फिर वो एफर्ट करने को दिल भी नहीं चाहता. फिर ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम आपको वैल्यू कर रहे होते हैं ना, फिर मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले की वो वैल्यू भी नहीं रहती है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. कुछ कमेंट्स हमारे साथ, बहुत से लिसनर्स मौजूद हैं, कुछ आप शामिल करें साथ साथ प्रोग्राम में.
1: अच्छा जी, इसमें रियाज भट्टी का कमेंट है, शो ऑल दी बेस्ट. और उसके बाद जो है मोहम्मद रजा चौधरी का कमेंट है, वक्त सबका इम्तिहान लेता है, बस सब्र वाला कामयाब होता है. और उसके बाद एक कमेंट है, शो में शिरकत करने पर हम सब लिसनर्स को दिल की इंतहाई गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं. और उसके बाद ये मोहम्मद रजा चौधरी ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं.
0: सबसे पहला उन्होंने मैसेज किया है, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और रजा एम रजा सिराज ने भी हमें मैसेज किया है. हाँ, इनका हमने मैसेज पहले भी प्रोग्राम में शामिल किया था. इजाज अली ने कहा है, वेलकम खुशामदीद. और इजाज अली ने बेस्ट विशेस भी भेजी हैं. जी तुबा, साथ साथ मज़ीद कमेंट्स भी शामिल करें.
1: इसमें जो है वो कमेंट आया है तनवीर अहमद का, सलाम फ्रॉम ग्रीस. और मोहम्मद रजा चौधरी का कमेंट है, शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं. हम आपको खूबसूरत शो करने पर FM रेडियो 101 लाहौर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं, जो हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब देते हैं. और FM के सब लिसनर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर शो में शामिल होते हैं और कॉल के ज़रिए SMS के ज़रिए शामिल होते हैं. शमसी रेडियो लिसनर क्लब की स्लॉट पेश करते हैं और अल्लाह पाक आपको जो है वो सलामत रखे.
0: थैंक यू वेरी वेरी मच. हमदुल्ला मलाखील जो है, ही इज़ आर रेगुलर लिसनर एंड कॉलर, उन्होंने भी हमें मैसेज किया है और कहते हैं, शायरों के किस्से अपनी जगह, मगर हकीकत ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा इश्क रोटी और सबसे बड़ी अयाशी तंदुरुस्ती है. बिल्कुल, या आपने बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी बात की है. हमदुल्ला मलाखील जो है ना, हमारे एक ऐसे कॉलर हैं जो हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए ना, ही इज़ द वन हु स्टेज पॉजिटिव और हमेशा आके अच्छी बातें ही करते हैं. कभी उनकी किसी से मतलब कोई प्रॉब्लम भी चल रही हो ना, बट ही कम्स अप विद द पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखें, ये वाकई आपके पास, देखें आप, मैं ये बात ज़रूर यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि आप अगर बीमार हैं या आपको, अगर आप नहीं कुकिंग करना चाहते, यू कैन हायर अ कुक. अगर आप गाड़ी नहीं चलाना चाहते, यू कैन हैव अ ड्राइवर. सफाई नहीं करनी, यू कैन हैव अ स्वीपर. लेकिन अपनी बीमारी काटने के लिए आप कभी किसी को हायर नहीं कर सकते. आपकी वर्क प्लेस पे यू आर रिप्लेसेबल इन जस्ट अ सेकेंड. आज आपको कुछ हो गया, अगले दिन नया बंदा आके खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपकी फैमिली के लिए कभी भी कोई मौजूद नहीं होगा. इसलिए अपनी सेहत को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें, अपने आप को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करें. और हमारी जो ख़वातीन हैं, हमें जो सुन रही है, जिनके लिए स्पेशली हम प्रोग्राम कर रहे हैं लेडीज़ लाउंज, वो तो कहते हैं सबके काम हो जाए, साड़ी खैर है. हमारी माएँ हमेशा स्पेशली इसी तरह से ही रिएक्ट करती हैं. लेकिन आपको ये बात अपने दिलो दिमाग में रखनी है, अपनी वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी आप आज गए, आपकी वर्क प्लेस पे या कहीं भी, आपको 4-5-6 दिन, हफ्ता, महीना लोग याद रखेंगे, लेकिन आपकी फैमिली के लिए आप नहीं रिप्लेसेबल है. इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें. हाँ जी,
1: यहाँ पे मोहम्मद रजा चौधरी का कमेंट मैं शामिल करूँगी. उनका कमेंट है, पोइट्री उन्होंने कमेंट की है, अदा हुआ ना कर्ज़ और वजूद ख़त्म हो गया, मैं ज़िंदगी का देते देते सूद ख़त्म हो गया.
0: بہت ہی
1: اداسی والا انہوں نے جو ہے نا کامنٹ
0: کیا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے جی مزید کامنٹس ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے آگے ساتھ ساتھ. I'll be taking you on air calls as well. اور ابھی جو ہے نا آپ کی سماعتوں پہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہی ہوں ایک زبردست ٹریک, سو کہیں مچائیے گا, stay tuned.

0: जी वेलकम बैक, आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम एंड वी हैव तुबा नवाज विद अस इन द स्टूडियो। जी तो तुबा, आपका क्या एक्सपीरियंस है जिस हवाले से आज हम बात कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर हम अपने लिसनर्स का एक्सपीरियंस भी साथ साथ पूछेंगे।
1: मैं अपना एक्सपीरियंस किस चीज़ में शेयर करना है? आपने उस चीज़ में के जो अच्छे लोग हैं वो क्यों बुरी तरह से ट्रीट
0: मतलब
1: जाते हैं?
0: नहीं, हमें मतलब किस तरह चीज़ों को लेके चलना चाहिए, जैसे कि अभी आप बात कर रही थी, जैसे ऑफ एयर भी अभी हम बात कर रहे थे कि हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं, तो आपने मतलब कि
1: अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। अगर किसी को मतलब कि कोई भी प्लेस है, किसी को वैल्यू मिल रही है, कोई किसी को पसंद किया जा रहा है या कुछ भी चीज है, तो हमें उन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि लोग क्यों मतलब कि आपका इंटरेक्शन ज्यादा भी नहीं है, आप किसी के बारे में ज्यादा जानते नहीं हैं, आपकी ज्यादा बातचीत नहीं होती, तो क्यों आप पर्सनल ग्रजेस जो हैं वो रखते हैं? लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं और क्यों ग्रजेस रखते हैं? मतलब कि आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है सामने वाले की लाइफ पे, कुछ भी नहीं है, तो फिर भी मतलब कि आपका इंटरेक्शन नहीं होता, आपकी बातचीत नहीं होती, उसने कोई बुरा नहीं किया होता आपके साथ, बस ऐसे क्यों हम परसेप्शन बना लेते हैं, क्यों ग्रजेस रखते हैं? मतलब कि ऐसा नहीं होना, जब आपका इंटरेक्शन ही नहीं है, आपकी बातचीत ही नहीं है,
0: आप जब किसी को बेलवाजा तंग ही नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने काम से काम,
1: तो फिर मुझे नहीं लगता कि ग्रजेस रखने चाहिए।
0: एक्चुअली हर इंसान की फितरत डिफरेंट होती है, और मैं आपको बताऊं, ये हर इंसान एक जैसा भी नहीं रहता, वक्त के साथ साथ सब लोग बदल जाते हैं, और जो लोग अपने आप को एक जगह में स्टक कर लेते हैं वो वाकई नुकसान में रहते हैं। तो अब क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है और साथ हम बात कर रहे हैं कि आपके किचन में क्या बना है, तो आप हमें बताएं आपकी फेवरेट डिश क्या है।
1: मेरी फेवरेट,
0: लोग बदल जाते हैं और जो लोग अपने आप को एक जगह में स्टक कर लेते हैं वो वाकई नुकसान में रहते हैं। तो अब क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है और साथ हम बात

0: बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है जी,
1: आप पक्की आरजे बन गई हैं, आप अपना लादा शो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसी की ट्रेनिंग चल रही है फरी जी, आप बस देखेंगे जल्द तूबा को ऑन एयर।
1: अभी ट्रेनिंग पक्की हो गई है, ये नए एजेंसी हैं, ये आरजे बनेंगे हमारे फील्ड में, ये इनको ना बहुत अच्छा हमसे ना दुआएं दे सकते हैं इनके लिए।
2: आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी टाइम बहुत शॉर्ट है, तो हम ना आजकल ना डेंगू फीवर आम हुआ है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: खाना नहीं खा रहे हैं, रोटी नहीं खा रहे हैं, सालन नहीं खा रहे हैं, ना चावल खा रहे हैं।
0: जी जी जी,
1: बनाएंगे दलिया, यखनी वाला दलिया बनाएंगे।
0: अच्छा,
1: साथ में ना दलिया बनाएंगे गुड़ वाला,
0: गुड़ वाला,
2: गुड़ वाला।
0: अच्छा अच्छा,
1: वो लादा बनाएंगे, यखनी लादा बनाएंगे, दो कप दलिया ले लें, उसको रात को भिगो देना है, तो या दो तीन घंटे पहले भिगो दें, एक आप बोनलेस चिकन ले लें, उसको आप ना जैसे यखनी निकालते हैं ना, दो गिलास पानी का डाल दें, आधी चम्मच नमक डाल दें, आधी चम्मच काला मिर्च डाल दें, और थोड़ा सा ना
0: आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच
1: काली मिर्ची पाउडर डालना है।
0: ठीक है,
1: कलर वाली मिर्च नहीं डालनी, लाल वाली नहीं डालनी है, हल्दी भी नहीं डालनी है, यखनी की तरह बनाना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही हो गया।
1: थोड़ी सी अजवाइन डाल दे हारने के लिए।
0: ठीक है,
1: ये जब अच्छी तरह गल दे ना, तो ये रेसे करके ना, मैं चिकन जो है ना इसके रेसे करके ना, तो इसको ना इसके अंदर में जो उबला हुआ रात को भिगोया हुआ दलिया था ना, यखनी के अंदर पका दे, ये नरम हो जाएगा, तो इसके बोल में डाल के ना रख दे, तो जिसको बुखार है फीवर है वो ये खाएगा ना, तो एक तो दलिये में बहुत ताकत है अल्लाह ताला की तरफ से ना, गंदम का।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है अम्मी बचपन में हमें बहुत खिलाती थी, बहुत खिलाती थी।
2: मैंने कभी नहीं खाया दलिया।
0: अच्छा, आज आपने फरियाबी की रेसिपी से साथ बनाना है, ठीक है ना?
1: आज आके बनाए ना तो बड़ा मजे का बनेगा यखनी वाला। अब हम ना गुड़ वाला दलिया बनाएंगे, दो कप दलिया ले लें, उसको भी दो तीन घंटे पहले भिगोना है, बाद में इसके अंदर ना 1 किलो दूध लेके ना, ये दूध के
0: आपने गंदम का दलिया लिया ना,
1: गंदम का दलिया ले ले, हॉलैंड का दलिया आता है डब्बे में पैक भी आता है।
0: जी जी बिल्कुल,
1: बाहर का दलिया होता है तो वो वाला भी अच्छा है, अगर वो आसानी से मिल जाए तो बेहतर है, नहीं तो इधर।
0: ठीक है ठीक है ठीक है, फरी जी आगे रेसिपी की तरफ चलें, दलिया ले लिया आगे।
1: दलिया दो कप ले ले, उसको ना भिगोना है दो तीन घंटे पहले, 1 किलो दूध के अंदर ना ये दलिया नरम करना, गल जाएगा अच्छी तरह, थोड़ा सा गुड़ ना थोड़े से पानी में ना मिक्स करके ना, तो वो जो गुड़ वाला पानी है ना इसके अंदर डाल दे, दो तीन इलायची डाल दे, दो चम्मच मकई का आटा डालना है, चखनी वाले दलिये में भी डालना है, और इसमें भी दो चम्मच ना मकई का आटा डाल के ना, इसको ज्यादा थिक नहीं करना।
0: अच्छा, मकई का आटा भी डालना है इसमें, क्या बात है,
1: आटा डालना है, यखनी वाले में भी डालना है, थोड़ी ताकत आ जाएगी, तो ये गुड़ वाले में भी डालना है, जब ये पक जाएगा ना, तो अगर आप चीनी डालना चाहते चीनी डाल दे, अगर शक्कर डालना चाहते
0: चीनी डालना चाहते, वो आपकी अपनी मर्जी है, दो तीन लाठियां डाल। गंदम ये जो मकई का आटा है आपको
1: आसानी से मिल जाता है, हर दुकान से मिल जाएगा।
0: चलें जी ठीक है,
1: आजकल तो मौसम ही मकई का आटा और साग खाने का है, तो
2: सर्दियाँ आ रही हैं।
0: हाँ सर्दियाँ आ रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मकई की रोटी साल वो साग के साथ भी बनाते हैं ना स्पेशली,
1: वो बाद में अगले हफ्ते बताएंगे।
0: ओके
1: ओके, ना बोल में डाल ले, इसके ऊपर थोड़े से ना बादाम काट के डाल ले।
0: ओके,
1: बीमार के लिए बहुत अच्छा है। अल्लाह हाफिज शमशी ग्रुप वाले के लिए बहुत है, जो है हमीद भाई ने याद किया था, उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं,
0: आप जाकर सुनेंगे दोबारा, ठीक ठाक होके यहाँ आएंगे और शोज करेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, आपके क्या हाल हैं?
2: हम ठीक हैं, आप कैसी हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: मुझे लगता है कि आप रिमशा है शायद।
3: मैंने कि आपके साथ छोटी आप शो करी इनको मेरा सामने को।
0: वालेकुम अस्सलाम,
2: आप रिमशा है?
3: जी बिल्कुल।
2: अच्छा, मैंने पहचान लिया आपकी आवाज़।
0: रिमशा जल्दी से बताओ क्या कहना चाहोगी?
3: मैं ये कहना चाहूंगी आप ही कुछ लोग होते हैं जिनसे ना देख के ना दूसरों की कामयाबी नहीं देखी जाती है, किसी के पास कुछ आ जाए तो वो नहीं देखा जाता।
0: और कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात,
2: बहुत आसान था।
0: अच्छा अच्छा ठीक
3: है। कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज में ना डूंगी मारना, जैसे कहते हैं ना सुइया मारना,
0: सही हो गया।
3: मैंने देखा है ना, अक्सर ऐसे हमसाए भी होते हैं।
0: हाँ हमसाए।

0: जी वेलकम बैक, आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन।
2: वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप
1: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत जबरदस्त आरजी हमारी नई आरजी दोबारा, तो वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप शो के हवाले से?
1: प्रोग्राम तो हमेशा ही अच्छा होता है कि भैया आप जब शो करती है तो दिल से करती है,
2: दिल से करती है और जान डाल देती है, सुनने वाले को मजा आता है।
1: नहीं मजा क्या आता, हमारे पसीने छूट जाते जब हमारी कॉल नहीं लगती।
0: अच्छा,
1: अभी मेरी एक दफा पहले कॉल लगी है, लेकिन अब मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, तो इतने अच्छे आरजे प्रोग्राम कर रहे हैं
0: जी,
1: तो उनकी अच्छाई तो बताना चाहिए। हमारा एडिटर का ये फर्ज बनता है कि उनको बताया भी ग्रेट आरजे, ग्रेट आरजे, ग्रेट शो।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, टाइम बहुत कम है, जल्दी से बताइए आप क्या कहना चाहेंगे।
1: मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अगर 99 किसी सारे अच्छाई कर लेना, एक एक चीज़ हम वो उसकी बात पे ना कर देना, वो सारा मुल्क 99 हमने अच्छे काम किए ना, वो हमारे मुंह पे मार देते हैं।
0: जी जी, ऐसे ही
2: होता है, ऐसे ही है।
1: तो बंदा ना चीज को रजा चौधरी कहते हैं बड़े प्यार से।
0: अच्छा जी, आपको बड़े प्यार से ही रजा चौधरी कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है।
1: तो भाई ये आप लोगों की सुबह के लिए बहुत सी दुआएं, अल्लाह पाक इनको मजीद कामयाबियां दे। आरजे के सामने बैठ गई ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फखर से कह सकता हूँ कि बड़ी अच्छी आरजे बनेगी आप इंशाल्लाह।
0: देखो तू बस मेरे साथ बैठने का ही ऑनर है।
1: फरी आंटी के लिए बहुत सी दुआएं, और फरी आंटी से हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप इतनी रेसिपी बताती हैं, कभी बना के भी खिलाए ना हमें।
0: जी जी,
1: तो पता चाहे जितने बादाम बताती हैं आप।
0: सही हो गया, सही हो गया। वैसे फरी आप हमेशा तैयार रहती है, मैं कुछ बना के लेके आऊँ, ऐसे ही ये बात
1: नहीं
0: है।
1: ऐसे नहीं है, वो एक तो बोल रहे ख्याली पकाओ है, ये ख्याली पकाओ है।
0: अच्छा,
1: तो मकई का आटा आपने क्या है, तो जितना मर्जी आटा ले, मेरा तलज भी गाँव से है, तो अभी बहुत मकई है, जितना मर्जी आटा ले, मकई मिलती है, गुड़ मिलती है, गन्ने का जो कहते हैं रस मिलता है, जिसे रो कहते हैं वो मिलता है, साग भी आने वाला है। बस
0: बिल्कुल, साग के साथ मकई की रोटी खाएंगे, क्या ही बात है
1: जी। सासरे वफा की डिग्री बाकी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए
0: अल्लाह हाफिज। ये ज़शान अली का जो मैं गाना प्ले करना चाह रही थी, हेयर इट इज़।

0: खुदा। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: ये बात करें
0: जी? जी जी
1: जी, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात करें, कहां से, जल्दी से
1: जी? मॉडल टाउन लाहौर से मलिक अली हैदर वजीर अल हुसैनी करबलाई और प्रोफेसर हाफिज जहीर अब्बास साहब।
0: जी जी जी जी,
1: दोस्त बात कर।
0: हाँ हाँ, आपकी लास्ट टाइम भी कॉल आई थी, मुझे याद आ गया।
1: जी जी, लास्ट टाइम थोड़ा आपको, पहली बात है कि मुबारकबाद देते हैं चैनल को एनिवर्सरी के लिए गुज़श्ता,
0: थैंक यू,
1: आपको नंबर वन आरजी होने के लिए।
0: थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।
1: गलत बोला था और सॉन्ग भी थोड़ा सा चलाया था। आज ये वक्त नहीं है वफा का, ट्रैकी सॉन्ग है प्रोफेसर साहब के लिए, मेरे दोस्त के लिए।
0: अभी शो का टाइम है ना अपने इख्तिताम पे है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दें। यू कैन ऑल्सो मैसेज मी ऑन माई इंस्टा हैंडल डिस्कवर विद अंडरस्कोर जिया, इंस्टा हैंडल है मेरा DISCOVER विद अंडरस्कोर जिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में जरूर प्ले कर दूंगी। ओके,
1: अच्छा मेरा एक सलाम पेश करें मेरे दोस्तों को, सऊदी अरब में अली नजर है और इंग्लैंड में मसूद और
0: का। ओके ओके जी, ओके
1: ओके, आपको भी और आपकी टीम को सारी बहुत शुक्रिया
0: आपका, अल्लाह हाफिज़। जी तो जी, सऊदी अरब में जो इनके दोस्त हैं उनको बहुत सा सलाम।
2: अली रज़ा उनके दोस्त हैं सऊदी अरब में, उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, प्रोग्राम का टाइम अपने इख्तिताम को पहुंचता है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अगर सांसें चलती रहीं, दिल धड़कता रहा, तो आपसे मुलाकात होगी सेम टाइम सेम शो, तब तक के लिए अल्लाह
3: हाफिज़। Bahrain's foreign minister is undertaking a two-day official visit to Pakistan from today. Pakistan and Poland have agreed to enhance cooperation in security and counter-terrorism. President and Prime Minister have commended security forces for successful operations against terrorists in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan.
4: This is FM 101.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

दिन के 2 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत और वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशत पेश किया है। बहरीन के वजीर खारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोजा सरकारी दौरा कर रहे हैं। वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुआशी इस्तेहकाम के हुसूल में नुमाया पेशरफ्त जारी रखे हुए है। और गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं।

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: 101 FM.
1: Coming up next, 101 News Headlines.

0: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान रेलवे को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए इदारे में कारोबारी शोबे की तर्ज पर इस्लाहात मुतारिफ करने का हुकूमती अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुआशी इस्तेहकाम को मुस्तकिल बुनियादों पर मजबूत बनाने का अमल जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा है कि हुकूमत अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में 2 अलग-अलग कार्रवाइयों के दौरान 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। और गजा में इसराइल की फौजी कार्रवाई के आज 3 साल मुकम्मल हो गए हैं।
1: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
2: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour.
6: Radio.

0: This is FM 101.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.
4: FM 101.

0: This is FM 101.
1: Keep smiling and drive carefully, okay?
2: Okay.

0: 오게?
1: 오.

smile and dial 111-000-101 FM.

0: け。
1: Keep smiling and drive carefully, okay?
2: Okay.

0: listening to FM 101, a Bale Bale Oshawa Shawa.
1: आप सुन रहे हैं FM 101।

जी तो जनाब, कैसे हैं आप सब और किस तरह से कैसा गुजरा आपका पूरा ये हफ़्ता? उम्मीद करती हूँ जनाब आपका ये हफ़्ता खुश और खुर्रम गुजरा होगा, अपनों के साथ गुजरा होगा, अपनों के बीच गुजरा होगा। प्रोग्राम में आ चुके हैं जनाब और मेरे ख्याल से आपका भी इंतज़ार ख़त्म हो गया और आप भी आ चुके हैं। अगर नहीं आए तो आ जाएं। जी जनाब, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पर FM 101 लाहौर का ऑफिशियल पेज है जनाब, उस पर मैंने पोस्ट लगा दिया आज के प्रोग्राम की, आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। इसके अलावा आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जनाब कॉल्स के थ्रू। रबते का नंबर है 0422111001, 1110001। इसके अलावा आप मुझे जनाब मैसेज भी कर सकते हैं 4471447 एक बार। जनाब जो लोग मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं जनाब, आपसे मेरी गुजारिश है, बिल्कुल बिल्कुल आपसे मेरी गुजारिश है कि आपने ड्राइविंग बड़े एहतियात से करनी है, अपनी लाइन और लेन का आपने खास ख्याल रखना है। और आजकल तो मैं देख रही हूँ कि बड़े ही बड़ी जगहों पर जनाब मुर्गे फंसे होते हैं। वैसे अच्छी बात है, सेफ्टी आपकी अपने लिए ही होती है ना, आपकी हिफाजत के लिए होती है, दूसरों के लिए होती है। और सीट बेल्ट का जो इस्तेमाल है ना, वो आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इसी वजह से ज़रा जो मैंने पहले बात की है ना, गौर तलब है, गौर तलब। अच्छा जनाब, मौसम की बात करें तो मौसम बड़ा अच्छा है, अच्छा है, बड़ा कन्फ्यूज सा है, पता नहीं, वो जैसे मूडी लोग होते हैं ना, मिजाज के थोड़े, कभी पल में तोला पल में माशा, बस इस तरह का सा मौसम है। कभी फील होता है कि ठंड आ गई है, ठंड आने वाली है, या स्टार्ट हो, ट्रांजिशन है जो गर्मी से सर्दी वाला, वो थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी लगता है कि गर्मी वैसे की वैसे है, लेकिन जनाब अक्टूबर स्टार्ट हो गया है, अक्टूबर की आज 7 तारीख है। और अक्टूबर का जो महीना होता है ना, वैसे अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो ये बड़ा ही, दिन भी बड़े अच्छे खूबसूरत मौसम के हुआ करते थे और शामें भी, अच्छा शामें तो अभी भी उसी तरह से हैं, बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है दरख्तों पत्तों पौधों की, और एक ना बचपन का एक बताओ नॉस्टैल्जिक सी फीलिंग आती है जब बाहर कहीं निकले ना, जहाँ बहुत ज़्यादा सारे पौधे होते हैं, तो वो पता नहीं उस पौधे को क्या कहते हैं, रात का, रात की रानी, रात का राजा, कुछ इस तरह से उसका नाम है, उसकी खुशबू तो मतलब क्या ही कहने। और इसके अलावा एक और बड़ी ज़बरदस्त है, एक पौधा है कीकर, शायद उसे कहते हैं, शायद नहीं, यकीनन कीकर कहते हैं, और उसके ऊपर ना येलो येलो से छोटे छोटे से फूल होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा खिले होते हैं ना, तो उसकी जो खुशबू होती है बहुत धीमी धीमी सी, बहुत सुंदी, बहुत ही खूबसूरत, और बड़ा ही ना वो ख्वाबों की सी फीलिंग आती है वो खुशबू होती है और वो बड़ा ही खूबसूरत लगता है। सर्दियों की आमद आमद है जनाब, मौसम इस तरह है कि अभी ना इस मौसम में क्या होता है कि माएँ बहनें घरों में ना वो जो पेटियों में रज़ाइयाँ रखी होती हैं, कंबल रखे होते हैं, वो निकालती हैं और निकाल के ना उनको धूप लगवाने के लिए डाल देती हैं, सुकने बाद इंडिया ने जी। अच्छा कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, उनके मिजाज ऐसे होते हैं कि बंदे का दिल करता है उन्होंने भी सुकने बाद दिया जाए। चलिए जी, पहला ट्रैक हम शामिल करते हैं प्रोग्राम का और उसके बाद देखेंगे किस किस को हमने सुकने डालना है या नहीं डालना है। मेरे से तो पूछें तो मैं तो रोज़ किसी को सुकने डाल दूँ, रोज़ किसी का कुछ ना कुछ, लेकिन बहरहाल जनाब ज़िंदगी है और हमें ज़िंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ता है, देखना पड़ता है, कभी कभी जहाँ हम नहीं चलना चाह रहे होते हैं वहाँ चलना पड़ता है। एनीवे जनाब, बढ़ते हैं खूबसूरत से एक ट्रैक की जानिब, ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ और उसके बाद ये कि आपने कहीं नहीं जाना है, जहाँ कहीं है वहीं जम जाएँ और स्टैचू हो जाएँ, क्योंकि आपने रहना है मेरे साथ ठीक ठीक ठीक 7 बजे तक।

वेलकम वेलकम वेलकम बे खुश आमदीद जी एंड सत बिस्मिल्लाह पखैर आगले जन्ना प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। ट्रैक सुन रहे थे अमार बेग की आवाज़ में और राहत फतेह अली खां की आवाज़ में। अच्छा मैं सुन रही थी और ना मुझे एकदम से क्लिक हुआ अमार बेग और एक सिंगर हुआ करते थे जब हम जब आतिश जवां था वारिस बेग आई थिंक ये उनके बेटे हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी आवाज़ है और एकदम से फिर मेरे दिमाग में ये बात है कि हम कितने बूढ़े हो गए हैं भाई। ओहो हो हो हो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, होता है जिंदगी है चलता है। ए दिन भी देखने सन ए भी देखना सी। एनीवेज जनाब रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर का लाइव स्टूडियो है, मैं हूँ आपके साथ रेहा अल्ताफ आपके अपने प्रोग्राम शाम के नारे के साथ। बात कर रहे थे हम सर्दियों के हवाले से, मैं कह रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मिजाजन के दिल करता है उनको भी ना रजाइयों की तरह कट के ना तोपते सूखने पा दिया जाए। लेकिन अच्छा मज़े की बात यह है कि पहले ना सर्दी का दौरानिया या मौसम थोड़ा सा ज़्यादा होता था कोई 3-4 महीने का, और अब मौसमी तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि सर्दी का दौरानिया बहुत कम है और लगता है कि गर्मी तो बहुत ही हमारी कोई दोस्ती है उसके साथ कि पूरा साल ही गर्मी। मतलब आप सोचें ना तो आपको लगता नहीं है कि कभी बीच में कोई एक महीना सर्दी आई थी या मौसम अच्छा हुआ था। और मज़े की बात यह है कि मैं कल परसों कहीं पढ़ रही थी या न्यूज़ में मैंने सुना है कि इस बार सर्दी आने का इम्कान बड़ा कम है, कुछ जनवरी के एक महीने में कुछ थोड़ी बहुत ठंड पड़ने का इम्कान है जनाब, तो तुसी तैयार हो जाओ। ये गर्मी जब हमें पकौड़ों की तरह तल देती है ना तो बस वो एक महीना हमने एंजॉय करना है और उसके बाद ना उसके बाद फ्राई प्रोग्राम। और जनाब आज का जो टॉपिक है ना वो कर देती हूँ अनाउंस बिला बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि काफ़ी सारे लिसनर्स मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और अब जो नहीं आएगा ना उसकी लगेगी गैर हाजिरी, पड़ेगा जुर्माना। अच्छा आज का टॉपिक बड़ा ही मज़ेदार है, अच्छा मुझे तो मज़ेदार लगा ही लगा, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी आई होप बल्कि आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज ना कितने क्रिएटिव हैं कितने इंटेलिजेंट हैं हम ये पता चलेगा। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपने जिंदगी में कभी कोई जुगाड़ लगाया है, तो फिर अगली गल है वे कि वो जुगाड़ तुहाडे गट्टे फिट होया है कि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ इस तरह के काम कर देते हैं कि पहले तो हम सोच रहे होते हैं कि बड़े ही जीनियस हैं, बड़े ही कोई खूबसूरत काम करने वाले हैं, लेकिन होता क्या है कि वो हमारे गले पड़ जाता है और फिर हमें अफसोस होता है कि सानू फलाने ने रोकिया सी असी खलो जांदे। कहते हैं कि ज़िंदगी का जो दारोमदार है ना वो ज़रूरियात पर है, अगर ज़रूरत ना हो तो दुनिया के काम ठप हो जाते हैं ना, तो जब ज़रूरत पड़ती है और आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होता है कि फिर इंसान का जो अकल है ना हमारा ये जो अल्लाह मियाँ ने हमें अकल दिया ये आता है हरकत में और हम इस तरह की इन्वेंशंस कर जाते हैं। इन्वेंशन करना तो चलो एक बात है, लेकिन हम आज बात करें ना जुगाड़ की, तो जुगाड़ को भी वैसे हम इन्वेंशन कह सकते हैं

बड़ा ही खूबसूरत सा मुझे एक शेर याद आया है और इसी से मिलता जुलता हम एक ट्रैक भी प्ले करने जा रहे हैं। कहते हैं जी कि किसके आण की सिक में रखूं, किसके आण की सिक में रखूं, काग ना बैतो आण बनेरो। क्या बात है। और ये जो ट्रैक, ये जो मैंने आपको शेर सुनाया ना, गोजरी लैंग्वेज है, बड़ी मज़े की लगती है जब ये बातें करते हैं ना आपस में, तो कभी सुनिएगा, बहुत बहुत अच्छा लगता है इनकी बातों को सुन के। बड़े वो स्लैंग लगता है कि स्लैंग वर्ड्स बोल रहे हैं लेकिन होते नहीं है, बट बहरहाल चलते हैं जनाब, एक अच्छा सा ट्रैक सुनते हैं। ट्रैक सुन के वापस आएंगे, शामिल करेंगे आपके मैसेजेस और कॉल्स आपकी। ऑफियर मुझे लाइट ब्लिंक हो रही है, मुझे पता चल रहा है कि आपने मुझे ज्वाइन कर लिया है। नॉक नॉक नॉक। तो मैं अभी पूछने वाली हूँ कि कौन। शामिल करती हूँ जी अली सेठी की आवाज, सुनिए, वापस आइए, स्टे ट्यून्ड रेडियो पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 101।
1: स्माइल एंड डायल 111 FM।
0: आप सुन रहे हैं FM 101।

जी जनाब हमारे साथ मौजूद है रमजान गुजर, और रमजान गुजर साहब बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद डॉक्टर अल्ताफ साहिबा, वंस अगेन थैंक यू जी, हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं, वालेकुम सलाम कहते हैं, और कहते हैं आप आ गई साथ बाहर आ गई, आय हाय हाय VVVIP शो, ओ हो VV मुक नहीं गया, इन्हें सारे ला देते रहे तुसी। बहुत शुक्रिया रमजान गुजर साहब, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, हमेशा पसंद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और रियाज भट्टी साहब, खान बाबा बेस्ट पंजाबी शो दे, अच्छा जी आज जैनब अरशद जी, बिल्कुल जनाब कोई शक नहीं, सुपर हिट लिसनर्स आप ही अनीला बट और मलिक वसीम साहब को सलाम, ठीक हो गया जनाब आपका सलाम, आपकी मोहब्बत आपके दोस्तों तक पहुंच गई। अशफाक जट हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, शो को पसंद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, और आपने ज्वाइन किया है हमें अब्दुल मालिक से, हमारा नाम जरूर लेना, ले लिया जी। अच्छा शान भाई तो समझ आ गया मुझे। अशफाक साहब शान भाई समझ आ गया, ये नोशी भाई क्या होता है, नोशी बहन तो मैंने आज तक सुना था, नोशी भाई मतलब क्या ही बात है। अजीर भाई, इमरान भाई, सबको जी ठीक हो गया, सबको आपका सलाम पहुंच गया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सुनने के लिए। रिहाना खान ने हमें भक्कर से ज्वाइन किया है, कहती है जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच रिहाना, आपने हमें ज्वाइन किया भक्कर से, आप हमें सुन रही हैं और हम भी आपको खुशामदीद कहते हैं। नजीर खोसो हैं जनाब हमारे साथ और ये हमें ज्वाइन करते हैं सोबतपुर बलोचिस्तान से, इनका ताल्लुक है वहां से ये ज्वाइन करते हैं, बहुत शुक्रिया नजीर बलोचिस्तान से सुनने के लिए और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जी तो जनाब बात कर रहे हैं जुगाड़ की, देसी जुगाड़ की, कभी जिंदगी में आपने कोई जुगाड़ किया है, और फिर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगी कि वो जुगाड़ कामयाब था कि आपके गले में फिट हो गया था। अच्छा जुगाड़ इंसान क्यों करता है, उसकी कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं, अगर हम हर चीज़ का, जैसे मैं कहती हूँ ना हर सिक्के के दो रुख होते हैं, उसी तरह से मैं मतलब ना भी हो ना तो मैं हर चीज़ का कोई ना कोई मतलब किसी भी चीज़ का ये दो रुख मैं निकाल ही लेती हूँ, ना भी बनती हूँ। पॉजिटिविटी की इंतहा है मेरे में, और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए इंसान को, नेगेटिव क्या करना है आपने होके, अब आप पॉजिटिव होके सोचेंगे ना तो आपको हर चीज़ की पॉजिटिव जो साइड है वो नज़र आएगी। मैंने ना बल्कि एक दफ़ा शायद आप लोगों से शेयर किया था या नहीं किया था, मेरे एक टीचर थे और वो कहते थे कि नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हो, अगर आप ये सोचते हो कि जो आप सोचते हो ना, जो आपने अपने माइंड में सोच लिया है कि मैंने ये काम करना है, ये चीज़ देखनी है, तो अल्लाह ताला इस तरह का कोई निज़ाम बनाता है कि आप वही चीज़ देखते हो। वो हमेशा हम एग्जांपल दिया करते थे कि आप सुबह निकलें और आप अपने जहन में ये सोच लीजिए कि आज मैंने रोड के ऊपर सिर्फ सफ़ेद कलर की जो गाड़ी है ना वो देखनी है और मैंने ब्लैक गाड़ी नहीं देखनी है, तो आप यकीन कीजिए कि एक्सपीरियंस जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बिल्कुल ठीक बात है, आपको थोड़ा सा अपने जहन को ट्रेन करने की ज़रूरत है, अपने जहन को बताने की ज़रूरत है, और ऐसा हुआ कि उस दिन जो फोकस था ना, दिमाग जो आंखें जो देख रही थी वो वाइट गाड़ियां ही देख रही थी, और ऐसा लग रहा था कि सड़क के ऊपर सिर्फ सफ़ेद ही गाड़ियां हैं, बाकी किसी रंग की गाड़ी नहीं है। फिर अगले दिन मैंने ये सोचा कि आज मैंने सड़क पे काले रंग की गाड़ी देखनी है, और मैंने अपने ब्रेन को कमांड दिया कि आज ब्लैक के ऊपर फोकस करना है, तो वही हुआ कि उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सड़क के ऊपर सिर्फ काली ही गाड़ियां हैं। अच्छा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का भी यही है, अगर आप अपने साथ ये एक तहिया कर लीजिए, अपने साथ एक अहद कर लीजिए कि आपने चीज़ों को सिर्फ पॉजिटिव एंगल से देखना है, तो आपको उसका कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पॉजिटिव एंगल दिख ही जाएगा, निकल ही आएगा। बस ज़रा अपना GPRS जो है ना उसको सेट रखने की ज़रूरत है, आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। जी जनाब
मैं हूँ रेहा अल्ताफ और आपकी मेरी मुलाकात हो रही है जी शाम किनारे। चलते हैं जी अच्छा सा ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक सुन के वापस आते हैं, जरा एनर्जी को थोड़ा सा यू नो अब भी एक ट्रैक सुनते हैं और वापस जब आएंगे तो यकीनन हमारा मिजाज भी वैसा हो चुका होगा। ट्रैक सुनते वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर।

वेलकम वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदीन जी अन सद बिस्मिल्लाह पखैर। अगले जनाब प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर का लाइव स्टूडियो है, उसमें मैं हूँ यानी रेहल ताब, आपके अपने प्रोग्राम शाम किनारे के साथ। जी जनाब, बात करें देसी जुगाड़ के हवाले से, और मेरे साथ ऑफिस कॉल पे फरत मौजूद थी। फरत कहती हैं जी जुगाड़ वैसे मैंने सोचा था कि उनका जो पहला जुमला था मैं ऑन एयर नहीं करूंगी, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं कर ही देती। कहती पाकिस्तानी जो है ना देसी जुगाड़ के लिए बड़े मशहूर हैं। वैसे तो ये बात तजर्बे से जाहिर होती है ऑब्जर्वेशन से भी जाहिर होती है, हम भी बड़ी चीजें जब हम बाहर निकलते हैं ना सड़कों में बड़ी चीजें नजर आ रही होती हैं। अच्छा, फरत ने जो चीज मेरे साथ शेयर की है, मैंने कहा बड़ी ही कोई किफायत चार बची हो आप। कहती है कि मैं जुगाड़ लगाती हूँ कि मेरे पुराने जो दुपट्टे होते हैं ना, मैं उनके साथ कोई कुर्ता वगैरह बना लेती हूँ। बड़ी अच्छी बात है, ये आपका जो अंदर का डिजाइनर है ना, ये जुगाड़ नहीं है, बेसिकली क्रिएटिविटी है, और आपके अंदर का डिजाइनर बाहर आ जाता है ना जैसे ही उसको कोई इस तरह की चीज नजर आती है। बेसिकली मैं भी जब बात करी थी ना कितने तरह के जुगाड़ होते हैं, तो उसमें एक क्रिएटिविटी भी होती है कि एक तो बंदा बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और किसी प्रॉब्लम को किसी चीज को देखता है तो फौरन से उसका वो जो एक बटन है ना वो ऑन हो जाता है कि अच्छा इसके साथ मैं ऐसा कर सकता हूँ, इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। और एक होता है जुगाड़ सुस्ती का, काहली का, काम चोरी का अच्छा क्या होता है कि काम चोरी वाला जो जुगाड़ है ना वो उसका सीन होता है कि अच्छा भाई आपने कोई प्रॉब्लम हुआ और आपने उसका कोई जुगाड़ कर लिया और फिर आप भूल गए कि अब मैं क्या ही करूं, बस छोड़ो ठीक है। लेकिन क्या होता है कि बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ें और ख़राब होती चली जाती हैं और फिर वो आपके लिए अजाब बन जाता है। तो बेहतर ये है कि काम चोरी की बजाय उस चीज़ के सोल्यूशन की तरफ आएं। अच्छा, अभी हुआ क्या है, ब्रेक पे जब हम थे तो मैंने एक मैसेज पढ़ा, ठीक है। और वो मैसेज पढ़ने के बाद देखा आपने मेरी जुबान लड़खड़ा रही है

जनाब मेरी फैमिली मुझे सुन रही है, बहुत शुक्रिया आप लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये मैं प्रोग्राम के बाद आपसे पूछूंगी कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों में से कोई एक मुझे पहली बार सुन रहा है। अच्छा जी, हमें मुख्तार अहमद ने ज्वाइन किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं इटली से आपको सुन रहा हूँ, पहले काम पे होता था तो आपको डेली सुनता हूँ आज। अच्छा जी, आपकी तबीयत नासाज है, घर पे हैं तो मैसेज भी लिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें इटली से ज्वाइन किया। मिसबा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं जी, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, माशाल्लाह ग्रेट शो, बहुत बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं मिसबा मलिक फ्रॉम अल हुसैनी रेडियो लिसनर्स क्लब साहिवाल, बहुत शुक्रिया जी आपने साहिवाल से हमें ज्वाइन किया है। और गुल यासीन नाज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया मुल्तान से, और आपका मोहब्बतों भरा खलूस भरा सलाम पहुंच गया है मुझ तक और तमाम सुनने वालों तक, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। बर्फी जो, देखो भाई गलत बात है, इस टाइम पे खाने पीने की बिल्कुल बात नहीं करनी, क्योंकि इस टाइम पे भूख भी शदीद लगी होती है और बंदे का दिल करता है कि अब जो भी बात हुई है ना वो सामने आ जाए चीज खाने की या पीने की। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, आई ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, रमजान गुजर से पूछ रहे हैं आपको गोजरी जुबान आती है। हाँ जी आती है।

अच्छा, हमें जो मुल्तान से सुन रहे थे ना, तो मेरे एकदम से जहन में आया कि मुल्तान, मुल्तान की जो गर्मी है बड़ी फेमस है. और इसके अलावा मुल्तान का क्या फेमस है? मुल्तान का सोन हलवा बड़ा फेमस है भाई. खाने की बात एक्चुअली हो रही थी ना, तो मैंने कहा बर्फ़ी और बर्फ़ी के साथ और क्या. तो मुल्तान का सोन हलवा बड़ा फेमस है और मुल्तान की गर्मी बड़ी फेमस है. अच्छा, हम कभी किताबों में, रसालों में, मैगजीन्स में पढ़ा करते थे कि शराब होता है कुछ, कहते हैं जी शराब के पीछे ना भागें, वो हासिल नहीं होता, वो लाहासिल होता है. लेकिन ना तब समझ नहीं आती थी कि शराब आखिर चीज़ क्या है, होता क्या है. और उसकी जो डेफिनेशन लिखी होती थी बुक्स में, वो ये लिखी होती थी कि सहरा में आपको बस नज़र आता है कि दूर कहीं पानी है, या जब वहाँ जाते हो, वहाँ तक जाते हो, तो वो पानी नहीं होता है, वो एक बस झलक होती है, ऐसा फील होता है. अच्छा, कभी आप गर्मी में, लाइक जुलाई में, जून जुलाई में, मुल्तान या बहावलपुर, जनूबी पंजाब है जो हमारा, उसकी तरफ कभी मोटरवे पे आप ट्रैवल करें? और क्योंकि मोटरवे इसलिए मैं कह रही हूँ कि वहाँ ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, तो आपकी दूर तक नज़र जाती है. तो इस कदर शदीद गर्मी होती है कि उस सड़क के ऊपर ना आपको बहुत दूर फील होता है कि उस जगह के ऊपर पानी है. और जब आप ड्राइव करते करते वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ भी वही कड़क धूप होती है और वो सड़क के ऊपर पड़ रही होती है, फिर आपको और थोड़ा सा दूर लगता है कि वहाँ पे पानी है. तो ये वाला जो, ये आंख मचोली मैंने जब देखी, तो मुझे वो सारी डेफिनेशन जो पीछे पड़ी हुई थी शराब की, वो समझ आई कि अच्छा, ये शराब है जिसके पीछे लोग भागते हैं और वहाँ हाथ नहीं आता है.

जी जनाब चलते हैं और शामिल करते हैं मलकू की आवाज़ प्रोग्राम में, ऐसा ना हो कि कहीं मेरे सारे लिसनर्स भी शराब ही हो जाएं और मेरे हाथ ना आए कि ये तो बोलती ही चली जा रही है, क्या करूं, मेरा काम ही यही है लेकिन ना कोई नहीं, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर फरमाइश भी तो आपकी होती है ना कि तुसी आंदे क्यों नहीं, हुन सुनो फिर जुगनी बाय मलकू।

वेलकम बैक जनाब, खुश आमदीद प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। बहुत शुक्रिया जनाब, आप ऑफ एयर कॉल्स कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है, आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। फायका हमारे साथ रही, बहुत शुक्रिया फायका, हमें मान से सुनती हैं, थैंक यू सो मच फायका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आबिद हमारे साथ मौजूद रहे, थैंक यू आबिद, थैंक यू सो मच। और बस मैं इतनी ही लाइव कॉल्स ले ऑफ एयर कॉल ले सकती थी। पता क्या होता है कि जब हम शो कर रहे होते हैं, स्पेशली लाइव कर रहे होते हैं ना, तो मल्टीपल चीज़ों में आपका जहन उलझा हुआ होता है, लेकिन बहरहाल पूरी कोशिश करते हैं जनाब कि आपकी जो ऑफ एयर कॉल्स हैं वो भी ली जाएं। अच्छा जी, एक बड़ी ज़बरदस्त सी भरपूर किस्म की जो है ना विश आई है, और वो मैंने विश करना है किसको किसको किसको जी जनाब, हमारे क्यूट से छोटे से एक लिसनर हैं, मामून असगर, उनकी आज बर्थडे है जनाब, और हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू बॉय। और एक और लिब्रा, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में एक और लिब्रा भी है। मामून मेरे कजन है जी, सबसे छोटे वाले, बड़े क्यूट बड़े स्वीट, और अरसा हुआ वो जिनसे मिले हुए। हैप्पीएस्ट बर्थडे एंड मिस यू जियो हजारों साल।

जी तो जनाब आपको बताती चलूं कि टाइम हो चुका है 5:52 और 5:52 और हमारा साथ है जनाब मज़ीद एक और घंटे के लिए, उसमें आपकी लाइव कॉल्स। हम चलेंगे जनाब न्यूज़ ब्रेक पे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो लाहौर और उसके मज़ाफात में क्या टाइम हो चुका होगा जी, लाइव कॉल्स का टाइम हो चुका होगा, इंतज़ार की घड़ियाँ रह गई हैं मगर बहुत थोड़ी सी, चंद मिनट।

बढ़ते हैं जी एक और ट्रैक की जानिब। उसके बाद मेरे पास जबरदस्ती न्यूज़ है आप लोगों के लिए। आज क्या है ना कि मैं स्टूडियो में अकेली नहीं हूँ। मुझे ये पता था कि मैं अकेली नहीं हूँ, लेकिन मुझे अकेला रहना पड़ा थोड़ी देर के लिए, और जिनकी वजह से रहना पड़ा ना वो आ गए। अब देखते हैं कि हम उनके साथ करते क्या है। तो जनाब ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ कि आज स्टूडियो में मेरे साथ कौन मौजूद है। और अभी चलते हैं जी, जबरदस्त ट्रैक सुनते हैं, ट्रैक सुन के वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर।

0: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: आप सुन रहे हैं FM 101।

0: वेलकम बैक जनाब, खुश आमदी प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। और हम तो हैं आतिश, समझ तो आपको आ ही गई होगी। अब कौन कौन आतिश है जनाब, इसका आइडिया आपको खुद ही होना चाहिए। जैसे हर बंदे को अपना पता होता है ना कि मैं क्या चीज़ हूँ। अच्छा जी, मैंने आपसे कहा था कि आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, तो बिल्कुल जिनका इंतजार था वो तशरीफ ले आए हैं। और ना मैं आपको पता है कि मैं तो उस्ताद हूँ ना फिर। एनीवेज जनाब, हमारे साथ हमारे आज के जो को होस्ट हैं वो मौजूद हैं, AR नासिर, नई आवाज़, नई एनर्जी, नए आइडियाज़ के साथ। इनको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर एंड वेलकम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रिया, कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा जी, आते ही ना हमारी बहस ये छिड़ गई, मुझसे पूछा आप कौन सी डॉक्टर हैं, मैंने कहा लॉ जी। और ये इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन है ना, मेरे लिए बड़ा ही ऑकवर्ड सा हो जाता है जब उसे अच्छा कौन सी डॉक्टर है, मुझे बताना पड़ता है कि मैं ये वाली डॉक्टर हूँ। तो मैं इनको ये कह रही थी कि लो जी, आते ही एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन कर दिया। और मैं और नासिर को आपने जरूर जनाब सुना होगा 101 पे। आज हमारे प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम के ये मेहमान हैं जनाब, और आप इनको सुनेंगे मेरे साथ इंशाल्लाह आने वाले अगले कुछ प्रोग्राम में, जब तक ये सोलो नहीं जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि इनको देख के ना आज मुझे अपना टाइम याद आ गया। जब मैं 101 पे आई थी, मेरी ट्रेनिंग का सारा प्रोसेस चल रहा था, तो ये तो मुझे लगता है कुछ प्रोग्राम आपने किए हैं ना, थोड़े से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। लेकिन आप नए बंदे के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं?
1: हाँ, तो अभी तो
0: नासिर, I'm so sorry, हमें जाना है न्यूज़ ब्रेक की जाने।
1: प्लीज
0: चलते हैं न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं।

0: वेलकम वेलकम वेलकम बे खुश आमदीन जी हम सब बिस्मिल्लाह पखैर अगले जो ना प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस गए थे हम इस्लामाबाद की सैर को, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, बस पता वता करके हम आ चुके हैं वापस। सुन रहे हैं आप रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर और मैं हूँ रिहाल ताफ, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं शाम किनारे। और न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैंने आपसे इंट्रोड्यूस करवाया था एआर नासिक को और हम बस बात करना ही चाह रहे थे कि बीच में बस जनाब कुछ ना कुछ चीज़ें आ ही जाती हैं। आज आप नोटिस कर रहे होंगे कमर्शियल का डोज नहीं है, तो वो जो कड़वी कोनैन में आपको खिलाती होती हूँ ना वो अगर नहीं है तो आज जाहिर है कुछ और तो होगा ही ना। चलिए जी बात करते हैं नासिर से। और जी नासिर, हम पूछ रहे थे कि आप कैसे हैं, आप ठीक हैं, आप खैरियत से? और मैं ना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी तो मैं ये कह रही हूँ कि कितने डरे हुए हैं आप?
1: नहीं, ज़ाहिर है हेजिटेशन तो इनिशियल डेज में होती है, लेकिन अभी ज़ाहिर है काफ़ी ऐसे ऐसे कम हो गई है। और स्पेशली बीइंग अ सिंगर, जब परफॉर्मेंस करना होता है, क्राउड को फेस करना होता है, तो उसके मुकाबले में ये काफ़ी इजी है क्योंकि वी आर जस्ट इन अ रूम ऑफ टू और थ्री, तो इस लिहाज से तो ये ठीक है।
0: अच्छा नहीं, ये अजीब नहीं लग रहा, ये अजीब नहीं लगता कि स्टार्ट में ना मैं जब एक माइक है और आपने बोलना है, आपके सामने कोई नहीं है और बस आपने बोलते ही चले जाना है और समझ नहीं आती कि बंदा किससे बात कर रहा है, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको
1: बात से बात निकलती है। बिल्कुल,
0: तो ऐसा फील हो रहा है?
1: ऐसा फील होता जरूर है, जाहिर है, क्योंकि आप जब अकेले हो, आपके साथ कोई कन्वर्सेशन में ना हो, या फिर जिस तरह भी मैं आया हूँ तो आपके साथ मेरा फर्स्ट सेशन है जिसमें मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो बंदा थोड़ा सा तो सोचता है कि यार आई डोंट नो कि हाउ टू स्टार्ट ऑफ, हाउ टू ब्रेक द आइस, तो चीज़ें कुछ डिफिकल्ट होती हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा मजे की बात यह है कि इन्होंने बात की ना इंटरेक्शन की, के लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन, प्रोफेशन इस तरह का है ना, तो सेम मेरा भी प्रोफेशन इस तरह का है, लेकिन जब आप अकेले बैठ के बोल रहे होते हो ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बात से बात निकालना, और क्योंकि आपने मुसलसल बोलना है, दो घंटे के लिए बोलते ही चले जाना है, तो कितना ही बात कर लेंगे आप ना, तो ये कंटिन्यूटी बड़ी जरूरी है। और अकेले फिर हमें, अच्छा आप वो प्रैक्टिस करते, मैंने स्टार्ट में किया था कि शीशे के सामने खड़े होकर बस बोलते चले जाना,
1: ये तो बचपन में जब हम 1-2 क्लास में स्पीचेस याद करते थे और कोई 6 सितंबर या 14 अगस्त का इवेंट होता था तो हमें टीचर यही कहती थी कि आपने शीशे के सामने खड़े होकर बात करो, आपको फिर आपका स्टेज फियर खत्म होगा।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: तो दैट इज वेरी हेल्पफुल और करना चाहिए।
0: बिल्कुल करना चाहिए। और ये स्पेशली आप कोई टॉपिक सोचें और इसके ऊपर अपने आपको 5-10 मिनट दें कि इसके ऊपर रुके बगैर आपने बोलते चले जाना, तो जब अकेले आपने इस तरह के शोज करने होते हैं तो फिर आपको बड़ा हेल्प होता है।
1: और बंदा बोल तो लेता है बट ऑडियंस को अपील करना और उनको साथ एंगेज करना होता है, दैट इज द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द जॉब।
0: अच्छा बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैंने अभी आपकी गुफ्तगू में से ना एक मुझे क्लिक की है कि आपने कहा कि सिंगर हैं आप, और क्या ही बात है, इतने सुरीले बंदे हमारे साथ मौजूद हो। तो चलिए जी, इससे पहले कि हम एक कॉल लें, कॉल से पहले आपका हम सुनते हैं जी जबरदस्त सा गाना।
1: मेरा ख्याल है आप पहले मुझे गाना बता दें कौन सा है, फिर एक कॉल ले लेते हैं और उसके बाद कोई मैं गाना गा।
0: तैयारी चाहिए आपको बड़े खान साहब की तरह, आज गला ठीक नहीं है।
1: नहीं ऐसा नहीं है।
0: चलिए जरा हम देखते हैं कि हमारे साथ पहले कॉलर प्रोग्राम के कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसी हैं आप? खुशामदीद कहते हैं आपको।
2: थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ जी जनाब।
2: और आपके साथ नासिर भाई हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, वो कैसे हैं
0: जी? नासिर भाई बोले
1: जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
2: लगता है आप ही के साथ बैठ के जो है ना भाई डर गए।
1: बस
0: जो बस जी है।
1: जैसा आप समझे,
0: बस नासिर की बात से आपको समझ आ गई होगी। सॉरी,
2: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा वो गुम से हो गए, मैंने शाम किया ना, तो मैंने कहा वो सोच रहे हैं मैं जवाब दूं कि ना दूं, आप ही के सामने बैठा हूं।
1: बिल्कुल जाहिर है।
0: बस नहीं बोल पा रहे।
2: आप ही, मैं सच्ची में आपका जो बीजेम है ना उसने तो मेरा दिल जीत लिया, एक आपकी आवाज ने और एक आपकी मुस्कुराहट ने। बहुत कम होता है कि मैं दिल से किसी की तारीफ करती हूँ, आपने तो मेरा दिल जीत लिया, मुझे प्यार हो गया आपकी।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
2: कसम से मैं कहती हूँ बस आप तो बीजीएम बचता रहे और बोलती नहीं आप, बाकी तो बहुत मजा आता है आपकी बातें सुनने का, आपने प्यासे कुए के बारे में बताया, मैं खूब हंसी, मैंने बहुत इंजॉय किया।
0: थैंक यू, थैंक यू।
2: आप करें वो अक्सर ऐसा होता है कि मैं ना किसी को सुन रही होती ना तो मैं कहती यार बातें कम करें, गाने ज्यादा लगाएं, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको बातें अब ज्यादा करें, गाने कम लगाएं।
0: चलें ठीक हो गया, उनमें की कमा बहुत पैसे मांगे ले ना डांट दो।
2: माशाल्लाह आपकी पंजाबी भी बहुत क्यूट है।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। बताइए टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे, आपने कभी कोई जुगाड़ लगाया?
2: आपकी मैंने मतलब कितनी बार जुगाड़ लगाए ने, कितने जुगाड़ तो ऐसे महंगे पै गए सी मैनू,
0: मतलब तुहाडी जिंदगी जुगाड़ ते चल दी है?
2: नहीं कदी कदार मैं ला लेंदी।
0: अच्छा कोई एक, कोई एक बताए,
2: कोई एक एक बार ऐसा आप ही जुगाड़ में गलत वाला बताऊं या सही वाला?
0: देख रहे लोग सुन रहे हैं।
2: नहीं नहीं फनी होगा। एक बार वो ना हमारे घर की ना वॉशिंग मशीन ना कपड़े धोने वाली खराब हो गई। तो भाई ने कहा, मेरा भाई जो है ना इलेक्ट्रिशियन का काम करता, उसने कहा तुसी सारी हूं आप ही सही करो इनू।
0: अच्छा
2: फिर मशीन मशून के ना मैं क्या चलो आज से मैं कपड़े धोने से मैं अपनी वर्दी धोनी मैं की करा हूं, मैं क्या ऐसा करनी मैं जुगाड़ आप ही ला दी। मैं तारा तूरा खोलियो, एक तार उतरी सी, मैं दूजिया तारा दे विच ला लू के उन्होंने चला दे। मामा कहती है चला चल, मतलब मोट चल पड़ी है। मैं कहा मामा मशीन चल पड़ी है। तो बहन ने क्या के बीच में पानी डाला, कपड़े वगैरह डाले, फिर पीछे से टक टक टक टक।
0: अच्छा लेकिन कुछ जुगाड़ जो होते हैं ना वो खतरनाक भी होते हैं, जान को लाहक हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता ये कोई तार गलत लग जाती है, तुसी हंसते रहना सी फिर होते।
2: और एक जुगाड़ में लाया सी, वो जो अक्सर ना हम कपड़े धोके डालते हैं तारों के ऊपर, तारे नीचे हो जाती है। तो मैंने क्या किया, वो तार ना काफी मतलब ढीली हो जाती थी, मैंने ना एक पत्थर पकड़ा भारी सा ना, उसे ना एक कपड़े के अंदर लपेटा, उसे उस तार के साथ मतलब मैंने ना उसे तार को खींचा और उसके अंदर बांध के उस तार को पत्थर के साथ मैंने वो कर दिया, और तार अब वो नीचे नहीं होती, अब खड़ी रहती है सही से।
0: वाह जी क्या बात है, बहुत इंटेलिजेंट क्रिएटिव। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, प्रोग्राम सुना, प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच।
2: और ये जो आपके साथ भाई हैं इनसे भी आप बातें करनी है आपने, इनके अंदर से भी जुगाड़ आपने निकाला।
0: हाँ बिल्कुल, कोई नहीं बचने वाला, सबसे पूछेंगे, टेंशन नहीं लेनी।
2: ओके जी,
0: थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये हमारे साथ जबरदस्त सी प्यारी सी कॉलर मौजूद थी, और जुगाड़ जो उन्होंने बताया एक तो बड़ा ही खतरनाक था, क्यों नासिर?
3: बिल्कुल ऐसे ही है, समझ में भी नहीं आ रही कि इस तरह की जुगाड़ भी चल रहे हैं।
0: नहीं नहीं, क्या क्या क्या क्या मतलब है चल रहे हैं, ऐसे वैसे चल रहे हैं, हम तो खुद करने वाले हैं। आपने नहीं किया कभी?
3: नहीं, बहुत से जुगाड़ किए लेकिन अब मैं बताऊंगा तो लोग जज करेंगे यार।
0: नहीं नहीं, इसमें जज करने वाली क्या बात है, देखिए उन्होंने आया बताया।
3: जरूर हर चीज में हम करते हैं, छोटी से छोटी बात भी, अब देखें ना, अब एसी का रिमोट या टीवी का रिमोट उसको भी हम मारेंगे दो चार दफा हाथ पे, फिर चलना।
0: वैसे क्या इसके पीछे क्या सोच होती है कि अच्छा उसकी बैटरीज है वो अगर काम नहीं कर रही, खत्म हो गया, कुछ थप्पड़ मारते हैं जमीन पे मारते हैं और वो चल भी पड़ता है ना।
3: मुल्क में चले जाए ऐसा नहीं होता, लोग नहीं करते यार। अगर
0: भाई पाकिस्तानी,
3: ये पता नहीं किसने इन्वेंट किया था, उसको खराज तहसीन पेश करना चाहूंगा।
0: हमसे ज्यादा कोई इतना साइंसदान नहीं हो सकता। कॉलर है जी हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम, एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आप दोनों को वेलकम, खुशामदी जी, आयानु अहलन वसहलन मरहबा बली करी, आयानु ते बखैर अगले।
0: थैंक यू जनाब,
4: गुड इवनिंग, कैसी हैं?
0: थैंक यू जनाब, वालेकुम सलाम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं हमारा बेग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ
4: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक बेहतरीन हूँ और आपके साथ हूँ, और जबरदस्त शो मैंने अभी अभी सुनना शुरू किया है, सॉरी माजरत।
0: मेरे साथ जो है ना वो भी बस अभी अभी आए हैं, एआर नासिर।
4: वेलकम करते हैं इनको भी।
0: हाँ जी बिल्कुल, 101 फैमिली में
4: बेस्ट ऑफ लक कहते हैं इनको, इनको भी कामयाब करे अपने इस मकसद में। और गाना अगर सुनाना हो ना तो फिर गला शला नहीं देखते, बस फिर
0: मौका मौका देखते
4: देखते हैं और फिर आहो बस सुना देते हैं।
0: सोच लिया होगा वैसे नासिर ने इतनी देर में,
3: बिल्कुल सोच लिया,
0: सोच लिया, सोच लिया, बस इसके बाद ना हमारा की कॉल के बाद हम नासिर से सॉन्ग सुनेंगे।
4: हाँ जी, और जुगाड़ मैं उल्टे सीधे नहीं लगाती, मैं उल्टे सीधे एक्सपीरियंस नहीं करती।
0: समझदार बच्ची, चलो कोई सीधा सीधा जुगाड़ बता दो, कोई तो लगाया होगा, हो नहीं सकता।
4: पता क्या हुआ, कल
0: देखा
4: हैंड फ्री खराब हो गई।
0: हाँ।
4: तो लगा भी मेरे फेवरेट आरजे का शो था, तो मैंने बिजली की तार ली, मैंने उसको लगाया, मैंने वो उसको साथ अटैच किया, पर मेरा जुगाड़ जो है ना बिल्कुल नाकाम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा।
0: नहीं मतलब ये सारों ने कोई यूनिटी की हुई है कि बिजली की तारों से ही खेलना है?
4: किसी से सुना था कि अगर कोई चैनल क्लियर ना आ रहा हो
0: बेटे बेटे पुत्र आईना नहीं करना है
3: बिजली की तारों में भी आजा किसने
4: है? पुत्र जो है ना, ये पुत्र वो ये वो जो होता है ना एनर्जी सेवर, वो उतार भी लेता है और लगा भी लेता है ये पुत्र।
0: वाह, लेकिन ये तारों वाला काम नहीं करना।
3: आजाद चीजें हो रहे हैं यार अपने तारों में, किसने तारों ने
4: किसी के साथ खाली तार।
0: नहीं आपने जो पहली वाली बात की है ना हमारा, मेरे ख्याल से मैं उसकी तरफ जाऊंगी कि आप तजर्बा किया ही ना, आप जुगाड़ किया ही ना, क्या करें अच्छी बच्ची हो आप, नहीं करती है, बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच हमारा।
4: तमाम सुनने वालों को सलाम, और आपके लिए और तमाम सुनने वालों की बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।
0: आमीन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी नासिर जी, अब आप सुना रहे हैं हमें ट्रैक, और ट्रैक आई मीन अच्छा सा कोई गाना सा सुना दें, फिर हम चलते हैं एक और ट्रैक की जाने, ट्रैक सुनेंगे फिर कॉल्स का हमारा जो सिलसिला है वो हम
3: चलिए मैं सुनाता हूँ, लेकिन आप बता दें कि कौन सा सुना दूं, थोड़ा आईडिया आप दे दें।
0: ये इतना जो टाइम था
3: नहीं, वो तो फिर एक मेंटल
0: स्टेट को जाकर ये बड़े उस्तादों वाले वैसे आप जो है टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं जब ये वाली बात होती है ना कि कुछ बता दें तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है बंदा,
3: बिल्कुल ऐसे। तो आप थोड़ा
0: कोई अपना फेवरेट पाकिस्तानी, कोई
3: पाकिस्तानी कोई होगा? अच्छा चलिए, मेरे जहन में अभी आ रहा है राहत अली खान साहब का गाना था मैं तेनू समझावा की मैं तेरे बाजू लगता जी,
0: ठीक हो गया।

0: मैं तेनू समझावा की
1: वाह
0: ना तेरे बाजो लगदा जी।
1: क्या बात है, क्या बात है जनाब, बहुत ही जबरदस्त है आपकी आवाज़। और हम चला रहे होंगे आपके ट्रैक जनाब कुछ आने वाले कुछ अरसे। चलिए जी, कॉलर है हमारे साथ और जी नासिर, लीजिए कॉल
2: जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो, वालेकुम सलाम
2: जी, कैसे हैं आप?
3: मैं ठीक अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक।
2: कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं बताइएगा जरा।
3: मेरा नाम आगा बिखीरा मुकवाला चुम्मी अमर से।
2: आपका आपका नाम मुझे काइंडली बताइएगा।
3: बशीरा मदन मुकवाला।
1: बशीरा,
2: ठीक है ठीक है।
1: जी बशीर साहब,
3: बशीरा मुकवाला चुम्मी अमर से।
1: देखो शामदीद कहते हैं प्रोग्राम में आपको, आप खैरियत से हैं?
3: आप ठीक ठाक? मैंने अभी अभी फोन किया है।
1: अब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आ, क्या क्या कहिएगा प्रोग्राम के हवाले से, टॉपिक के हवाले से?
3: हाँ, प्रोग्राम बेहतरीन है। टॉपिक जरा कुछ रखे है, हमने दो गल्ला सुनी है बिजली के बारे बिजली में मत आते लगाए बिजली में।
1: ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
3: जिन्हें चल पता ना रहे ना, बिजली में मत आते लगाए।
1: ठीक है बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। कभी कभी क्या होता है ना, से हमारे इस तरह के भी बड़े प्यार प्यार से कॉलर्स आते हैं और उसी वक्त ट्यून करते हैं तो कहते हैं वो हम सुन नहीं रहे थे, अभी ट्यून किया तो कॉल हमारी मिल गई।
2: है ना? और कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले सेकंड से सुन रहे हैं शो लेकिन उनकी कॉल नहीं बेचारों की मिल पा रही।
1: हाँ,
2: तो दिस इज इनजस्टिस।
1: और अच्छा ऐसा भी होता है, प्रोग्राम स्टार्ट से सुन रहे होते हैं लेकिन जब कॉल पे आते हैं कहते हैं वो टॉपिक की समझ नहीं है, टॉपिक दोबारा से बता दें। अच्छा जी, चलते हैं खूबसूरत से ट्रैक की जाने, ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून रेडियो पाकिस्तान एफ एम 101 लाहौर, और मैं हूँ आपके साथ जनाब रेहा अल्ताफ। मेरे साथ मौजूद हैं ए आर नासिर, और ए आर नासिर ने बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक आपको सुनाया है, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको। और अब सुनते हैं जी सारा अल्ताफ की आवाज़। आपने सुनते रहना है कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर।

0: जी जनाब, वेलकम बैक। और ज़बरदस्त ट्रैक सुन रहे थे सारा अल्ताफ़ की आवाज़ में। बड़ा ये इम्तिजाज है जी पंजाबी, सराइकी और सिंधी का, और बड़ा ज़बरदस्त सा ये ट्रैक है। अच्छा, मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ जब इस तरह के ट्रैक्स होते हैं ना, मिक्स सी लैंग्वेज में होते हैं, डिफरेंट दो तीन चार लैंग्वेजेज़ होती हैं, बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा जनाब, हमारे साथ कुछ मेरे पास मैसेजेस हैं और मैं वो शामिल करना चाहती हूँ, चाहूँगी। हमें सुन रही हैं जी शबनम आपी, सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया शबनम आपी। और आपने ना पोइट्री में कुछ जवाब दिया है, कहती जी पैसे कम हो शौक हजार, तब काम आती है अपनी जुगाड़। नई नई चीज़ों की ख्वाहिश बेशुमार, पुरानों से कर लें नया सिंगार। शॉपिंग का दिल का हो दिल, जेब हो खाली, ऑनलाइन कार्ट ही भर ले निराली। वाह। और मेरे लिए इन्होंने पैगाम भेजा है जी, तुम खास हो इबादतों जैसी, उठते हाथों की मांगी दुआ जैसी, किताबों में लिखे खूबसूरत अल्फाज जैसी, तुम खास हो बिल्कुल मेरी ज़ात जैसी। बहुत शुक्रिया शुक्रिया शबनम आपी, आप सुन रही हैं, और आपकी दुआओं का, आपकी एप्रिसिएशन का थैंक यू सो मच। जी जनाब, अब हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से मौजूद हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक
1: ठाक जी, आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं?
2: आपकी दुआ है माशाल्लाह। मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ जी।
1: बाग से बात कर रहे हैं
0: शहजाद साहब, खैरियत से हैं आप
2: जी? आपकी दुआएं जी, बहुत अच्छा माशाल्लाह शो हो रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्राम, बहुत अच्छी बातें हो रही है जी। तो माशाल्लाह जो आपने टॉपिक रखा है चिगाट का, मैंने जिंदगी में एक दफा मैंने भी सोचा था लगा ले, तो बाहर जाने का शौक पैदा हो गया।
0: हाँ।
2: तो मैं पैसे दिए एक को, वो पैसे खा गया, तो बाहर तो मैं जा नहीं सका। तो मैं घर में ना डिब्बे बना के उनमें मुल्कों का नाम लिख के ना, तो फिर मैंने कभी उधर जा ये मुल्क आ गया, फिर दूसरे पास जा मुल्क आ गया, मैं थक बिल्कुल थक गया, मैं बह गया, मैं क्या अब घर आ गया जा।
0: वाह, क्या ये दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है, ये आपने वो वाला काम किया कि मैं दिल को बहलाते रहे।
2: मैं क्या जो बात, तो चलो यहाँ पे शौक पूरा कर ले।
0: नहीं तो एक आसान काम कर लेते ना, वो नक्शा होता है ना, नक्शा दुनिया का, वो बिछा लेना था जमीन पे, ऊपर खड़े होके कभी इधर ये स्टेप ना, यूरोप,
2: वही तो बात कर रहा हूँ, शहर का नाम, मुल्कों का नाम निकलिया।
0: गुड गुड गुड, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत अच्छा लगा आपका ये जगह दिल की तसल्ली के लिए।
2: आसिफ साहब भी हमारे नए आज, इनको भी सलाम जी, बहुत अच्छी प्यारी बात है,
1: बहुत शुक्रिया आपका।
2: तो इसके लिए एक शेर बोल के तो फिर अल्लाह से कहता हूँ, वो आगे जिसका हमें इंतजार था, वो आगे जिनका हमें इंतजार था, जिनके सुनने के लिए ये दिल बेकरार था।
1: क्या बात है, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया,
2: बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने आज आते हैं सभी प्यारे, सबको मेरा दिल से सलाम जी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्ती रखे आप।
0: आमीन जी, बहुत शुक्रिया,
2: ओके,
0: अल्लाह हाफिज।
1: अच्छा एक बात आपसे करना चाहूंगा अभी, मैं समझता हूँ कि इस एज में भी और इस प्रोग्रेसिंग वर्ल्ड में भी जो लोग रेडियो को सुनते हैं, दे आर द रियल जेंट्स।
0: एग्जैक्टली। अच्छा पता है क्या, जब कोई पूछता है ना कि आप, ये किसी को पता चलता है या किसी को बताते हैं हम के रेडियो प्रोग्राम करते हैं, तो लोग अगला जो क्वेश्चन करते हैं ना वो ये होता है, अभी कोई रेडियो सुनता है? और उनको सेटिस्फाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हाँ भाई लोग रेडियो सुनते हैं।
1: नॉट नीड टू सेटिस्फाई देम, ये जो आवाज़ें हैं जिनकी हमें कॉल्स आ रही हैं, दीज आर अ टेस्टमेंट।
0: नहीं बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक दफ़ा इस क्वेश्चन के बारे में मैं सोच रही थी कि ये ना रेडियो का नशा जिसको है ना, रेडियो से जिसको मोहब्बत है, बेसिकली अगर मैं अपने आप को देखूं तो मैं कॉलेज के टाइम से रेडियो सुनती थी, ठीक है, वो सुनते सुनते आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपका शौक, आपकी मोहब्बत आपके साथ साथ बढ़ती है, और जितनी अब हमारी उम्र हो गई है ना, रेडियो से मोहब्बत भी उतनी ही बड़ी हो गई है, तो इसको हमने, और जो रेडियो सुनते हैं वो सुनते ही चले आ रहे हैं।
1: एक और मैं आपको बात बताऊं कि नो डाउट कि प्रोग्रेसिंग हो रही है, मूवीज अच्छी बन रही हैं, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी दौर आ गया, वो भी वीडियोस बन रही हैं, लेकिन जब आप रेडियो सुनते हो या रेडियो ड्रामा सुनते हो, तो द आर्ट ऑफ इमेजिनेशन जो आप अपने माइंड के अंदर सेट करते हो, उसका अपना ही मजा है, जिसको पंजाबी में कहते हैं कि यार चसी आ गई सी, वो बिल्कुल एक ही चीज है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और असल में इंजॉय करने के अपने, कुछ लोग देख के इंजॉय करते हैं, कुछ सिर्फ सुन के इंजॉय करते हैं।
1: इमेजिन का अपना ही एक तरीकेकार है, एक अपना ही एक चार्म है,
0: चार्म है, हाँ।
1: एक आप कह लें कि एक अलग ही
0: वाइब, अलग ही वाइब है, मजा है इसका, अलग मजा है आपको। अच्छा, बड़ी मजे की ये फील होती है कि अच्छा आपकी आवाज कहाँ कहाँ सुनी जा रही है ना। एनीवेज जनाब, आप हमें कॉल कर रहे हैं 111-111-1 पर। मैं हूँ आपके साथ रेहा और मेरे साथ मौजूद हैं AR नासिर, कॉलर है हमारे साथ। देखते हैं जी कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम आपी, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम।
1: जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
3: जी भाई नासिर, क्या हाल है?
1: ठीक ठाक। आप
3: प्यारा गाना बोला, मैं मैनू समझा
0: यकीन
3: करो आप सारा दिन ना, मैं अब्दुल हमीद फरुखाबाद गाँव मेरा हरचंद बर्फी आला
0: जी जी
3: शमशी रेडियो क्लब वालों
0: जी जी जी।
3: साढ़े माशाला सारे बड़े प्यारे ने, ते अज भी बहुत प्यारे ने माशाला।
0: बहुत
3: जगार दी मैं गल करा आप ही, अज दी गल, अज दी रेड़वा मेरा चले ना सही। जिवे आप ही ने कहा ना, रिक्शा ने ते दूसरी भैन भी आई ते जगार लाया, मैं भी तार लिया बिजली दी।
0: ਆਏ ਰੱਬਾ, ਕਿੱਡੇ ਖਤਰਨਾਕ
3: ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ।
0: ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ,
3: ਤੇ ਤਾਰ ਲਿਆਂਦੀ ਤਿੰਨ ਗਾਜ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਛਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕੀ ਥਾਲੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹ ਕੱਢੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟੰਗਿਆ ਉੱਤੇ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਲਵਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ, ਏਡਾ ਸਾਹ ਚੱਲਿਆ ਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ।
0: ਠੀਕ ਹੋ
3: ਗਿਆ,
0: ठीक हो गया जनाब। आप खैरियत से हैं, आप हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। वो नाम की हरकतें नहीं थी ऐसी।
3: नहीं मैं बिजली का काम नहीं जी असल लगता, ये मेरा काम निकाल ला।
0: चले बहुत शुक्रिया जनाब,
3: सलाम साडे जिन्ने चमची रेडियो क्लब वाले साडियां भैणां सुणदियां ने सारी आसी है, भैण सारियां साडे वास्ते बहुत सारियां दुआवां, रब राखा
0: रब राखा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। क्या कहेंगे नासिर आप इस बारे में?
1: कहने को बहुत अल्फाज हैं। लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा ही करना चाहूँगा।
0: तो तुझे जिंदा बच गए।
1: टाइमली स्केड्यूल से हमें सब लोग सुन रहे हैं, और जो लोग ड्राइव कर रहे हैं वो भी सुन रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी आप जिस फील्ड में भी हैं और जिस प्रोफेशन से भी मुंसलिक हैं, लिव द मोमेंट।
0: एग्जैक्टली,
1: आपको नहीं पता कितनी सांस से रह गई है। ये चीज़ खुशी की भी है और गम की भी है, बट वाई नॉट वी शैल टेक अ पॉजिटिव इमेज ऑफ दिस थिंग।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा जी, मैसेजेस शामिल करते हैं। मेरे साथ अफीरा मौजूद हैं जनाब, हमें सुन रही हैं, टॉपिक के हवाले से कह रही हैं कि मैं किसी भी खामी को दूर करने की कोशिश करती हूँ और उस चीज़ को खूबसूरत बनाने की कोशिश। अब यही तो है ना कि उस खूबसूरत चीज़ को कैसे बनाती हैं आप, जुगाड़ तो एक्चुअली ये है ना, आप मुझे ये बताती हैं। इसके अलावा जनाब, एक बड़ा ही दिल के करीब लेकिन ख़तरनाक सा मैसेज मुझे मौसूल हुआ आज। मैंने कहा ना आज दिन ही, मतलब पहले पहले जो है ना मुझे पता चला, मैंने आपको इसे बताया कि मेरी फैमिली सुन रही है, और अचानक से मेरे जो फादर हैं, मेरे जो अबू हैं, उनका मैसेज आया। उन्होंने कहा कि बाकियों का तो जिक्र कर दिया है, मैं भी सुन रहा हूँ। तो मैं ना बस क्या ही बताऊँ, शुक्र है कि आज मैंने कोई भांडा नहीं फोड़ा। शुक्र है कि आज मैंने कुछ नहीं कहा। क्योंकि मैं हमेशा ना कोई ऐसी बात कर देती हूँ, फिर सोचती हूँ शुक्र है अब्बू नहीं सुन रहे, क्योंकि अगर उनको पता चल जाए ना कि मेरी बेटी ऐसे ऑन एयर बैठ के तो अपना कोई ना कोई करतूत बता रही होती है, तो विच इज़ नॉट गुड।
1: इवन मैं भी शेयर करूँ तो मेरे भी दोस्त हैं बहुत अच्छे, सैयद हैदर शाह हैं, तो एंटरप्रेन्योर हैं और लाहौर में ही हैं। उनको मैंने अभी टाइम दिया हुआ था कि यार 6 बजे आपके पास आऊँगा, तो अभी मुझे कॉल आ रही है, कहते हैं मैं तो ये रेडियो पे सुन रहा हूँ, तू कह रहा था कि
0: ये ना लाहौरियों वाले बस 5 मिनट जो पहुँच गए होते हैं घर पे,
1: 5 घंटे ही लग रहे हैं।
0: हाँ बिल्कुल, हमारे भी ना किस तरह की, एक मेरी दोस्त, मेरी एक फ्रेंड है, वो सोई होती थी ठीक है, घर में मौजूद है, ये बस मैं 5 मिनट में पहुंची बस ये, और वो 5 मिनट ना घंटा डेढ़ घंटा 2 घंटे पे हो जाता था ऐसे, तो ऐसे। उसकी बात पे हम कभी भी कभी भी एतबार नहीं करते,
1: उनको पहले कहते हैं मेरी बातों को सीरियस ना लेना कभी भी।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, हमारे साथ हमारे पास ये मैसेजेस हैं, एम एजाज अली ने हमें ज्वाइन किया शरकपुर शरीफ से, कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी। वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हैं हम, आप खैरियत से हैं, और बहुत शुक्रिया आपने हमें शरकपुर शरीफ से ज्वाइन किया है। अली रज़ा हमारे बहुत अच्छे आरजे रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर की बहुत ज़बरदस्त सी आवाज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आप सुन रहे हैं। बस क्या होता है ना, जब आपके कलीग सुन रहे होते हैं ना आपको, एक फैमिली से डर लगता है, एक कलीग से डर लगता है। क्यों ना सिर ऐसा है कि नहीं है, है ना, कि मतलब जाहिर है वो आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, एक्सपीरियंस लोग हैं ना भाई, तो फिर आए हाय डर तो लगता ही है।
1: जुगाड़ू सिस्टम आपने भी कभी लगाया हो?
0: लो भाईजान, हम पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी हैं, एक जुगाड़ मतलब डेली बेसिस पे, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कोई ऐसा जुगाड़ जिससे किसी को मसला हो या मुझे बाद में खुद मसला हो। कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं, जैसे अभी एड चल रहा था ना, तो मैं रजा भाई से कह रही थी कि रजा भाई देखें इस एड में भी ना एक जुगाड़ हो गया था ना, पानी पाइप से पानी जो है वो लीक होता रहता है कुछ, तो क्या करते हैं नॉर्मली हम घरों में खवातीन जो होती है ना, कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अच्छा अब इसको प्लम्बर बुलाएं या घर का कोई मेल आए तो वो कुछ करे, हम क्या कहते हैं कपड़ा उपड़ा पकड़ के ना वो उस पाइप के ऊपर लपेट दिया कि पानी जो है वो लीक होना बंद हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं हम करते हैं।
1: समझता हूँ जहाँ पर आप सेव कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, अपने पैसों को, तो वो जुगाड़ बहुत अच्छी जुगाड़ है, क्योंकि देखिए आप सेव कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड किसी का नुकसान हो रहा है या कोई किसी का प्रॉब्लम में आप ऐड कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग।
0: एग्जैक्टली।
1: लेकिन एनवायरनमेंट को हार्म ना करें और जो मर्जी आप
0: वो तो मैंने इनिशियली बात की ना कि 2-3 तरह के जुगाड़ हैं। पहला ये कि कोई क्रिएटिव चीज है, आपने कोई प्रॉब्लम देखा उसका सोल्यूशन था, फिर ऐसा है कि आपकी काम चोरी है, तीसरा ये होता है कि आप कोई नेगेटिव कोई इस तरह का आप उसके इम्पैक्ट देख के ही करें कि इसको आपकी ज़ात को नुकसान ना हो या किसी की ज़ात को नुकसान ना हो। ठीक हो गया जनाब, बातचीत हमारी चल रही है जुगाड़ के हवाले से, कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब, खुश आमदीद कहते हैं आपको, कौन बात कर रहे हैं कहाँ से?
2: जी आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं और ए आर नासिर भाई को भी खुश आमदीद कहते हैं।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।
2: ए आर अब्दुर्रहमान नासिर
1: जी, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी नासिर भाई, मैं मोहम्मद उस्मान मुगल अर्ज कर रहा हूँ शाहदरा टाउन से।
1: ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस टॉपिक के हवाले से जो हम डिस्कस कर रहे हैं?
2: जी डिस्कस तो ये जो थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना आज रिया जी,
0: जी जी,
2: कोई ऑप्शन आ जाए ना बीच में कोई सिंगर के साथ या कोई कि ये पढ़े या ये सुनाए, वो माइंड जो है ना वो डबल माइंड एक होता है कि ट्रिपल माइंड होता है, वो ट्रिपल में चला जाता है कि यार अब अगर इसने फरमाइश कर दी तो ये लिरिक्स मेरे जेहन में फौरन ना आए तो फिर क्या होगा।
0: बिल्कुल ऐसे,
1: बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मुझे लगता है आपने ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है मेरी तरह।
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह नात पढ़ता हूँ,
0: माशाल्लाह माशाल्लाह,
2: तो इसलिए ये मुझे
1: होता है, अक्सर होता है, और गानों में तो ये और वसी हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है, तो वो कोई ना कोई बोल देता है यार ये गाना, और वो फिर सुनी अनसुनी करनी पड़ती है हमें।
0: अच्छा बड़ी बात कर दी है आपने ना से, खैर नहीं आपकी,
2: कोई नहीं, मैं इनकी क्लेम करूंगा ऊपर सार को,
0: इग्नोर करते हैं इग्नोर।
1: नहीं नहीं इतने इग्नोर नहीं करते,
2: नहीं नहीं सार फिर आप ही इनको ओके कर लेंगे तो।
0: जी टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगे?
2: हाँ बात हो रही थी जुगाड़ की, जुगाड़ कभी लगाया तो नहीं कभी मेरे माइंड में, मैं उसी वक्त का यही सोच रहा हूँ कोई मेरे जेन में आ जाए, कोई मेरे माइंड में आ जाए, लेकिन नहीं आ रहा।
1: चलिए रिमोट का जब पीछे वाला जो एक वो आपको पता है सेल्स को कवर करने के लिए जो वो प्लास्टिक होता है, वो कैप जो होता है, वो जब टूट जाता है तो आप उसको टेप से नहीं बांधते?
2: हाँ वो टेप से भी बांधते हैं, उसके ऊपर एल्फी भी लगा देते
0: हैं, जुगाड़
2: है। नहीं धागा भी बांध देते हैं
1: उसको। नहीं अगर आप कहते कि आप नहीं करते तो फिर मैं आपको डिस्कॉन कर देता कि नहीं आप पाकिस्तानी नहीं है।
2: नहीं पाकिस्तानी का तो हम नहीं ना इनकार कर सकते, हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तानी रहूंगा और पाकिस्तानी है,
1: बिल्कुल है, एंड वी शैल टेक प्राइड इन इट नो डाउट।
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आप प्रोग्राम में शामिल हुए, थैंक यू सो मच।
4: ये देखिए ना, ये भी एक तेज माइंड है कि अभी इन्होंने मुझे वो हिंट दिया, मुझे कुछ ना कुछ चले हिस्सा डल गया।
1: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही
4: है। ये ऐसी चीजें भी हो जाती है कभी कभी,
1: ध्यान में नहीं आ रहा होता, ध्यान में नहीं आ रहा होता, बिल्कुल ऐसे ही।
0: अमली मुजाहिरा किया। थैंक यू जी,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बहुत शुक्रिया,
1: थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू, हाफिज। क्या ख्याल है ना सर? इस पे ना थोड़ी डिस्कशन आ रही है ना?
1: जी जी जी, आ रही है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हमें उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लेना चाहिए, कुछ चीजें होती हैं तंजी अंदाज में या वैसे एक मौकरी में कर लेते हैं।
0: नहीं, इसको अभी दिल आजारी की कोई भी बात नहीं, इसमें वैसे हम फॉर मजा के लिए बात हो रही है। अच्छा जी, नासिर हमारे साथ फेसबुक पे हमें ज्वाइन किया है, बिस्मा आजम ने, और कहती हैं जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्रोग्राम को आप पसंद कर रही हैं और आप पूछ रही हैं कि आपके साथ कौन है। तो मेरे साथ जनाब मौजूद हैं, कौन बताइए जी अपना नाम?
1: AR नासिर हूं मैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे।
0: देखिए जी, AR नासिर आपके साथ मौजूद हैं अभी FM 101 लाहौर पे, मेरे साथ यानी रेहल ताब के साथ, और आप इनको सुन रही हैं। उम्मीद करती हूँ जी आपको अच्छा लग रहा होगा। और हाँ जी नासिर, आपको अच्छा लग रहा है?
1: जी मुझे तो अच्छा लग रहा है।
0: नासिर तो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बिस्मा, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा जी, एक ट्रैक सुनते हैं और साथ ही साथ जनाब आपकी कॉल्स चल रही हैं, कॉल्स ले रहे हैं।
1: मैंने गाना एक लाइव गाया तो मेरा एक ट्रैक भी आप चला दीजिए।
0: हाँ जरूर, देखते हैं हमारी लाइव मतलब लाइब्रेरी में मौजूद है या सर्च करते हैं, तो इंशाल्लाह अभी जो हमने क्यू किया हुआ है ट्रैक वो हम चलाते हैं। और सुनते हैं स्टेडियम रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर।

0: जी जनाब, वेलकम बैक, खुश आमदीद प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। ज़बरदस्त ट्रैक सुन रहे थे, रात गुजर जाएगी अफसाना कहते कहते। कभी कभी ऐसा भी होता है जनाब जिंदगी में। और कॉलर है हमारे साथ मौजूद, देखते हैं जी कौन कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
2: जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं?
1: नसर साहब, मुझे रमजान अनवर गुजर कहते हैं और मैं दो दहाइयों से रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 का लिसनर हूँ। अर्ज किया है कैसे कह दूं के छोड़ दिया उसने मुझे, कैसे कह दूं के छोड़ दिया उसने मुझे, बात है ये सच पर है रुसवाई की। बहुत सी दुआओं के साथ कौमी फैमिली दोस्ती रेडियो स्टेशन आवाज पाकिस्तान रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 की सुनने वाली नयाब समातों को रमजान गुजर आदाब तस्लीमात। गुड इवनिंग 101 कहता है फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग माए मेंटोर मेरी स्पनी साहबा डॉक्टर रेहा अल्ताफ साहबा के संग खुश आमदीद कहता हूँ। खूबसूरत हसीन लाजवाब और बाकमाल बदन में कैसे मिजाज ग्रामी लाहौर और उसके मजाफात में ऑन ईयर कॉल का टाइम हुआ जाता है। जल्दी आए और जल्दी काल को अपनी मकाएं और दूसरों को भी मौका दे। और
0: मैं छुट्टी आ जाऊं। वालेकुम सलाम रमजान गुजर साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, खुश रहिए सलामत रहिए, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जी जनाब,
1: और नासर साहब को भी खुश आमदीद कहूंगा, इनकी बात में गाना सुना और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सुनते ही रहेंगे आगे भी आने वाले।
2: इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया रिजवान
1: साहब, और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस है, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे मेरा अंदाजा है। और टॉपिक के वाले से ये अर्ज करूंगा, टाइम बहुत कम मुकाबला
0: था,
1: मैं मुझे ना पैसे चाहिए थे, कोई थोड़े थे तो मेरे एटीएम में 500 रुपए थे, मैंने वो एटीएम डाला मशीन में, ये हकीकी बात है, ये कोई गप नहीं, तो मैंने ना एटीएम डाला तो 500 निकल आया, तो वो जो निकला वो जल्दी निकला नोट
0: है। अच्छा।
1: तो मुझे भूख इतनी लगी थी, इतनी भूख लगी थी, मैंने साथियों से पूछा, मैंने कहा यार ये निकला 500 का नोट, तो मुझे तो भूख लगी, ये तो ये क्या तरीका कर रहा है, आई जी यार बैंक में कंप्लेन करें तो ये होएगा, तो कोई 2 दिन का प्रोसीजर है। मैंने कहा यार मुझे भूख आई लगी, आप 2 दिन डाल रहे हो, ये भी मेरे पास रह इतने गए थे, तो कहता आगे आपकी बाकी जो मर्जी करो। मैं क्या फिर मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करता। मैंने सोचा कि कौन सा ऐसा दुकानदार है जो पैसे दे देता है, तो मेरे मुहल्ले में एक शेख साहब थे, तो मैंने शेख साहब कहा, मैं शेख साहब 3 प्लेटा चने दिया, 4 अंडे, 4 कोफ्ते, 10 नान।
0: रमजान साहब, रमजान साहब, ए शेख साहब जो उन प्रोग्राम सुन रहे हो तो फिर
1: नहीं निकलना, कोई चल गया उसका, कोई चल गया।
0: अच्छा।
1: उन्होंने यकीन करे एक मिनट में बगैर देखे सोचे समझे सारा कुछ डाल के मुझे पकड़ा दिया, और मैं क्या दुख अपनी जगह तो भुख अपनी जगह, ठीक
0: है
1: रोटी भुख मताइए बाद चो मैं फिर दूसरे काम होंगे, ये जिगाड़ लगाया था वो मेरा लग गया था।
0: चलो
1: बाकी तो नहीं करते ही होगा,
0: लेकिन जिसको पता लगा होगा ना कि नकली है उसको भी बस लग ही गया होगा पता। कहीं ना कहीं तो ये जुगाड़ जो है ना वो फूटा ही होगा।
1: अल्लाह पाक आपका इकबाल बुलंद करे, आप आते हैं बाहर आ जाती है, आपका कीमती टाइम अता करने का रेडियो पाकिस्तान का बेहद शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम अता किया, अल्लाह पाक आपके इल्म में अमल में जिंदगी में आपकी फैमिली सुन रही है उनके लिए बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान
0: जिंदाबाद।
2: सबसे अच्छी बात मुझे महसूस हुई है कि टू बी ऑनेस्ट उन्होंने बात कोई उनके ऊपर कैपिंग नहीं की, कोई बात छुपाई नहीं, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, जो बात थी यही बात है, यही जो है ना सच्चाई है, और यही जो है ना आप कह लें कि खलूस दिल है,
0: बिल्कुल ऐसे ही है, सीधी सीधी है जी,
2: बुरी लगे ना लगे किसी ने।
0: बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा आपने हमें कॉल की, और बड़ा जबरदस्त जुगाड़ साहब, बड़ी बड़ी हंसी आई, हम लोग इंजॉय किया, जबरदस्त सी बात है। कॉलर है हमारे साथ।

0: जी जनाब, आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर, और लाइव कॉल्स आपकी चल रही थी, हम आपके मज़े मज़े के जुगाड़ सुन रहे थे, और मैं और नासिर बहुत हंस रहे थे, बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं. और टाइम बिल्कुल जनाब हमारा ख़त्म हो गया है, और नासिर साहब जो है ना, जी जनाब, अब पहले आप जाएंगे या मैं जाऊँगी? मेरे ख्याल
1: मैं पहले आ जाता हूँ, क्योंकि मैं लेट आया था, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ.
0: वाह, ये क्या बात हुई भाई, आए लेट और जाना पहले, वाह वाह वाह. वो कहते हैं जी, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया. मैं टाइम पे प्रोग्राम और ना, चले ठीक हो गया. जी जनाब, क्या कहिएगा?
1: मैं ही कहूँगा कि जो भी सब सुन रहे हैं, जुगाड़ का टॉपिक था हमारा, तो जुगाड़ तो देखें हर चीज में लगी ही है, अब कोई रोक नहीं सकता. और की जिंदगी जुगाड़ पे चल रही है, एंड देयर इज नथिंग बैड इन इट. एक लफ्ज हमने थोड़ा सा इसको जो है ना बहुत टाइप्स में कर लिया कि ये एक मतलब नेगेटिव कनोटेशन है. नहीं, आप सब सही कर रहे हैं, इन्जॉय करें, लिव द मोमेंट. और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस जिस फील्ड में भी आप लोग हैं, टाइम दिया करें अपने आप को भी. ये ना भूलें कि आप जिंदगी गुजारने के साथ साथ ज़िंदगी जीना भी आप सीखें ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फिर मुझे लोग कहते हैं यार आप बहुत सीरियस हो जाते हो, ड्राइव टाइम का ही टाइम होता है, इंजॉयमेंट का टाइम होता है, और अब बीट म्यूजिक का होता है, फिर भी आप यार बात
0: नहीं, कभी कभी सीरियस बात करनी चाहिए. जो अच्छा
1: शो इस तरह करते हो, जिस तरह रात को 12 बजे का शो चल रहा है, तो मैंने कहा यार मेरी गलती नहीं है, मैंने बहुत से आज डॉक्टर शो किए हैं, तो इसलिए मुझे आदत पड़ गई है.
0: ठीक हो गया
1: जी. जी तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ अभी कंक्लूड करें.
0: बहुत शुक्रिया जनाब नासिर साहब, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी बात की आपने. और ज़िंदगी हमेशा, जी मैं भी हमेशा कहती होती हूँ, ज़िंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, एक ही दफ़ा मिलती है, इसको इन्जॉय करें, जिएं अपने तरीके से, जिएं अच्छा करें, अच्छे जिएं, किसी के लिए मुश्किलात पैदा ना करें. और फिर पॉजिटिव, वही वाली बात जो हमने स्टार्ट में की थी कि पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी अपने इर्द गिर्द आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको वही लोग अपील करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे जो पॉजिटिव होंगे. आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आपने हमें सुना जनाब, बहुत शुक्रिया उसके लिए, और थैंक यू सो मच. आप लोगों के मैसेजेस मैंने शामिल करने की पूरी कोशिश की है कि तमाम लोगों के मैसेजेस शामिल करूं, जिनके नहीं कर पाई हूं उनसे माजरत चाहूंगी, और थैंक यू सो मच जनाब. आपसे चाहूंगी इस उम्मीद के साथ इजाज़त के आप जहां रहेंगे खुशियाँ बांटेंगे, रखेंगे अपना और अपनों का बहुत ख्याल. रेहलता आपको दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान.

0: Space Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: This is FM 101.

and dial 111-111-FM. Rondi akhiyan nu je tu samajh.

0: Now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: अस्सलाम वालेकुम, रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ समीना वकार
2: और शहरयार अहमद।
1: पहले अहम खबरों का खुलासा।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग, ज़राअत और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के शोबों को माली वसाइल की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत की है।
1: शहबाज शरीफ ने ML-1 मंसूबे की तामीर के लिए बैंकों से कर्जे के हुसूल के गरज से रेलवे अराजी बरोकार लाने की मंजूरी दी है।
2: चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और अकवाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने आज रावलपिंडी में मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर के तनाज़े, भारत की जानिब से सिंध तास मुहिदा मुअत्तल करने और अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी पर तबादला ख्याल किया।
1: वजीर खजाना ने तेजी और मंदी के रुझानों से बचते हुए पायदार इक्तसादी शरह नमो के हुकूमती आज़म का इजहार किया है।
2: वजीर मनसूबा बंदी ने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो तालीम, सेहत और दीगर समाजी शोबों में इंतजामी असलाहत मुतारिफ कराएं।
1: कौमी तहफ़ खुराक के वजीर ने कहा है कि किसानों को बीजों और खाद की मुनासिब कीमतों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं।
2: पार्लिमानी उमूर के वजीर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर जोर दिया है कि वो अपना मौकफ तब्दील करे और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में विफाकी हुकूमत से तआवुन करे।
1: सियासी उमूर के मशीर ने कहा है कि हुकूमत हिज़्ब इख्तिलाफ़ से मुज़ाकरात के लिए तैयार है।
2: सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिमाली वज़ीरिस्तान मस्तोंग में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 18 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है।
1: 2005 के तबाहकुन जलजले के मुतासरीन की याद में कौमी योम इस्तेकामत कल मनाया जाएगा।
2: कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो तनाज़े कश्मीर को अक़वामे मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने के लिए भारत पर दबाव डाले।
3: Hi, this is FM 101.
4: This is FM 101.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
7: Sur aur Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.

0: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
1: पाकिस्तान दी मशहूर तिब्बी इलाजगा दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों ताड़ी मेज़बान ते ताड़ी खतां दी तर्जमान साइमा ताड़े सारे दी खिदमत विच बहुत सारे सलाम पेश कर दिए ते दुआ कर दिए कि सोहना रब तुहानू हमेशा सेहतमंद रखे ते तुसी अपनी जिंदगी नू खूब इंजॉय करो। सोहने भैन भराओ, सेहतमंद जिंदगी वास्ते दो असूलों ते हमेशा अमल करना जरूरी है। नंबर एक, हिफ्ज़ाने सेहत दे असूलों की पाबंदी, ते नंबर दो, बीमारी दी सूरत विच फौरी इलाज। सोहने भैन भराओ, इलाज बल्कि अच्छे ते मुस्तकिल इलाज के हवाले नाल प्रोफेसर सुलेमान साहब की जात किसी तारीफ की मुहताज नहीं। सोहने भैन भराओ, तुसीं भी अपनी बीमारी के कामयाब इलाज वास्ते फौरन ही प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं मिलो, जिदे लई साडा पता ते फोन नंबर नोट फरमाओ। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड, लाहौर। फोन नंबर 0423772716 0, यानी 0423772716 0। मोबाइल नंबर है 0300414 2608, यानी 0300414 2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। जी सोने भैन भ्राओ, उड़ीकां मुक गईयां क्योंकि हुण तुसीं मिलोगे पाकिस्तान तिब्बी फाउंडेशन दे चेयरमैन, यूनानी मेडिकल कॉलेज दे साबिक वाइस प्रिंसिपल ते बैन अलकवामी शोहरत याफ्ता मौलिज हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं, जिन्होंने बेहतरीन तिब्बी खिदमात दे इतराफ विच गोल्ड मैडल भी मिलिया है। ते आओ हुण मिलने आ हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान साहब नूं। सुलेमान साहब, तुसीं प्रोग्राम विच तशरीफ लियाए ते प्रोग्राम दी शान ते साडा मान वधाया, जिहदे लई मैं तुहाडी शुक्रगुजार हाँ।
2: सहमा जी, यह तो मेरा तिब्बी फरीजा है तो मैं खुशी है कि मैं इस प्रोग्राम के जरिए अपने भैन भरावों की तिब्बी खिदमत कर रहा हूँ।
1: जी बड़ी मेहरबानी सुलेमान साहब
2: जी।
1: मैं ना मिर्जा गालिब साहब का एक शेर याद आ रहा।
2: अच्छा।
1: बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। सुलेमान साहब
2: जी,
1: जे मिर्जा गालिब साहब की गल ठीक है तो फिर दिल ने इन्नी खप क्यों पाई हो ये?
2: वैसे सहमा जी, तानू दिल दी ऐस हरकत तू की शिकायत हो गई?
1: सुलेमान साहब, शिकायत मैनू नहीं है बल्कि साडे एक भाई जनाब मुजफ्फर चौधरी साहब नू है। ते ए अपनी शिकायत इंज बयान करदे ने कि मोहतरम सुलेमान साहब, मैनू कुछ दिनां तों दिल दे करीब मिठा मिठा दर्द हुंदा है।
2: अच्छा।
1: ते किसे वेले बिल्कुल ठीक हो जांदा है। इहदे अलावा जदों मैं कोई जिस्मानी काम करना वा या फिर सीढ़ियां चढ़ना वा ते दिल बड़ी जोर जोर नाल धड़कदा है। सुलेमान साहब
2: जी,
1: मैनू खाण तो पहला सीने च जलन जी हुंदी है ते खट्टियां डकारां भी आउंदियां ने, बराए करम दवाई पार्सल कर दिओ।
2: मोहतरम मुजफ्फर भाई, परेशानी की कोई गल नहीं, ये बहुत मामूली जिहा मसला है ते अलामा दे तहत तुहानू अलहमदुलिल्लाह दिल की कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: चलो जी शुक्र है,
2: बल्कि ए ते मेदे की तकलीफ है। मेरे भाई, तुहानू गैस्ट्रिक ते तजाबिए की तकलीफ है जिंदे बायस तुहानू दर्द फवें मेदा महसूस हो रहा है, जिन्हों अमूमन दिल का दर्द समझा जाता है।
1: बिल्कुल।
2: तुसी मुरगन ते मसालेदार खाने बिल्कुल छड़ दे, मैं दवाई पार्सल करा देंगा जिंदे नाल मेदे की तजाबियत दूर हो जाएगी ते इनशाला चंद दिनों के इलाज तो बाद तुसी सेहत याब हो जाओगे
1: इनशाला ताला जी। जी मुजफ्फर साहब, शुक्र करो कि यह दिल का मामला नहीं सी, वरना तुहानू बहुत प्रॉब्लम हो जानी सी। सुलेमान साहब
2: जी,
1: इहनू कहिंदे ने कि खोदा पहाड़ ते निकला चूहा, यानी शोर ज्यादा ते बीमारी मामूली। सुलेमान साहब, अगली ईमेल पढ़नी आ जिहड़ी आफताब खान साहब ने तहरीर कीती है। फरमाउंदे ने कि मैं फोर्सिस ज्वाइन करना चाहना वा लेकिन मैं मेडिकली अनफिट हो गया वा क्योंकि मेरा कद भी छोटा है ते मेरा वजन भी घट है।
2: अच्छा।
1: यानी अंडर हाइट ते अंडर वेट। सुलेमान साहब, मैं अपनी इस खामी तो बहुत परेशान हाँ, मैं एक्सरसाइज भी की दवाइया भी इस्तेमाल कर चुकी हाँ पर फायदा ही नहीं होया, बराए करम ऐसी कोई दवाई पार्सल कर दो कि मेरी सेहत ते मेरा कद ठीक हो जाए।
2: बेटा जी, ए दोनों मसले फिक्रमंदी वाले ने जिंदे लई तुहानू एक वारी दवाखाने ते आके मुकम्मल चैकअप करवाना पवेगा। बेटा जी, तुसी जो कैफियत लिखी है उनके मुताबिक मैनू यकीन है कि तुहानू हारमोनल प्रॉब्लम है जिंदी वजह नाल तुहाडी जिस्मानी नशोनुमा रुकी हुई है। सोहणे रब दी करम नवाजी नाल हालत साडे नबाताती इलाज च मौजूद है।
1: बिल्कुल।
2: बेटा जी, तुसी फिक्रमंद नहीं होना, ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਹੀ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਵਾਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਮੇਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ
1: ਅਤੇ
2: ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਕੁਵਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਠੀਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
2: ਜੀ,
1: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨੱਵਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਨਿਮਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮੀ ਨੇ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਬੇਗਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਅਰਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਉਮੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਇਰਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਝ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਯੂਸ ਨੇ।
2: ਮਨਵਰ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ
2: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਫਾ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
2: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਯੂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਸਪਰਮ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਟਿਵ ਸਪਰਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਐਸੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਵਾਦ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਤਬਈ ਕੈਫੀਅਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਪਰਮ ਦੀ ਅਫਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
1: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦਵਾਖਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੇਉਲਾਦੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਲਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਹਬੀਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਲਾਦ ਵਰਗੀ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਕਿਨਾਰ ਫਰਮਾਏਗਾ
1: ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
2: ਜੀ,
1: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿਓ ਅਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਇਆਨਾਸ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਯਾਫਤਾ ਹਰਬਲ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਮਿਲੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਤਿਆਤ ਨਾਲ ਨੋਟ ਫਰਮਾਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ, ਦਵਾਖਾਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪੁਲ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਿਲ ਮੁਕਾਬਲ ਮੀਨਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੇਨ ਰਾਵੀ ਰੋਡ, ਲਾਹੌਰ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 042-377-27160, ਯਾਨੀ 042-377-27160, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 03004142608, ਯਾਨੀ 03004142608। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਹੈ suleiman.dawakhana@gmail.com। ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮਾਯੂਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
2: ਜੀ,
1: ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ
2: ਜੀ,
1: ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ ਗਏ,
2: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ।
1: ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਚਪੜਾਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਲਾ ਚੂਰਨ ਵੀ।
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
1: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੀ ਉਹੀ ਉਹ ਸਾਦਾ ਚੂਰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਰੂਦੀ ਚੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਏ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬੇ ਆਲੀ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਲ ਗੱਪਾ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਡਾਇਟਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਲਿਮਿੰਗ ਕੋਰਸ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਏ ਕਰਮ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਪਾਰਸਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ
2: ਭੈਣ ਜੀ, मोटापे तो बाद होने वाली बीमारियों की होल ना की इस गल की मुतकाजी है कि मोटापे की फौरी रोकथाम की जाए
1: बिल्कुल
2: जिंदे लिए मतवातरी इलाज से एहतियाती तदाबीर से अमल करना जरूरी है। मेरी भैन मेरी एक गल तुसी भी याद रखना ते सारे सुनने वाले भी याद रखन कि डाइटिंग नाल गजाई कमी हो जाती है
1: बिल्कुल
2: जिहड़ी जिस्मानी वीकनेस का सबब बनती है। इहदे अलावा यानी बाज़ लोगों नू डाइटिंग दे नाल भी मोटापे की शिकायत हो सकती है लिहाजा डाइटिंग तो ग्रेस करो। मैं तुहाडे लई दवाई ते मुंतखिब गजा का चार्ट तरतीब दिता है तुसीं इहदे ते अमल करो तुसीं देखोगे कि इनशाला चंद दिनों के इलाज तो बाद कमजोरी होए बगैर ताड़ा वतन कटना शुरू हो जाएगा लेकिन तुसी दवाई उन्नी देर बंद नहीं करनी जिनी देर मैं ना कहां।
1: हाँ जी
2: सोने रब की मेहरबानी नाल मोटापे तो मुकम्मल निजात मिल जाएगी
1: इनशाला ताला जी। भैन जी तुसी प्रोफेसर सुलेमान साहब की गल सुनी हुण तुसी फिकर नहीं करनी क्योंकि प्रोफेसर साहब का इलाज अलहमदुल्ला बड़ा ही बाकमाल हुंदा है। तुसी बड़ी तवज्जो नाल इलाज कराओ इनशाला ताला स्लिम स्मार्ट हो जाओगे। सुलेमान साहब
2: जी,
1: प्रोग्राम की अगली ईमेल लिखी है अयाज महमूद साहब ने फरमाते ने कि मेरी उम्र 43 साल के करीब है मैंने शुगर भी है ते हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी मैं दोनों बीमारियों वास्ते बड़िया पाबंदी नाल दवाइया लिया लेकिन एक मसला ऐसा है कि जिसका इलाज देसी जड़ी बूटियां नाल ही हो सकता है वह वे पठिया की कमजोरी। मैनू कई लोगों ने यो ही मशवरा दिता है कि मैं थोड़े नाल राबता करा क्योंकि थोड़े को शुगर ते ब्लड प्रेशर के नाल होने वाली कमजोरी का पक्का ते कामयाब इलाज है बराए करम इस सिलसिले च मेरी रहनुमाई फरमाओ।
2: मोहतरम अयाज भाई तमाम तिबी माहरीन इस गल ते मुतफिक ने कि शुगर ते ब्लड प्रेशर की बीमारी नाल मरीजा नू शदीद कमजोरी की प्रॉब्लम हो जाती है लेकिन यह भी हकीकत है कि शुगर ते ब्लड प्रेशर नाल होने वाली कमजोरी सिर्फ ते सिर्फ जड़ी बूटियां नाल ही ठीक हो सकती है। मेरे मोहतरम भाई तुसी फिकर ना करो तुसी भी एक नॉर्मल ते सेहतमंद इंसान वांगू एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हो। मेरे मोहतरम मैं ताडे लई ज़ाफरान असली चंदन ते दूजी कीमती जड़ी बूटियां नाल तैयार होने वाली दवाई पार्सल कराई है जड़ी उजलात नूं तकवीयत देंदी है दिमागी सलाहियत नूं बेदार करदी है ते तबीयत नूं ताजगी तवानाई ते कुवत नाल हमकनार करके जिंदगी नूं पुरबहार करदी है। तुसीं बाकायदगी नाल दवाई लैनी है ताडी जिस्मानी कमजोरी इंशाला बिल्कुल दूर हो जाएगी ते तुसीं इन्हां बीमारियां दे बावजूद खुशियां भरी जिंदगी गुजार सकोगे।
1: जी आया साहब हुण तुसी बेफिक्र हो जाओ क्योंकि तुसी इंशाल्लाह ताला सेहतयाब हो जाओगे। सलमान साहब ईमेल सलमान साहब ने तहरीर की है लिखते हैं कि मैनू दायमी रेशा ते केरे दी तकलीफ है हर वेले गले च जड़ा ना रेशा महसूस हुंदा है जिदी वजह नाल बार बार हल्की हल्की खांसी आंदी है ते गला साफ करना पैंदा है। मैं काफी दवाइयां इस्तेमाल कर चुकिया वां लेकिन वक्ती आराम ही हुंदा है बराए करम को चंगी जिही दवाई पार्सल करा दिओ शुक्रिया।
2: मोहतरम नमान भाई रेशे ते केरे दी ज़्यादती नाल नज़र कमजोर हो जांदी है वाल डिगदे ने ते वक्त तो पहले ही सफेद हो जाते हैं
1: बिल्कुल सही।
2: इहदे अलावा जोड़ां दा दर्द दर्द शकीका ते राशा वर्गी खतरनाक बीमारियां दे चांसेस वध जांदे ने लिहाजा मुकम्मल इलाज कराओ। मैं तुहाडे लई दवाई पार्सल कराई है तुसीं पूरी तवज्जो नाल दवाई लैना सोहणे रब दी करम नवाजी नाल ताडी ए तकलीफ इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी
1: इंशाल्लाह ताला। सुलेमान साहब
2: जी
1: प्रोग्राम नूं समेटण दी टल्ली वज गई है।
2: अच्छा
1: सुलेमान साहब मैं तुहाडी शुक्रगुजार हां कि तुसीं अपनी मसरूफियत दे बावजूद साडे प्रोग्राम दी शान वधाई।
2: सहमा जी ताडा ते प्रोग्राम दी सारी टीम दा ते सारे सुनने वालों दा बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी बहुत मेहरबानी। सोहनी भैन भरा बीमारियों तो ना घबराओ ते बीमारियों तो मुकम्मल निजात लई पाकिस्तान दे माया नास तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान नूं आप मिलो साडा पता ते फोन नंबर नोट कर लो। सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान मेन रावी रोड लाहौर फोन नंबर 042-377-27160 यानी 042-377-2710 मोबाइल नंबर है 03004142608 यानी 03004142608 ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। सोहने भैन भरा एदे नाल ही अपनी भैन साइमा नू इजाजत दियो रब तुहानू हमेशा खुश रखे अगले प्रोग्राम विच इंशाल्लाह फिर मिलांगे उस वेले तक रब राखा।
0: This is...

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: हमको किस

0: 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 The sound of new millennium.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 The sound of new millennium.
0: FM 101 हमारे दिल की आवाज आपके दिल की धड़कन।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: FM 101 The sound of new millennium.
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

अच्छा लगता है मुझे। मैंने थोड़ा सा चेंज किया आज के प्रोग्राम में, ये 12 बजे तक ये वाला बीजीएम रहेगा। वैसे मैंने आगाज तो अपने वाले बीजीएम से किया था, लेकिन क्या करें, बाज़ोकात चीज़ें यहाँ पे बिखर जाया करती हैं। जैसे अभी तक मेरी पोस्ट अपलोड नहीं हो पाए, जिस कंप्यूटर से जिस पीसी से अपलोड करनी होती है, थोड़ा सा तकनीकी मामला बन गया। लेकिन अभी कुछ देर में रिजॉल्व हो जाएगा वो मामला भी, और फिर हम वहाँ पे पोस्ट अपलोड करेंगे और आपसे बातें कर रहे हैं। 10:10 इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा। वैसे तो हमारा और आपका साथ रहने वाला है शब के 2 बजे तक। आज 4 घंटे मैं आपके साथ रहूँगा, कोई एक टॉपिक नहीं रहेगा, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे। कुछ इधर उधर की नर्म नर्म सी या फिर बहुत हल्की बहुत गहरी भी हो सकती हैं, सारी की सारी बातें करेंगे। आप हमारा साथ निभाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा।

याद आ जाता है दौर, फैसलाबाद वाला दौर याद आ जाता है ये इंस्ट्रूमेंटल सुनते ही मुझे। बहुत अरसा मैंने इस इंस्ट्रूमेंटल पे प्रोग्राम्स किए, आज मुझे मिल नहीं रहा था ये वाला इंस्ट्रूमेंटल, और बहुत सारे दूसरे थे इसी के, माई हार्ट विल गो ऑन, इसके और बहुत सारे वर्जन्स मिल रहे थे, लेकिन ये वाला जो स्पेसिफिक है ये वाला नहीं मिल रहा था मुझे। तो दूसरी तरफ वो वाला बीजीएम ऑन किया और वो सिस्टम तकनीकी मसले में बीजीएम तो ऑन रहा, लेकिन प्रॉब्लम मुझे सामना करना पड़ा उस प्रॉब्लम का। अभी भी चीज़ें बिखरी हुई हैं, अल्फाज थोड़े से इधर उधर होंगे, या आपने परेशान नहीं होना, ठीक है ना।

By the way, ladies and gentlemen, बहुत सारी बातें करने वाले हैं आज हम. आज की ये जो पहला हाफ है दो घंटे का नाइट थेरेपी वाला, आज डॉग्स ये प्रोग्राम किया करते हैं. आज मेरा भाई कहीं पे मसरूफ है तो आज नहीं आ पाए, तो मुझे हमारी सीनियर प्रोड्यूसर साहिबा, जिनका नाम है खदीजा मुराद साहब, मैडम ने मुझे ये कहा रहमान. मैंने कहा जी कहिए मैडम. जैसे वो कहते नहीं है ये तुम्हारे हवाले है, सारा का सारा कुछ तुम्हारे तुम्हारे हवाले कर दिए. बिल्कुल इसी तरह से कहा. आज आज डॉग्स वाली स्लॉट भी आपके हवाले. मैंने कहा जी अच्छा ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म हो जी, हम आपके हुक्म की तामील करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे. बाय द वे ये दिल चाह रहा है आगाज में इसको सुनने का, हादिया हाशमी की खूबसूरत आवाज है. सिर्फ हादिया हाशमी नहीं है इस ट्रैक में, इसमें बहुत से लोग हैं. हादिया हाशमी है, अली तारिक हैं, फरीद अयाज, अबू महमूद, हदीका क्यानी भी हैं, अजान समी खान भी हैं. इसे सुनते हैं बहुत मजा आएगा. इसके बाद वापस आता हूँ, चीजें थोड़ी सी सेटल करता हूँ, दूसरी तरफ पोस्ट भी एक अपलोड करनी है, वो भी अपलोड करता हूँ, और फिर आते हैं वो बातें करने के लिए. ट्रैक्स प्ले करूंगा आपके, आपकी फरमाइश प्ले करूंगा आज मैं, साथ साथ गुफ्तगु भी चलती रहेगी, आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाते रहेंगे. लेकिन लाइव कॉल्स प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, उसके साथ साथ आपकी जो फरमाइश है, आपके ट्रैक्स जो हैं वो प्ले करते रहेंगे हम, ठीक है ना. लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान, हैदराबाद, जहां जहां तक हमारी आवाज सुनी जा रही है, ये प्रोग्राम है नाइट थेरेपी. मेरा नाम है रहमान अनवर. मेरी फ्रीक्वेंसी को मैच करने के लिए आपको सबसे पहले तो FM 101 की फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा, यानी ट्यून करना पड़ेगा FM 101.1. भी हुआ तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा, आवाज़ किसी हद तक महसूस हो रही होगी, लेकिन जैसे हवाओं का शोर होता है या फिर आवाज़ सही से समझ में ना आ रही हो, बिल्कुल वैसा महसूस होगा. तो अगर आपको बहुत क्लियर सुनना है, क्रिस्टल क्लियर सुनना, तो आपको 101 ही ट्यून करना पड़ेगा. इसी तरह मेरी फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए ...7.83 की फ्रीक्वेंसी जरूरी नहीं है, ये वैसे सोते हुए इंसान की फ्रीक्वेंसी होती है और कायनात की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाया करती है. ऐसी एनर्जी उस समय आपकी जात में होती है, लाशऊर में होती है, कि आप कुछ भी करना चाहें, जैसे परवाज करती है रूह और बहुत सारे सैयारों, बहुत सारे दुनियाओं से घूमते हुए आती है. बाज़ औक़ात इसी दुनिया के किसी हिस्से का चक्कर भी लगाती है, जहाँ पे तुम मौजूद हो वहाँ तक जाती है. साइंटिफिकली अप्रूव है ये बात, लेकिन अभी तक रूह का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया साइंस को, क्या करें. अभी अमूल किताब को मानते भी हैं लेकिन मदद लेना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हम दे देंगे फिर. लेकिन आपको मेरी फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए सबसे पहले 101 ट्यून करना पड़ेगा. आपने कर लिया, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको. आप आए हैं अब दिल की बातें सुनिएगा खामोशी से बैठकर. अक्सर मैंने ये कहा है, फिर दोबारा से कह देता हूं कि हुस्ने गुफ्तार के लिए तहजीब समात का होना बहुत जरूरी है. कभी कभी जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं या कोई एक लीड कर रहा होता है कन्वर्सेशन को, बात कर रहा होता है, तो खामोश रहना चाहिए, खामोश रहकर सुनना चाहिए.
अपनी बातें नहीं चलानी चाहिए। ठीक है ना। एनीवेज, नाचीज को रहमान इनवर कहते हैं। प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुआ करती है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे। हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक। कभी कभी जब कोई हुक्म करता है प्रोड्यूसर, तो फिर हम वो वाली स्लॉट भी कवर करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन पता है प्रोड्यूसर्स को भी कि बाज़ुकात दूसरी स्लॉट्स का टाइम नहीं अवेलेबल होता, तो 10 से 12 में बाज़ुकात हम कवर कर लिया करते हैं। कुछ तरीके का सबसे पहले आपको बता दूं, जिनके जरिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, अपनी फरमाइश भी पहुंचा सकते हैं। और बात लाशऊर की चल निकली है, तो एक सवाल भी जहन में आया, लेकिन नेक्स्ट ट्रैक में कहूंगा। ये ट्रैक पूरा सुनेंगे, उसके बाद 5 मिनट और 50 सेकंड का ट्रैक, इसको पूरा सुनेंगे, उसके बाद जब वापस आएंगे तो वो टॉपिक भी शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ कुछ तरीके का। आप अगर कोई सॉन्ग फरमाइश करना चाहें, फास्ट से फास्ट ट्रैक भी प्ले करेंगे, पहले 2 घंटे जो हैं 10 से 12, इसमें ज़रा थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़रा प्रॉपर तरीके से मैच करने के लिए पिच को हाई रखेंगे और पहुंचेंगे, चीख चिल्लाकर भी पहुंचना पड़े तो। ओह माय गॉड, यस पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यून इन। यस, दिस इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101। टाइम इज राइट नाउ 10:19 ऑन द डायल। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम उसे भेज दीजिए 4471 4471। यस, इसके साथ साथ कॉल करना चाहते हैं, कॉल करके अपने होने का हमें एहसास दिलाना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421 0101। ठीक है ना, पता चल गया ना। ट्रैक सुनिए, वापस आता हूँ।

All right, once again, welcome back. बहुत कोशिशों के बाद जो पोस्ट है वो अपलोड होने के करीब करीब पहुंच चुकी है. लिखा उसमें कुछ भी नहीं, बस इतना लिखा है कि नाइट थेरेपी विद आर्ज रहमान अनवर. आप चाहें तो जाके पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, लव कर सकते हैं. दिल का एक ऑप्शन भी तो होता है ना, लाइक और लव. उनमें से कोई भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा जो भी आप करेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई एक कीजिएगा प्लीज. जाता है अच्छी अच्छी खूबसूरत खूबसूरत चीजें महसूस करने का, देखने का.

डॉक्टर राबिया हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वो कह रही है कि मैं मेडिकल फील्ड में हूं ना, तो मुझे पता है रूह को मानने का तस्वीर मौजूद है, लेकिन मंजरे आम पर नहीं लाया जा रहा, और इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हो रहे हैं। रहमान मुझसे पूछ लिया करें, मैं बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आपका ये अंदाज जो है इस बीजीएम के ऊपर भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और कभी किसी दौर में ये बहुत फेवरेट ट्रैक हुआ करता था मेरा, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स। आई सी यू, आई फील यू। अगर हो सके तो बहुत अरसे के बाद आज फरमाइश कर रही हूं, क्योंकि आपने खुद ही तो कहा है कि आप फरमाइश प्ले करेंगे आज, वो ये वाला ट्रैक मेरे लिए लगा देना प्लीज। डॉक्टर आबे आपके लिए ट्रैक जरूर प्ले करेंगे। बाय द वे, दूसरा तरीकेकार सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/fm101 लाहौर, आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर हमारे इस पोस्ट को जो कि मैंने अपलोड कर दी है, इसको भी जाकर लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने होने का हमें एहसास दिलाएं। कमेंट सेक्शन में आप फरमाइश भी कर सकते हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहें वो भी पूछ सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें मोर देन वेलकम। इसके साथ साथ आप हमें कॉल कर रहे हैं 0421110001, हमारे और आपके दरमियान रब्ते का नंबर है।

तो फिर आओ, लेकिन वो अगले प्रोग्राम में प्ले करेंगे जो 12 से 2 वाला स्लॉट है उसमें। तो उससे पहले ये वाला ट्रैक सुनते हैं। यार बहुत मजे का ट्रैक है सच में, एंजॉय करो ना इसको प्लीज। 5 मिनट 18 सेकंड के बाद वापस आऊंगा।

रे जी वंस अगेन वेलकम बैक। काफी लंबा ये ब्रेक हो गया है ना, जरा मुझे जाना पड़ा। कभी कभी आपको फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। एनीवेज 10:57 टाइम जो है वो पर लगाकर उड़ रहा है और पकड़ने की कोशिश बहुत सोने की, लेकिन इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं बह गए। अभी हमें कुछ ही देर के बाद एक न्यूज ब्रेक की जाने भी बढ़ना है, तो इस्लामाबाद वालों बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको लगे कि वहां पर लिंक आया तो आप वहां कनेक्ट कर दीजिएगा, यहां से डिसकनेक्ट करके। मुझे पता है कि आपने लाहौर को इस वक्त नेटवर्क पे लिंक कर रखा है, तो जैसे ही आपको वहां से लिंक मिले तो आप प्लीज वहां पे जाइएगा, क्योंकि मुझे आपको फॉलो करते हुए न्यूज ब्रेक जरूर शामिल करनी है। आपके पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं 4471 पर। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर आप लिख रहे हैं 101 स्पेस देकर अपना नाम अपना पैगाम और उसे भेज रहे हैं 4471 4471। इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर, एक पोस्ट मैंने अपलोड कर दी 2 घंटे के लिए, नाइट थेरेपी की पोस्ट है ये। इसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम है उसमें हम एक और अलग पोस्ट करेंगे और उसका टॉपिक भी डिफरेंट होगा, अलग होगा, हम उसमें बात भी डिफरेंट तरीके से करेंगे। बहुत सारी फरमाइशें मुझे मौसूल हो गई हैं और एक और फरमाइश है जो मुझसे की है डॉक्टर राबिया ने, उसको भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाने वाले हैं। और टॉपिक के ऊपर तो हम बात करते चले जाएंगे कि लाशऊर की सलाहियतों को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को हम शऊर में रहते हुए अपने लिए कामयाबी का जरिया कैसे बना सकते हैं, उससे फायदा कैसे उठा सकते हैं। सो बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की जानिब और वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, आपने सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। मेरा नाम है रहमान अनवर और ये प्रोग्राम है इस समय नाइट थेरेपी और न्यूज बुलेटिन का वक्त। कैसे उठा सकते हैं? नहीं, अच्छा अभी नहीं।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मोहम्मद अनीस से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने हाउसिंग, ज़राअत और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के शोबों को माली वसाइल की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत की है। बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के दो रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर ज़ोर दिया है।
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।

ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। न्यूज बुलेटिन के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, मुल्तान, सरगोधा, सियालकोट और इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में जहां जहां पे FM 101 की फ्रीक्वेंसी मौजूद है, हम आपके साथ वहां वहां पे मौजूद हैं। हम आपके साथ बहुत सारी बातें कर रहे हैं, शऊर के हवाले से, लाशऊर के हवाले से, अपने दिमाग की छुपी हुई सलाहियतों को समझने के हवाले से बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उन बातों के दरमियान में साथ साथ हम आपके फरमाइशी जो ट्रैक्स है वो भी प्ले कर रहे हैं। आप भी अगर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहें, यू मोर देन वेलकम। हमने एक पोस्ट अपलोड की है facebook.com/FM101 लाहौर, लाहौर का ऑफिशियल फैन पेज, और वहां पे कमेंट सेक्शन में रहते हुए आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। बाय द वे, ये ट्रैक की फरमाइश मुझसे की थी डॉक्टर राबिया ने और मैं ये प्ले कर रहा हूं। आपने कहा था कि जो आपने BGM प्ले किया है उसका ट्रैक भी प्लीज प्ले करते हैं, लें आपके लिए।

0: Great, you once again welcome back. मेरा बहुत प्यारा सा भाई है उस्मान खान, मियां अली से ताल्लुक है और इन दिनों इस्लामाबाद में मौजूद है। कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम अनवर रहमान भाई, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी अरसे बाद आपसे बात करने का दिल चाह रहा था और उसकी एक बहुत प्यारी वजह भी बन गई। पिछले दिनों मेरा PWD इस्लामाबाद जाना हुआ तो वहाँ नज़र एक पुराने रेडियो पर पड़ गई जो किसी कोने में लावारिस सा पड़ा था। दिल में ख्याल आया कि बेचारे को क्यों ना परचेज कर लिया जाए। चुनाचा मैं उसे उठा लाया। आज जब हॉस्टल के कमरे में उसे रखा और ट्यून किया तो अचानक आपकी जानी पहचानी आवाज़ कानों में गूंज उठी। आपकी आवाज़ सुनकर बेहद खुशी हुई और रहा ना गया कि आपको सलाम दुआ के लिए याद करूं। अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए और आपको हमेशा खैर व आफियत के साथ सलामत रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जाते जाते बस ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये नशरियात इस्लामाबाद के स्टूडियो से लिंक हो रही हैं या लाहौर के स्टूडियो से। नहीं, इस वक्त जो ये वाला प्रोग्राम है ये पूरे नेटवर्क पे ऑनर है तो ये इस्लामाबाद के स्टूडियो से आप तक पहुंच रही है ट्रांसमिशन, क्योंकि आपने रेडियो ट्यून कर रखा। वैसे कुछ रेडियो सेट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ ट्यूनर्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे मुल्कों की फ्रीक्वेंसी को भी कैच कर लेते हैं और बहुत सारे रेडियो चैनल्स मौजूद होते हैं। पुराने दौर में इस तरह से कुछ मेरे पास भी मौजूद थे तो हम सुना करते थे, मज़ा आता था। बाय द वे उस्मान, थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत सी तहरीर के लिए भी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहो, आबाद रहो, खुश रहो। मेरे सामने इस्लाम मौजूद है, क्या हाल है इस्लाम तुम्हारा? खैरियत से हो? ठीक हो?
1: सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं?
0: ये जो चाय मेरे लिए इस वक्त लेके आए हो इसका क्या सबब बना, ये क्या क्या वजह है?
1: सर ये असल में मैं जो हमारे आसिफ साहब हैं आरजी डॉक्स, उनके लिए लेके आया था क्योंकि शो उनका है।
0: हाँ,
1: तो आपकी दफा भी ले आता लेकिन तब तक ठंडी हो जानी तो इसलिए मैंने सोचा कि लेके।
0: मैं किसी और का हक पी रहा हूँ इसका मतलब है?
1: नहीं नहीं, वो जब मैंने पोस्ट देखी ना कि वो आप कर रहे हैं आज वो उनकी गैर मौजूदगी में, तो फिर मैंने ज्यादा बनवा ली। मैंने एक कप बनवाना था वैसे।
0: अरे
1: तो फिर उनके लिए लाई हुई चाय जो है वो मैं पी रहा हूँ और जो आपके लिए लाया था वो आप ही पी रहे हैं क्योंकि मैं अपने लिए बोतल लेके आया था।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है? सब अच्छा चल रहा है? ठीक चल रहा है
1: अभी तक तो, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला की जात का कि जो है वो मामलात ज़िंदगी जो है वो भी अच्छे जा रहे हैं। और दूसरा ये कि यूनिवर्सिटी की जो है हमारी सिलसिला तालीम है हमारा वो बहुत अच्छा जा रहे हैं। बस यही आजकल कर रहे हैं।
0: कौन कौन से टॉपिक्स आजकल जहन में चल रहे हैं, कौन कौन सी बातें जहन में चल रही हैं?
1: टॉपिक्स आजकल जो है वो
0: मतलब कुछ ऐसी चीज होती है ना जो दिमाग में चल रही होती है, मतलब एक खास चीज पैसे कमाने का धुन तो नहीं है?
1: हाँ ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल तो इम्तिहान ही चल रहे हैं दिमाग में कि यार तैयारी कैसे करनी है, चाहे वो जिंदगी के इम्तिहान हो आगे वाले, क्योंकि जाहिर है जब डिग्री हो जाएगी उसके बाद फिर बहुत सारी तौक़ात हैं। और दूसरा ये कि पेपर्स जो हमारे होने वाले हैं बहुत सारे लोग, तो यही चल रहा है।
0: आजकल पेपर्स चल रहा है तो इतनी मसरूफियत में से वक्त निकाल के कैसे आना हुआ यहाँ?
1: हाँ ये तो सर, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है और फिर रेडियो पाकिस्तान की मोहब्बत है जो उन्होंने हमें एक तरह से संवारा और हमारी आवाज़ को हमारे लहजों को संवारा और संवार के तराश के तो हमें माइक के सामने खड़ा किया और बोलने का मौका दिया। बस उसी तसलसल को जो है वो बरकरार रखने के लिए हम आ रहे हैं कि जो कुछ सीखा है वो उसी जो है वो कोशिश को जारी रखें और किसी न किसी मुकाम तक पहुंच जाएं कि जहां पे हम भी जैसे आप इस वक्त जो है वो एक मनसब पे बैठे हुए हैं जहां पे बैठ के आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं मेज़बानी के फ़राइज़, तो ये हम भी कर सकें। तो असद साहब ने कहा था ना कि अगर हम लोगों ने नहीं आना उनकी जगह तो फिर कौन आएगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही
1: उनका स्टेप था और इंटर्नशिप कंप्लीट हुई और फिर जो है वो हमारा
0: नो डाउट
1: सिलसिला था। अब मतलब गिने चुने लोग हैं जो हमारे साथ हैं और वो आ रहे हैं, आज मैं भी जो है वो काफी दिनों बाद। तो
0: अच्छा मैं ना एक ट्रैक प्ले करने वाला हूँ इस्लाम तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए क्यों प्ले करने वाला हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि आज कोई टॉपिक जो है ना वो खूबसूरत सा टॉपिक ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोग्राम है नाइट थेरेपी, इसमें थोड़े से चुलबुले से भी टॉपिक्स हो सकते हैं और तरह की चीजें भी हो सकती हैं। मैंने इसको इस तरह से सोचा, डॉग्स इसको बहुत खूबसूरती से
1: उनका तो अपना ऑरा है,
0: उनका अपना एक ऑरा है, उनका अपना एक खूबसूरत अंदाज है, तो उसमें वो बेहतरीन तरीके से इसको प्रसू करते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा मैं देखूँ कि आज इस्लाम के जहन में अगर उसे कहा जाए कि आज के प्रोग्राम में कोई टॉपिक रखना है तो वो कौन सा टॉपिक होगा। वैसे तो मैंने एक प्रोग्राम में एक टॉपिक रखा हुआ है, शऊर और लाशऊर को समझने की कोशिश में
1: हम मुश्किला है
0: नहीं मुश्किल नहीं है, जो जहन में चल रही होती है ना चीजें, वो चीजें मैं रखने की ज्यादा कोशिश करता हूँ, क्योंकि वो जरा उस पर बात करना आसान भी होता है, हकीकत के करीब तरीन भी होता है, आप गुजर भी रहे होते हैं कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजें महसूस हो रही होती हैं जो पहले कहीं आपको याद हुआ करती थीं या हाफिजे से गुजरी थीं, नज़र से गुजरी थीं, मेमोरी का हिस्सा बनी थी, लेकिन वो कहीं बहुत पीछे छूट गईं। बहुत सारी कुछ पावर्स भी हो सकती हैं आपके पास जो पहले कभी आप इस्तेमाल किया करते थे, सोचने समझने की सलाहियत पहले ज़रा ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ कुछ चीज़ें मान भी पड़ जाती हैं, ख़राब भी हो जाती हैं, ख़त्म भी हो जाती हैं, कम भी हो जाती हैं। लेकिन क्या हम किसी ना किसी तरीके से उन तमाम चीज़ों को जो हम भुला चुके हैं या उन पावर्स को जो जिनको हम जानते नहीं हैं लेकिन हमारे अंदर मौजूद हैं, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा हैं, हम बहुत सारी चीज़ें उससे ठीक कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं शऊर का हिस्सा बना पा रहे और उसे क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में किसी कामयाबी की या किसी बेहतरी की वजह क्यों नहीं बना पा रहे, इसको आज का एक टॉपिक मैंने रखा हुआ है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं।
1: इसको हम करते हैं,
0: इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आज तुम्हें कहा जाए कि आज तुम आए हो ना, तुम्हें टास्क दिया जाए कि
1: तुम्हें इसी के साथ टॉपिक जो आपने बड़ी खूबसूरती से एक वो कहते हैं ना बुना है ना एक,
0: हाँ
1: जैसे स्वेटर बुनते हैं तो अल्फाज के साथ,
0: पता है
1: तो
0: तुम्हें कैसे बुनते
1: हैं? नहीं मुझे आता
0: नहीं। पुराने जमाने में कैसे वो दादियां वो बुनती थी ना, दो एक लंबी लंबी
1: धागे के साथ और सुई के ऊपर उसको चढ़ाना बड़ी तरतीब के साथ,
0: और वो किस तरह से बुन लेना, उनमें अलग अलग कलर्स भी हुआ करते थे बाजों का, ये बहुत बड़ा
1: आर्ट होता था जो आजकल खत्म होता जा रहा
0: है। और वो जो स्वेटर था उसमें सर्दी नहीं कभी लगती थी,
1: अभी तो आगे सर्दियां भी आने वाली
0: है, इसलिए मैंने कहा। बहरहाल तुम्हारा टॉपिक जो है वो
1: Yes.
0: हम सुनेंगे, एक ट्रैक प्ले करते हैं,
1: लेकिन एक ट्रैक के बाद
0: हाँ एक ट्रैक प्ले करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। सो गर्ल्स एंड बॉयज आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि बना पाए तो ज़रूर बनाएंगे

0: ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। 11:24 हुआ चाहते हैं। मैं हूं, मेरे साथ इस्लाम मौजूद है और चाय भी है साथ में। कल देखा था आसमान पे चांद जो था वो पहली तारीख का था या फिर शायद दूसरी तारीख का था। हाँ तो इस्लाम, कुछ सोचा टॉपिक के बारे में? तुम्हारे जहन में कोई टॉपिक है? अदील भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। अदील भाई, खाना खाया आपने? अच्छा लगा आपको खाना खाना?
1: तो सर, ये सोचा है कि जो आपने जो है वो
0: चल रहा वैसे आज जरा तुम इतने खलो के देखना, जरा चल रहे है? लेकिन पता नहीं लग रहा कि चल रहे हाँ
1: तो वो हम इसको इसके साथ जोड़ें कि क्योंकि जो डॉक्स हैं उनका जो प्रोग्राम का एक ऐसा क्राइटेरिया है कि वो उसमें लोगों को खुश रखते हैं या खुश रखने वाली बातें करते हैं।
0: हाँ।
1: तो हम भी आज ये बात करें कि आखिर खुश रहा कैसे जाए।
0: अच्छा, खुश कैसे रहा,
1: खुश कैसे रहें और इतने मसाइल और इतने गंभीर मसाइल और इतनी परेशानियां हैं, जहद मसलसल है, ये सारा कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हम खुश कैसे हों, चेहरे पे मुस्कुराहट कैसे रखें, आखिर क्या सोचें या क्या समझें या ऐसा क्या करें कि इतनी परेशानियों के बीच में हमें छोटी छोटी खुशियाँ मिलें, हम उन्हें ढूँढें, तलाश करें और मन ही मन में शायद थोड़े या कम वक्त के लिए या कम लम्हात के लिए खुश हूँ।
0: अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ना तुम एक बात भी कर रहे थे
1: और ये बात करते हुए आप खुश हैं
0: बात भी कर रहे थे, एक बड़ी मजे की बात थी कि मुझे लगता है कि मैं अपने दौर से किसी और दौर में, किसी और दौर का इंसान बन के आ गया हूँ कि मैं आजकल के जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, उनमें बैठने का दिल नहीं चाहता या फिर उनसे बात करने का दिल नहीं चाहता या उनकी तरह करने का दिल नहीं चाहता जो वो चीज़ें मशगले अपनाए हुए होते हैं। तो मेरा दिल चाहता है मैं मीनारे पाकिस्तान ना घूमूं मुझे लगता है कि जैसे ये आवारा पनती है तो इसके बारे में तो बताओ मुझे कि क्या वजह क्या है इसकी?
1: वैसे लाहौर में बैठ के मीनारे पाकिस्तान ना जाना ये तो ऐसे ही है कि वो
0: क्या ज्यादा, अच्छा आवाज ज्यादा जा रही, ठीक है। हाँ,
1: जिनने लाहौर नहीं देखा वो जम्मे ही नहीं।
0: अच्छा
1: तो, हाँ कहते हैं, ऐसे सुना था, जैसे कहते हैं ना जो ईरान का एक शहर है इस्फहान, वो निस्फ जहान है, ऐसे ही लाहौर के बारे में कहते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जम्मे ही नहीं। तो आपने ये बिल्कुल ठीक पूछा, मुझे ये इन चीज़ों का शायद सैर व तफरी का या सियाहत का जो है वो शौक,
0: खुशी किस में मिलती है तुम्हें? मैं दरअसल ये पूछना चाह रहा था, मैं दरअसल ना थोड़ा सा चीज़ें और भी बीच में चल रही हैं,
1: खुशी
0: हाँ, तुम्हें किस में, मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरा अपनी, मैं अपनी बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि आवारा गर्दी में बड़ी खुशी है मुझे।
1: हाँ।
0: मुझे आवारा गर्दी में बहुत खुशी मिलती है।
1: कुछ लोग समझते हैं ऐसे।
0: हाँ नहीं, सच में बहुत खुशी मिलती है ऐसे किसी जगह पे निकल जाना जिसके बारे में शायद हिस्ट्री का उतना इल्म नहीं है, लेकिन दिल चाहता है कि कहीं कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे जाएं और बस गुम हो जाएं, अपनी पुरानी जिंदगी को कुछ देर के लिए भूल जाएं, और चाहे वो खुशी भरी हो चाहे जैसी भी हो, लेकिन हम उसको भूल जाएं और बस वहाँ का नेचर, उस जगह का माहौल, उसमें खो कर कहीं रह जाएं, एडजस्ट हो जाएं उसमें। नहीं, मेरे पास नहीं, उधर मेरे ख्याल से MCR में, मैं हमेशा ही भूल जाऊंगा। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि खो जाएं, मैं खो जाता हूं उन जगहों पे जाके, चाहे लाहौर की बहुत सारी जगहों को, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं है, मैंने आवारागर्दी बहुत की है लाहौर में, हर जगह को, हर जो हिस्टोरिक प्लेस है, मुझे हिस्ट्री से बहुत ज्यादा लगाव है। तो इस्फहान की तुमने अभी बात की, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, जो निस्फ जहान की तुमने बात की तो उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हिस्टोरिक जो प्लेसेस हैं यहाँ पे, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे खेल रहे हैं उनको पता ही नहीं है। मैं फिल्म करने के लिए गया एक जगह पे, तो वहाँ पे जब मैं फिल्म कर रहा था, वो मकबरा था दरअसल, एक बहुत मतलब कि रईस जो मतलब कि मलिका हैं और एक शायरा थी, वो उनका मकबरा था। तो मैं अब वहाँ पे फिल्मिंग कर रहा हूँ, तो लोग आके मुझसे कह रहे हैं, भैया क्या फिल्म कर रहे हैं आप, हमें फिल्म कर रहे हैं, हमें बताएं, हम आपके लिए शॉर्ट्स, क्रिकेट खेल रहे थे ना बच्चे तो हम शॉर्ट्स लगाते हैं, तो आप वो वाली फिल्म करें ना जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हम देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपको भी फिल्म कर रहा हूँ, लेकिन कुछ शॉट्स ले रहा हूँ वैसे ही आप लोगों के भी, कि यहाँ पे लोग खेल भी रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो ये चीज़ है आपको इसके बारे में पता है? कहता नहीं। मैंने कहा मैं पहली बार आया हूँ तो मैं इसके बारे में रिसर्च करके पढ़ के आया हूँ।
1: यस।
0: तो क्या है ये? मैंने कहा ये मकबरा है एक, और ये इसमें जो दफन है इस वक्त वो एक वक्त में मलिका रह चुकी हैं, और जहाँ पे आप खेल रहे हैं ये सारे तालाब हैं, मतलब जिस जगह से मैं खड़ा होकर आपकी फिल्मिंग कर रहा हूँ ये रास्ता है। अच्छा।
1: और उन्होंने पता ही नहीं?
0: नहीं, उनको नहीं पता, मतलब नहीं पता होता ना बहुत सारी, लेकिन मुझे देखिए मुझे बड़ी खुशी मिलती है मतलब मुख्तलिफ हिस्टोरिक प्लेसेस को विजिट करने की, आवारागर्दी ना।
1: यस।
0: लेकिन तुम्हें किस चीज़ में खुशी मिलती है, क्योंकि तुमने तो पहले ही कह दिया कि पायन मेरे लिए आवारागर्दी।
1: मुझे यस, मुझे दोस्तों में बैठना और उनसे खूब बातें करना, और मेरे कुछ चुलबुले दोस्त भी हैं क्लास में हैं, और कुछ हमारे साथ उधर गांव में भी हैं, उनके साथ बैठना, घंटों बातें करना और फिर डिस्कशन करना, और इस बात के ऊपर हंसना कि यार वो किसी जगह अगर वो गए हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, और वहाँ पे ऐसे ऐसे मोमेंट्स जो मतलब खुशी के होते हैं, जैसे आपने कहा ना कि वो लड़कों को पता ही नहीं था, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं नहीं जाता तो मुझे जो लोग जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी आप बीतियाँ लिखते भी हैं, तो मुझे उन लोगों को पढ़ के मज़ा आता है कि यार खुशी होती है कि यार ये देखो ये गया था वहाँ पे और इसने जाके ये वहाँ पे इसका जो एक्सपोजर था वो था, तो वो मुझे पढ़ के एक फील आ रही होती है कि शायद मैं उस जगह पे खड़ा हूँ या मैं उस जगह गया हूँ, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा खुशी दे रही होती है, कि बजाय इसके कि मैं, जैसे आपने कहा कि मैं खुद जाऊँ वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जब आप किसी जगह पे जाते हैं तो वो फिर आपको साथ जो है वो थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, चल के जाएं, जैसे मीनारे पाकिस्तान अगर फ़र्ज़ किया यहाँ से हम जाएं, बाहर निकलेंगे, गाड़ी लेंगे, उधर से जाएंगे गर्मी में, तो ये थोड़ा मज़े वाला तो होगा कि अगर आपको शौक़ है तो आप जाएंगे कि यार मैं एक जगह जा रहा हूँ, तो ये कितना अच्छा लगता है कि यार वहाँ पे जब आप पहुँचेंगे आप उसको गौर से देखेंगे, जब देखेंगे तो आपको खुशी मिलेगी। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि एक किताब हो, या मतलब आप वहाँ पे जाते हैं सारा एंजॉय करते हैं और आके आप लिख देते हैं कि मैं इस तरह गया वहाँ पे, ये मैंने वहाँ पे देखा, तो मुझे आपको पढ़ के वो फील आ जाएगी, तो मैं इस तरह खुश हो जाऊँगा, तो मैं इस तरह खुश होता हूँ।
0: हाँ, नहीं, हर इंसान के हर सवाल का जवाब डिफरेंट होता है, हर इंसान के लिए।
1: हाँ, जवाब गलत नहीं होता, अगले
0: डिफरेंट
1: के मुताबिक
0: डिफरेंट होता,
1: आगे पीछे होता
0: है। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इससे ना एग्री करना चाहिए हमें, उसको इतना हमें मौका देना चाहिए कि वो खुलकर अपने ख्यालात, अपनी बातें, अपने एहसासात हमसे शेयर कर पाए, और बगैर किसी जजमेंट के हम उसको सुन भी पाए, और फिर हम उसको महसूस कर पाए कि हाँ यार उसको किताबों की खुशबू शायद अच्छी लगती है,
1: और कहें कि बोल
0: वर्क पलटने की आवाज उसको शायद अच्छी लगती है,
1: यस,
0: उसमें लिखा हुआ जो मौजूद है वो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि वो अपना ज़ाती तौर पर वहाँ पर पहुँचकर उस चीज़ का एक्सपीरियंस ले सके जो वो किताब में पढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किताबें पढ़ते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिकली वहाँ पर पहुँचने से पहले जान चुके होते हैं,
1: yes, हाँ,
0: और अपनी ज़िंदगी में भी इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से आप दरअसल उस जगह पे पहुँचे होते हैं जहाँ पे वो लिखने वाला बहुत अरसा लिखने के बाद पहुँचा, और उसने अपनी याददाश्त में उसको समेटा और फिर लिख कर दूसरों तक पहुँचाया। yes. ये एक बहुत बड़ी दौलत है, ये जो किताबें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन हैं, ये बहुत बड़ी दौलत है कि हमारी अपनी ज़िंदगी में बाज़ औक़ात हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। बहरहाल, आप जो लोग सुन रहे हैं आप बताइए कि आपको खुशी किस में मिलती है, कौन से लम्हात हैं जो आपको खुश कर देते हैं। इस्लाम को तो दोस्तों के साथ, चुलबुले दोस्तों के साथ, या फिर गांव में बुजुर्ग दोस्त जो हैं उनकी उम्र की उन्होंने कैद नहीं रखी, उन्होंने कहा दोस्त हैं मेरे, तो दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है, उनसे खुश गप्पियाँ, उनके खुशी के लम्हात सुनना उन्हें अच्छा लगता है, और बुझे हुए लोगों को भी देखना अच्छा लगता है।
1: जैसे कि
0: मुझे तुम कह रहे थे यार आप आज बुझे हुए नहीं,
1: आप तो आज खुश लग रहे हैं क्योंकि ये डॉग्स का शो है तो बहुत मजा आ रहा है कि यार ये तो मैं, अगर हमारे आसिफ साहब सुन रहे हैं तो सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज जो है वो गैर हाजिर हैं, इसी वजह से
0: नहीं, नहीं, नहीं।
1: जो आप हैं वो बहुत खुश हैं।
0: नहीं नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ये तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो वैसे।
1: नहीं नहीं
0: ये आप... मतलब कि वो नहीं है तो मैं खुश हूँ।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब नहीं, नहीं, नहीं, वो नहीं, किसी काम से गए होंगे।
0: नहीं, नहीं, नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, बाज़ूकात हो जाती है हमसे ऐसी कोई गलती जो अल्फाज जो है वो ऐसे निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उस उनकी गैर हाजिरी की वजह से खुश हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दरअसल इस प्रोग्राम की वाइब के साथ थोड़ा सा मैच हो रहा हूँ। वो जो तुम बुझी हुई बात कर रहे हो वो बुझा हुआ नहीं होता, वो मेरा एक स्टाइल होता है। बाज़ूकात किसी एक्टर को देखा है कि वो किसी ड्रामे में उस किरदार को निभाने के लिए बिल्कुल वैसा हो जाता
1: है, तो हमें लगता है कि वो शायद वही है।
0: वही है, वो वैसा होता नहीं है, मतलब वो डिफरेंट तरीके का इंसान होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ इंसान में एक रंग नहीं होता या उसका रुख सिर्फ एक जैसा नहीं होता। यानी तस्वीर के एक रुख को हमें नहीं देखना चाहिए, उसके हजारों रुख हो सकते हैं। जिस वक्त वो तस्वीर ली गई उस वक्त उसके सेंटिमेंट कैसे थे, उसके ऊपर क्या चीज़ें चल रही थी, उसके एक्सप्रेशंस कौन से वहाँ पे उस वक्त मौजूद हुए आ गए, हम उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो टोटल इंसान हमेशा वैसा ही रहा होगा। हो सकता है उस वक्त उसके ऊपर और तरह का वक्त चल रहा हो, खुशी का वक्त चल रहा हो कि उसकी स्माइल बहुत खूबसूरत उसमें नज़र आ रही है उस तस्वीर में। लेकिन जब उससे फिजिकल कभी मिलने के लिए जाए तो उस वक्त वो बिल्कुल एक अलग तरह का उजड़ा हुआ इंसान महसूस हो रहा हो कि हम तो तुम्हें देख के आए थे, बड़ी मुस्कुराहट और बड़ा खूबसूरत तुम्हारा चेहरा था, लेकिन इस वक्त तुम्हारा चेहरा बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। तो हमें उससे अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए ना पहुँचना चाहिए उस जगह तक, मुझे ऐसा लगता है।
1: हैं कवाकब कुछ
0: ना, हर इंसान के ना हज़ारों रंग होते हैं। और मैंने ये कहा, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ कि हर रंग सच्चा रंग होता है, उसका हर रंग सच्चा रंग होता है। तो फिर से बता दूं कि मेरे अंदर कई रंग हैं और सारे के सारे मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सच्चे रंग हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसान के कितने रंग होने चाहिए, क्योंकि रंग तो गिरगिट भी बहुत सारे बदलता है।
0: हाँ, और गिरगिट को हमने क्यों मतलब कि गलत नेगेटिव चीज से तशबीह दे रखी है।
1: हाँ, लोग ऐसा कहते हैं।
0: हाँ नहीं, देखा
1: लोग ऐसे
0: देखा, तुमने पढ़ा बहुत कुछ हुआ, मैं आप तुम्हारी सारी गलतियां दुरुस्त करूंगा। नहीं नहीं, हमने उसको क्यों नेगेटिव चीज के साथ बना रखा है। वो तो खुदा की एक मखलूक है, वो तो अगर किसी पत्ते पर बैठता है उसका जो रंग होता है वैसा वो हो जाता है,
1: डल जाता है उसमें।
0: वो किसी ट्रांसपेरेंट जगह पे बैठता है तो वैसा रंग उसका हो जाता है। वो किसी कपड़े को देखता है उसके रंग की तरह वो तब्दील हो जाता है। वो अगर किसी ग्रास पे बैठता है तो उस तरह का हो जाता है, पता नहीं चलता उसका। तो ऐसा अच्छा नहीं लगता कि बाज़ औक़ात हम अगर किसी अस्फहान में गए, वहाँ पे जाने के बाद हम उनकी तरह के हो गए, हम उनकी तरह लोगों को मिलने लगे, उनकी ज़बान बोलने लगे, तो हम ये रंग हमारा चेंज हुआ ना। हम दरअसल एक उर्दू स्पीकिंग या फिर पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से हमारा ताल्लुक, हम पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक, लेकिन हम वहाँ पे गए अगर उनकी ज़बान बोलने लगे, उनके अंदाज में बात करने लगे, उनके कल्चर को समझने लगे, तो ये हमारा रंग थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, चेंज तो हुआ ना हमारे अंदर, तब्दीली तो आई ना हमारे अंदर। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई नेगेटिव है। इंसान के कई रंग हो सकते हैं। वैसे तो डॉग्स की तुम बात कर रहे हो तो डॉग्स कहते हैं कि चार तरह का इंसान होता है। एक वो जापानीज़ वाली कहावत जो उन्होंने तीन उन्होंने कहा है कि तीन तरह के इंसान होते हैं। एक हम वो होते हैं जो दुनिया के सामने होते हैं, एक तुम वो हो जो मेरे सामने हो, एक वो हो जो तुम अपने साथ हो, तुम्हें पता है कि तुम कैसे हो, यस अकेलेपन में, एक वो हो जो तुम दोस्तों के साथ हो। दुनिया के साथ प्रोफेशनली डिफरेंट होता है, दोस्तों के साथ डिफरेंट होता है, अपने साथ डिफरेंट होता है। तो उसके ये तीन रंग, और चौथा रंग एक डॉग्स और भी वो कहते हैं, वो पता नहीं कौन सा है, बहरहाल वो मेरे ज़हन में नहीं। तो वो भी एक रंग है, और मुझे ऐसा लगता है कई रंग है इंसान के।
1: चार से भी ज्यादा है आपको लगता है?
0: नहीं, बहुत ज्यादा है, बहुत सारे रंग है इंसान के। जैसे 27 से 28 इमोशंस है ना इंसान के अंदर मौजूद, एक दो इमोशंस नहीं है कि सिर्फ रोता है और हंसता है, ये दो तीन इमोशंस नहीं है, झिझक का इमोशन भी है उसके अंदर, उसके अंदर उकताहट का इमोशन भी है, उसके अंदर गुस्से का इमोशन भी है, उसके अंदर खुशी का भी है, सरशारी का भी है। आंसू निकलते एक ही रंग के हैं लेकिन उनका डिफरेंट मतलब भी हो सकता है,
1: जैसे खुशी के आंसू,
0: यस जैसे खुशी का आंसू होता है, जैसे गम का आंसू हो सकता है। तो इसी तरह इंसान के ना जैसे कई इमोशंस हैं ना, और डिस्कवर हो चुके हैं अभी तक 27 से 28 इमोशंस। इससे पहले 6 से 7 1956 में दो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे 6 से 7 इमोशंस होते हैं। 1986 के अंदर इमोशंस की तादाद थोड़ी सी और बदल गई, यानी उनके अंदर से खवास निकलने लगे ना, जैसे मुख्तलिफ एक ही कोई एक समझ लो, मैं नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, एक साबुन है उसके कई वेरिएंट हैं, ऑरेंज है उसका, एप्पल है उसका, बहुत सारे, जैसे कोई एक टूथपेस्ट है उसके कई सारे वेरिएंट्स हो सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। इसी तरह इमोशंस में से आगे बहुत सारे छोटे छोटे सब इमोशंस जो है ना वो निकल रहे होते हैं और उनको भी वो डिफरेंट तरीके से हम समझ रहे होते हैं, जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बारे में कभी पढ़ा है तुमने?
1: नहीं, इमोशंस के ऊपर मुझे तो लगता है आपने पीएचडी
0: नहीं, मैं आपके बारे में, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ आपने इमोशंस के बारे में।
1: वैसे आपने जितने बताए हैं मुझे वाकई लगा कि हाँ ज्यादा हैं।
0: हाँ,
1: मुझे लगता था कि हंसी है या बंदा हंस लेता है या रो लेता है या
0: हंस लेता है।
1: हंस
0: वाला नहीं,
1: हंस नहीं,
0: लिखना वैसा ही हंसी है लेकिन पढ़ना हंस है।
1: अच्छा, हंस लेते
0: हैं, हंसते हैं,
1: शुक्रिया दुरुस्तगी के लिए। हंस लेता है, रो लेता है, हैरान हो जाता है, गुस्सा आ जाता
0: है। हाँ, ये देखो 4-5 तुमने गिनवा दिए।
1: और क्या, एंजॉय भी करता है,
0: सोचने की बात है ना।
1: हाँ,
0: ये
1: इमोशंस हमारे सोचने के साथ रिलेट करते कर रहे होते हैं, या मतलब हम जो सोच रहे होते हैं वैसे ही हो रहा होता है? जैसे कि अगर मैं इस वक्त सोच रहा हूँ कि यार मैंने
0: इस
1: अपने
0: वक्त
1: दोस्तों के साथ एंजॉय,
0: इस वक्त मुझे बताओ तुम सच में क्या इमोशन फील कर रहे हो अपने अंदर? इस वक्त गुफ्तगू के दौरान कितने इमोशंस मैंने तुम्हारे अंदर देखे हैं अभी? हाँ, मतलब आते हुए बाज़ुकात इमोशंस जो है ना वो इंसान की आंखों से वाजे हो जाते हैं,
1: आंखों से।
0: और कभी कभी अगर तो आप बहुत ज़्यादा डीपली उस इंसान के साथ इन्वॉल्व होकर उससे गुफ्तगू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी जैसे अपनी पूरी हिस्सियात को यकजा करके उसकी तरफ आप सोचना कि यार मैं उसके साथ मौजूद हूँ, तो उसको मालूम होना चाहिए मैं उसके साथ मौजूद हूँ, यानी उसकी अंदर की वाइब्रेशंस को ये पता होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को जब किसी से बात करना है, बात करने का दिल चाह रहा है, तो आपको मुकम्मल तौर पर उसके सामने उसके लिए मौजूद होना चाहिए,
1: तवज्जो देनी चाहिए,
0: तवज्जो पूरी देनी चाहिए उस पर। तो मेरी पूरी तवज्जो है तुम्हारे ऊपर इस वक्त और तुम्हारी भी है।
1: मैं नाकाबिल भी हूँ वैसे,
0: हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारे अंदर बहुत सारी खसूसियाँ।
1: अभी थोड़ा ना मैं मतलब उस
0: मिक्स इमोशंस में चल रहे
1: कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि
0: कंफ्यूजन सी है।
1: पहली दफा मैं इतना ज्यादा बोल रहा हूँ किसी शो में और वो भी आपके साथ ही, आपने मौका दिए। कम बोलता हूँ, पहले मैं खुद ही कम बोलता हूँ।
0: हाँ,
1: लेकिन आज तो आपने जो है ना वो एक मौका दे दिया, तो मैं बस समझ नहीं आ रहा कि मैं किस राह पे जाना है। तो बहुत सारी राहें खुली हुई, बस किसी एक पर।
0: ये कंफ्यूजन का इमोशन मैंने महसूस किया था, इस वजह से मैंने कहा बहुत सारे इमोशंस हैं इंसान के, और वैसे इनमें एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा है।
1: हाँ,
0: हर इमोशन में,
1: जाहिर
0: है, हर इमोशन में, चाहे वो कंफ्यूजन का इमोशन है, चाहे वो खुशी का इमोशन है, उसमें तो बहुत ज्यादा होती है ना आपको कि यार मुझे वो चीज मिलने वाली है जो मैंने सबसे ज्यादा पसंद की थी, उसके साथ मेरी शादी भी होने वाली है, ऐसा भी तो सोच रहे हैं। इस्लामाबाद में जाने के बाद मजा आ गया था,
1: ऑनर कर रही
0: है, हुस्न को देखने का मजा आ गया था, वहां की रंगीनियों को देखने का मजा आ गया था, पहाड़ों को देखने का मजा आ गया था, यस, और झीलों को देखने का तो वैसे ही बड़ा मजा। मतलब मैं तो बहुत इमोशनल हो जाता हूँ जब भी मैं अदील भाई को देखता हूँ। एनीवेज 11:43, बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, और आज हम डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारे प्यारे से अपकमिंग आरजे को। क्या नाम है उनका? इस्लाम।
1: इस्लाम,
0: yes. अच्छा, तुमने जो अपना नाम रखा है, ये समझ लो कि तुम एक रेडियो ब्रॉडकास्टर बन गए, तो तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस किस तरह से करोगे कि आपके साथ कौन मुझे? आज ऐसा करो कि अपने आप को ना इंट्रोड्यूस करके बताओ।
1: यस,
0: हाँ, चलो
1: हम फर्ज करते हैं जो है वो मॉक टेस्ट चल रहा है एक ऐसा कि मैं एक आरजे हूं।
0: नहीं, टेस्ट नहीं चल रहा
1: ना,
0: टेस्ट नहीं चल रहा है, कोई जज नहीं करेगा,
1: मैं खुद से कंज्यूम,
0: कोई जज नहीं करेगा, लेकिन सारे जज करेंगे, तो मैं बता रहा
1: हूं,
0: सारे जज करेंगे, लेकिन मेरा दिल ये, अच्छा, जज भी करेंगे पूरी दुनिया के लोग, इस वक्त ये पूरे नेटवर्क पे चल रहा है और इसको इम्तिहान नहीं समझना, और समझना भी है।
1: अब फाइनल बताएं, समझना है कि
0: मैं रखना चाहता हूँ दरमियान में कहीं, तो मैं
1: नीचे बीच है, चलो सही है,
0: जरा बीचों बीच है,
1: चलें शुरू।
0: तो ये दरअसल ना थोड़ी सी लोगों को बीच में शामिल करवाने के लिए ना थोड़ी
1: एक्साइटमेंट हो जाए ना बड़ा,
0: कि कुछ आने लगा है, कुछ आने लगा है, कुछ ऐसा आने लगा है कि तो दरमियान में कहीं, तो मैं
1: नीचे बीच है, चलो सही है,
0: जरा बीचों बीच है,
1: चलें शुरू।
0: तो ये दरअसल ना थोड़ी सी लोगों को बीच में शामिल करवाने के लिए ना थोड़ी

0: भी हमारे प्यारे सुनने वाले हैं,
1: कापी पेंसिल ले लें फिर।
0: हाँ नहीं, आपने जहन
1: या फिर वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेंगे, हमने उनको बाद में बताना है, दो साल के बाद जब वो पॉपुलर आरजे बन जाएंगे, पायना वेखो रिकॉर्डिंग की थी उसे।
0: ये वही वाला इस्लाम है ना,
1: रहमान अनवर के साथ बैठ।
0: चलें जी, हम शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? हम शुरू करेंगे अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम अहले पाकिस्तान। हमें कहते हैं FM 101 चैनल पाकिस्तान, और मुझे कहते हैं मोहम्मद इस्लाम, और आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, वो टॉपिक आपके कानों की समातों को खुश करेगा और आप दिल ही दिल में बहुत खुश होंगे। हम गम के ऊपर बात करेंगे, हम हंसी खुशी की बात करेंगे, और बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको सुन के मज़ा आने वाला है। अब ये इसको एक तरह से करवा दिया, लेकिन ये कि अब जब जाहिर एक प्रोग्राम मिलेगा तो हम उसमें मैं खुद एक पूरा जो है वो अपने ऊपर काम करूँगा कि आखिर खुशी के ऊपर, खुशी के टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, या क्योंकि वो टाइम स्लॉट के ऊपर भी जो है वो डिपेंड करेगा। आप जो करते हैं 12 से 2 वाला, वो सुन के इंसान जो है वो झूल रहा होता है, उसको मज़ा आ रहा था, झूम रहा होता है ना, तो वो एक अलहदा से आपकी एक एक एक एक एक उसको कह लेंगे एक तरह से है, एक रंग में जिसमें आप ढल जाते हैं। और एक डॉग्स हैं देखें, वो नाइट थ्रॉपी करते हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि यार हमारा दिमाग फ्रेश हो रहा है। तो उनके उनके एक टाइम स्लॉट के हवाले से और उनकी तबीयत के हवाले से, और फिर जो उन्होंने अपना जो है वो जिस टॉपिक को वो सिलेक्ट करते हैं उसको वो इंगेज कर देते हैं। तो अभी मैं इसको सीख रहा हूँ, तो मैं ये सोचूंगा कि कंपैरेटिवली कि किसको मुझे करना है,
1: किस तरह से करना,
0: हाँ किस तरह से करना है,
1: नहीं किसको नहीं करना, तुम्हें इस्लाम अपना करना, बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा।
0: नहीं, इंसान देखता भी है ना, क्योंकि हर चीज जो है वो हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर देखते हैं कि यार हमें क्या अच्छा लगा। तो जाहिर है उस तरह से इंसान कॉपी तो बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन ये कि फिर भी कोशिश करेंगे कि हम बेहतर करें उसको, अपने लिहाज से बेहतर करें, अपना 100% दें, ताकि हम भी अपना नाम और अपना मुकाम जो है वो उस फील्ड के अंदर पैदा करें, ताकि पता चले कि लोग हमें भी जानते हैं और हम भी कुछ अपना टैलेंट जो है वो शो कर रहे हैं।
1: ज़बरदस्त,
0: और ये लोग इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है कि हम अपकमिंग आरजेस जो हैं वो, और स्मित मेरे, हम आप जैसे सीनियर्स से सीखें और सीख के आगे बढ़ें। ये चीज़ें इंशाल्लाह हो जाएंगी, बहुत जल्द हो जाएंगी।
1: थैंक यू वेरी मच इस्लाम, बड़े खूबसूरत तरीके से ना तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और अंदाज तुम्हारा खूबसूरत था, और ठीक है, वक्त के साथ साथ चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाया करती हैं, और चेंज भी हो जाया करती हैं, बेहतर भी हो जाया करती हैं, सब कुछ हो जाता है। बाय द वे 11:47 हो चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं आपसे, और एक ट्रैक यहाँ पे, यार ये वाला ट्रैक आज सुनने का बड़ा दिल चाह रहा है। यस, अली जफर की खूबसूरत आवाज़ प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं, और ओ माय गॉड क्या ये ट्रैक है, बहुत खूबसूरत सा, इसको सुनते हैं, इसके बाद वापस आते हैं। आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। आपके साथ है आपका मेजबान रहमान अनवर। 11:48 10:50 पे आपको बताया था, वक्त पर लगाकर उड़ता है इस प्रोग्राम में, पता ही नहीं चलता, और इस्लाम आ गया तो बिल्कुल पता ही नहीं चला ना। चाय भी तो लेके आया ना, इतनी मजे की चाय थी, बहुत ही मजे की चाय थी। लेकिन दुख मुझे ये है कि ये तुम डॉग्स के लिए लेके आए थे, तुम मुझे यार आके यही कह देते कि नहीं यार आपके लिए लेके आया हूँ, विच तू फिर क्यों कीता यार, मैंने जेलसी मेनु क्यों कराई है,
0: फ्लो में निकल गया ना।
1: निकल जाता है, बस इसी पे हमने काम करना,
0: गलती माफ।
1: आए नहीं, सारा हैदर और अली जफर की खूबसूरत आवाज, ए दिल।

0: राइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और 11:54 हुआ चाहते हैं इस्लाम, और तुमने अब तो हेडफोन भी पहन लिए हैं ना।
1: यस,
0: अब तुम्हें जरा ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई दे रहा होगा।
1: हाँ जी सर, कॉल्स आ रही, कॉल्स भी लें क्योंकि डॉग्स कॉल्स भी लेते होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कॉल्स तो हमें साथ साथ आ रही हैं। और एक कॉल देखो कैसे मजे की बात है कि एक कॉल हम रिसीव करेंगे सिर्फ ये इस प्रोग्राम के अख्ताम, बिल्कुल अख्ताम के करीब करीब प्रोग्राम है क्योंकि 5 मिनट बाकी रह गए हैं। सो अस्सलाम वालेकुम जी।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं जी, क्या नाम है आपका?
2: जी रिमशा।
0: रिमशा क्या हाल है आपकी, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो, तबीयत ठीक है?
2: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस मेरी मामा की थोड़ी सी तबीयत डाउन है।
0: अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और आप पर हमेशा उनका साया कायम दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ रिमशा, क्या कहना चाह रही हैं आप, क्या है इस वक्त दिल में?
2: मैं अपनी खुशी की बात बताऊँ, अगर जिस दिन मुझे कोई काम ना कहे तो मैं खुशी खुश हूँ।
0: क्या कहा आपने?
1: वो कह रहे हैं जिस दिन मुझे कोई काम ना हो मैं खुश
2: हूँ। काम ना करने का
1: ये भी ठीक है।
0: अच्छा मतलब जिस दिन आपको मामा ये ना कहें कि बेटा उठ, सब्जी नहीं बनाई हले तक, कट्टी नहीं तू है हले तक, पांडे नहीं तोते तू है हले तक, सफाई कोई मतलब झाड़ू पोंछा ली गई तू है हले तक, वो थले वो क्या लगाते होते हैं,
1: पोंछा लगा,
0: पोंछा नहीं लगा है, ये सब ना कहे तो फिर उस वक्त तक जो है ना वो मतलब अगर ये ना कहें तो फिर आपको खुशी मिलती है। ये कहा आपने? नहीं कोई काम होता किसी दिन, मामा नहीं करने देती?
2: किसी दिन नहीं कर, मैं नहीं करने देती।
0: सुन रही है ना आपकी मामा, तो वो प्लीज उनको बता भी दे हैं। ये देख ले आपकी बेटी क्या कह रही है कि जी जिस दिन इसको काम ना करना पड़े उस दिन ये खुश होती है, बताएं इसको खुशी क्या होती
1: है। तो रोज ही काम लग जाएगा
0: फोन
2: खुद, तो वो सोई हुई है इसलिए मैंने आज ये बात की है।
0: अच्छा हाँ, नहीं मतलब कि उनके सामने तो नहीं ना की जा सकती, फिर उसके बाद तो फिर लितर बोल रही है ना,
1: छुट्टी कभी होगी।
2: मारती नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे वो अच्छी है।
0: कैसे नहीं मारती, ये तो गलत है ना। ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना कि मतलब दूर से हवाई एक चप्पल आती हुई नजर आ रही होती है लेकिन हम जितना मर्जी बचने की कोशिश कर लें उससे नहीं बच सकते हैं। माँ की चप्पल का मजा ही है।
2: अक्सर ना भाई ऐसा होता है, मामा का हाँ। माओ का निशाना इतना पक्का होता है,
0: बहुत पक्का होता है कसम से। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही
2: चाहे वो मारे दूसरे रुख से लिखती सीधी है।
0: मतलब अगर वो कहीं और भी फेंक दे, उन्होंने ये कहा है कि मैं मतलब कि लेफ्ट साइड पे खड़ी हूँ वो राइट पे भी फेंक दे तो वो वज के वापस आगे बच जाएगी। ठीक है ठीक है रिमशा, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी खुशी जो है ना ये है,
2: मैं घूम घूम आके बहुत खुश होती हूँ कि एक एक मतलब एक जगह से निकलना दूसरी जगह जाना मुझे बहुत मजा आता है घूमने।
0: इसको तुम कह रहे थे आवारा गर्दी है ना, देखो उसको भी घूम के इधर उधर जाना उधर उधर जाना उसे अच्छा लगता है,
1: लेकिन जब आप सारा कुछ
0: लेकिन रिमशा किधर किधर किधर जाना अच्छा लगता है?
2: कहाँ कहाँ, जैसे कि एक पार्क से निकलना दूसरी जगह जाना, जैसे विजिट करना हर चीज का,
0: हाँ
2: कोई काम ना हो बस ऐसी वादियाँ हो जहाँ पे बंदा घूमता है।
0: देखा
1: ना, मैं महरूम हूँ इससे।
0: तुम कितने महरूम हो यार,
2: करता है कि बंदा बस निकल जाए आवारा होके किसी,
0: हाँ किसी को जवाब देना हो इंसान बस निकल जाए और कोई प्लान भी ना हो, ना
1: सर फिरा होके निकल जाए,
0: लेकिन थोड़े जे पैसे तो होने चाहिए ना रिमशा। थोड़े जे पैसे तो होने चाहिए ना, नहीं मतलब कि रस्ते जे तो नहीं ना किसी को कहा जा सकता कि यार मेरी फ्लाइट बुक करवा दो या है। ठीक है और कुछ कहना?
2: और सभी सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, आज आपने बहुत कम काले किए हैं भाई।
0: ओहो यार ये मुझसे गलती हो जाती है।
2: आज आपको पता है मैंने 255 बार कॉल मिला के जाके मेरी मिली है।
0: देखो ये बहुत गलत बात की है मैंने, आज के बाद ये तुमने 255 ये कह दिया ना, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, 256-257 तक ना मैं कोशिश करूंगा कि थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया रिमशा, सलामत रहो, खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखो मजे की बात क्या है कि कॉल भी उसी की मिली जिसने 255 मर्तबा कॉल किया है,
1: खुशी की बात।
0: मुझे लगता है कल ही कर रही थी कॉल जरा कि 255 बार मिल गई इसकी कॉल है ना।
1: मिल भी गई
0: है ना, क्या क्या मजे की बात है ना, क्या मतलब। अच्छा चलो ठीक है यार, ट्रैक शामिल कर रहा हूँ जी। प्रोग्राम का बिल्कुल थीम चेंज हो जाएगा इसके बाद, और क्योंकि एक मिनट बाकी रह गया 12 बजने में, बहुत सारे ऐसे सुनने वाले हैं जो 12 बजने का इंतजार कर रहे होते हैं। इसके बाद जब वापस आऊंगा तो अलग अंदाज में आऊंगा।

0: बेशुमार खामोशियों में बटी हुई मैं एक आवाज जो पीछे मुड़ के देख नहीं सकती, ना ही पलटकर वापस आ सकती है। तमाम बातें जो मैंने तुमसे करना थी, तमाम बातों के हाथ पांव तो पहले ही सुन थे। तमाम बातें लगता है कहीं ऐन दरमियान से रास्ता भूल जाती हैं। अगरचे तुम्हारे कान बहुत हसीन हैं और कानों में बूंदे जैसे नूर से बने हुए कानों में किसी ने छोटे छोटे चांद लटका दिए हूं, और मेरे लब गोयाई और लम्स से महरूम। लकड़ियों की भी आवाज होती है, और ये तो लकड़ियां भी नहीं है। आंखों पर बहुत सी पाबंदियां होती हैं, अगरचे सिर्फ हयादार लोगों के लिए। मैंने आंखों से बातें नहीं की, मैं आंखों से बातें नहीं कर सकता। मेरा वक्कार और मेरी शान और मेरा हुस्न मुझे इजाजत ही नहीं देता। और फिर हुस्न सिर्फ नाक नक्शा ही तो नहीं होता, जब बहुत दिनों के बादलों के बाद खुशगवार धूप निकलती है तो जवाब में मैं भी मुस्कुरा देता हूं और थोड़ा बहुत हंस देता हूं। जब बहुत ज्यादा फूल खिलते हैं, बारिशों की तरह रोने वाले लोग कभी कभार ही हंसा करते हैं। और फूल भी कौन सा रोज खिलते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारी बातें बताना चाहता हूं। तुम्हें पता है मोहब्बत में, जिसमें तुम्हारी मोहब्बत भी शामिल है, मुझे बहुत ज्यादा हसीनो जमील बना दिया है। और गम में, जिसमें तुम्हारा गम भी शामिल है, बहुत ज्यादा बावक्कार बना दिया है। और खौफ में, जिसमें तुम्हारा खौफ शामिल नहीं है और जिस पर मैं गालिब आ गया हूं, बहुत ज्यादा बारौब बना दिया है। ये सब मिलकर मुझे बोलने नहीं देते और तमाम बातों से चिमट जाते हैं। तुम्हें पता है जब मैं सोचता हूं तो कितनी रोशनी फैल जाती है और तारीकियां डरकर भागने लगती हैं, और लाइलमी और बेखबरी और बेपरवाही सहम जाती है। और तुम्हें पता है मैं मोहब्बत के बारे में सोचता हूं और अम्न के बारे में और खूबसूरती के बारे में सोचता हूं। मैं खुश्क पत्तियों पर पांव नहीं रखता और ना मासूम और कमजोर कीड़े मकोड़ों को रौनता हुआ गुजरता हूं। बेसहारों को और मजलूमों को ठोकरे नहीं मारता। मेरे पांव बहुत हसीन हैं। मैं किसी को भी कुचल देने की ख्वाहिश नहीं रखता, सिवाय उनके जो दूसरों को कुचल देने की ख्वाहिश रखते हैं। और मेरी आंखें बहुत उजली और रूह शफाफ है, और मुझे यकीन है खुदा मुझे पसंद करता होगा, क्योंकि खुदा मुझे बहुत पसंद है। इसलिए पैगंबरों से मेरा प्यार बढ़ता जा रहा है। वो अजीब थे और खूबसूरत थे, बल्कि वो खूबसूरती से बहुत आगे थे, बहुत बुलंद, बहुत गहरे और वसी व अरीज। रात मेरे लिए किसी अजीब सवेरे की मानंद है। मैं गौर फिक्र करता हूं और अंधेरे मुझे रास्ता दे देते हैं, और मेरा दिल महक उठता है और चारों तरफ खुशबू फैल जाती है, रोशन और चमकदार खुशबू और रूह की तारों को छू लेने वाली खुशबू। मैं गौर फिक्र करता हूं, मेरा दिल आसमानों की तरह खुल जाता है, खिल जाता है, और शेर उतरने लगते हैं सफेद और पाकीजा परिंदों की तरह, लतीफ और कोमल। और मेरे शेर को पूरी तरह निखार कर रख देते हैं। मैं शेर को पूरी तरह महसूस करता हूं और फिर नए सिरे से जिंदा हो जाता हूं। गीत सुनता हूं, उन्हें चूमता हूं और उनके साथ दूर दूर तक घूमता हूं, और अक्सर गीतों को छूता हूं और दरख्तों को हेलो कहता हूं। दरख्त भी गुनगुनाने लगते हैं और मेरे हुस्न से मुतासर होते हैं। कभी कभी तो मैं गुनगुनाने लगता हूं इर्द गिर्द बिखरे हुए इंसानों का अलमिया गीत, और फिर शिद्दत और दीवानगी के बायस गीत में ढल जाता हूँ। मैं इंसानों का एक अलमिया गीत हूँ और इंसानों की समातों की दीवारों से टकराता फिरता हूँ और दिन ब दिन निखरता जा रहा हूँ। मेरा मुसलसल सब्र मुझे और ज्यादा सुरीला और दिल गुदाज और पुरसोज बनाता जा रहा है और मैं रंगीन होता जा रहा हूँ। कायनात के हल्के और मुलायम रंग मुझे सजाते जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम तक पहुंचना चाहता हूँ और तुम्हारी निगाह और तुम्हारी समात चूमना चाहता हूँ और तुम्हें अपनी नर्मो गुदाज रूह में समेटना चाहता हूँ। मैं मुख्तलिफ खामोशियों में बटी हुई आवाज, मैं मुख्तलिफ खामोशियों में बटी हुई एक आवाज। अगर तुम्हें इस बात का यकीन हो कि खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन तुम्हारे खिलाफ है। और फिर मैं भी ये भी कहा करता हूं, तुम्हें अगर उसके होने पर यकीन है तो फिर किसी भी शय के होने की खुशी या ना होने का गम बेमानी है। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते। नाइट थेरेपी को अलविदा कहते हुए अधूरी बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्यालात के हसीन सिलसिले पगडंडियों से होते हुए, सांप लहरें बनाते हुए, अजब अजब रस्तों से होते हुए लेके जा रहे हैं किसी अनजाने सफर की तरफ। एक ऐसा सफर जो हकीकत की तरफ जाता है, कदम बढ़ाता है, रास्ते अपने आप ही मंजिल का पता देते हैं। वो कोई भी रास्ता हो, गलत नहीं हो सकता है। जिसमें तुम्हारा जिक्र होता है वो तो सब सच्चा और सुच्चा रास्ता ही तो होता है। तुम्हारा नाम लेकर जब शुरू करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सब बेहतर हो जाता है। नासिर काजमी ने भी तो कहा था ना कि मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। मैं वो सब्रे समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा, मैं जब रस्ते से भटका था। पहली बारिश भेजने वाली, मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। मुझे लगता है जब तुम्हारा जिक्र होता है तो फिर सब कुछ बेहतर हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, सब कुछ मेरे इख्तियार में आ जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे इख्तियार में खुद को दे देता हूँ। मैंने अपनी गोयाई को तुम्हारी इजाजत की मरहून मन्नत बना दिया है। तुम्हारी इजाजत के बाद लब से अगर लबकुशाई के कोई अल्फाज निकलते हैं, कोई लफ्ज अदा होता है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी इजाजत है। और मैंने हर वो लफ्ज रोक रखा है अपने ऊपर जो तुम्हारी इजाजत नहीं देता मुझे। मैंने कहा है कि जो तुम्हें ना पसंद हो मेरी जबान से अदा मत होने देना, मुझे गम कर देना, खामोश कर देना, उठा लेना चाहे, लेकिन वो लफ्ज अदा ना होने देना जिससे किसी की दिल आजारी हो, किसी को बुरा लगे, किसी का दिल बुरा हो, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। अनजाने में शायद कोई बात ऐसी हो जाती, कोई ऐसा लफ्ज निकल जाता, किसी दिल पर नागवार गुजरता, कुछ बुरा लग जाता, क्या करूं, इंसान हूं, गलतियां हो जाया करती। बहरा प्रोग्राम का आगाज हुआ है उसी तरह से किया है जो कि ट्रैक बहुत दिल चाह रहा था, बहुत पता नहीं क्यों। दिल के ऊपर बाज़ोकात कोई ऐसा गाना होता है जो बजने लगता है और अच्छा लगने लगता है। इस्लाम सच कह रहा हूं ना मैं, कभी कभी कभी कभी कुछ जो होता है ना वो अजब तरह से आपके ऊपर असर अंदाज होता है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 12 बजते हैं ना तो पता नहीं मेरे अंदर कुछ और शुरू हो जाता है,
1: कुछ नया कि पुराना
0: नहीं, कुछ और तरह का हिस्सा शुरू हो जाता है। यानी कि ये वो हिस्सा है जो शायद इस वक्त के साथ जुड़ चुका है या इस वक्त के आने का शायद इंतजार करता है। बाजू का ऐसा हो जाता है
1: इस ट्रैक के साथ, वाबस्तगी हो गई लगता है कुछ।
0: ये ट्रैक बहुत बहुत बहुत पसंद आ गया मुझे। बहरहाल आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अधूरी बातें, 12:14 इस प्रोग्राम में हमारा और आपका साथ रहेगा। शब के 2 बजे तक बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी फिल वक्त के लिए मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं आपके लिए एक ट्रैक प्ले करूं, और वो ट्रैक जो मैं प्ले करना चाहता हूं वो है ये वाला। और इसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हम एक नया टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपसे बातें करेंगे, आपके लिए बड़े खूबसूरत से ट्रैक्स प्ले करेंगे। और यस, ये ट्रैक गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बीच में जहाँ जहाँ पे मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे मिल नहीं रहा, तो मैं इस ट्रैक को ले आऊँगा दरमियान में, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ट्यून्स ऐसी होती हैं, कुछ म्यूज़िक की सेंस ऐसी होती है, इमोशंस ऐसे होते हैं जो अंदर के किसी इमोशन को टच कर देते हैं, मिल जाते हैं उससे कुछ इस तरह। आतिफ असलम की खूबसूरत आवाज़।

सारे पल। मैं वापस आऊंगा, आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। आज हमारा साथ चार घंटे का हो कर रहेगा। यस, पोस्ट आपके लिए अपलोड कर दी गई, नई पोस्ट आपके लिए अपलोड कर दी गई।

अच्छा पहले मैं ना कभी कभी ये गाया भी करता था, मुझको तो तेरे चेहरे पे ये गम नहीं जजता, जायज नहीं लगता मुझे गम से तेरा रिश्ता, ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ मैं गाया करता था कभी कभी। अच्छा ये मैं आतिफ के साथ की गुस्ताखी कर सकता हूँ नुसरत फ़तेह अली ख़ान उस्ताद मोहतरम के साथ नहीं कर सकता, हालांकि उनकी काफ़ी ट्रैक्स वो भी गाया करता था मैं, लेकिन वो मेरे लिए हैं, वो उस्ताद हैं, उनके सामने गुस्ताखी नहीं की जा सकती। ये नालों हो सकती है दोस्त है।

0: Alright, once again, welcome back. Radio Pakistan FM 101 ka barah rast Lahore ka studio hai. आपके साथ मेज़बान रहमान इनवर मौजूद. आप बार बार ये ट्रैक सुन रहे हैं और ये दरअसल आप इसको इस तरह से ले लें कि ये मेरे बीजीएम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि राइट साइड पे जो मेरा बीजीएम वाला पीसी है वो बार बार मुझे थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम दे रहा है. मुझे थोड़ा सा मसला दरपेश हो रहा है, लें फिर दोबारा से हो गया. सो जैसे ही मैं अभी अपना बीजीएम प्ले करने वाला था तो फिर दोबारा से स्टक हो गया. तो ये मामला मुझे काफ़ी देर से दरपेश है. ये समझ लें कि 10 बजे से जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला था उस टाइम से है. तो ये थोड़ा सा आपको आज इस ट्रैक के ऊपर थोड़ा सा मुझे बियर करना पड़ेगा. वैसे लेफ्ट साइड पे कोई मैं बीजीएम प्ले कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरा जो मूड है उस बीजीएम को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा. और जब अगर वो एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा तो फिर आपसे बात कैसे करूँगा मैं यकजा होकर. इससे तो मेरी वाबस्तगी थोड़ी सी हो गई है और मुझे लगता है कि मैं मिल लिया इससे, उतर चुका मेरे अंदर. सो ये ऐसा करते हैं कि ये जो राइट साइड पे जो कंप्यूटर है इसको एक बार फिर से ऑफ करते हैं आपके सामने, शायद आपकी दुआ लग जाए और ये कुछ देर के लिए ये मेरा साथ दे दे, यानी कि 1 घंटा और 30 मिनट के लिए, क्योंकि इस समय 12:30 हुआ चाहते हैं पाकिस्तान का मायारी वक्त. मेरे आने के बाद डेट चेंज भी हो जाया करती है, ये एक अच्छा मामला है है ना इस्लाम,
1: खूबसूरत
0: ऐसा हो जाता है मेरे साथ ही तब्दील हो जाती है डेट.
1: ये आपने इतनी आसान बात इतने अल्फाज के पराये में कही, क्या बात है ये आपके प्रोग्राम की शान है, क्या बात.
0: अरे सलामत रहो, खुश रहो, तुम प्यार करते हो, अच्छा लगता है. बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जो मन के कैनवस के ऊपर मुख्तलिफ रंगों को बखेरती जा रही, मुख्तलिफ तरह से वो अपने होने का एहसास दिलाती जा रही हैं. जैसे तुम्हारे होने का एहसास बिल्कुल उसी तरह से है, दीवारों के ऊपर नक्श उभरते हुए महसूस होते हैं, बाज़ोकात पैनल के ऊपर जो ये लाइट्स ब्लिंक हो रही होती हैं. हमारा वॉल्यूम कितना है उसका लेवल शो कर रही होते हैं, उसमें भी लगता है कि जैसे तुम हो. इसी तरह से हमारी जिंदगी की जो लाइंस हैं वो भी आड़ी तिरछी ऊपर नीचे जा रही होती हैं, ना ECG करवाते हुए ये बात महसूस होती है. जिंदगी का दारोमदार इस ऊपर नीचे जाती हुई लाइनों में ही है. जैसे ही प्लेन होती है, सीधी होती है, रास्ता तब्दील हो जाता है, अपने आप से बंदा निकल कर कहीं बाहर चला जाता है. वो एक अलग सफर है. उस सफर का यहाँ पे जिक्र किया तो जा सकता है, लेकिन उसको डिस्कवर नहीं किया जा सकता, कोई कर ही नहीं पाया अभी तक. नहीं किया जा सकता, मुश्किल है. अच्छा, लफ्ज मुश्किल मेरे मुंह से निकल गया है, लेकिन मुझे लगता है नामुमकिन है. बाकी उसकी रजा अगर किसी भी चीज में शामिल हो जाए, जैसे बहुत से लोग आए, मैंने इंटरव्यूज भी देखे, बहुत से लोग आए जिन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर पे वो कई मिनटों तक इस दुनिया से जा चुके थे, उनको डेड घोषित कर चुके थे डॉक्टर्स. कुछ देर के बाद जैसे ही जिंदगी वापस पलट कर आई तो उन्होंने बताया सारे का सारा अहवाल, कि वो जो चंद मिनट जिस्म से बाहर थे उस वक्त उस कमरे के अंदर क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ हो रहा था, जैसे सारे दर्द और सारी तकलीफों से अचानक से आजाद हो गए थे. लेकिन मैं इस बात को प्लीज किसी नेगेटिव वे में मत लेके जाइएगा. ये बात हो रही है ऑटोमेटिक उसकी रजा के मुताबिक जिस्म से बाहर निकलने की, अपनी मर्जी से खुदकशी का नाम देकर अजियतों से जान छुड़ाने की बात नहीं हो रही. इतने कमजोर नहीं होना चाहिए इंसान को, बड़ा मजबूत इंसान है. इस एहसास को डिफरेंट तरीके से महसूस करने का शुक्रिया. मैंने वैसे ये बात बोल तो दी, लेकिन थोड़ा सा बाद में घबराया भी कि शायद लोगों को ये लगे कि अच्छा वो ज्यादा आसान, वो करके देख लेते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. तबई तौर पर जाना ज्यादा बेहतर है, लेकिन बगैर किसी ईजा के, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के। वो जो मैं अक्सर कहा करता हूं कि मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। वो भी यही तो है, उस वक्त दरअसल झमगट्टा नहीं होता, उस वक्त कोई तमाशा नहीं होता, उस वक्त तमाशाई मौजूद नहीं होते जो वो खेल देख सके। वो जो यहां से बाहर निकलने का खेल है वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए कहा करता हूं, उस रूह, शेर की रूह को अभी कहां तक आप समझ पाए मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जिस तरह से वो कहा है या हुआ है मुझे, उसका डिफरेंट तरीका है। शायद किसी डिप्रेशन, किसी ऐसे लम्हे में जब बहुत कमजोर था, उस वक्त शायद दुआ की सूरत में निकला होगा। बात नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, जाने दिया करें, हर बात हर समझ के लिए थोड़ी होती है, लेकिन कोई ना कोई बात ऐसी जरूर होती है जो समझ में आ जाती है, उसको रख लिया करें, वो रख लिया करें, वो अच्छी होती है रखनी। बहरहाल, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, सियालकोट, सरगोदा, गुजरांवाला और जहां जहां तक पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा है। ये समय है 12:34। इस समय बुध की रात को 12 से लेकर 2 बजे तक रहमान अनवर आपका साथ निभाया करता है। प्रोग्राम है अधूरी बात है। बातों में कहीं ना कहीं हकीकत का रास्ता सबसे पहले नजर आता है, उसी की जानिब सफर होता है। दरअसल वो बाहर नहीं होता, अपनी तरफ, अंदर की तरफ, अंदर से जहानों की तरफ। वो रास्ते जो नजर नहीं आते, आसमानों के रास्ते, उनकी तरफ सफर होता है। बहरहाल, वहां पे एनर्जी का सोर्स इतना ज्यादा होता है कि जिस्म के साथ सफर किया तो चीथड़े उड़ जाएंगे। नहीं समझ में आया, जाने दे, कोई बात नहीं, हर बात हर समझ के लिए नहीं होती। बहरहाल, बहुत सारी बातें हैं जो आपसे करनी हैं आज के प्रोग्राम में। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए गला जो है ना, वो इसी का मुझे वो रिमोट नहीं मिल रहा था, तो गला बंद बंद सा हो रहा है, क्योंकि पिछले 2 घंटे भी बोलता रहा हूँ, है ना इस्लाम। तुम इधर उधर खामोशी के साथ क्या बैठे कर रहे हैं, बात करो।
1: मैं सिर्फ आपको सुन रहा हूँ बस। अच्छा, अल्फाज को बस ले रहा हूँ, जैसे मेडिसिन नहीं होती वैसे ले रहा हूँ। कितना अच्छा लग रहा था मुझे, बस मैं चाह रहा हूँ कि आप बोलते चले जाएं, और आपके शो में बोलना किसी और का गुस्ताखी हो जाएगी आपकी।
0: अरे यार, ऐसे ऐसे मत कहा करो, तुम प्यार करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे तुम मेरे साथ उसी जगह पे हो, उसी मुकाम पे हो जहाँ पे मैं।
1: ये तो है, लेकिन ये कि एक सुनने का जो मजा है ना, वो मैं मतलब इसको कैसे जो है ना वो
0: डिस्क्राइब करना मुश्किल है।
1: मुश्किल है, मैं आंखों के ऊपर हाथ रखे, और ये मैं चाह रहा था कि आप जो है ना वो अपना जो एक आपके लब है ना वो मेरे कान के साथ जुड़े और बोले, और मैं फील करूं इस तरह से, वो बड़ा मजा आता है। सीरियसली इसलिए मैं चुप करके फील कर रहा था जो आप बोल रहे हैं, मुश्किल अल्फाज के साथ, और अल्फाज के ऊपर अल्फाज रख रहे हैं, ऐसे लग रहा है किसी जख्म के ऊपर मरहम है। बहुत सारी चीजें डॉट्स कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो इंसान फिर बोल नहीं पाता, तो सिर्फ सुनता है।
0: हमेशा आबाद रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अल्लाह ताला तुम्हारे अल्फाज में और तुम्हारी अदायगी में अल्लाह ताला बरकत दे,
1: और पीछे इतने
0: शर से तुम्हें महफूज रखे। इस वक्त शर जो है वो सर चढ़कर बोल रहा होता है, याद रखना, तो बड़ा ध्यान देना होता। बहरहाल, 12:36, मुर्तजा किजलबाश एक बार फिर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे, वापस आएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, हम, मैं और तुम, हमारा जिक्र है, देखते हैं क्या कह रहा है मुर्तजा किजलबाश। हैरा गुजर, हैरा गुजर।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। FM 101, the sound of new millennium. सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

पूरे पाकिस्तान में सुने जाने वाली आवाज का नाम रहमान अनवर है। ये प्रोग्राम है अधूरी बातें और इस प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुआ करती है एवरी वेडनेसडे एंड थर्सडे मिडनाइट टिल 2 AM हर बुध और जुमेरात की रात 12 से लेकर 2 बजे तक हमारा और आपका साथ रहा करता है।

होती है, इमोशंस उसके अंदर पैदा किए जाते हैं, मुहाफिज फरिश्ते उसके ऊपर कायम किए जाते हैं, आंखों के ऊपर, उसके हाल के ऊपर, उसके कल्ब के ऊपर। एहसासात की एक अलग ही कहानी तरतीब दी जा रही होती है। अपनी तरफ से रूह फूंकने के लिए आता है वो। जब मैंने अपनी तरफ की रूह उसमें फूंकी, ये सिर्फ उसके शायान शान है, वो कहे कुन और हो जाए, होना उसके कुन से मुंसलिक है। वो लफ्ज अदा करता है और फिर उसी तरह से होता चला जाता है। बहुत से लोग अक्सर मुझसे कहा करते हैं, मेरी इस परेशानी का हल क्या है रहमान भाई, मैं कैसे निकल सकता हूं अपने इन मुश्किल हालात से। सवाल तो वो बहुत गहरे अंदाज में करते हैं, लेकिन जवाब मेरे दिल को धड़का जाता है जब उसकी सिफात, उसकी जात, उसकी शान मेरे ख्याल और वहमो गुमान में आती है, मेरे अंदर उतरती है जवाबात लेकर। तो दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि अभी इसे मालूम नहीं है कि ये किस के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि वो खुद कहता है कि तुम पर परेशानियां लाने वाला भी मैं हूं और उसको वापस लेके जाने वाला भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही करता हूं। एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, उसने वाजे कह दिया, होगा वो ही जो मेरी चाहत है। सौंप क्यों नहीं देते अपने आप को, उसके सुपुर्द कर क्यों नहीं देते। वो तो सिर्फ कुन कहता है तो हो जाता है। आपकी परेशानी सिर्फ एक कुन की तो मोहताज, क्यों नहीं उससे मांग के देख लेते, सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसी वक्त हल हो जाएंगी। यकीन सबसे पहली जगह है जहां से होकर गुजरना है। कामिल तक पहुंचाना है अगर अपना ईमान, अगर जानना है वाकई में, तो पहुंचना है यकीन तक पहले, फिर उसके बाद आगे का सफर तय होना है। बात कर रहा था उस बच्चे की जो अभी 3 से 4 माह का होता है और अपनी तरफ की रूह फूंकी जाती है, धड़कनें उसमें आती हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो परवान चढ़ता है। फिर वो एक वक्त आता है जब वो इस दुनिया में तशरीफ लाता है, फिर उसके बाद एक वक्त, एक उम्र, वो इस दुनिया में अपने मां बाप के जेरे साया गुजारता है। आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी उम्र में पहुंचता है जब ख्वाहिशात का सही मतलब, अपने एहसासात का सही मतलब उसे समझ में आता है, तवक्कुआत का सही मतलब उसे समझ में आता है। इस दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं, एक खास वक्त पर उन्हें सब कुछ बता दिया जाता है, उन्हें समझा दिया जाता है। वो लोग जो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता उसके होने का, यकीन करें वो एक बार इस जिंदगी में अपने होने का असल मतलब समझा देता है, बता देता है। इंसान ये कहता है ये कुछ ऐसी ताकत है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो नहीं जानते वो ये कहते हैं, ये किसी ऐसी ताकत ने ये काम किया है जो बिल्कुल और ही है, जिसको शायद हम नहीं जानते। और फिर उसको जब ये मालूम हो जाता है, जब उसको ये पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो उससे इनकारी होता है, नहीं समझ पा रहा होता, नहीं जान रहा होता, उस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए जो नजर आता है, जो सुन सकते हैं, जो छू सकते हैं, बस उसी के बारे में तो बात करते हैं हम। लेकिन वो एक बार पूरी आबोताब के साथ

0: इन हमाक के साथ अपने होने का एहसास दिलाता है। बहरहाल इंसान जैसे जैसे उम्र के अदवार तय करता है, उम्र के हिस्से तय करता है, उसकी ख्वाहिशात जन्म लेने लगती हैं, उसके अंदर बहुत सारे सवालात पैदा होने लगते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक सवाल उम्र के किसी खास हिस्से में आकर उसे तंग करने लगता है। वो अपने आप से ये पूछने लगता है कि हम अपनी ख्वाहिश और दूसरों की तवक्कात में फर्क कब भूल जाते हैं। वो अपने आप से सवाल करने लगता है कि मैंने मेरी ख्वाहिश का गला कब घोंट दिया, कब मैंने मार दिया अपनी ख्वाहिश को दूसरों की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए। मैं फर्क क्यों नहीं कर पाया अपनी ख्वाहिश और उसकी एक्सपेक्टेशंस में। इस प्रोग्राम का सवाल यही है, हम अपनी ख्वाहिश और दूसरों की तवक्कात में फर्क कब भूल जाते हैं, वो कौन सा लम्हा होता है और क्यों भूल जाते हैं हम, क्या है जिसको हमें किसी खास इमोशन में रहते हुए निभाना ही होता है, वो कौन से असूल हैं जो हमने बनाए हुए होते हैं, हमें उन पर पूरा उतरना ही होता है। आज का सवाल है। 12:51 आप चाहें तो अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं। इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात लिखकर भेज सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखिए 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम और उसे भेज दें 4471 4471। आपके पैगाम प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। और इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज है facebook.com/fm101 लाहौर। आप हमारे ऑफिशियल पेज के ऊपर रहते हुए मेरी जो पोस्ट है उसको लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमारे इस सवाल का जवाब कि इंसान अपनी ख्वाहिश और दूसरों की तवक्कात में फर्क करना कब भूल जाता है, इसका जवाब भी दे सकते हैं। या अपने मन की कोई भी खूबसूरत सी बात लिखकर भेज सकते हैं, कोई शेर खूबसूरत सा, कोई जुमला खूबसूरत सा, लेकिन मेरा दिल चाहता है आज आपका अपनी याददाश्त में से होकर गुजरता हुआ कोई जुमला हो, यानी कोई ऐसा जुमला जो आपकी जिंदगी पर पूरा उतरता हो कि आप अपनी ख्वाहिश का गला आपने कब घोंट दिया, कब आपने मार दिया अपनी ख्वाहिश को किसी दूसरे की तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए, और क्यों ऐसा किया आपने, ऐसा क्या है उसमें। बहरहाल आपके पैगाम प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा और आप चाहें तो कुछ भी कह सकते हैं, यू मोर देन वेलकम, बड़े लोग हैं आप। और इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है ये वाला ट्रैक सुनने का, यार बहुत अच्छा है, बहुत मजे का सच में। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको लगे कि और तरह का, नहीं प्यारा है। उतरे कब दिल का गुबार सजन, आप जरा अल्फाज पे गौर कीजिएगा कि कह क्या रहा है लड़का। वापस आऊंगा मैं, पता नहीं लाइव कॉल्स ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, कुछ पता नहीं है, क्योंकि जो रास्ता है वो डिफरेंट है और जो तार हैं वो अलग जगह पे जुड़ चुके हैं। तो आप आएंगे और अचानक से कहेंगे कि बताएं क्या टॉपिक है है ना, इसलिए
1: खराब हो जाएगा सारा सब।
0: हाँ, तो फिर उसके बाद दिल चाहेगा कि यार नहीं, तो कभी कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन ऑफियर कॉल आप कर सकते हैं ट्रैक के दौरान, जैसे कि ये ट्रैक चल रहा है तो आप मुझे इसके दौरान ऑफियर कॉल कर सकते हैं।

0: ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बज चुका है और बहुत मजा आ रहा है। इस्लाम सामने बैठा है, एसी 21 पे है, ये बड़ा मजे का मौसम, अच्छा लग रहा है। सामने भी एक क्लॉक है, राइट साइड पे पीसी भी ठीक हो रहा है। चीजें जब ठीक हो जाती है ना इस्लाम, तो जरा थोड़ा सा ना अच्छा लगने लगता है, यानी खुशी सी महसूस होने लगती है कि
1: जब सब ठीक हो जाए,
0: जैसे कुछ इख्तियार में आ गया है, जैसे मेरी मर्जी के मुताबिक हो गया है कोई। वैसे हमें कितना अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारी मर्जी के मुताबिक हो जाए, वो बाज़ औक़ात लोग ये करते भी हैं कि वो दूसरे की ख्वाहिश का उतना एहतराम नहीं करते, या शायद उनको इतनी इज्जत मिल चुकी होती है, इतना रुतबा मिल चुका होता है, इतना मुकाम मिल चुका होता है, इतनी मोहब्बत मिल चुकी होती है, इतनी अपनाइत मिल चुकी होती है, एहसास इतना ज़्यादा मिल चुका होता है कि उनको लगता है कि सब मेरा ही है,
1: अपना हक समझ,
0: वो अपना हक मुकम्मल तौर पर वाजे करने लगते हैं। इतना वाजे करने लगते हैं कि वो जो दूसरा इंसान है उसकी जात भी है ये भी भूल जाते हैं, और उससे वो सारी की सारी तवक्कुआत इस तरह से वाबस्ता कर लेते हैं कि वो दूसरा इंसान जो है वो अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट देता है उनके लिए।
1: उसको लगता है शायद अब कुछ नहीं रहा।
0: एक वक्त गुजरता है, एक बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपनी ख्वाहिशात को उस पर कुर्बान कर देना, लेकिन कोई एक लफ्ज दूसरे इंसान से, यानी जिसके ऊपर सब कुछ वार दिया होता है, वो पहले इंसान ने, ख्वाहिशात रखने वाले इंसान ने, तवक्कात वाले इंसान पर सब कुछ वार दिया होता है, वो जिसको सब इज्जत मोहब्बत सब कुछ दे दिया होता है, उसका कोई एक लफ्ज, कोई एक जुमला, कोई एक ऐसा हिस्सा जो अचानक उसके दिल के ऊपर किसी बहुत गहरे जख्म की सूरत वार करता है, ऐसी जर्ब लगाता है कि वो कुछ देर तक तो उससे संभल ही नहीं पाता। वो शायद कोई ऐसा जुमला होता है जो उसकी जात, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, पता नहीं इसको लफ्ज सेल्फ रिस्पेक्ट को उसकी गुरूर से तशबीह देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि इंसान को फखर, उसका फखर जो उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसका फखर होता है कि ये जरूर करेगा, जिसको मैंने इतनी इज्जत दी है, जिसको मैंने इतनी मोहब्बत दी है, उसको मेरी जात की रिस्पेक्ट का एहसास होगा, अंदाजा होगा, मेरी जात की वक्त का अंदाजा होगा, इसको मेरी कीमत का अंदाजा होगा, इसको जरूर पता होगा, क्योंकि मैंने इसको सबसे ज्यादा इज्जत और मोहब्बत दी है, अपनाइत दी है, ज़र्फ इसके सामने हमेशा बड़ा रखा है। लेकिन अचानक से कोई एक चीज किसी, वो नहीं करना चाह रहा, लेकिन क्योंकि उसको इतना कुछ मिल चुका है, उसको इस चीज का गुमान ही नहीं रहा कि यहां एक जात मौजूद है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एहसासात हैं जो मुझे समझने चाहिए, उसके बोले बगैर भी। कभी कभी जब हम किसी इंसान के साथ बहुत ज्यादा वक्त बिता लेते हैं ना इस्लाम, बहुत ज्यादा वक्त गुजार लेते हैं उसके साथ, तो हमें कहीं ना कहीं जाहिरी तौर पर उसकी बहुत सारी चीजों का पता चल जाता है, क्योंकि हमने उसके साथ बोलकर भी वक्त गुजारा होता है, हमने उसके साथ रहकर भी वक्त गुजारा होता है, हमें उसकी आदत का बहुत हद तक अंदाजा हो चुका होता है, उसकी पसंद नापसंद का, उसे कौन से अल्फाज पसंद हैं, उसे कौन से एहसासात पसंद हैं, उसे क्या चीज़ बुरी लगती है, क्या चीज़ वो नहीं चाहता कि ये बीच में शामिल हो, हम वो करना गुरेज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल माइनस ही कर देता है, वो कहता है कि उसकी ज़ात का कोई हिस्सा नहीं, मेरी ख्वाहिशात, मेरी तवक्कुआत, मेरी मर्जी, मेरा सब कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा ही सबसे ज्यादा हक है हर चीज के ऊपर, उसको मुझसे किसी भी बात का मुतालबा करने का भी कोई हक नहीं है, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखने का भी कोई हक नहीं है बदले में, क्योंकि वो दे रहा है, उसको बस देना ही है।
1: उसके ऊपर अपना हक समझ लेते ना कि शायद मेरा ही हक है, इसका कोई हक नहीं है।
0: यानी जैसे हम किसी रोबोट को बनाकर अपनी मर्जी की प्रोग्रामिंग उसमें कर देते हैं, और फिर हम उससे तो ये तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक ही काम करेगा, क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग खुद की है, हमने उसको खुद बनाया है। ये अल्लाह ताला तो हमसे कर सकता है, लेकिन उसने हमें भी अलग सोच से नवाज दिया कि तुम ये भी सोच सकते हो, मेरे बारे में कुछ भी सोच सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये उसने नवाज दिया। लेकिन इंसान, इंसान को लगता है कि दूसरी जो कायनात है, क्योंकि कायनात ही है मुकम्मल इंसान, एक पूरी कायनात है, इसके अंदर बड़े रंग हैं, बड़े गहरे राज हैं, बहुत बातें हैं। अगर आप किसी भी इंसान के साथ बैठ जाएं, आप उसको पहली नशिस्त में या दूसरी नशिस्त में, पहली बार मुलाकात करने में, पहली बार बात करने में, या दूसरी बात बात करने में, या तीसरी बात बात करने में भी मुकम्मल नहीं जान सकते।
1: और कई दफा तो बहुत लंबा अरसा भी साथ रहे तो भी उसकी मुकम्मल,
0: मैं ये कहता हूँ सारी जिंदगी भी साथ रहे तो आप उसको मुकम्मल नहीं जान सकते।
1: ऐसे बिल्कुल सही,
0: ऐसे बहुत से उसके पर्दे हैं जो उसने सिर्फ अपने पास रखे हैं, उसने आपके सामने आया किए ही नहीं, उठाए ही नहीं, राज अफशा किए ही नहीं, उसने अपने अंदर के बहुत सारे अहवाल आपको बताए ही
1: नहीं,
0: जो बताना चाहता था उसने वो बता दिए। तो आप किसी भी इंसान को उसकी पूरी जात को समझने का दावा तो कर ही नहीं सकते,
1: शायद उसके लिए
0: लेकिन भी काफी। लेकिन किसी हद तक एक दूसरे के साथ रहते हुए उसके एहसासात को सुनकर, जैसे जैसे उसने बताया, जैसे मैंने बताया ना कि उसने उसको ये भी बताया कि मुझे क्या चीज पसंद है क्या नहीं पसंद है, या उसने अंदाजा लगा लिया और उसने वो करना छोड़ दिया सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी तो जात है ना, उसकी भी तो कोई ख्वाहिश है ना कि कम से कम इज्जत तो मुकम्मल कर दो।
1: उसकी जात जर्रा बेनिशान है ना, वो समझ लेता है।
0: ये ट्रैक ले आऊं हाँ,
1: लेकिन समझना चाहिए इंसान,
0: दूसरा इंसान ये समझ लेता है कि जर्रा बेनिशान है, कोई निशान नहीं है उसका, जैसे होना ना होना है उसका,
1: समझता है,
0: उसे ऐसा लगता है कि उसका जो होना है वो ना होना है, और फिर वो उसकी वजह से ना उसको बड़ी अजियत में भी रखता है अनजाने में, उसके नजदीक उसको लगता है कि ये दरअसल मेरा हक है, मैं कर रहा हूं, लेकिन पहले वाले की शायद खुदा की तरफ से कोई आंख खुल चुकी होती है या उसने उसको बनाया है, तो वो कितनी देर तक उसकी तजलील बर्दाश्त कर सकता है। वो ऑटोमेटिकली उसके दिल के अंदर इल्हाम की सूरत में उतर कर उसको बताता है कि ये नहीं है तुम्हारी जात, इतना नहीं है तुम्हें गिरना, यहां तक नहीं है पहुंचना, मैं हूं,
1: मैं भी हूं,
0: मैं भी हूं, और तुम भी हो,
1: हम भी हैं,
0: नहीं तुम भी हो तुम भी हो, तुमने अपनी जात की इज्जत सबसे पहले करनी है, देखना है कि कहां पे तुम्हारी इज्जत को या तो बेनिशान किया जा रहा है, यानी उसको समझा ही नहीं जा रहा,
1: या ठेस पहुंच रही है,
0: या फिर ठेस पहुंचाई जा रही है। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, आप चाहें तो आप भी बता सकते हैं, अपने होने का हमें एहसास दिला सकते हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं जिनके ज़रिए से आप हमें अपने होने का एहसास दिला सकते हैं, और वो आपको पता भी है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाकर लिखना है 101 स्पेस देकर अपना नाम, अपना पैगाम, और उसे भेज दीजिएगा 4471 के ऊपर। और इसके साथ साथ सोशल नेटवर्क फेसबुक के ऊपर हमारा ऑफिशियल फैन पेज facebook.com/FM101 लाहौर, और यहाँ पर रहते हुए आप हमारी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में, एक तो पोस्ट को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा कि इस सवाल का जवाब आपके नज़दीक क्या है, या फिर ये बता दीजिएगा कि आपके दिल में इस वक्त क्या बात चल रही है और आप क्या कहना चाह रहे हैं।

0: अच्छा ठीक है, बहरहाल डॉक्टर अलीना कह रही हैं कि ये शेर पढ़ दें जो आपने स्टेटस पे लगाया है। चलें जी मैं पढ़ देता हूँ। मैं ज़रा बातों में बिल्कुल भूल ही गया कि मैंने कौन सा आज शेर लगाया है। इस्लाम पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं। अच्छा चलो ठीक है, आ गया मेरे सामने। ठीक है, जब से उस शख्स ने जिंदान संभाला जाकर, इतने कैदी हैं कि पिंजरे नहीं पूरे होते। हाँ याद आ गया मुझे, मुझसे वहशत के तकाजे नहीं पूरे होते, आधे हो जाते हैं आधे नहीं पूरे होते।
1: ये शेर कहां से ले गया?
0: ये कहीं पे है, एक मिनट ठहरो। हाँ एक मिनट ठहरो, ये कहीं पे है। हाँ, मुझसे वहशत के तकाजे नहीं पूरे होते, आधे हो जाते हैं आधे नहीं पूरे होते। जा हथेली पे लिए फिरते हैं आशिक तेरे, जब लड़ाई हो तो बंदे नहीं पूरे होते। मैंने सोचा है कि वादा ना करूंगा तुझसे, मैंने देखा है कि वादे नहीं पूरे होते। सौंप जाता है वो जंगल की निगहबानी हमें, सौंप जाता है वो जंगल की निगहबानी हमें, बाद में हमसे परिंदे नहीं पूरे होते।
1: क्या बात, खूबसूरत।
0: जब से उस शख्स ने जिंदान संभाला जाकर, इतने कैदी हैं कि पिंजरे नहीं पूरे होते। अच्छा जी ठीक है, मैंने डॉक्टर अलीना पढ़ दिया मैंने आपके लिए शेर, बल्कि उसकी पूरी गजल ही पढ़ दी मैंने। ठीक है ना, तो अब तो मुझसे कोई अंदेशा और कोई गिला नहीं होगा।
1: शिकवा भी नहीं है
0: ना? शिकवा वैसे हो रहा था बीच में तो मैंने कहा नहीं, उस शिकवे को बढ़ाने से बेहतर ये है कि फौरन से पूरा कर दिया जाए। बहरहाल एक ट्रैक शामिल कर रहा हूँ मैं, 1:13 हुआ चाहते हैं, और इस ट्रैक के बाद जैसे ही वापस आएंगे तो फिर आपसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पता नहीं क्यों अचानक थोड़ा सा दिल सा चाह रहा है कि टॉपिक पे लोगों की राय कॉल की सूरत में भी ली जाए।
1: और मैं एक गज़ल पढ़ना चाहूँगा।
0: अभी पढ़नी है या बाद में पढ़नी है?
1: बाद में एक ट्रैक।
0: चलो ठीक है, ये ट्रैक राहत फ़तेह अली ख़ान की खूबसूरत आवाज़। वापस आते हैं, आपने कहीं जाना नहीं। ख्वाहिशात और तवक्कुआत के ऊपर बात हो रही है। सवाल मैंने आपसे ये पूछा है,
2: रग से टपका हुआ है लहू, दिल की रग रग से टपका हुआ।
0: कब हम अपनी ख्वाहिश किसी दूसरे की तवक्कुआत पर कुर्बान कर देते हैं, भूल जाते हैं फर्क
2: चाल देखो
0: अपनी ख्वाहिश और उसकी तवक्कुआत का।
2: चाल है चाल देखो,

0: प्रोग्राम है अधूरी बातें, मेजबान आपके साथ रहमान अनवर। प्रोग्राम की पहली लाइव कॉल शामिल कर रहा हूं 0421100101 हमारे और आपके दरमियान राबते का नंबर है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: मैडम, कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? आप ठीक हैं?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, तुम खैरियत से हो? इस्लाम ठीक है
0: जी, अल्लाह का बहुत करम। इस्लाम
2: अल्हम्दुलिल्लाह, मैम आप कैसी हैं?
1: बस मैं सही हूँ रहमान,
0: अल्लाह ताला आपको सेहत दे।
1: कैसी हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, अल्लाह ताला बेहतर और बेहतर करते चले जाएंगे इंशाल्लाह।
1: अभी तुमने जो पहले प्रोग्राम कर रहे थे 10 से 12 वाला, सुन के तो ना हर बात हर किसी के लिए नहीं होती, तो बिल्कुल हकीकत है। मैंने सुनी तो सारी बातें, लेकिन याद मुझे एक भी नहीं है, सब पता नहीं किधर से किधर चली।
0: कोई बात नहीं,
1: लेकिन खूब बोले खूब बोले। अभी जो शेर डॉक्टर साहब के कहने में तुमने रिपीट किया ना गजल, ये बल्कि बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत।
0: बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच।
1: हाँ जिया को मेरी बहुत दुआएं हैं, और रहमान जिया को एक सॉन्ग बहुत पसंद है, वो अपने प्रोग्राम में चलाते थे, मैंने उन्हीं के ही प्रोग्राम में सुना, ये जब भी सुना तो कि हमारी चुप और तुम्हारी बातें, कभी मिलेंगे तो बात होगी।
0: मैं ये जरूर प्ले करूँगा,
1: जरूर जिया का नाम लेके, जिया के लिए मेरी तरफ से स्पेशली
0: डन,
1: और मेरी ढेरों ढेर दुआएं, जल्द से जल्द वो खड़े हो जाए बिस्तर से इंशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।

0: टेलीफोन लाइन पे एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी बिस्मिल्लाह। वालेकुम सलाम रहमान भाई, क्या हाल है? ठीक हो?
0: जी जी, अल्लाह दा बड़ा करम जी, बड़ा
1: ऐसा। बहुत से सारे प्यारे जा भाई दा, की हाल चाल है?
0: जी जी, अल्लाह दा बहुत करम है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला और बेहतर करेगा।
1: भाई यार जा भाई दा प्रोग्राम सुनी दा है कि कॉल भी लोगे, मैसेज पिछली बारी भी तुसी ना को मैसेज पढ़िया
0: अब्दुल हमीद साहब की कहना चाहोगे टॉपिक दे बारे ची, कोई मौजू दे बारे ची?
1: बस एहो ही मकसद हुंदा है, कॉल मिल जाए साडी गल हो जाए।
2: जी, आपकी मोहब्बतों का बहुत
1: शुक्रिया।
0: चलो खैर हो, बड़ी मेहरबानी जी, शुक्रिया।
2: प्यार करते हैं सर आपसे, लोग बहुत प्यार करते हैं।
0: अस्सलाम वालेकुम जी, एक और लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बात कर रही हैं जी?
3: जी
0: साइमर साहब, कैसे मिजाज है आपके? आप खैरियत से?
3: जी रेगुलर कॉल बात कर रही हूँ, साइमर शेख लाहौर से।
0: जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ आपके मिजाज कैसे हैं, आप खैरियत से हैं?
3: मैं खुद काफी बीमार रही हूँ, जैसे आज जैसे आप बीमार हैं, मैं बड़े महीनों बाद ना शो आज आपका सुनाई हूँ।
0: अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए।
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने उनके बारे में सुना था, नेट पे देखती रही हूँ, तो मैं दुआ करती हूँ उनके लिए, आज जा के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत से दे, और दुआएं
0: आमीन।
3: आप लोग माशाल्लाह हमारे लिए आते भी हैं और कुछ भी करते हैं, और मैंने 4 घंटे से मैं भी सुन रही आज ना, बड़ी मुद्दत बाद, बड़े महीनों बाद।
0: बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू।
3: बहुत मजा आया और बहुत अच्छी आपने बातें की, ये जो डॉक्टर लीना ने आपको कहा नज़म थी या गजल थी, बहुत एंजॉय किया उसको।
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू।
3: इस्लाम है इंटरनीज, इनकी भी खुशी हो रही है, मैंने इनकी जब इंटर्नशिप चल रही थोड़ा थोड़ा सुनती रही हूँ, जब ये लोग आते रहे ग्रुपिंग में ना।
2: बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया।
3: काफी चीज और कुछ सुनाए या मैं ही कहूँ, तारीफ करूँ? बहुत अच्छी बातें लगी हैं आपकी, आपने कुरान करीम की बताई और रूह की भी बताई, अल्लाह पाक के भी निज़ाम को बताया, तो मुझे बहुत ही ज़बरदस्त, यानी बहुत खुशी हो रही थी आपसे इन्फॉर्मेशन सुन के ना, जो प्रोसेस आप बता रहे थे ना रूहानी और बदीनी मौत।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू
3: ना, शुक्रिया, बहुत
0: बहुत शुक्रिया।
3: इस्लाम दुआ।
0: जी जी, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर दिल बेवजह उदास है, सोने की कोशिश करो नींद ना आए, बेचैनी से उठकर इंसान एकदम बैठ जाए तो क्या करना चाहिए, प्लीज एडवाइज मी, क्योंकि अक्सर यही होता है। बिला वजह कोई उदासी नहीं होती, वीरानी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम दिलों के ऊपर अता होती है। पहले वीरान किया जाता है किसी चीज को भरने के लिए दोबारा से। बहरहाल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा एक अंदाज है सोच का। बनाने के लिए बाज़ोकात आपको तोड़ा जाता है पहले, फिर अपनी मर्जी से बनाया जाता है, लेकिन इसकी वजह कोई और भी हो सकती है। अगर कोई परेशानी है आपके दिल में, आपके दिमाग में, किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो नींद नहीं आती, बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी का हक मारा हो तो नींद नहीं आती, बुरा हो जाता है। दिल आजारी की हो और पता चल जाए कि दिल आजारी हो गई है और माफी ना मांगी हो तो बुरा हो जाता है, दिल बुरा हो जाता है और बेचैनी बढ़ जाती है, चैन कहीं नहीं मिलता, नींद नहीं आती। तो इसमें से क्या किया है आपने? अगर इसके साथ साथ कोई ऐसी बात है जो बहुत आम है, जैसे फाइनेंशियल कोई मसाइल हैं, वसाइल के कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये बहुत दूसरी बातें हैं और बहुत छोटी बातें हैं, इनसे परेशान नहीं हुआ करते। दो हाथ अगर सलामत हैं, दो टांगें अगर सलामत हैं, आप अपने पाँव पे खुद चल सकते हैं बगैर किसी के सहारे के, सांस ले सकते हैं बगैर वेंटिलेटर पे लेटे हुए, तो फिर मुझे लगता है कि आप बहुत कीमती हैं और बहुत लकी हैं। तो फिर ये बेचैनी जो है फजूल है। बहरहाल आप जरा कोशिश कीजिएगा जानने की, अपने अंदर झांकने की कि कहां पे है, वजह क्या है। तो फिर उसके बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने वजह बता दी कि इनके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती नींद उड़ने की। आजकल वैसे एक दूसरा मसला भी है, मोहब्बत को लोग समझते हैं कि अगर उससे बात नहीं हुई तो फिर बेचैन हो गया दिल। अच्छा, ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये दूसरी बात है। हमारे साथ मौजूद है, सेकंड मैसेज है, सर आप बहुत डीप बोलते हैं, मुझे आपसे एक रहनुमाई चाहिए, प्लीज़ गाइड मी, मैं सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहता हूँ, कुरान नमाज तहज्जुद सब पढ़ना सब पढ़ता, लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं, मेरा अपने रब की ज़ात में हर मामले में अंधा यकीन है, मुझे अपने रब को अपनी दुनिया और आखिरत के लिए राजी करना है, मैं कैसे अल्लाह वालों के रास्ते पर चलूं, प्लीज गाइड मी, मेरा दिल बहुत भरा होता या सब कुछ कि मुझे दुनिया नहीं अल्लाह पाक चाहिए, मेरा ना दिल टूटा हुआ ना मैं अच्छा बनने के लिए ये सब आपको बता रहा, मुझे अपने रब से रब की मोहब्बत चाहिए, प्लीज गाइड मी। इसी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया तो है कि आप उसकी जानिब जा चुके हैं, वो आपको बहुत पसंद करता है कि आपके दिल में उसकी बात चल रही है, अब आपके दिल में चल रही है और आपने यहां पे सब दुनिया के सामने चला दी है तो आपकी बात वहां पे चल रही है। यकीन करें आपका जिक्र वहां पे चल रहा है, आपने उसका जिक्र किया है, वो अपनी महफिल में वहां पे आपका जिक्र कर रहा है, तो आपसे बहुत मोहब्बत है उसे, आपके दिल में बहुत अपनायत उसके लिए जो मौजूद है उसके दिल में भी है, आप तो हजारों कदम आगे बढ़ गए हैं, वो लाखों कदम आपकी तरफ आ चुका है, इसलिए तो आपका दिल इतना मोम है, इतना मोहब्बत बोलता है, आपका एक एक लफ्ज़ जो है वो मोहब्बत मैं समझता हूँ, तो मुझे लगता है कि दिल बेचैन नहीं है आपका, बस मेरी बात सुनने के बाद मुतमैन हो जाना चाहिए। अब मैसेज करके ज़रूर बता दीजिएगा कि दिल मुतमैन हुआ या नहीं हुआ, मैंने बात बहुत सच्ची की है, आपने उसका जिक्र किया है, वहां वो आपका जिक्र कर रहा, और जब जब आप जिक्र करते हैं वो उसका उसकी महफिल में आपका जिक्र होता है, जैसे इस वक्त आपकी वजह से हम सबका भी जिक्र हो रहा है, हम सबकी बात चल रही है। साहिल खान फ्रॉम मियांवाली, सर मेरा ये सवाल है, अगर कोई इंसान ये कहता है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, मेरा बदला आपसे अल्लाह पाक लेगा, अगला बंदा बार बार माफी मांगे और वो माफ ना करे, तो प्लीज सर इस पर रोशनी डालें सर, ये मामला बड़ा डिफरेंट हो गया है साहिल, उसने अपना बदला अपने ऊपर नहीं रखा, उसने जिम्मेदारी तख्लीकार पर डाल दी है और ये बड़ा संगीन मामला हो सकता है, क्योंकि एहतसाब की जो चक्की है वो बहुत बारीक काटती है लेकिन चलती बहुत आहिस्ता है, बहुत देर के बाद बारी आती है लेकिन फिर पता नहीं चलता कि कहां जाना, तो बंदे के साथ गलत किया है तो वो उसकी माफी कैसे देगा, अब वो माफ कर सकता है, अपने हुकूक माफ कर सकता है लेकिन अपने बंदे के हुकूक बंदे से ही माफ करवाने हैं उसने, तो ठीक है आपका दिल मुतमईन है माफी मांगने के लिए, गलती हुई है आपसे तो आप माफी मांगते रहे, वो माफ कर देगा, उसका दिल जो है ना उसी में करना है। यार वो तहजीब हाफी का एक शेर था, मुझे मेरे जेहन से निकल गया वो, तुम्हें याद है इस्लाम, बड़ा बड़ा जबरदस्त शेर था, तहजीब हाफी का एक शेर था इसी तरह का कोई ना।

0: हाँ देखा, मिल गया। मैं रब से राबते में रहता, मुमकिन है कि उससे राबता हो। मैं रब से राबते में रहता, मुमकिन है कि उससे राबता हो। ये साहिल आपके सवाल का जवाब भी है। अगर वो माफ नहीं कर रहा तो फिर जिसने उसको बनाया है उससे राबते में आना जरूरी है आपका। उसके सामने इल्तिजा करना जरूरी है कि उसका दिल मोम कर दिए, तो वो रब के सिवा कोई नहीं कर सकता। मैं रब से राबते में रहता, मुमकिन है कि उससे राबता हो। किस्सा यूसुफ में भी इसी तरह से है कि चालीस साल तक जुलेखा से बात नहीं की यूसुफ ने, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, लेकिन जब उसने अपनी तसीह की, अपना एहतसाब किया, अपने रब को सबसे मुकद्दम जाना, उसको जाने बगैर उसको मान लिया पूरे मन से, तो फिर वही हुई कि वो तुम्हारी जौजा है, वो तुम्हारी बीवी बनने वाली है। रब उसको बहुत मोहब्बत करता है, तो तुम भी उससे मोहब्बत करो और उसकी दिलजोई करो। खास करम हुआ जिस पर इल्जामात लगाए गए, जिसको 7 साल तक एक जिंदान के अंदर डाला गया ना हक, तो फिर अगर रब उसकी मान सकता है तो फिर आपसे भी तो हो सकता है ना। तो ये शेर आपके लिए कि मैं रब से राबते में रहता, मुमकिन है कि उससे राबता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 1:35 हो चुके, आपकी लाइव कॉल प्रोग्राम का हिस्सा बना रहा हूँ। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101। देखें आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं वैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन बात कर रही हैं जी, क्या नाम है आपका? रिमशा, 253 वाली रिमशा?
1: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, हाँ बताएं रिमशा, क्या कहना चाहेंगी आप? वेलकम बैक वंस अगेन।
1: मुझे आपके टॉपिक ने ना काफी वो किया, इसलिए मैं आ गई।
0: हाँ बताओ बताओ।
1: भैया जी आप बात कर रहे थे ना ख्वाहिशात और वक्त
0: की। यस, बताओ मुझे कब भूल जाते हैं हम फर्क, और क्यों भूल जाते हैं हम फर्क?
1: बात तो ना इंसान की काफी ख्वाहिशात होती हैं कि अपने ये दिल के फीलिंग बताना चाहती हूँ, अपना दिल का थोड़ा सा बोझ हल्का करना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ, कर लो कर लो कर लो, मैं इसलिए तो मौजूद हूँ यहाँ पे कि दिल का बोझ हल्का हो पाए, मुतमइन हो पाए, आप सब पुरसकून हो पाए। बताओ।
1: इंसान की काफी ख्वाहिश होती है, ख्वाहिशात होती है कि हर ख्वाहिश उसकी पूरी हो ना। ऐसा एक कुछ लाइफ में होता है कि कोई जैसे बाप की सूरत में एक नेमत होती है जो हर बेटी की ख्वाहिशात को पूरी करता है। एक वक्त आता है वो हर एक जो ना चाहते हुए जैसे वो चीजें मिल रही होती हैं, किसी बाप के दिल में अल्लाह ने ऐसी वो बनाई होती है कि वो उसे पता चल जाता है कि मेरी बेटी को इस चीज की जरूरत है, इसकी ये ख्वाहिश है। वो ना चाहते हुए जितनी मर्जी महंगी चीज वो ला कर देते, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं ना, तो इंसान की खुद ब खुद वो ख्वाहिशात वो तवक्कत ही बदल जाती है। वो ख्वाहिशात जो मतलब इंसान के अंदर जिंदा होती है ना, वो मर जाती है।
0: क्योंकि जिससे वो मंसूब थी, लगता था कि जो पूरा करेगा वो तो वो थे ना।
1: लेकिन ना भाई, मैं जहाँ तक देखती हूँ ना, मेरे अंदर अब काफी होती थी ख्वाहिशात, लेकिन ना जब मैं अपनी मामा को देखती हूँ ना कि कहती है कि रिमशा तुम पहले ऐसी नहीं थी, तुम अब मैं जब अपने आप को देखती हूँ, मैं वाकई सोचती थी यार मैं पहले ऐसी नहीं थी जो अब मैं हूँ ना, कि मैं यार पहले ऐसी लड़की हुआ करती थी जिसकी ख्वाहिशात ही नहीं खत्म होती थी, जिसकी हर एक ख्वाहिश होती थी कि मैं ये करूँ, मैं ये करूँ, मैं ये मेरे पास हो, ये मेरे पास हो। तो मेरी मम्मा जब वो मेरे बाबा वाली ख्वाहिशात को पूरा करती है ना, तो आपको समझो यकीन करें कि आंखों में नमी आ जाती है, दिल इतना भारी हो जाता है, खुद बहुत जो है ना आंसू आंखों से बहना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि जब इंसान की मतलब एक लड़की होती है, इंसान की शादी हो जाती है, तो खुद ब खुद वो इंसान को चेंज करता है, उसकी खातिर जो आप लोगों की खातिर जिंदा रहता है। जो आपसे मतलब खुश होते हैं, तो जिसे आपसे खुशी मिलती है, तो मैं उन लोगों की खातिर अपनी खुशियों को, अपनी ख्वाहिशात को मार के उनकी खातिर उनके जैसे बनने की फिर मैंने कोशिश की और मैं वैसी बन गई।
0: अच्छा,
1: और मैं वैसी बनी हूँ और मैं अपने अंदर काफी मैंने चेंज किया है। मैं अब जिद नहीं करती, मैं मुझे घूमने का बहुत शौक है, लेकिन अब भी कहती हूँ कि मैं घूमूं, लेकिन बहुत कम, इतना नहीं जिद करती, इतनी चीजें मैं मांगती नहीं, इतनी मेरे अंदर बिल्कुल काफी कुछ चेंज हो गया है, रवैया मेरा चेंज हो गया है, मेरा हंसने का स्टाइल जो था पहले, मैं जिस तरह चहचहा के हंसती थी मैं उस तरह नहीं हंसती, मेरी मुकम्मल तौर पे जो है ना चेंजिंग मेरे अंदर बहुत हो गई है।
0: ये सिर्फ अपने वालिदे मोहतरम की कूच कर जाने की वजह से, अल्लाह गरी की रहमत करे उन्हें, उसकी वजह से?
1: बिल्कुल मेरे जब मेरे पापा थे ना, तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं थी होती, उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल ही चेंज हो गई।
0: वालिदा क्यों पूरी करती हैं आपकी ख्वाहिशात, इसके बारे में कभी सोचा आपने? वो ख्वाहिशात जो आपको लगता था कि आपके वालिद पूरा कर सकते हैं, और वालिदा के सामने जब आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश आती है और वो पूरा करने की कोशिश करती हैं, और जैसे आपने बताया कि पूरा करती भी हैं, तो क्या वजह हो सकती है उसकी? क्या उसके बारे में कभी सोचा अपने इस तरह से खुश ना रहने की वजह से? कहाँ कहाँ पे किस किस को क्या क्या गम मिलता है जो साथ मौजूद हैं, उसके बारे में सोचा क्या? जिसका शरीके सफर, शरीके हयात जा चुका हो, फिर भी वो खुश रखने के लिए वो तमाम असबाब मुहैया कर रही हो, कोशिशें कर रही हो, तो क्या वो अपनी बेटी को इस हालत में इस तरह से रोता हुआ, इस तरह से दुख में देखना पसंद करेंगी? उन्हें खुशी मिलेगी इससे? इसके बारे में सोचा है कभी?
1: मैं जब भाई ये देखती हूँ ना कि मेरे मामा मेरे पापा वाली
0: ख्वाहिशात
1: को पूरा करती है,
0: तो उसको इस तरह से खुश मनाया करो, इस तरह से एक्साइटमेंट फील किया करो उनके सामने, जैसे अपने बाबा के लिए करती थी तुम। उन्हें कितनी खुशी मिलेगी कि हाँ, लगता है कि मेरा करना पूरा हो गया, मेरी बेटी को खुशी मिल गई। लेकिन बेटी है कि वो ये सोचती है कि ये तो मेरे वालिद वाली ख्वाहिशात थी, ये तो मैं उनसे चाहती थी कि वो पूरा करते, और वो पूरा करते तो मुझे खुशी होती थी, अब ये मामा पूरा करती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते। एहसास अपनी जगह है, बहुत खूबसूरत है, होना चाहिए हर बच्चे के अंदर कि शायद बहुत मुश्किल से पूरी हो रही है, शायद बीच में कहीं ना कहीं कुछ तंगी आ रही
1: है। अच्छा भाई, मैं क्या सोचती हूँ, मैं सिर्फ यही जेन से नहीं चाह पाता कि यार मामा है, अकेली है, बाबा नहीं है, तो फिर मामा है, मामा से कहती नहीं, मामा मेरी ख्वाहिशात पूरी करती है, मैं खुश हो जाती हूँ। लेकिन एक तरफ ये सोचती हूँ कि एक कमाने वाला जब इंसान के सर पर होता है ना भाई, तो ख्वाहिशात भी उस टाइम अच्छी लगती है।
0: सही कहा आपने,
1: इसलिए मैं रो पड़ती हूँ मामा को देख कर, वो जब मेरी ख्वाहिश को पूरा करती है ना।
0: उनके सामने नहीं रोना, अलहदा रो लेना कोई मसला नहीं है, वो मतलब एहसास की वजह से, लेकिन वो जिस तरह से पूरा कर रही हैं और वो क्यों पूरा कर रही हैं ये सोचकर खुश हो जाना कि वो खुश देखना चाहती हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूँ इस्लाम?
2: नहीं, मैं सही कह रहा हूँ? वो तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो मेहनत कर रही हैं और कुर्बानी दे रही हैं,
0: हाँ,
2: कि मेरी बेटी खुश हो जाए।
0: हाँ,
2: अगर उनकी बेटी ही इस तरह से अफसरदा परेशान उनके सामने रहेगी तो फिर जाहिर है उनको दुख तो होगा, एक हाँ, तो ये दुख होगा और दूसरा उनको अपने शौहर के जाने का,
0: हाँ,
2: वो तो जाहिर है फिर दोनों दुख इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो उनकी मेहनत जो है वो रह जाएगी।
0: अगर वो बीच में ये कह देगी कि मामा आपने तो मेरे वालिद वाली जिम्मेदारियां भी पूरी कर दी हैं, आई लव यू सो मच,
2: कितना ये खुशी
0: और आंखों में चमक भी होगी, खुशी भी होगी, तो कितना अच्छा लगेगा ना उसकी मामा को, कि हाँ फिर वो एक डबल जोश और वलवले के साथ आगे बढ़ेंगी। और फिर बेटी को भी तो चाहिए ना वो साथ दे हर मामले में, और वो देती है। थैंक यू वेरी मच रिमशा, खुश रहो, तुम्हें मुझे लगता है काफी हद तक समझ में आया होगा। कुछ और कहना है, कुछ और दिल में है?
1: और बस भाई, मैं मतलब मेरी फीलिंग इस तरह की बनी हुई थी, मैं पहले थोड़े से मैं रोई थी, मेरी आवाज आपको भारी लग रही होगी इस टाइम।
0: हाँ, मुझे लग रहा है ऐसा।
1: तो फिर क्या, फिर बस ऐसी बन गई थी, मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा अपना जो है ना, मुझे इस तरह मशवरा,
0: दिल हल्का हुआ,
1: थोड़ा हौसला मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है,
0: ठीक है,
1: मतलब मेरा हल्का हुआ।
0: तुम्हारे लिए सब आसानियां पैदा होंगी, खुश रहो, आबाद रहो, मुस्कुराती रहो।
1: आप ऐसा कोई क्या आप तो से एक मैं वो क्या बाबा के नाम का कोई कलाम लगा सकते?
0: मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला?
1: کیا بابا کے نام کا کوئی کلام لگا سکتے ہیں؟
0: بتاؤ کون سا کلام لگانا؟
1: کوئی بھی کلام لگا دیں. ایک وہ کلام ہے نا کہ حق حق لا الہ الا اللہ, وہ ایسا کوئی کلام ہے.
0: پروگرام کے آخر میں جاتے ہوئے لگا دوں
1: جس میں والدہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور والد کا بھی ہوتا ہے.
0: میں کوشش کرتا ہوں, میں ڈھونڈوں ماں
1: باپ کے بعد مطلب جگ دے وچ اندھیرے. یہ پنجابی کی ایسی وہ ہے, اگر آپ کو مل جائے تو لگا دیں.
0: ہاں میں ڈھونڈتا ہوں, جیسے ہی مجھے ملتی ہے تو میں آپ کے لیے پلے کروں گا. ٹھیک ہے,
1: اوکے.
0: اگر نہ پلے کر پاؤں تو پھر معذرت,
1: آپ پھر اپنی مرضی سے آپ کو یہ لگا دیں.
0: چلیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ رمشا, خوش رہیں آپ, بات رہیں.
1: اللہ
0: حافظ, اللہ حافظ, تھینک یو ویری مچ. اچھا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسلام کے انسان کا کوئی ایموشن جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ٹریگر ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پروگرام کی لاسٹ لائیو کال پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا کہنا چاہتا ہے. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام, میں لاہور سے.
0: آپ کی آواز کے اندر ہوا کا شور بہت زیادہ آ رہا ہے, تو اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں تو ذرا تھوڑا سا مائک کو ادھر ادھر کیجیے گا یا سامنے رکھیے گا کہ آپ کی آواز کلیئر آئے.
3: السلام علیکم.
0: اب بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. کیا نام ہے آپ کا؟
3: میرا نام عبد الرؤف ہے, لاہور سے بات کر رہا ہوں.
0: عبد الرؤف بھائی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ اچھے ہیں, خیریت سے؟
3: جی اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں, اور میں نے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ کال کی ہے.
0: بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. کیا کہنا چاہیں گے؟
3: جو میں آپ کا پروگرام کافی دیر سے سن رہا ہوں اور یہ کافی ڈیپلی آپ نے باتیں کر دی ہیں.
0: اچھا,
3: اور اس کی گہرائی ماشاء اللہ, کیا میں آپ کو بات بتاؤں.
0: سلامت رہیں, خوش رہیں, آباد رہیں. آپ کو سمجھ میں آیا, آپ کا دل کہیں نہ کہیں وہاں تک پہنچا, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہو گیا پھر پروگرام کا کوئی کسی حد تک حق ادا. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
3: بس یہی ہے کہ انسان, اگر ایک انسان دوسرے کی لفظوں کی ادا,
0: دل کہیں نہ کہیں وہاں تک پہنچا, تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک ہے, ہو گیا پھر پروگرام کا کوئی کسی حد تک حق ادا. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟

0: हैं, बहुत शुक्रिया।
1: और दूसरी जो सी बात कही थी आपने, कुन फायकून वाली
0: जी,
1: दर हकीकत सारी सब कुछ है ही इसमें।
0: इंसान बहुत छोटी छोटी चीजों में परेशान हो जाता है, जबकि उसको पता ही नहीं कि उसका तखलीककार कितना पावरफुल है।
1: बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आपने वो माँ के पेट से शुरू की बात
0: जी,
1: और इख्तिताम तक ले गए
0: जी जी,
1: वो दरअसल सब कुछ अल्लाह ही ने तो अता किया है।
0: हम बिल्कुल
1: और जो अता कर रहा है हम उसको भूल रहे हैं।
0: बिल्कुल ऐसा ही है।
1: और हम भाग रहे कभी दुनियादारी के चक्रों में, कभी अपनी ख्वाहिशात के चक्रों में, कभी हम किसी का हक मार रहे हैं, कभी हम किसी का हक मार रहे हैं, और उसमें ना हम देख रहे हैं, ना हलाल देख रहे हैं, ना हराम देख रहे हैं, ना बहन का हक देख रहे हैं, ना भाई का हक देख रहे हैं।
0: तब नींद कैसे आएगी, चैन कैसे पड़ेगा मन को, तब नमाजें क्यों लगेंगी कि वो पूरी हो रही हैं, क्यों ऐसा लगेगा जबकि सब कुछ हम लगता है कि ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गलती शायद हमसे हो रही है, क्यों नहीं देख रहे हम। बात यही है जो पहुंच जाए।
1: बिल्कुल सही, ऐसी बात है। अच्छा एक शेर है वसी शाह का
0: जी,
1: जिसमें वो कहते थे, हजारों सितम जमाने में सहे जाते हैं, किसी को दिल में बसाया है कोई मजाक नहीं।
0: अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
1: तो इस तरह की यानी कि ये चीजें इंसान बस अपने रब को याद रखे, ये जो सी ये चीजें हैं, अगर उसी किसी में हम अपने रब को याद कर लें, सब कुछ हमारे पास है, और जो रब ने अता किया अगर हम उसमें खुश रह लें, तो हमें मजीद जो सी ख्वाहिशात, जिस तरह फजर की नमाज पढ़ी है तो जोहर की ख्वाहिशात करनी चाहिए, जोहर की पढ़ी है तो असर की ख्वाहिशात करनी, लगाओ उसके साथ करना चाहिए ना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मैंने जिन्नों को और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया।
0: बेशक ये कुरान की आयत है, हक है, बिल्कुल सच कहा आपने। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ भाई, बहुत खूबसूरत बातें हैं आपसे आप आया करें, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी सोच रखते हैं और बड़े गौर से सुनते हैं। ऐसे अनमोल लोग बहुत कम होते हैं और बड़े गौर से सुनने वाले लोग मैं हमेशा से
1: सब ये जो था ना, ये अल्लाह की अता है, ये भी ये अच्छा सुनना, ये भी उसकी अता ही है।
0: ये बिल्कुल सही कहा आपने।
1: और जो हमने सुना अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर अब अमल की भी तौफीक दे,
0: बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये सबसे खूबसूरत कॉल थी है ना इस्लाम, ऐसे ही तुम्हारी गजल का मैं कब से वेट कर रहा हूँ, तुम पता नहीं क्यों नहीं मुझे सुना रहे।
2: मैं इसी को ढूंढ रहा
0: था। हाँ अभी ढूंढ रहे
2: हो गया,
0: यही कहीं रखी थी है ना, अय्यूब खावर की भी तो एक नज़्म है ना। हाँ सुनो।
2: मैं सुनाऊंगा, कमाल ये है कि खिजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना, कमाल ये है।
0: वाह वाह।
2: हवा की जद पे दिया जलाना और जला के रखना, कमाल
0: कमाल ये है।
2: जरा सी लग्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसे से भी ताल्लुक बना के रखना, कमाल
0: कमाल ये। अच्छा।
2: किसी को देना ये मशवरा कि वो दुख बिछड़ने का भूल जाए, ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना,
0: कमाल ये है।
2: और ख्याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है, जो जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना,
0: कमाल ये,
2: कमाल जी है।
0: वाह वाह वाह।
2: किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर,
0: वाह वाह।
2: फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना,
0: झुका के रखना,
2: कमाल जी है,
0: कमाल ये।
2: और वो जिसको देखे तो दुख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए, लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल जी है।
0: लबों पे अपनी वो मुस्कुराहट सजा के रखना, कमाल
2: कमाल
0: है। यार बहुत अच्छा है, बहुत।
2: हजार ताकत हो, सौ दलीलें हो, फिर भी लहजे में आजजी से, हजारों ताकत हो, हजारों ताकतें हों, सौ दलीलें हों, फिर भी लहजे में आजसी से, अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू बसा के रखना, कमाल जी।
0: अदब की लज्जत, दुआ की खुशबू, क्या कमाल,
2: बसा के रखना,
0: वाह वाह वाह वाह,
2: कमाल जी,
0: वाह वाह वाह।
2: कैसी लगी सर?
0: नहीं यार बहुत मजे की, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। 1:50 मुकाबला सख्त है।

0: और वक्त जो है वो कम है, किल्लत रहती है हमेशा मुझे वक्त की, या शायद मुझे टाइम मैनेजमेंट पे भी एक प्रोग्राम करना चाहिए लेकिन अगर मैं पूरा उतरूं तब करूंगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह मला खैल हमारे साथ मौजूद, हौसला कभी ना खोएं, हिम्मत कभी ना हारें और कोशिश तब तक जारी रखें जब तक ब्लॉक ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह मला खैल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। मरीना बिलाल कह रही है अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान, यार मैं हमेशा मरीना बिलाल कह देता हूँ, आपने रोका भी है मुझे बिलाल कहने से। मरीना हमारे साथ हैं, अब ये ए हटा दो तो फिर अच्छा रहेगा। मरीना हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम माजिद रहमान, वेलकम मरीना फ्रॉम लाहौर। मैंने फिर बोले बिलाल कह दिया
1: हाँ जी।
0: हमेशा पहले ये बिलाल हुआ करती थी, अब पता नहीं कि उसने हटा दिया बिलाल। समझ नहीं आ रहा मुझे। गुलाब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू आरजे रहमान अनवर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? नाइस शो कह रहे हैं आप, थैंक यू वेरी मच। अलिशबा साबिर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप? क्या आज फिर से आरजे डॉग्स छुट्टी पे हैं या उन्हें शो की टाइमिंग चेंज हो गई? नहीं नहीं, छुट्टी पे थे आज। उस्मा इजाज कह रही है हम उन्हें सोच के फिर और किसे सोचेंगे, बस यही सोच के फिर उनको दोबारा सोचा, अच्छा किया जी। मोहम्मद उर्स लगारी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। वालेकुम अस्सलाम, बेहतरीन प्रोग्राम आपने कहा, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हमजा हमारे साथ हैं फ्रॉम मूसा वाली पिपला, खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। नजीर खोसो हमारे साथ सोहबतपुर बलूचिस्तान से हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बन के रहिए, कैंची बन के नहीं, क्योंकि सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है, लेकिन काम आती है वैसे। वो दो जो आपस में लड़ते हैं वहां पे कैंची काम आती है वैसे। आज एक सहर ज़दा कर देने वाली आवाज के साथ आज एक नई आवाज भी शामिल है, कोई तारुफ जी? मोहम्मद उस्मान कह रहे हैं जी, मेरे साथ इस्लाम है, बड़ा खूबसूरत इंसान है। सज्जाद साजिद अली हमारे साथ तालियां बजा रहे हैं जी, शुक्रिया जी, टॉप कहा आपने, बहुत शुक्रिया, दिल भेजे और गुलदस्ते भेजे, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। एस एच जीशान कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी अदा करे, वेरी नाइस शो, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। इन दुआओं की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है हमेशा।
1: सर वो 101 वाली जो पोस्ट है वहाँ पे भी है कमेंट्स, वो भी
0: हाँ वही वही वही शामिल करने लगा, वही शामिल करने लगा इसके बाद, वही वाले। अच्छा जी यस, ये कुछ कमेंट्स हैं, इनको भी शामिल कर लेते हैं, ठीक है। ये मरीना हमारे साथ है, एक और पोस्ट थी उस पर भी, 8 अक्टूबर 2005 का वो अलमनाक, ठीक है ठीक है। अच्छा ये तुमने जो गजल है ये यहाँ पे भी भेजी है ना इस्लाम?
1: हाँ जी, मैं चाह रहा था ये आप पढ़े।
0: अच्छा ये तो तुमने आप पढ़ दी है ना, अच्छा बहुत अच्छी पढ़ी है तुमने। ताहिरा मसूद साहिबा कहती है तुम कहते रहे तुम अनमोल हो, तुम बहुत खास हो, तुम जैसा कोई नहीं, और मैं तुम्हारे हर लफ्ज को सच समझती रही, फिर एक दिन समझ आया तुम्हारे लफ्ज खास नहीं थे, तुम बस हर शख्स को वही लफ्ज देने के आदी थे, फर्क सिर्फ इतना था तुम्हारे लफ्ज वो चंद लफ्ज थे और मेरे लिए वो पूरी दुनिया थी। रहना चाहिए आपको फिर उस दुनिया में, इसमें परेशानी की क्या बात, गिले शिकवे की क्या बात, जब एक चीज दुनिया है तो उसमें रहना जरूरी है, रहना चाहिए, नहीं नहीं रहना चाहिए, क्या कहती हैं आप तायरा? अच्छा जी, आयशा सुल्तान हमारे साथ हैं, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम सर, हम अपनी ख्वाहिश और दूसरों की तवक्कात में फर्क नहीं भूलते, अच्छा, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी ख्वाहिश को पसे पुश्त डालकर दूसरों की तवक्कात पर पूरा उतरना पड़ता है, क्यों? कुछ इंसान तो बगावत का रास्ता अपनाकर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं और कुछ अपने से मुंसलिक लोगों की तवक्कात में ही खुद को ढाल लेते हैं। इंसान अक्सर मजबूरी के धागों में उलझा होता है, हाँ ये बात सच, मजबूरी बहुत सारी चीज़ें करवाती है, लेकिन हम में से कुछ वो धागे तोड़कर अपनी ख्वाहिश हासिल कर लेते हैं। और यकीन माने सर, कभी कभार जिन्हें खुश रखने के लिए हम अपने दिल को मार रहे होते हैं ना, उनके नज़दीक हमारी शायद वो हैसियत ही नहीं होती जो होनी चाहिए। देखा, इस चीज़ का एहसास होता है ना, इसलिए कभी कभी बगावत भी कर लेनी चाहिए। एहसास और मजबूरी में फ़र्क है, उसको समझने की ज़रूरत है। आयशा, बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है और बहुत सच्चा लिखा है। ये बात ज़रूरी है, सच्चा होना ज़रूरी है। ट्रैक शामिल कर रहा हूँ जो कि प्रोग्राम के अख्ताम पे शामिल करने वाला हूँ, और आपको अंदाज़ा है कि मैं कौन सा ट्रैक शामिल करने वाला हूँ, है ना अंदाज़ा? बताएं तो सही ना मुझे, मुझे पता है आपको पता चल जाता है कि रहमान को कोई चीज़ लड़ जाए तो फिर वो फिर उसके उसकी जान नहीं छोड़ता। 4 मिनट बाकी, इजाज़त लेने का वक्त है, 4 मिनट बाकी हैं। दूसरी तरफ आज बुध है ना, दूसरी तरफ क्यों आज मुझे वसीम भाई नज़र क्यों नहीं आ रहे? अक्सर इस टाइम तक वो सामने मौजूद होते हैं। सर जीशान के, अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस शो, अस्सलाम वालेकुम आरजे रहमान अनवर, बहुत शुक्रिया उस्मा, थैंक यू वेरी मच, सुपर्ब शो, थैंक यू वेरी मच, आपने कहा, थैंक यू वेरी मच। मुझे मिस कर गए, आज पता नहीं आप नाम लेना क्यों भूल गए। मैंने उस्मान तुम्हारा नाम कब नहीं लिया, मैंने तुम्हारा नाम लिया तो है अभी, जब तुमने अभी मुझसे पूछा कि आज इस आवाज़ के साथ एक और आवाज़ शामिल है, तो मैंने इस्लाम नाम लिया ना,
1: उस्मान का नाम,
0: उस्मान मैंने आपका नाम लिया, मोहम्मद उस्मान हमारे साथ हैं, मुझे मिस कर गए। ये समर भाई कहा है या अनवर भाई आपने लिखना था, सीन की जगह अलिफ मिस हो गया। देखिए आपसे, आप कह रहे हैं कि मैं आपको मिस कर गया, आप मेरा अलफ ही बीच में से पता है आपको, अलिफ और मीम के दरमियान पूरी कायनात है, तो अलिफ को मिस नहीं कर सकते आज आप, पता नहीं मैंने ये बोल दिया, ठीक है ठीक है। उसमें कह रही है कि अहमद फराज कहते हैं तेरी बातें ही सुनाने आए, दोस्त भी दिल ही दुखाने आए, फूल खिलते हैं तो हम सोचते हैं तेरे आने के जमाने आए, ऐसी कुछ चुप सी लगी है जैसे हम तुझे हाल सुनाने आए, इश्क तन्हा है सरे मंजिल गम वो ये बोझ उठाने आए, अजनबी दोस्त हमें देख के हम कुछ तुझे याद दिलाने आए, दिल धड़कता है सफर के हंगाम काश फिर कोई बुलाने आए, अब तो रोने से भी दिल दुखता है शायद अब होश ठिकाने आए, क्या कहें फिर कोई बस्ती उजड़ी क्यों लोग जश्न मनाने आए, सो रहो मौत के पहलू में फराज नींद किस वक्त न जाने आए। अच्छा ठीक है ना, अब मैंने बोल दिए ना तुम सबकी जो कमेंट्स हैं, अब कोई शिकवा तो नहीं है मुझसे, कोई गिला तो नहीं है ना मुझसे, लेकिन अभी नाम लेना भूल गया था, है ना, नाम ले लेता हूँ। ताहिरा मसूद साहिबा हमारे साथ मौजूद महजबीन इस्लामाबाद से, सादिया रफी, अरे अरे आरजे सादिया रफीक साहिबा मेरी बहुत फेवरेट आरजे, वरवन की बहुत खूबसूरत आवाज़ है, आपके लिए दोपहर 11 से 1 का प्रोग्राम किया करती हैं, दिन भूल गया कल बता दूंगा। सादिया साहिबा थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाएं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इस्लाम ये मेरे सामने बैठा है और यहाँ पे लाइक भी इसने किया है, बड़ी खूबसूरत सी इसमें पेंट कोट, इसको अच्छा लगता है वैसे, ठीक है इस्लाम बहुत शुक्रिया। मरीना थैंक यू वेरी मच, उज़मा जट थैंक यू, उज़मा एजाज थैंक यू वेरी मच, एस एच जीशान, खुर्रम शहजाद, आयशा सुल्तान थैंक यू वेरी मच, जन्नत सलीम बहुत बहुत शुक्रिया, साइम तबस्सुम तुम्हारे मैसेजेस नहीं आए आज साइम, खामोशी से सुन रहे थे, अच्छा लगा वैसे मुझे, फैसल अब्बास, आयशा जैन हमारे साथ थैंक यू वेरी मच। कुछ नाम और रह गए, वो भी शामिल करते हैं, वो भी शामिल करते हैं। आरजे डॉक्स ने लाइक की है और मेरा प्यारा भाई है, जान है, बड़े भाई हैं डॉक्स, थैंक यू वेरी मच अगर आप सुन रहे हैं। ये गाना यार आपके लिए, ये है, याद रखिएगा आप, अगर आप सुन रहे हैं तो मुस्तफ़ा जाहिद की खूबसूरत आवाज़ है आपका फेवरेट वाला, वो जो हम प्ले किया करते हैं, तो फिर आओ उसी का ये ट्रैक है, ये आपने प्ले किया करना है आप मेरे कहने पे, प्लीज़ ये जितने भी ऑडियंस सुन रही है ना, ये ओ माय गॉड, उधर वसीम भाई नज़र आ गए मुझे, तशरीफ ला चुके हैं। सिर्फ नाम लूंगा, रजा खान, थैंक यू वेरी मच, मरीना बहुत बहुत शुक्रिया, अहमदुल्ला मला ख्याल, देखा मैंने कहा था ना वसीम भाई तशरीफ ले आएंगे। हालांकि मैं कब से मैं शीशे में उस पार बार बार देखता था कि क्यों नहीं आया अभी तक, क्यों नहीं आया अभी तक, आ चुके हैं, बस एक सेकंड दीजिएगा वसीम भाई। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। ओ माफ कर दे, ठीक है। मोहम्मद इस्लाम, एस एच जीशान, साजिद अली हमारे साथ, फसीहा जन्नत बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद उस्मान, फैसल अब्बास, सलमान बट ताहिर, मोहम्मद हमजा अहमद, इसकी शक्ल से लगता है कि मैंने इसको देखा है, यहाँ पे देखा है हमजा, थैंक यू वेरी मच, मलिक उमर, थैंक यू वेरी मच, मोहम्मद हमजा बहुत बहुत शुक्रिया, उज़मा एजाज, थैंक यू वेरी मच, हामिद बहुत बहुत शुक्रिया, लिशबा साबिर बहुत बहुत शुक्रिया, गुलाब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम इजाज़त लेने का आन पहुंचा, कोई बात बुरी लगी हो तो तिफले मकतब समझ कर ये सोच करके अभी सीखने के अमल में हूँ, दरगुजर कर दीजिएगा या फिर माफ़ कर दीजिएगा, बड़े लोग हैं आप। और दूसरी बात जो है वो बाद में कहूँगा, इस्लाम आखिर है तो एक लाइन में अगर कुछ भी कहना चाहो बस। अब तुमने अपनी मर्जी से कम बोला, ये बता दो इनको कि मैंने तुम्हें बार बार पूछा भी ऑफ एयर।
1: बिल्कुल ठीक, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग जो हैं वो खुश रहें और अपने आसपास लोगों को भी खुश रखें, और जितने भी दुख हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, उनको हौसले सब्र और दुआ के साथ अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट रहें और अपनी दुआओं को अल्लाह ताला से पूरा करवाएं और खुशी के लम्हात को जिएं, खुश रहें।
0: यस यस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इस्लाम खुश रहो, आबाद रहो। लेकिन अगर कोई एक बात किसी एक इंसान के लिए भी मशाले राह हो गई तो मेरा यहाँ पे आने का, प्रोग्राम करने का, बात करने का मकसद पूरा हो जाता। आपसे मुलाकात होगी कल रात 12 बजे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आखिर में जाते हुए, मैं ज़मीन से एक दिन आसमां को आऊँगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतज़ार करना। अल्लाह हाफ़िज़।

0: moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: You're listening to FM 101. Abale Bale Oshawa Shawa.
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101। सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101। साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल एफएम 101।

तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तुझे इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता। तुझको इजहारे मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता। बेनियाजी से मगर कांपती आवाज के साथ तूने घबरा के मेरा नाम ना पूछा होता। बेनियाजी से मगर कांपती आवाज के साथ तूने घबरा के मेरा नाम ना पूछा होता। तेरे बस में थी अगर मशले जज्बात की लौ, तेरे रुखसार में गुलजार ना भड़का होता। तेरे बस में थी अगर मशले जज्बात की लौ, तेरे रुखसार पे गुलजार ना भड़का होता। यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आपो हवा की बातें, यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आबो हवा की बातें, अपने टूटे हुए फिक्रों को तो परखा होता। यूं तो मुझसे हुई सिर्फ आबो हवा की बातें, अपने टूटे हुए फिक्रों को तो परखा होता। यूं ही बेवजह ठिठकने की जरूरत क्या थी, यूं ही बेवजह ठिठकने की जरूरत क्या थी, दमे रुखसत में अगर याद ना आया होता। दमे रुखसत में अगर याद ना आया होता, तेरा गमाज बना खुद तेरा अंदाजे खराम, दिन ना संभला था तो कदमों को संभाला होता। अपने बदले मेरी तस्वीर नजर आ जाती, अपने बदले मेरी तस्वीर नजर आ जाती, तूने उस वक्त अगर आईना देखा होता। हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, हौसला तुझको न था मुझसे जुदा होने का, वरना काजल तेरी आंखों में ना फैला होता। तुझे इजहार मोहब्बत से अगर नफरत है, तूने होठों को लरजने से तो रोका होता। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम सामईन, प्रोग्राम गुंचे शौक लेके मैं आपका अपना मेज़बान वसीम अहमद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तमाम खूबसूरत सवातों को एक दफ़ा फिर मेरा बहुत मोहब्बत भरा, खलूस भरा, प्यार भरा सलाम कबूल हो। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, और रात के इस पहर में बहुत सारे लोग जो हैं वो जाग भी रहे होते हैं। कुछ लोगों को नींद नहीं आ रही होती इसलिए जाग रहे होते हैं, कुछ लोग मेरे प्रोग्राम को सुनने के लिए जाग रहे होते हैं, अपनी मोहब्बतें निछावर करने के लिए जाग रहे होते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने 101 FM को ट्यून इन किया और मेरे प्रोग्राम को सुनने की कोशिश आपने की, और जिसमें आप बिल्कुल कामयाब भी हैं, और यकीनन आप भरपूर तरीके से अपनी राय का इजहार भी करेंगे, अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो भी शो करेंगे, प्रोग्राम में शामिल भी रहेंगे अब से लेके प्रोग्राम के ख़त्म होने तक। हमारा आपका साथ है जनाब अब से लेके सुबह के 4 बजे तक, रात का ये खूबसूरत पहर जिसमें नींद जो है वो बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है, और हम चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लें जागने की फिर भी आँखों में नींद आ जाती है। तो इस पहर में अगर आप जाग रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, तो आपको बताता चलूं कि आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया जो शायरी है वो हमारे पास मौजूद है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शायरी को सुनते हैं वो हमारे प्रोग्राम में जब शामिल होंगे तो डेफिनेटली अपने साथ बहुत खूबसूरत अशआर जो हैं वो लेके आएंगे। और आप चाहे एक कथा लेके आएँ, एक गज़ल लेके आएँ, या इवन एक मिसरा भी लेके आएंगे ना, तो हम आपको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन। इस वक्त आप ये प्रोग्राम 101 FM के नेटवर्क पे सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ पे 101 FM के ट्रांसमीटर्स मौजूद हैं, रेडियो स्टेशंस मौजूद हैं, वहाँ वहाँ पे मेरी आवाज़ आपकी समातों तक पहुँच रही है। तो जिन लोगों ने
मेरी इस प्रोग्राम को उठाए हुए हैं दूसरे स्टेशंस पे, और लाहौर में भी और कराची में भी और पेशावर में भी और इस्लामाबाद में भी, रावलपिंडी में भी, सियालकोट में भी, फैसलाबाद में भी, और भी इसके अलावा जहाँ जहाँ भी 101 FM के स्टेशंस हैं वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ के स्टाफ को मेरा बहुत बहुत सलाम कबूल और उनका बहुत शुक्रिया। पूरे पाकिस्तान में मेरी आवाज़ गूंज रही है आपके साथ साथ, और इसके साथ साथ हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पे पूरी दुनिया में मेरी आवाज़ जा रही है। तो आप किसी भी मुल्क में मौजूद हैं, किसी भी जगह पे मौजूद हैं, आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग को एंजॉय कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FM 101 को सुनने के लिए, रेडियो पाकिस्तान को सुनने के लिए, रेडियो पाकिस्तान के ऐप को आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगे और मिल जाएगा आपको, और आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, और दुनिया में कहीं भी बैठ के आप हमारे प्रोग्राम को सुन सकती हैं। ना सिर्फ मेरे प्रोग्राम को बल्कि रेडियो पाकिस्तान के दीगर जो चैनल्स हैं उनको भी आप सुन सकते हैं। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहूँगा। अगर आप इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं लाहौर की जानिब, या कहीं भी आप जा रहे हैं अपने शहर से बाहर किसी दूसरे शहर जा रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री में आप हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं और वहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी दुआएँ कि आप खैर खैरियत से अपनी मंजिलों की जानिब रवान हुआ रहे हैं और खैर खैरियत से अपनी मंजिलों पर पहुँचें। हमेशा की तरह आपके लिए मुख्तलिफ किस्म की जो शायरी है वो हमारे प्रोग्राम में शामिल होती है, जो मारूफ शोरा हैं उनका कलाम प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। तो इसलिए आप दिल खोल के दाद दे सकते हैं और दिल खोल के दाद वसूल भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या करेंगे कि आप हमारे फेसबुक पेज पे आएंगे, जिसका पता है www.facebook.com/FM101 लाहौर, और इसके साथ साथ आप हमें SMS कर सकते हैं, 101 लिखिए यानी 101 टाइप कीजिए, उसके बाद स्पेस देके अपना पैगाम लिखिए और भेज दीजिए 4471 पे। हमारा टेलीफोन नंबर आपका जाना बजाना 042-111-000-101, यानी 042-111-000-101। पाकिस्तान से बाहर से अगर कॉल करें तो आप 0092 मिलाइएगा, उसके बाद 42 और देन 111-000-101। एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। ऐसा होता है कभी कभी कि हम दूसरों जैसा बनने के चक्कर में हम अपने आप को फरामोश कर देते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हम उन्हें देखते हैं, हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हम चाहते हैं कि हम उन जैसे बन जाएं। किसी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, किसी का बोलने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, कोई हमारे दिल के बहुत करीब पहुंच जाता है, कोई हमारे दिल में समा जाता है, मगर क्या होता है कि हम अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी शख्सियत को कहीं और घुमा देते हैं, फरामोश कर देते हैं, अपनी पहचान को रद्द कर देते हैं, जबकि कुदरत ने हमें सबसे अलग बनाया है। अगर हम गौर करें तो हमारी उंगलियों के जो निशान हैं वो भी किसी और शख्स से नहीं मिलते हैं, तो हम कैसे किसी दूसरे शख्स की तरह हो सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी पहचान के साथ अपनी वैल्यू जो है वो बनाएं, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं, अपनी कदर को बढ़ाएं और अपना एक अलग मुकाम बनाएं। अगर हम ये कहें कि हम उस जैसे हो जाएं, हम उस जैसे हो जाएं, हम उस जैसे हो जाएं, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छा हंसता है, वो बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है, तो यकीन मानिए ये हम अपने आप को पीछे ले जाएंगे, और जहाँ पे हम अपने आप को ही पीछे ले जाएंगे तो फिर हमारे पास अपना क्या बचेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में हम अपने आप के सबसे पहले हमें अपने आप का बनना पड़ेगा अगर हम ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, किसी को कुछ बताना चाहते हैं। तो हमें ये चाहिए कि अपने अंदर इतनी क्वालिटीज़ लेके आएँ, इतनी खूबियाँ लेके आएँ कि दूसरे लोग हम जैसा बनना चाहें, ना कि हम किसी और जैसा बनना चाहें। वैसे असूली तौर पे जो बात है वो ये है कि जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हमें उसी को निखारना चाहिए, उसी में पॉजिटिविटी पैदा करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن. وقت بتاتا چلو 2:23 ہو چکے اور 4 تک میرا آپ کا ساتھ رہے گا. پروگرام میں ڈھیر ساری پوئٹری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے, شاعری ڈھیر ساری موجود ہوتی ہے اور اسے ہم آپ کے لیے پروگرام میں شامل کرتے چلے جاتے ہیں, ساتھ ساتھ ہماری باتیں بھی چلتی رہتی ہیں. تو جناب ہم اپنے پروگرام میں آپ کے لیے بہت ساری شاعری لے کے موجود ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے کچھ ہم دلوں کی باتیں کریں گے, کچھ محبتوں کی باتیں کریں گے, کچھ ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو کہ ہمارے دل میں سمائے رہتے ہیں اور ہم ان سے دور نہیں جا سکتے. کہتے ہیں کہ رشتے ختم نہیں ہوتے, رشتے جو ہوتے ہیں وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ خاموشی تبھی پیدا ہوتی ہے جب ہم گلا نہیں کرنا چاہتے, جب باتیں دل میں رہ جائیں, باتیں دل میں رہنا شروع ہو جائیں اور ان باتوں کو کوئی سمجھنے والا بھی نہ ہو, نہ ہی وہ شخص جس سے ہمارے دل میں کوئی بات آئی ہے, جس کے رویے سے ہمارے دل میں کوئی ایسی بات آئی ہے, نہ ہی وہ سمجھ رہا ہے اور نہ ہی کوئی اور ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم صبح شام رات ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں مگر ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو جاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا کہ یہ دوریاں کہاں سے آتی ہیں, یہ کیوں آتی ہیں, کیا رشتے ختم ہو سکتے ہیں؟ آج کی پروگرام کا جو فارمیٹ ہے, جو ٹاپک ہے, وہ یہی ہے کہ کیا رشتے ختم ہو سکتے ہیں, کیا رشتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہم ایک دوسرے سے نہ بھی بولیں, ہم خاموش بھی ہو جائیں, پھر بھی رشتہ تو موجود رہتا ہے نا. تو کیا نہ بولنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے رشتے کو توڑ دیا, ہم نے ان محبتوں کو بھلا دیا, ہم نے جو بچپن اکٹھا گزارا تھا اس کو بھول گئے, یا ہم نے جو جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھ عہد و پیمان کیے تھے ان کو بھی بھول گئے؟ کیا رشتے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں, مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو. مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو, تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو اور اتنی ہی بے مروت ہو. تم ہو پہلو میں برقرار نہیں, تم ہو پہلو میں برقرار نہیں, یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. تم ہو انگڑائی رنگ و نکھت کی, کیسے انگڑائی سے شکایت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا, کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا, تم میری زندگی کی عادت ہو. کس لیے دیکھتی ہو آئینہ, کس لیے دیکھتی ہو آئینہ, تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو. داستان ختم ہونے والی ہے, داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. داستان ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو. کہتے کہ پہلی محبت ہی آخری محبت ہوتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ پہلی محبت ہی آخری محبت ہوتی ہے تو درمیان میں جتنی محبتیں ہوتی ہیں نا, وہ ساری لوگ کہتے ہیں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی محبت کو بلانے کے لیے کی جاتی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ پہلی محبت کو بلایا جا سکتا ہے, پہلی محبت کو بلانے کے لیے ہی دوسری محبتیں کی جاتی ہیں, بعد میں محبتیں کی جاتی ہیں؟
احمد فراز کا کلام پیش کرتا ہوں. زلف راتوں سی ہے رنگت ہے اجالوں جیسی، پر طبیعت وہی ہے بلانے والوں جیسی. ایک زمانے کی رفاقت پہ بھی رم خوردہ ہے، اس کم آمیز کی خوبو ہے غزالوں جیسی. ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شباہت اس کی، ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شباہت اس کی، کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی. ڈھونڈتا پھرتا ہوں لوگوں میں شباہت اس کی، کہ وہ خوابوں میں بھی لگتی ہے خیالوں جیسی. کس دل آزار مسافر سے میں لوٹا ہوں کہ ہے آنسوؤں میں بھی ٹپک پاؤں کے چھالوں جیسی. اس کی باتیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح، اس کی باتیں بھی دل آویز ہیں صورت کی طرح، میری سوچیں بھی پریشان میرے بالوں جیسی. اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز؟ اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز، سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. جتنی بھی اس وقت آنکھیں جاگ رہی ہیں، ان کو دل کی گہرائیوں سے اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا. پروگرام آپ کا جانا پہچانا گنچہ شوق، آج کے دن یعنی بدھ کی اور جمعرات کی رات کو 2 بجے میرا آپ کا ساتھ ہوتا ہے، اور آپ کے بہت سارے پیغامات جو آتے ہیں، جو آپ کے کمنٹس آتے ہیں، وہی پروگرام میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. بالکل آپ کی مسکراہٹ کی طرح، آپ کی مسکراہٹوں کی طرح، آپ کی خوابیدہ آنکھوں کی طرح. کچھ محبتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی. ویسے محبت کوئی بھی ہو، وہ لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی. آپ اس کی بات ہے، کیا ضروری ہے کہ اظہار کیا جائے، کیا ضروری ہے کہ بتایا جائے؟ خاموشی میں بھی سوال ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی شخص آپ پہ مرتا ہو، آپ سے محبت کرتا ہو، مگر وہ کچھ نہ کہتا ہو، اور جب کبھی آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں تو اس میں بے شمار سوال آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے دل کی بات کو جاننا ہے تو اس کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھ لیجئے. خاموشی میں بھی سوال ہوتے ہیں، اور اسی خاموشی کے ساتھ آنکھیں، آپ کی آنکھیں اسی خاموشی کے ساتھ ان کو جواب بھی دیتی ہیں، ان سوالوں کے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آنکھیں ہی سوال کرتی ہیں اور آنکھیں ہی جواب دیتی ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ منہ سے بولیں کچھ. اور جب کبھی دوری آ جائے تو یادوں میں بھی وفا زندہ رہتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور آپ کی جو محبت ہے وہ ختم ہو گئی، یا آپ بے وفا ٹھہرائے گئے، یا بے وفا اپنے آپ کو سمجھنے لگے، یا اس کو بے وفا سمجھنے لگے. یادوں میں بھی تو وفا زندہ رہتی ہے، اور وہ لوگ جو خاموش رہتے ہیں، وہ خاموش رہ کر بھی بے انتہا محبت کرتے ہیں، ایک لفظ منہ سے نہیں بولتے. ہر سوال کا جواب وہ تلاش کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں، مگر پھر بھی آنکھیں آپس میں بات کرتی ہیں. آپ کسی کو سوچتے ہیں تو یقین مانیے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس تک آپ کی جو سوچ کی لہریں ہیں وہ نہ پہنچے. وہ بھی آپ کو ضرور سوچتا ہے، ضرور یاد کرتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، آپ نے ٹیلی فون سیٹ کو اٹھایا اور آپ نے کہا کہ میں کسی دوست کو، کسی جس سے بھی آپ کا دل چاہ رہا ہے بات کرنے کو، آپ نے اس کو یاد کیا اور نمبر ڈائل کرنے لگے کہ اس کی کال آ گئی. ایسا ہی ہے، یہ ایک ایسا سسٹم ہے، یہ ایسی ایک کیا کہوں میں، ایسی فلسفی کہہ لیجیے، ایسی بات ہے کہ ہم صرف سوچتے ہیں کسی کے بارے میں، کسی کو یاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ضرور یاد کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی کو چاہیں، کسی سے محبت کریں، کسی کو یاد کریں اور اس کے آپ کی محبت کا اثر نہ ہو، چاہے وہ سات سمندر پار ہی کیوں نہ بیٹھا ہو.
कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, कोई तो बात हो ऐसी करार आ जाए, खिजां भी देख चुके अब बाहर आ जाए। तुम्हें तो लौट के आना नहीं कभी शायद, दुआ ये है कि हमें इंतजार आ जाए। हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, हम अब की बार उसे लौटने नहीं देंगे, बस एक बार, अगर एक बार आ जाए। हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं कहेंगे अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाल और अभी चल दिए। मीर नियाजी कहते हैं कि बेख्याली में बस यूं ही एक इरादा कर लिया, बेख्याली में बस यूं ही एक इरादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं, जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं, उसने वादा कर लिया, मैंने भी वादा कर लिया। गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। गैर से नफरत जो पाली खर्च खुद पर हो गई, जितने हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। शाम के रंगों में रख कर साफ पानी का गिलास, शाम के रंगों में रख कर साफ पानी का गिलास, अब आब सादा को हरीफ रंगो बादा कर लिया। हिजरतों का खौफ था या पुरकशिश को ना मुकाम, किया था जिसको हमने खुद दीवारे ज्यादा कर लिया। एक ऐसा शख्स बनता जा रहा हूं मैं मुनीर, जिसने खुद पर पन हुस्नो जामो बादा कर लिया, बेख्याली में बस यूं ही एक इरादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। आपके खूबसूरत पैगाम प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई है अनिला जी, हमारी बहुत अच्छी लिसनर हैं, हमारी बहुत अच्छी कॉलर हैं। अनिला जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने आते ही हमें मैसेज किया और आपने सलाम भेजा तमाम सुनने वालों को, मुझे भी, आपको भी सबका सलाम पहुँचे, मेरा भी सलाम पहुँचे। जीती रहिए, खुश रहिए और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी लाइव कॉल ज़रूर मिलेगी लाइव कॉल्स के सेशन में और आप आके हमें बहुत बढ़िया पोएट्री सुनाएंगे। कहते हैं कि जो साथ चलने वाले लोग होते हैं वो जब तक साथ चलते चले जाते हैं हमें उनकी कोई परवाह नहीं होती। एक बंदा, एक शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है रोज़ हमें कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। हम रोज़ सुनते हैं ये बात, हम रोज़ चाय पीते हैं, हम रोज़ कॉफ़ी पीते हैं, हम रोज़ गपशप लगाते हैं, हम रोज़ अपनी किताबें टेबल पे रख के बैठ जाते हैं, बातें भी करते हैं, अपनी किताबों के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं, मौसम की बातें भी करते हैं, फूलों की बातें भी करते हैं, तितलियों की बातें भी करते हैं। और साथ वो शख्स मुझे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और आज उसने ये नहीं कहा, सारी बातें उसी तरह हुई, तितलियां भी आईं, फूल भी महके, बातें भी हुई, किताबें भी देखी, कॉफी भी पी, चाय भी पी, मगर उसने ये बात नहीं की तो क्यों नहीं की? यही एक फांस जो है वो दिल में चुप के रह जाती है और यही बात बार बार हमें तड़पाती है, बार बार हमें कहती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज उसने क्यों नहीं कहा? वो इसलिए नहीं कहा कि वो दूसरा शख्स देखना चाहता है कि मेरे इस कहने की कितनी वक्त है, कितनी कदर है उसके दिल में। और ये हम जिसको एक आम सी बात समझते थे कि वो हमें ये कह रहा है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, आज उसने नहीं कहा तो हमारा दिल कितना
दुख गया, कितनी तकलीफ हमें उठानी पड़ी, कितना हम सोचते रहे घर में आके वापस अपनी जगहों पे जहाँ पे हम अपना काम करते हैं सोते हैं, नींद क्यों उड़ी रही हमारी, हम क्यों करवटे बदलते रहे, क्यों ये बात उसने नहीं कही आज। इसलिए कहते हैं कि जो हम जिनसे मोहब्बत करते हैं हमारे दिल के करीब होते हैं, बहुत करीब होते हैं, और जब कभी वो इसका इजहार ना भी करे ना तो फिर हमें बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि इजहार का हो जाना बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी करें फिर भी हमें यार महसूस तरीके से पता तो चल जाता है कि कुछ है, मगर अगर कोई रोज़ ये कहता है और एक दिन ना कहे तो फिर हमें पता चलता है कि जनाब कितनी बड़ी बात है वो जो रोज़ हमें कही जाती है, जिसको हम ऐसे ही सुनते हैं कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। साथ थे आप तो मंजिल भी सदा देती थी, साथ थे आप तो मंजिल भी सदा देती थी, अब ये आलम है कि हर राह गुजर तक चुप है। साथ थे आप तो मंजिल भी सदा देती थी, अब ये आलम है कि हर राह गुजर तक चुप है, किसको आवाज दें इस बोलते सन्नाटे में, किसको आवाज दें इस बोलते सन्नाटे में, किसको आवाज दें इस बोलते सन्नाटे में, जिस तरफ देखिए दीवार से दर तक चुप है। साथ थे आप तो मंजिल भी सदा देती थी, अब ये आलम है कि हर राह गुजर तक चुप है, किसको आवाज दें इस बोलते सन्नाटे में, जिस तरफ देखिए दीवार से दर तक चुप है।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

ओके डियर लिसनर्स, यकीनन आपको मैडम अलकदर नूर जहाँ की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत बहुत पसंद आया होगा। रात का ये खूबसूरत पहर जिसमें आपके लिए ये खूबसूरत गीत पेश किया गया, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ आपके पैगाम मुझ तक पहुँचे हैं, मैं उम्मीद करता होता हूँ कि मेरे सुनने वाले जो हैं वो अपने कमेंट्स, ढेर सारे कमेंट्स मुझे भिजवाएंगे, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि आसमान पे जिस तरह सितारों की झुरमुट होती हैं उस तरह से जगमगाते हुए आपके पैगाम मेरे पास पहुँचने चाहिए। और बिल्कुल स्याह रात में जिस तरह सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, चाँद चमकता हुआ नज़र आता है, उस तरह से आपके जो पैगाम हैं वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं, रात के इस पहर को खूबसूरत बनाते हैं, जिस तरह चांद और सितारे मिलके, और बिल्कुल स्याह रात में जिस तरह सितारे चमकते हुए नज़र आते हैं, चांद चमकता हुआ नज़र आता है, उस तरह से आपके जो पैगाम हैं वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं,

0: के साथ, और आपके लिए बहुत सारी पोइट्री, बहुत सारी शायरी हमारे पास मौजूद होती है, और आज भी हम अपने प्रोग्राम में आपके लिए बहुत सारी ढेर सारी शायरी लेके हाजिर हैं, और यकीनन आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा और आप पसंद भी करेंगे। आपकी पोइट्री का हमें इंतज़ार। आप भी हमारे प्रोग्राम में अपनी खूबसूरत बातें लेके, अपनी खूबसूरत शायरी लेके शामिल हो सकते हैं। जो भी दुख याद न था याद आया, जो भी दुख याद न था याद आया, आज क्या जानिए क्या याद आया। फिर कोई हाथ है दिल पर जैसे, फिर तेरा अहदे वफा याद आया। जिस तरह धुंध में लिपटे हुए फूल, एक एक नक्श तेरा याद आया। ऐसी मजबूरी के आलम में कोई याद आया भी तो क्या याद आया। याद आया था बिछड़ना तेरा, फिर नहीं याद कि क्या याद आया। जब कोई जख्म भरा दाग बना, जब कोई भूल गया याद आया। ये मोहब्बत भी है क्या रोग फराज, जिसे भूले वो सदा याद आया। ये मोहब्बत भी है क्या रोग फराज, जिसे भूले वो सदा याद आया। यादें जिंदगी का सरमाया होती हैं, एसेट होती हैं यादों के साथ। मगर एक प्रॉब्लम ये है कि यादें जो होती हैं ना, वो चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, फिर भी आंखों में आंसू दे के ही जाती हैं। वफा की कौन सी मंजिल पे उसने छोड़ा था, वफा की कौन सी मंजिल पे उसने छोड़ा था, कि वो तो याद हमें भूल कर भी आता है। आज के प्रोग्राम की पहली लाइव कॉल, देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, शुक्र अल्लाह का, ठीक हूँ। कौन?
1: लाहौर से इरम बात कर रही
0: हूँ। जी इरम, कैसी हैं? वेलकम, ठीक ठाक हैं।
1: सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सब समाचारों को, और अलीला से कुछ स्पेशल
0: जी।
1: और आज हम उनके लिए एक शायरी लिख रहे हैं, उसे डेडिकेट करेंगे, और सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं
0: जी।
1: पंजाबी में है, वो कहता है कि चलिया इश्क व्यापार नहीं होता, चलिया इश्क व्यापार नहीं होता, शर्ता लाके प्यार नहीं हुंदा।
0: वाह, शर्ता लाके प्यार नहीं हुंदा।
1: चलिया इश्क व्यापार नहीं हुंदा, शर्ता लाके प्यार नहीं हुंदा, हासे देके होके लेने, हासे देके होके लेने, सौखा कारोबार नहीं हुंदा।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
1: ते मंगे जान भी देनी पेंदी, मंगन जान देनी पेंदी, यारां तो इनकार नहीं होता।
0: वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया।
1: और नीला जी के लिए, के आपके लिए दिल उदास है, आपसे मिलने की आस है, रिश्तेदार और अपने तो बहुत है मेरे पास, लेकिन आप हमारे लिए बहुत खास हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया इरम, जीती रहिए, बहुत
1: सलामत रहे, खुश रहे, आपको हमेशा हंसते मुस्कुराते रखे, और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।
0: वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, इरम हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इरम बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और बात हमने की थी कि क्या हम दूसरों जैसा बनने के चक्कर में अपने आप को फरामोश कर देते हैं। ये वाकई ये ऐसा होता है, ये सिर्फ कहने की हद तक है। गुजरे हुए तवील ज़माने के बाद भी, गुजरे हुए तवील जमाने के बाद भी, दिल में रहा वो छोड़ के जाने के बाद भी, पहलू में रह के दिल ने दिया है बहुत फरेब, रखा है उसको याद बुलाने के बाद भी, बुलाने के बाद भी। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
2: जी, आपका प्रोग्राम काफी अच्छा है,
0: बहुत शुक्रिया।
2: तो पोएट्री हम आपकी भी सुन रहे हैं, बहुत जबरदस्त पोएट्री आप पढ़ रहे हैं,
0: बहुत शुक्रिया। नाम बताएं।
2: तो जी मैं मुल्तान से शाहिदा बात कर रही हूँ।
0: जी शाहिदा, तो, पहली दफा आपकी कॉल आई है गालिबन, ठीक है ना?
2: जी, जी सर,
0: तो आपको वेलकम कहता हूँ मैं, आपका बहुत शुक्रिया आपने हमें इस वक्त कॉल किया।
2: पोएट्री सुना दूं?
0: जी जरूर सुनाए, जरूर सुनाए।
2: मेरी रूह हरी कर गया आखिर, किस तरह मेरी रूह हरी कर गया आखिर, वो जहर जिसे जिसमें खिलते नहीं देखा।
0: वाह क्या बात,
2: यक लफ्ज गिरा है तो जड़ें तक निकल आई, यक लफ्ज गिरा है तो जड़ें तक निकल आई, जिस पेड़ को आंधी में भी खिलते नहीं देखा।
0: वाह बहुत अच्छा,
2: मजीद पढ़ सकती हूँ?
0: जी जी पढ़िए पढ़िए।
2: जुदाइयों जुदाइयों के जख्म तो सुना के भर चले थे फिर, जुदाइयों के जख्म तो सुना के भर चले थे फिर, बदन के हाथ नाखूने विशाल कैसे आ गया।
0: बहुत अच्छा, बहुत
2: बिछड़ के वो मुझे लौटा गया है मेरा वजूद, बिछड़ के वो मुझे लौटा गया है मेरा वजूद, ये सानिहा मेरे हक में तो नेक फाल ही था।
0: बहुत अच्छा,
2: थैंक यू जी,
0: बहुत शुक्रिया। शायद आइंदा भी जरूर कॉल कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। मुल्तान से पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में शाहिदा ने कॉल किया, तो मोहतरमा आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको हम अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, आइंदा भी ज़रूर कॉल कीजिएगा और प्रोग्राम का हिस्सा हमेशा रहिएगा हमारे प्रोग्राम का। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा, इसलिए आपके साथ हम प्रोग्राम में मौजूद होते हैं ताकि आपकी खूबसूरत बातें प्रोग्राम में शामिल होती रहें। वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम उनसे बहुत बातें करते हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मिलता नहीं है वो शख्स जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं कि हमारा हो जाए हमेशा के लिए, वो नहीं मिलता। दाग दहलवी कहते हैं कि मताए जीस में शामिल रहे हजारों रफीक, मताए जीस में शामिल रहे हजारों रफीक, वो जिसकी चाह थी दिल को वही मगर ना मिला, वो जिसकी चाह थी दिल को वही मगर ना मिला। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम जी, वाजिद बोल रहे हैं खान तो।
0: वाजिद
3: जी,
0: वाजिद कहाँ से बोल रहे हैं आप?
3: गुजर खान तो सर।
0: गुजर खान से, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत है, ठीक हो?
0: जी जी शुक्र है लगा। वाजिद आपकी पहली दफा कॉल है गालिबन।
3: बिल्कुल इसी तरह जी, बड़ा मजा आ रहा था, तो सुने शेर सुन रहे थे तो मैं क्या कि पटवार ने कुछ आंदा शेर सुन मेरे तन, मैं चलो मैं कुछ सुना देना।
0: बिल्कुल तुसी सुनाओ, मैं थोड़े शेर सुनागा, बड़ा मजा आएगा थोड़े गल करके।
3: अच्छा जी, शेर है के ना नकाब रखदा ना एजाब लांदा, इत्थे रहिया ते करिया गुजारे छुपके, जे इजाजत नहीं रूबरू वेखने दी वड़ा सितम ना करिया नजारे छुपके। वांग कैस जो फिरदे वीरानिया विच सुबह शाम ओ दर्दा ने मारे छुपके, ना दिल देना ना रौना फौंदा जे कदे जालिम ना करदा इशारे छुपके। इसने नाल शेर है दूसरा के मेरा दिल बेचैन दिन रहन रहंदा, अश्क बार नित तेरा दिल गिर छुपके, ला इलाज तबीबा ने रोग दसिया ऐसा मारिया तुसी ने तीर छुपके।
0: ऐसा मारिया किसी ने तीर खिंच के,
3: ऐसा मारिया तू सीने तीर छुप के,
0: हाय हाय हाय, ऐसा मारिया तू सीने तीर छुप के,
3: तेरी यादां दा रोग नहीं छुप सकदा, जिवें रहंदी नहीं भूले अंबीर छुप के।
0: वाह,
3: हो गई अजलू जो नक्श फराक दिल में तखदा रहंदा मैं तेरी तस्वीर छुप के।
0: वाह,
3: और इजाजत हो एक तुसाई यादा ने बारे शेर सुनाना, यादा ने सिलसिला चलना,
0: एक शेर सिर्फ एक शेर सुनाना तुसी, क्योंकि पहले तुसी पूरी गजल सुनाई है।
3: बिल्कुल इसी तरह जी, तो शेर है कि तेरी याद विच ऐसा कमाल तखिया, तेरी याद विच नहीं अपनी याद रहंदी, मैं ते इजर वसाल नो एक जाना, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਤਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ।
0: ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਜਿਦ ਆਪਕਾ।
3: ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਵੈਦ ਕਰ ਦਿਆਂ
0: ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ
3: ਤੋਂ ਮਿਸਰੇ ਜਾਫਲ ਜਣਾ ਚਾਰ ਮਿਸਰੇ ਜੇ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਠਵਾਰਨੀ ਸਕਾਫਤ ਜੇ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਤੋ ਅਗੇ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਸਨ ਰਹਿਣੇ ਸਨ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜਰ ਵਸਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਕੋ ਜੇ ਤਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਾਹ ਲਗਲੇ ਉਹ ਯਾ ਲਗਲੇ ਗਰਦਨ ਆਸ਼ਕ ਪੈ ਉਤਰੀ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿ ਚਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਰਾਨ ਅਨਵਰ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ।
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ
3: ਸੁਣਨੇ ਲਈ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ,
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਜਿਦ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਫ਼ਤਗੀ ਨਹੀਂ ਵੋ ਬਾਤ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੋ ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੋ ਮਿਲ ਸਭ ਗਿਲੇ ਮਿਟਾ ਦੂੰਗਾ। ਮੁਜਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮੁਝਸੇ ਤੁਝੇ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਸਦਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਸੇ ਖੜਾ ਹੂੰ, ਮਗਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਪੂਛ ਲਿਆ ਤੋ ਜਵਾਬ ਕਿਆ ਦੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕੋ ਚਸ਼ਮੇ ਕਮ ਸੇ ਨਾ ਦੇਖ, ਮੈਂ ਰੋ ਪੜਾ ਤੋ ਦਿਲੋਂ ਕੇ ਤਬਕ ਹਿਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਯੂਹੀ ਉਦਾਸ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੋ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਤਨਹਾਈਆਂ ਬਿਛਾ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਬਾ ਸੇ ਮੁਹੱਬਤ ਏ ਦਰੀਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਕਰ, ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਤੋ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਦੁਆ ਦੂੰਗਾ। ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਨਾ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਬੁਲਾਊਂਗਾ ਨਾ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਨਾ ਖਤ ਲਿਖੂੰਗਾ ਤੁਝੇ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੇ ਲੀਏ ਖੁਦ ਕੋ ਯੇ ਸਜ਼ਾ ਦੂੰਗਾ। ਵੋ ਦਰਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹਾ ਵਰਨਾ ਮਦਾਏ ਹਯਾਤ, ਮੁਝੇ ਗੁਮਾ ਵੀ ਨਾ ਥਾ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬੁਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਭੀ ਤੋ ਰਾਤ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਰ, ਸੋ ਹੀ ਲੇ ਨਾਸਿਰ। ਅਭੀ ਤੋ ਰਾਤ ਹੈ ਕੁਛ ਦੇਰ, ਸੋ ਹੀ ਲੇ ਨਾਸਿਰ, ਕੋਈ ਬੁਲਾਏਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਜਗਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।
4: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਵਸੀਮ ਭਾਈ, ਕੈਸੇ ਹੈਂ
0: ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੱਲਾ ਕਾ, ਠੀਕ ਹੂੰ। ਕੌਣ?
4: ਹਕ ਨਵਾਜ਼ ਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੂੰ।
0: ਜੀ ਹਕ ਨਵਾਜ਼, ਆਪ ਖੈਰੀਅਤ ਸੇ ਹੈਂ? ਠੀਕ ਹੈ
4: ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ, ਆਪਕੀ ਦੁਆਏ। ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋ ਮੈਂ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਵੋ ਆਪਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਂ ਤੋ। ਯਕੀਨ ਮਾਨੇ ਕਿ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਕਾ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੇ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਕਾਨ ਮੇਂ ਲਗਾਏ ਔਰ ਮੁਝੇ ਐਸੀ ਨੀਂਦ ਕਾ ਗਲਬਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਗਿਆ।
0: ਅੱਛਾ,
4: ਹਾਂ ਵਰਨਾ ਮੈਨੇ ਰਹਿਮਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਥੀ, ਅਗਰ ਵੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਉਨਕੋ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਹਿ ਦੀਜੀਏਗਾ।
0: ਅਬ ਤੋ ਵੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਯਹਾਂ ਸੇ।
4: ਹਾਂ ਚਲੇ, ਆਪ ਔਰ ਆਪਕੀ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ।
0: ਅਗਰ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਹਨ ਮੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ?
4: ਚਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੋ ਆਜ ਇੱਕ ਅਗਰ ਗ਼ਜ਼ਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਅਗਰ ਗੁਨਗੁਨਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰ ਤੋ।
0: थोड़ी सी ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं, वो रात का टाइम भी है, तो फिर उनका हक ना मारा जाए। ठीक है
4: सर, हक नवाज समझता है, इस बारे में बेहतर समझता है।
0: ठीक हो गया,
4: ठीक है सर, सुनिएगा। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला कब मिलता है। करते हैं मोहब्बत सभी मगर, हर दिल को सिला

0: कब खिलता है करते हैं मोहब्बत सभी मगर,
1: क्या बात है,
0: सभी मगर। आखिरी शेर
1: जी,
0: मैंने तो बहुत चाहा लेकिन तू रख ना सकी वादों का भरम, मैंने तो बहुत चाहा लेकिन
1: तू रख ना सकी वादों का भरम।
0: अब रह रहे

0: क्या बात
1: ना सकी वादों का भरम, मैंने तो बहुत चाहा लेकिन।
0: वाह, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। मैंने तो बहुत चाहा लेकिन तू रख न सकी वादों का भरम।

0: करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है, वाकई हर दिल को सिला कब मिलता है। हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम
1: जनाब अली वसीम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक
0: जी? जी शुक्र अल्लाह। कौन बोल रहे हैं
1: जी? मैं मोहम्मद आमिर भट्टी बोल रहा हूँ लाहौर से। जनाब अली, कैसी तबीयत आप?
0: जी जी शुक्र है, आप खैरियत से हैं? ठीक है।
1: हाँ जी शुक्र अल्लाह, जो घड़ी गुजर जाए वही अच्छी।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी आपका प्रोग्राम सुन रहा था, अच्छा लग रहा था। और वैसे भी आप तो हरफन मौला शख्सियत है जनाब, आप हर रंग में ढल जाते हैं।
0: बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।
1: जो जो कम कम लोगों को नसीब होती है।
0: बहुत मेहरबानी आपकी।
1: वो कहते हैं ना, एक वक्त में पुलिस वाले भी बन गए, एक वक्त में मौलवी भी बन जाते हैं, एक वक्त में आप सारी रंगों में ढल जाते हैं यार।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया
1: जी। अच्छा, और मेरी एक छोटी सी फरमाइश अगर पूरी हो सके तो, वो गुलाम अली साहब की गजल है, फिर तेरे शहर में आया हूँ मुसाफिर की तरह।
0: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह।
1: ये अगर सुना रहे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर।
0: अच्छा चले, मैं लिख लेता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा एक दो बोल उसके सुना दो।
1: चलो जितनी भी सुना देंगे, कुछ थोड़े से सुना दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी।
0: कुछ आप भी तो सुनाए ना फिर।
1: हाँ हाँ, मैं असल में ना एक टाइम था जब मैं कुछ साल पहले शायरी पढ़ लेता था, लेकिन आजकल जो है इससे दूर। वैसे मुझे नासिर काज़मी साहब तो बहुत ज्यादा पसंद रहे हैं।
0: जी जी
1: माशाल्लाह। और इलामा इकबाल साहब की शायरी,
0: उनका उनका कोई शेर, एक आधा शेर अगर याद है तो सुना दे, नहीं तो ठीक है।
1: इलामा इकबाल साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा था और गालिबन उन्हीं का ही है। हमारा भी खून शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमारा भी खून शामिल है तज़ीने गुलिस्तां में, हमें भी याद कर लेना जब चमन में बहार आए।
0: वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
1: अभी मैं इंतजार करूंगा।
0: जी जी जरूर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वालेकुम अस्सलाम।
2: मंजूर नहीं
0: ये दौर वो है कि बैठे रहो चिराग तले, ये दौर वो है कि बैठे रहो चिराग तले, सभी को बज में देखो मगर दिखाई ना दो। आप क्या कहते हैं इसके बारे में?
2: मोहर लगा दूंगा, सोचा है कि अपने होंठों।
0: अभी नासिर काज़मी का जिक्र किया अभी लास्ट कॉलर ने, तो उनका कलाम पेशे खिदमत है। वो इस सदा से जो आए तो यूं भला न लगे, हजार बार मिलो फिर भी आशना न लगे। कभी वो खास इनायत के सौ गुमा गुजरे, कभी वो तर्ज तगाफुल के मेहरमान न लगे। वो सीधी सादी अदाएं की बिजलियां बरसें, वो दिलबराना मुरव्वत के आशिकाना लगे। दिखाऊं दागे मोहब्बत जो नागवार न हो, सुनाऊं किस्सा फुरकत अगर बुरा न लगे। सुनाऊं किस्सा फुरकत अगर बुरा ना लगे। और आगे है, बहुत ही सादा है तू और जमाना है अय्यार, खुदा करे कि तुझे शहर की हवा ना लगे। बुझा ना दे ये मुसलसल उदासियां दिल की, वो बात करके तबीयत को ताजिया ना लगे। झुकर उजड़ गए उनका ना रंज कर प्यारे, वो चारा करके ये गुलशन उजाड़ सा न लगे। हताबे अहले जहां सब भुला दिए, लेकिन वो जख्म याद है अब तक जो गायबाना लगे। वो रंग दिल को दिए हैं लहू की गर्दिश ने, नजर उठाऊं तो दुनिया निगार खाना लगे। अजीब ख्वाब दिखाते हैं ना खुदा हमको, गरज यह है कि सफीना किनारे जाना लगे। लिए ही जाती है हरदम कोई सदा नासिर, लिए ही जाती है हरदम कोई सदा नासिर, ये और बात सुरागे निशाने पा ना लगे। वो इस सदा से जो आए तो यूं भला ना लगे, हजार बार मिलो फिर भी आशना ना लगे। 042-111-000-101 हमारा टेलीफोन नंबर, अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, ओके ओके, तो आपके पैगाम भी हम तक पहुँच रहे हैं, उन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
3: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, वेलकम जी आयानू।
3: आपको भी वेलकम सर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुनाइए सर कुछ जबरदस्त सा, सुनाइए आज मजा आ जाए।
3: जबरदस्त
0: हमेशा वैसे जबरदस्त सुनाते हैं आप, ये तो आपकी क्वालिटी है कि जब भी सुनाती हैं कमाल का सुनाती हैं।
3: अच्छा हाँ, कोशिश कर, मैं कोशिश करता हूँ
0: जी,
3: मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ।
0: और माशाल्लाह से हमेशा बेहतरीन कोशिश होती है और बेहतरीन कोशिश में कामयाब होते हैं आप।
3: ये आपकी समातों का खूबसूरत समातें हैं आपकी। बारह मकसूद वफा ने कहा था कि मिसरा सानी उठाया उसने, मिसरा सानी आप भी उठाए ना सर, मिसरा सानी उठाया उसने
0: जी, मिसरा सानी उठाया उसने,
3: जो लिखा मैंने सुनाया उसने,
0: जो लिखा मैंने सुनाया उसने, वाह क्या बात,
3: सुनाया उसने। और जाग उठा था किसी ख्वाब में मैं, जाग उठा था किसी ख्वाब में मैं, मुझको जब हाथ लगाया उसने,
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
3: मुझको जब हाथ लगाया उसने। और शेर आपकी नजर कर रहा हूँ कि एक तस्वीर रखी टेबल पर, आपने बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई है कि एक तस्वीर रखी टेबल पर और गुलदान सजाया उसने,
0: वाह क्या बात है,
3: और गुलदान
0: सजाया उसने।
3: और शेर सुनिएगा कि मैंने एक शेर मोहब्बत में कहा और वो शेर निभाया उसने,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या बात है
3: और वो शेर निभाया उसने, और मैं तो आंसू भी नहीं पहुंच सका, मैं तो आंसू भी नहीं पहुंच सका, इस कदर मुझको हंसाया उसने,
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इस कदर उसने हंसाया
3: मुझको
0: वाह,
3: नहीं सॉरी इस कदर मुझको हंसाया उसने, मैं तो हाँ उसने रदीफ इसकी है उसने, मैं तो आंसू भी नहीं पहुंच सका, इस कदर मुझको हंसाया उसने, पर पहले वो छुप के कहीं बैठ गई, पहले वो छुप के कहीं बैठ गई, बादे अज़ा पर्दा उठाया उसने,
0: बहुत अच्छे बहुत बढ़िया,
3: और रख लिया मैंने तो पत्थर दिल पर,
0: और रख लिया मैंने तो पत्थर दिल पर,
3: रख लिया मैंने तो पत्थर दिल पर, क्या किया होगा खुदाया उसने,
0: ओहो हो वाह क्या बात है, क्या किया होगा खुदाया उसने, क्या बात है मैंने तो रख लिया पत्थर दिल पर, क्या किया होगा खुदाया उसने, वाह क्या बात,
3: खुदाया उसने। और आखिरी शेर थे बगल का कि इस कड़ी धूप ने भेजा है मुझे, तो क्या देखें क्या दूर की कोड़ी है कि इस कड़ी धूप ने भेजा है मुझे, अपनी दीवार का साया उसने,
0: वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बहुत अच्छे बहुत बढ़िया।
3: एक नज़्म सुना देते हैं आपको अपनी
0: जी, सुनाइए।
3: दो शेर भी सुनाता हूँ अपने
0: जी।
3: एक कता है मेरा कि जब कोई गैर होने लगता है
0: जी,
3: जब कोई
0: गैर होने लगता है,
3: मीठा भी जहर होने लगता
0: है, ओहो बहुत अच्छे
3: जब कोई गैर होने लगता है, मीठा भी जहर होने लगता है, और देखकर तेरी बेरुखी मुझसे, देखकर तेरी बेरुखी मुझसे, खुद बहुत शेर होने लगता है,
0: बहुत अच्छे।
3: एक नज्म है मेरी, दोबारा पढ़ना चाहूंगा आज के, बड़ी मुख्तसर सी नज्म का उनवान है सयाद
0: जी,
3: कि अजब सयाद है मेरे पर बांध के उड़ने को कहता है,
0: वाह
3: अजब सयाद है मेरे पर बांध के उड़ने को कहता है, भला ऐसे भी कभी हुआ है,
0: वाह
3: भला ऐसे भी कभी हुआ है, नहीं ना मगर अब ये तमाशा रोज़ो शब हो रहा है, जो होना ही नहीं चाहिए था वो सब हो रहा है,
0: वाह बहुत अच्छी।
3: वसीम भाई एक मंजर कशी देखें कि वो देखो सामने खिड़की की दाएं जानिब पिंजरा खुला है,
0: वाह
3: वो देखो सामने खिड़की की दाएं जानिब पिंजरा खुला है, बेबस लाचार पंछी खड़ा है, अपनी सोचों में गुम किसी शाहकार की माने शीशे के फ्रेम में बंद,
0: बहुत अच्छे क्या बात,
3: शीशे के फ्रेम में बंद, सुनो ओ भाई साहिब सुनो, इस तस्वीर के दाम क्या हैं,
0: वाह,
3: इस तस्वीर के दाम क्या हैं? दुकानदार बोला, बाबूजी माफ करना, ये बिकाऊ नहीं है।
0: वाह,
3: ये बिकाऊ नहीं है।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है।
3: सर खुश रहे, दुआओं में याद रखिए।
0: बहुत शुक्रिया,
3: आप,
0: बहुत शुक्रिया।
3: आपके प्रोग्राम के लिए मुझे नींद लेनी पड़ती है।
0: आप जीते रहिए और इसी तरह नींद लेते रहें और हमारे प्रोग्राम में आके लोगों को लुत्फ भी देते रहें।
3: आपकी मोहब्बत है,
0: आपका बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, हमीद गुल साहब हमारे बहुत प्यारे लिस्टनर हैं, बहुत खूबसूरत पोइट्री से हमें नवाजते हैं। न समातों में तपश घुले, न नज़र को वक्फे अजाब कर, जो सुनाई दे उसे चुप सिखा, जो दिखाई दे उसे ख्वाब कर। अभी मुंतशिर न हो अशनबी, न वसाल रुत के करम जिता, जो तेरी तलाश में गुम हुए कभी उन दिनों का हिसाब कर। कभी उन दिनों का हिसाब कर, मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों। मेरे सब्र पर कोई अज्र क्या, मेरी दोपहर पे ये अब्र क्यों। मुझे ओढ़ने दे अजियतें, मेरी आदतें ना खराब कर। कहीं आंवलों के भंवर बजें, कहीं धूप रूप बदन सजें, कभी दिल को थलका मिजाज दे, कभी चश्मे तर को चनाब कर। यह हजूम शहर सितम गराना, सुनेगा तेरी सदा कभी। मेरी हसरतों को सुखन सुना, मेरी ख्वाहिशों से खताब कर। ये जुलूस से फसले बहार है तही दस्त यार सजा, ये जुलूस से फसले बहार है तही दस्त यार सजा। इसे कोई अश्क फिर से शरर बना, कोई जख्म फिर से गुलाब कर, कोई जख्म फिर से गुलाब कर। 04221100101 हमारा टेलीफोन नंबर। और जनाब रावलपिंडी से अब्दुल रहमान, आवाज़ सुरीली है, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने आवाज़ की खूबसूरती की बात की है, तो आप जीते रहिए, आपका बहुत शुक्रिया। हमें SMS करने का, कुछ और भी लिख देते तो हम उसे भी प्रोग्राम में शामिल करते, मगर आपने जो लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और ये है जनाब, इन्होंने लिखा है मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, फौजी मोहम्मद हमजा सलमान अच्छा हमजा मोहम्मद हमजा, सलाम टू ऑल फ्रॉम मुल्तान कैंट, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट विहारी। अच्छा जी, ये ज़िला विहारी से इनका ताल्लुक है, इनका नाम है मोहम्मद हमजा। ये हैं, लव यू भाई, बहुत टाइम बाद आपको सुन रहा हूँ भाई मैं। साध मेरी अच्छा, इनका कोई अपनी प्रॉब्लम ये डिस्कस कर रहे हैं अपने, और इन्होंने कहा कि जी 7 साल से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब हम एक दूसरे को मिल पाएँ, हमारी शादी हो सके, और कोई प्रॉब्लम चल रही है इनकी, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं जनाब मोहम्मद हमजा, के आपकी दिली मुराद पूरी हो। और यकीनन जब सच्ची मुरादें होती हैं, जब दिल के जज्बात सच्चे होते हैं, जब मोहब्बत सच्ची होती है, तो फिर अल्लाह ताला भी मदद फरमाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर लगन सच्ची है और मोहब्बत सच्ची है, तो आपके लिए भी ज़रूर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खुलेगा। और बिहार ठाकर फ्रॉम सुधीर अजीम, अच्छा ये सुधीर, ये है जी बहीर ठाकर फ्रॉम सुधीर अजीम, लोग सब को साथ लेकर चलते हैं, हिसाब नहीं कहते। अच्छा, आपने मिक्स कर दिया सारा कुछ, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने अपना नाम क्या लिखा है, और जगह का नाम क्या लिखा है, बाहिर ठाकुर फ्रॉम सुधीर सुधीर, अच्छा ये यहाँ तक आ गया सुधीर। आगे ने कहा कि अजीम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और बस यही इन्होंने आगे लिखा है और हिसाब नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में एसएमएस करने के लिए, आपकी एसएमएस हम तक पहुंच रही है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से हमें एसएमएस कर सकती हैं, जिसके लिए आप 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपना पैगाम लिखेंगे, भेज देंगे अपनी पसंद की पोइट्री के साथ 4471 पे। और ताहिरा मसूद कहते हैं कि कोई मुश्किल पड़े तावीज़ बना सकते हो, कोई मुश्किल पड़े तावीज़ बना सकते हो तुम, मेरे नाम पे हर दाव लगा सकते हो, जब जहाँ चाहो मुझे छोड़ के जा सकते हो, उस घड़ी तक मुझे क्या अपना बना सकते हो। कब तकाजा है निभाने का, मगर जाते हुए मेरे अंदर से भी क्या खुद को मिटा सकते हो। तुमको मालूम है ये आखिरी नींदें हैं मेरी, वसत ख्वाब जरा और बढ़ा सकते हो। क्या बात है जनाब, वसत ख्वाब जरा और बढ़ा सकते हो। आसमां थाम के रखा है जो तुमने सर पर, थक गए हो तो उसे मुझ पे गिरा सकते हो। जब कभी शहर से गुजरो मेरे मिलना लाजम, एक तुम ही हो जो मुझे मुझसे मिला सकते हो। मुझसे मिलने में भला अब है तरद्दुद कैसा, इससे बढ़कर तो नहीं मुझको गंवा सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से शेख जीशान जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, कागजी घाट शब कदर से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं जी। इन्होंने नाम नहीं लिखा अपना, अगर आप अपना नाम भी लिखते तो बहुत अच्छा लगता। और रियाज भट्टी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमारे प्रोग्राम को लाइक इन्होंने किया। हम ये भी प्रोग्राम में आपको बता दें कि प्रोग्राम को लाइक किया कागजी घाट से, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, ये मेरे ख्याल जगह है। और हमीद गुल साहब ने लाइक किया है और ताहिरा मसूद साहिबा ने लाइक किया, इरफानुल्ला ने लाइक किया, रियाज भट्टी ने लाइक किया, शेख जीशान जी ने प्रोग्राम को लाइक किया। आपके बहुत थोड़े कमेंट्स हैं, आप कुछ और पोइट्री हमें भेजिए ताकि हम उसे प्रोग्राम में शामिल कर सकें। अच्छा लगता है जब आपके ढेर सारे कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं, आपकी राय मुझ तक पहुंचती है, आपकी पोइट्री मुझ तक पहुंचती है, आपकी कॉल्स तो हम तक पहुँच ही रही हैं। अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
4: मोहम्मद सलीम इस्लामाबाद। कैसे हैं भैया, ठीक है?
0: जी बिल्कुल ठीक है मोहम्मद सलीम, आप ठीक हैं?
4: मुर्सलीन,
0: मुर्सलीन ठीक है
4: माशाल्लाह।
0: मुर्सलीन आप ठीक हैं, फर्स्ट क्लास हैं
4: जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
0: जी।
4: मैंने कहा आपके प्रोग्राम में थोड़ी सी शायरी शामिल कर दूं।
0: ओ बिल्कुल कीजिए ना, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोल रही हैं हंसते मुस्कुराते हुए, सुनाइए अच्छा सा सुनाइए कुछ।
4: वफा के शहर में जब भी सनम तराशा है, सकून दिल के लिए जैसे कोई गम तराशा है।
0: वाह।
4: दिखाई देते हैं नोके कलम पे उसके नकुश, याद यार को जब भी कलम तराशा है।
0: वाह।
4: मिला है ख्वाब में गर्चा कहीं संग मुझे, मिला है ख्वाब में गर्चा कहीं पे संग मुझे, तेरा ही नक्श खुदा की कसम तराशा है। ये और बात है वफा से मैं बेनियाज रहा, निजर में हर जगह उसका इल्म तराशा है। न मिल सकी मुझे फिर भी निजाद शहर हो, किताबे दिल से तेरा हर सितम तराशा है।
0: बहुत शुक्रिया मुर्सलीन, बहुत तवील हो गया आपकी कलाम आपका।
4: किसी ने जर्ब लगाई है पैसे की उसे, किसे फिर भी गिला है कि हमने तराशा है।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मुर्सलीन, बहुत शुक्रिया। आप सुन रही हैं?
4: जी मैं सुन रहा हूँ। आप मेरे ख्याल से ये कोई शायरी आपको पसंद नहीं आई है, असल में 1937 की है।
0: नहीं नहीं, शायरी आपकी बहुत बढ़िया है। और नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि पसंद नहीं आई, आपने बहुत बढ़िया कलाम हमें सुनाया है, मगर टाइम क्योंकि बहुत लिमिटेड है इसलिए मैं जल्दी कर रहा था
4: जी। वो जाते जाते डॉक्टर इल्लामा इकबाल साहब का शेर सुना देता हूँ।
0: जी जरूर जरूर।
4: क्योंकि वो आपको पता ही है बांगे दरा
0: जी,
4: एक शेर है उनका की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, अगर समझे की मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या
0: लोह कलम तेरे हैं। बहुत शुक्रिया जी तेरी
4: तो है। मैंने आपकी शायरी जो है वो सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा
0: जी,
4: और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी आपसे बात होगी।
0: कभी नहीं, आपने अगले प्रोग्राम में जरूर कॉल करनी है, ठीक हो गया?
4: क्योंकि वक्त आपके पास कम होता है, आप इतनी लंबी लंबी कॉलें लेते हैं, पूरे पूरे गाने सुनते हैं। जब अभी इतनी प्यारी में आपको सुनाता, इसमें हरम शरीफ का भी जिक्र था, मस्जिद नबी का।
0: मैंने पूरा पूरा गाना नहीं सुना, मैंने उनके दो बोल सुने थे, उसके बाद मैंने वो गाना लगाया था,
4: चलाया
0: ठीक है, हाँ थोड़ा सा चलाया था मैंने, ठीक है।
4: चले वो गिले शिकवे तो दुनिया के साथ ही है ना।
0: बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल भी माशाल्लाह से काफी लंबी हो गई है, ठीक है।
4: वो एक ही शेर है, गुजरे हैं तेरे बाद भी कुछ लोग उधर से, लेकिन तेरी खुशबू न गई वहाँ गुजर से।
0: वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया,
4: अल्लाह
0: शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ओके जी, पता क्या है कि आप लोगों के लिए ही प्रोग्राम है, अगर हम एक बंदे से ही बात करते चले जाएंगे, आपने भी काफ़ी टाइम लिया मुस्लिम, और उसके बाद ये है कि दूसरे लोग जो है ना वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर वो मायूस हो जाते हैं। तो रात के इस पहर में नंबर मिलाना और प्रोग्राम को सुनना काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, अच्छी अच्छी बातें किया कीजिए। गिले शिकवे जो होते हैं वो सारा दिन पड़ा है हमारे पास, रात के इस पहर में भी हम गिले शिकवे करेंगे तो फिर क्या मज़ा क्या आएगा। इस थोड़ा थोड़ा सा बर्दाश्त, थोड़ा सा हौसला सब में चाहिए ताकि हम प्रोग्राम को अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। और देखते हैं कि अगले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी रिमशा, क्या हाल है, ठीक ठाक है?
5: जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज मैं कुछ नहीं सुनाऊंगी, बस ये बताने आई हूँ कि मैं सुन रही हूँ आपको।
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया,
5: क्योंकि अगले शो में मैं आपको सुनाऊंगी। आज मेरी कैफियत नहीं है वैसी, लेकिन मैं आपको सुन रही हूँ और इंजॉय कर रही हूँ। मैंने कहा चले मैं बताऊँ।
0: नहीं, नहीं, आपकी आदरी लग गई, बहुत अच्छा लग रहा है, आप आई और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी हाजिरी भी लगवाई है, बहुत शुक्रिया।
5: मैं अपने वसीम भाई मौला जट से बात करूंगी ना, तो मैं ठीक कर जाऊंगी क्योंकि आपका पंजाबी का शो तो सुनते ही सुनते हैं, लेकिन मैंने कहा चले भाई को ये ना ना हो कि वो सुनते हैं तो फिर ये नहीं सुनते।
0: हाँ, तो जरूरी है ना, इसको सुनना भी जरूरी है, इसको सुनना भी जरूरी है।
5: देख मैं सुन रही हूँ आपको और मैं एंजॉय कर रही हूँ, बस ये बताना था। और आप दूसरों को टाइम देते हैं। ओके,
0: बहुत शुक्रिया,
5: अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए,
0: अल्लाह हाफिज। मुझे एक फरमाइश थी, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, पूरा तो नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा है, 3:31 हो चुके हैं।

फराकी यार की बारिश मलाल का मौसम, फराकी यार की बारिश मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। जो इस वक्त मुसाफिर हैं और उस शहर में वापस गए हैं जहां पे कभी कोई उनका बहुत अपना रहता था, तो यकीन मानिए वो दिल के जो जज्बात होते हैं, वो जो ख्यालात होते हैं, वो जो एहसासात होते हैं, वो वही महसूस कर सकते हैं जो उस वक्त उस शहर में से गुजर रहा होता है, जैसे कि आप गुजर रहे हैं। शायद आप भी गुजर रहे हों उसी शहर में से जहां पहले सारा कुछ मौजूद था और अब आप मुसाफिर बन के गुजर रहे हैं।

0: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, और देखते हैं कि लाइन पे कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम अदीला जी, वेलकम। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं?
1: आपको भी वेलकम, सब सुनने वालों को वेलकम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और टाइम के लिए ना क्या करें, बड़ी मुश्किल से कॉल मिलती है। वेरी गुड। बाकी ये कि कोशिश तो होती है कि मुख्तसर बहस सब सुनने वालों को बहुत सी दुआएं। था मेरे बहन भाई साहब आए, मैं थोड़ा लेट हो गई लेकिन कॉल मिला ही जा रही हूँ, तो शुक्र है मेरे लिए।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
1: जबरदस्त, बड़ी खूबसूरत शायरी आपने पढ़ी और आप सॉन्ग भी बड़े अच्छे प्ले कर रहे
0: हैं।
1: ये जो आपने ये भी चलाया ये भी बड़ा अच्छा है। और अभी जो भाई आके क्या सुना रहे थे, वो सॉन्ग सुना रहे थे, वो कौन थे?
0: मुझे
1: नाम भूल गया।
0: हाँ नाम
1: होता है इतने सारे कॉलर
0: आपको। भट्टी, उनके नाम के आगे भट्टी आ रहा था मेरा ख्याल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी ट्राई थी, अच्छी ट्राई। हाँ, अच्छा गा रहे,
0: अच्छा गाया था, अच्छा गाया था।
1: साथ किसी सुर जड़े मिला इसमें, वो भी अच्छे सी। आपकी तो क्या ही बात है, हसन मौला सही कहा उन्होंने आपको माशाल्लाह से। और बाकी ये कि चले मैं भी कुछ सुनाती हूँ।
0: जी जरूर जरूर।
1: तुमने फुर्सत से देखे ही नहीं खदो खाल मेरे।
0: वाह।
1: तुमने फुर्सत से देखे ही नहीं खदो खाल मेरे, मैं जब तस्वीर में होती हूँ बहुत बोलती हूँ।
0: वाह ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया। मैं जब तस्वीर में होती हूँ
0: बहुत बोलती हूँ,
1: बहुत बोलती हूँ। मुझे अच्छी नहीं लगती ये शिकस्ता हाली, मुझे अच्छी नहीं लगती ये शिकस्ता हाली, जब दामन को भिगोती हूँ बहुत बोलती हूँ।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: मेरी वसत से बढ़कर है तेरा बोझ जिंदगी, मेरी वसत से बढ़ के है तेरा बोझ जिंदगी, जब तुझे मैं ढोती हूँ बहुत बोलती हूँ,
0: बहुत बोलती हूँ। वाह, जब तुझे ढोती हूँ बहुत बोलती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: चीजें तोड़ के निकलती है मेरी भड़ास, चीजें तोड़ के निकलती है मेरी भड़ास, बहुत हंसती हूँ बहुत रोती हूँ बहुत बोलती हूँ।
0: बहुत अच्छे,
1: शुक्रिया,
0: बहुत अच्छे।
1: और अब ये खदशा है कि कहीं तेरा नाम ही ना ले लूं, अब ये खदशा है कि कहीं तेरा नाम ही ना ले लूं, सब कहते हैं जब मैं सोती हूँ बहुत बोलती हूँ।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: सबके लिए बहुत सी दुआएं। और इसी तरह ये ऊंचा शौक सजा रहे, वाह वाह, कोई स्लॉट दे दे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी मैनेजमेंट से 10 से 12 वाली दोपहर वाले शो को, और कोई स्लॉट दे दे 12 से 2 वाली भी सीन में, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही है जी।
0: बहुत शुक्रिया लीला जी, थैंक यू
1: वेरी मच। सो मच जी, सबके लिए बहुत सी, आपकी पूरी टीम के लिए, आप सबके लिए बहुत सी दुआएं, जिया के लिए स्पेशली इस तजद के टाइम में बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए।
0: बहुत शुक्रिया,
1: जो जो जहाँ बीमार अल्लाह सबको सेहत दे और आपको भी सलामत रखे, ऐसे ही महफिल सजाते रहे।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। 101 FM आपका अपना फैमिली स्टेशन, में आपका अपना मेजबान आरजे वसीम अहमद आपके साथ हूँ सुबह के 4 बजे तक। हर एक शब यूं ही देखते देखेंगी सुए दर आंखें, हर एक शब यूं ही देखेंगी सुए दर आंखें, तुझे गवा के ना सोएंगी उम्र भर आंखें। त्रुए सुबह से पहले ही ना त्रुए सुबह से पहले ही बुझ न जाए कहीं, ये दश्ते शम में सितारों की हम सफर आंखें। तलुए सुबह से पहले ही बुझ न जाए कहीं, ये दश्ते शम में सितारों की हम सफर आंखें। सितम ये कम तो नहीं दिल गिरफ्तगी के लिए, मैं शहर भर में अकेला इधर उधर आंखें। शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स चिराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। शुमार उसकी सखावत का क्या करें कि वो शख्स चिराग बांटता फिरता है छीन कर आंखें। मैं जख्म जख्म हुआ जब तो मुझ पे भेद खुला कि पत्थरों को समझती रही गहर आंखें। मैं अपने अश्क संभालूंगा कब तलक मोहसिन, जमाना संग बकफ है तो शीशागर आंखें। हर एक शब यूं ही देखते देखेंगी सुए दर आंखें, हर एक शब यूं ही देखेंगी सुए दर आंखें, तुझे गवा के न सोएंगी उम्र भर आंखें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो
1: जी,
0: जी आ रही है कौन?
1: वसीम भाई बोल रहे।
0: जी जी वसीम भाई बोल रहे, आप कौन बोल रहे हो?
1: जी मैं आपके शो में आज पहली बार कॉल ले रही हूं।
0: चले वेलकम, अपना नाम तो बताइए।
1: मैं कश्मीर से बोल रही हूँ, समर।
0: समर
1: जी।
0: समर खान कश्मीर से। वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से आपने मुझे कॉल किया है, बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ, मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रही थी, आपकी कॉल मिला रही थी लेकिन
0: नहीं। चले चले बहुत अच्छा हो गया, आपकी कॉल मिल गई। क्या कहेंगी, कुछ सुनाएंगी, कुछ है आपके पास?
1: नहीं, बस इतना ही कहूँगी कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आज पहली बार ही सुने।
0: अच्छा चले, बहुत शुक्रिया आपका। जी
1: मैंने
0: बोला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, आपको भी सेहत दे। और आपको प्रोग्राम में पोइट्री अच्छी लगी है
1: जी।
0: और आप जो मैंने कुछ सॉन्ग्स मतलब गजलें प्ले की हैं वो भी अच्छी लगी आपको
1: जी? बहुत अच्छे हैं, आपकी बोलते बहुत अच्छी है।
0: चले चले बहुत शुक्रिया, आइंदा भी ज़रूर कॉल कीजिएगा। और एक आधा शेर अगर आपको याद है तो ज़रूर सुनाए। अगर नहीं है तो अगली दफा।
1: याद आती है तेरी प्यारा है नाम तेरा, याद आती है तेरी प्यारा है नाम तेरा, कुछ कहने से पहले तुझको सलाम मेरा।
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और कुछ कहेंगी?
1: ऐसे सितारों सो जो हम मजबूर बैठे हैं, ऐसे सितारों सो जो हम मजबूर बैठे हैं, जिससे प्यार करते थे वो हमसे दूर बैठे हैं।
0: बहुत अच्छे,
1: बहुत
0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, आइंदा जरूर कॉल कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया समर खान, हमारे प्रोग्राम में कश्मीर से शामिल हुई, पहली दफ़ा उन्होंने कॉल किया आज। माशाल्लाह से बहुत पहले जो नए कॉलर्स हैं ना उनका काफ़ी ज़्यादा तादाद है, तो आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। 3:42

0: मैं और उसको भूलू नासिर, कैसी बातें करते हो। मैं और उसको भूलू नासिर, कैसी बातें करते हो। सूरत तो फिर सूरत है, वो नाम भी प्यारा लगता है। नासिर काज़मी का शेर है, आपको यकीनन पसंद आया होगा। अब मैं अपनी शायरी जो है वो मैंने मुख्तसर करना शुरू कर दी है, आपकी कॉल्स को प्रोग्राम में ज्यादा शामिल कर रहा हूँ। हेलो।
1: मेरे पास होके गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान लो वो दूर जाकर।
0: मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक ना पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं कि वो दूर जाके रोए। कौन बोल रहा है?
1: तो वसीम भाई, आप उस्ताद हैं। मैं बस बैठे बैठे वो कहते हैं ना, एक और शेर मैं आपको सुनाता हूँ।
0: नाम तो बताएं, नाम तो बताएं अपना।
1: वसीम भाई बड़े अफसोस के साजिद बात कर रहा हूँ। साजिद,
0: वो साजिदार मेरे को आवाज बड़ी जारी बेचारी लग रही, मगर इस वक्त आप आ गए तो मजा आ गया आपकी बात सुन के।
1: बैठा बैठा ना, और कहते हैं ना अपना इश्क तो दीदा जर खून जिगर मांगता है, खून जिगर मांगता है, वरना बाजारे हवस भी है।
0: सही बात।
1: तो वसीम भाई, आपकी महफिल और मैं ना हूँ, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि कॉल लग गई। और अनिरा साहब की कॉल मैंने, वो अनिरा साहब जो जब बात कर रही थी, मैं कॉल मिला रहा एंड पे जाके मैंने कुछ अल्फाज।
0: चले चले, बहुत शुक्रिया आपका। आप तो हमारे बड़े प्यारे कॉलर हैं और सालों से हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है आपकी कॉल आती है। तो
1: जो आपने इज्जत दी है ना वसीम भाई, मैं आप किस तरह शुक्र अदा करूँ। मैं वो मेरे पास अल्फाज ही नहीं।
0: किस चीज के लिए?
1: जो आप मुझे इज्जत बख्शते हैं और सबको इज्जत देते हैं, जितने भी आपके चाहने वाले
0: आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। आप यकीन मानिए, मैं तो आ गया हूँ ना यहाँ पे, आप अपने घरों में बैठ के इतने प्यार से मुझसे बातें कर रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, मेरी बातों पे गौर कर रहे हैं, मेरी शायरी को पसंद कर रहे हैं जो मैं पढ़ रहा हूँ, तो यकीन मानिए मेरा दिल खुशी से भर जाता है। मैं बता नहीं सकता, मेरा सीना खुशी से फूल जाता है आप लोगों की मोहब्बत से।
1: जी वसीम भाई, बात यह है कि जिन पास जिस इंसान के पास प्यार मोहब्बत है या अदब है ना, वो अदब से बात करेगा और वही चीज देगा जो उनके अंदर मौजूद होता है।
0: बिल्कुल ठीक है। आपके लिए एक शेर है कि तू पुकारे तो चमक उठती है मेरी आंखें, तू पुकारे तो चमक उठती है मेरी आंखें, तेरी सूरत भी है शामिल तेरी आवाज के साथ।
1: वाह जबरदस्त सर,
0: बहुत शुक्रिया साजिद, थैंक यू।
1: प्रोग्राम आ गया आपके लिए, बहुत दुआएं और जो हसीन समाते हैं सुन रही हैं आपको, सभी के लिए बहुत सारा प्यार और सभी के लिए बहुत
0: शुक्रिया। जीते रहिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी, साजिदार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए, हमारे बहुत प्यारे कॉलर हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं और बड़ी खूबसूरत बातें इनकी हम तक पहुँचती हैं। और जनाब हमारे साथ कुछ और कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको भी उनकी कॉल भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। देखते हैं कि इस वक्त फेसबुक पे कोई इजाफा नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके मैसेजेस का। तो जनाब मैं बता दूं कि प्रोग्राम को कागज़ी घाट से और हमीद गोल साहब ने प्रोग्राम को लाइक किया है, इसी तरह और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया है, आपका बहुत शुक्रिया। और कमेंट्स की जानब बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे साथ मज़ीद कितने कमेंट्स हम तक पहुंचे हैं। और ये है जी रियाज भट्टी और हमीद गुल साहब। हमीद गुल साहब ने कहा, क्या बताऊं मैं जीस्त कैसे बसर हुई, ना मुझको खबर हुई ना उसको खबर हुई। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत शुक्रिया हमीद गुल साहब, आपका ये पैगाम मुझ तक पहुँच। और ये है जी रियाज भट्टी और हमीद गुल साहब। हमीद गुल साहब ने कहा, क्या बताऊँ मैं जीस्त कैसे बसर हुई, ना मुझको खबर

0: खुशी का महवर तुम हो और तुम्हें मालूम नहीं। बाजी वाह क्या बात है, इन्होंने सही लिखा, रोमन में लिखा है ये, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट्स में लिखा हुआ है। दोबारा से पढ़ता हूँ, तुझको दिल इतना चाहता है ये मुझे मालूम नहीं, मेरी हर खुशी का महवर तुम हो और तुम्हें मालूम नहीं, जब शाम डल जाती है तुम क्यों सांसों में उतर जाते हो, तुम जिंदगी हो और जिंदगी को मालूम नहीं, कभी तो तुम दिल से याद करो मुझे क्यों भूल जाते हो ये मुझे मालूम नहीं। वाजी वाह बहुत शुक्रिया शहजाद आपका, बहुत शुक्रिया आपने HYD अभी पता नहीं हैदराबाद लिखा है आपने, सिटी ये कयोन मैंने पढ़ा था, ये असल में क्यों है, तो क्यों तुझको दिल इतना चाहता है, ये इनके शेर का इसरा है कि क्यों तुझको दिल इतना चाहता है ये मुझे मालूम नहीं। बहुत शुक्रिया शहजाद, अगर आपने हैदराबाद से हमें मैसेज किया तो हम आपको जहां से भी मैसेज किया आपको वेलकम कहते हैं। खैर मोहम्मद फ्रॉम लाहौर शामी रोड, आपका पोइट्री पढ़ने का अंदाज ने जख्मी कर दिया है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से सारे सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। खैर मोहम्मद आप को शायरी ने मेरे अंदाज ने जख्मी कर दिया, क्या बात है जनाब, बड़ा कॉम्प्लीमेंट। पता है कि आप मोहब्बत करने वाले आप ही आपकी तरह होते हैं, ठीक है ना, आप जैसे ही होते हैं, हम जैसे होते हैं, सादे से लोग होते हैं और सच्चे दिल वाले आपको पता है ऐसे ही होते हैं, जैसे आप हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे मेरे सुनने वाले हैं। सागर फ्रॉम सरगोधा, सलाम वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये पोइट्री दुआ के लिए, मोहब्बत नाम है जिसका वो मोहसिन कैद है, ऐसी उम्र अगर बीत भी जाए सजा पूरी नहीं होती, क्या बात है सागर, क्या बात है। और ये कैद आपकी पूरी नहीं होने वाली, जो मोहब्बत करते ना उनकी कैद पूरी नहीं होती है ना, ऐसे ही है ना। बहुत शुक्रिया आपका जनाब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपकी अगली कॉल प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम सर
0: जी, कौन
1: जी? हाफिज अब्दुल रहमान
0: जी। हाफिज अब्दुल रहमान कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं
1: जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान। आप सुनाओ, ठीक
0: जी? जी जी जी जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है जी। क्या कहेंगे?
1: मैं ये कहना चाहता हूँ लाहौरी जिंदाबाद, जिला में लाहौर।
0: बहुत शुक्रिया
1: जी, खूबसूरत आवाज सुनने को यहाँ मिल रही है शुजाबाद में। मैं ये एक शेर सुनाना चाहता हूँ।
0: आप शुजाबाद से बात कर रहे हैं?
1: जी जी, जिला मुल्तान तहसील शुजाबाद से, बिल्कुल
0: जी।
1: 101 की आवाज पहुँच रही है,
0: जबरदस्त जबरदस्त।
1: कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछा है, पूछता है बता तेरी रजा क्या है।
0: खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, बहुत अच्छी।
1: निगाह निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो जोके यकीन पैदा तो कट जाती
0: है जंजीरें। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
1: आपकी शायरी भी सुन रहा हूँ, आपकी जो पढ़े वो भी सुन रहा हूँ। हमीद गुल का पैगाम आया था, अनिरा हमारी बहन आई थी, वो भी अच्छी पार्टी की।
0: जी जी बहुत अच्छा पढ़ा है। आप माशाल्लाह से खुद बहुत अच्छे हैं, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी लग रही है मुझे, बहुत अच्छा लगा आपने शुजाबाद से हमें कॉल किया है। और शुजाबाद के आम बड़े मशहूर होते हैं, है ना, ऐसे ही है ना
1: जी? आम भी मशहूर है, वहाँ का पकवान भी मशहूर है, तिलो वाला।
0: और अच्छा, और आप भी बिल्कुल आम की तरह मीठे मीठे बोल रहे हैं, है ना?
1: जैसे वसीम भाई आप ही किसी से कम नहीं है, वो किसी ने खूब कहा ना मौला खुश रखे, अभी वो बता के कैसे ना मौला जाता है मौला ने मिलना थे।
0: ओके बहुत शुक्रिया, इसका मतलब पंजाबी शोध होते हैं आप भी।
1: हाँ जी, वो कहते ना वो मौला ने मौला ना मारे मौला कभी मर्द
0: आपको कह रही। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके जी, बहुत शुक्रिया जनाब। और आबिद अली जापा, सुनो मुझे मोहब्बत करने में कोई दुश्वारी नहीं, तुम बताओ मेरे अजीज क्या सह पाओगे तलख लहजे।

0: जा मेरा, क्या बात है जनाब, क्या बात है। आबद अली जापा ने हमें ये कमेंट मतलब फेसबुक पे ज्वाइन किया है, तो बहुत शुक्रिया जनाब आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, खूबसूरत इजाफा किया आपने। तो हम तो जनाब चाहते हैं कि हमारे सुनने वाले हमें ढेर सारे कमेंट करें, मगर आपके कमेंट्स जो हैं वो बहुत स्लोली स्लोली मुझ तक पहुँच रहे हैं। काश आ जाए मुझे जान से गुजरते देखे, काश आ जाए मुझे जान से गुजरते देखे, उसकी ख्वाहिश थी कभी मुझको बिखरते देखे। वो सलीके से हुए हमसे गुरेजा, वरना लोग तो साफ मोहब्बत में मुकरते देखे। सलीके से गुरेजा हो गए। तुमने देखा है निकलता हुआ सूरज लोगों, तुमने कुछ ख्वाब सुहाने नहीं मरते देखे। तुमने देखा है निकलता हुआ सूरज लोगों, तुमने कुछ ख्वाब सुहाने नहीं मरते देखे। एक सहमे हुए साहिल की तरह आंखों ने कितने चढ़ते हुए तूफान उतरते देखे। वक्त होता है हर एक जख्म का मरहम मोहसिन, वक्त होता है हर एक जख्म का मरहम मोहसिन, फिर भी कुछ जख्म है ऐसे जो ना भरते देखे। फिर भी कुछ जख्म हैं ऐसे जो ना भरते देखे। 101 FM आपका अपना फैमिली स्टेशन, आवाज़ आपकी समातों तक पहुंच रही है, आपके अपने आरजे वसीम अहमद की। अगले कॉलर से बात करेंगे, लाइन पे कौन मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वसीम भाई, खैरियत है?
0: जी जी शुक्रिया अल्लाह का, ठीक है। कौन
1: भाई जान? आपका खादम महबूब अली।
0: महबूब अली, क्या बात है जनाब
1: भाई मेरे, मैं तो इतनी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ने मिला भी पाल।
0: चले शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हो गया।
1: और पर देखा आपने कि सबसे पहले आपकी कॉल या मैसेज जो है अनिला बहन का आया।
0: सबसे पहले,
1: और बहुत अच्छे। आज का पूरा हम बड़ा मीठा है, ये रूह अफ़ज़ा शरबत होता है ना। अच्छा, एक मैं पैगाम दूंगा आपको कि मेरे अजीज हैं, उनकी आज 36वीं शादी की सालगिरह है, तो उनके लिए मैं एक गाना भी डेडिकेट करवाऊंगा। अभी
0: नहीं, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आप सिर्फ मुबारकबाद दे दें और कॉल बंद करें, क्योंकि सिर्फ मेरे पास 5 मिनट है।
1: इनका नाम है राशिद अली और उनकी अली है मदिया।
0: ठीक हो गया, उनको बहुत बहुत मुबारक हो उनकी शादी की सालगिरह की, और आपको भी।
1: आमीन।
0: बहुत शुक्रिया महबूब अली, थैंक यू वेरी मच। हेलो, महबूब अली चले गए?
1: नहीं है, मौजूद हैं जनाब।
0: आप बोल नहीं ना रहे, मैंने कहा पता नहीं चले गए या नाराज हो गए।
1: बस ये है कि मुझे बेचैनी हो रही थी, 3-4 मरतबा कॉल मिल रही थी फिर कट जाती थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मैंने क्या कोशिश जारी रखते
0: हैं। बहुत अच्छा किया महबूब अली, आप मेरे प्रोग्राम में आते हैं ना, यकीन माने मेरा दिल खुशी से, क्या बताऊं मैं, भरपूर खुशी होती है मुझे।
1: अच्छा, बहन अनिला, तारक साहब और ये नूर आशी साहब और ये काफी अभी अहमदुल साहब, सबको जो ना मैं खराज पेश करता हूँ कि ये हमारे इस प्रोग्राम की जो रौनक है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और इस शहर में जागना जो है वो बड़ी बहादुरी की बात है।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।
1: हम अपनी नींद खराब करके हम आपकी मोहब्बत में जाग रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया, जीते रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी। नया है शहर, नए आसरे तलाश करूं, तू खो गया है कहां, अब तुझे तलाश करूं। नया है शहर, नए आसरे तलाश करूं, तू खो गया है कहां, अब तुझे तलाश करूं। जो दश्त में भी जलाते थे फसले गुल के चिराग, मैं शहर में भी वही आंवले तलाश करूं। तू अक्स है तो कभी मेरी चश्मे तर में उतर, तेरे लिए मैं कहां आईने तलाश करूं। तुझे हवास की आवारगी का इल्म कहां, कभी मैं तुझको तेरे सामने तलाश करूं। गजल कहूँ कभी सादा से खत लिखूँ उसको, गजल कहूँ कभी सादा से खत लिखूँ उसको, उदास दिल के लिए मशगले तलाश करूँ, मेरे वजूद से शायद मिले सुराग तेरा, कभी मैं खुद को तेरे वास्ते तलाश करूँ, मैं चुप रहूँ कभी बेवजह हंस पड़ूँ मोहसिन, उसे गवाह के अजब हौसले तलाश करूँ। और ये खूबसूरत गीत तमाम समातों के लिए और ख़ास तौर पे महबूब अली के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ।

इसके साथ ही प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। अपने मेजबान आरजे वसीम अहमद को दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआ में याद रखने की कोशिश करूंगा। कोशिश इसलिए कि कोशिश अक्सर कामयाब होती है। जाते जाते कहूंगा कि उसने दूर रहने का मशवरा भी लिखा है, साथ ही मोहब्बत का वास्ता भी लिखा है। उसने ये भी लिखा है मेरे घर नहीं आना, साफ साफ लफ्जों में रास्ता भी लिखा है। कुछ हरूफ लिखे हैं जब्त की नसीहत में, कुछ हरूफ में उसने हौसला भी लिखा है, शुक्रिया भी लिखा है दिल से याद करने का, दिल से दिल का है कितना फासला भी लिखा है। क्या उसे लिखे मोहसिन, क्या उसे कहे मोहसिन, जिसने करके बेजान फिर जाने जा भी लिखा है।

इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ज़रूर होगी, ढेर सारी पोइट्री के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।